0: बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं।
1: पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहीं पर सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता पर बात की और उसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिसे वहां पर हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी का भाषण का वो हिस्सा जिस पर पीएम ने बाद में जवाब दिया।
2: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते।
1: अब सुनिए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां पर ठहाके लगने लगे।
0: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
1: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया जबकि 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया।
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: मैं मनोज कुमार पांडे।
5: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
7: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा।
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
9: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
10: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार के विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय के नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
11: सुरेंद्र दिलेर।
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
11: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
12: मेरा इस संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
13: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
14: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
8: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
15: जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा, निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है, सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा सच्चा उसको किया।
8: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है, पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है, महिला चेहरा को शामिल किया गया है, समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है, पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है, गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है, गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है, बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
16: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
1: तमिलनाडु में रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि तमिलनाडु को जो है उन्होंने अपना सीएम चुना। तमिलनाडु की सियासत में थलापति विजय ने इतिहास रच दिया और पहली बार ही चुनावी रण में उतरने वाले जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के थलापति हैं, मुख्यमंत्री हैं।
17: विजय नमनान।
8: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
17: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description but also a clear declaration.
8: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल एक महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: बंदा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनके शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: तमिलनाडु में थलापति विजय ने जो करिश्मा कर दिखाया है उसकी उम्मीद लोगों ने नहीं की थी। किसी को भी नहीं मालूम था कि पहली बार ही चुनाव

0: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
1: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
0: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे, अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था, वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: बनेगा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका ये नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है।

0: तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थालापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
1: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: कलाई घड़ी के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है क्या? घड़ी हर आदमी को नहीं देनी चाहिए? बंद और टूटी घड़ी के प्रयोग से समय को कैसे बदल सकते हैं? जानिए घड़ी के प्रयोग से कैसे बदलेगा भाग्य सिर्फ भाग्य चक्र।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तेल संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी की बड़ी अपील, कहा अगले एक साल तक न खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल की बचत की सलाह, बोले विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति।

सोमनाथ मंदिर में आज ऐतिहासिक कुंभाभिषेक की तैयारी। पीएम मोदी करेंगे महापूजा, ध्वजारोहण। 11 तीर्थों से लाया गया पवित्र जल। हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो।

भगवा रंग में रंगा बंगाल का सचिवालय, आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली अहम बैठक। टीएमसी से निलंबित रिजु दत्ता का बड़ा बयान, कहा सीएम ने बचाई 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री अजीत पाल सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। और असम में 12 मई को हिमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 2026 सिर्फ ट्रेलर था, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर।

0: आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं, देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से, अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे महायुद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया भर के देश, खासकर एशियाई देशों की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो अगले एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें। पीएम ने कहा है कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए विदेश यात्राओं में भी कटौती जरूरी है। कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने ये अपील की लोगों से, खासकर पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल वर्क फ्रॉम होम की भी जरूरत है, कारपूलिंग की जरूरत है, विदेशी मुद्रा बचाने को प्रधानमंत्री ने देशभक्ति कहा, और मौजूदा स्थितियों को लेकर के जो संकट है वो दुनिया के तमाम देशों पर है और भारत भी उससे अछूता नहीं। और ऐसे में जब आशंका है कि तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, भारत के लिए चुनौती है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचाए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आवश्यक ना हो तब तक सोना ना खरीदें। यहां तक कि लोगों से कहा कि पेट्रोल डीजल की भी बचत करें, कारपूलिंग करें, सार्वजनिक परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल करें और विदेश यात्राओं से बचें। छुट्टियों के लिए अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो फिलहाल उससे बचें ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने लोगों से रासायनिक खादों पर निर्भरता भी कम करने को कहा। दरअसल भारत पेट्रोल डीजल भी आयात करता है और सबसे बड़ा खर्चा दरअसल फॉरेक्स का, उसकी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेल खरीदने के लिए होता है, उसी के साथ साथ रासायनिक जो उर्वरक हैं उनको खरीदने के लिए भी होता है। और इन चुनौतियों को देखते हुए प्रधानमंत्री अपील ने अब लोगों से अपील की है कि वो भी अब इस मिशन में सामने आए। आपको बता दें कि लगभग 1.5 महीने पहले ही तमाम एशियाई देशों ने इस तरह के कदम उठाए थे। तो क्या अपील की प्रधानमंत्री ने, बता दें सोने की खरीदारी में बहुत ज्यादा खर्च होती है विदेशी मुद्रा, क्योंकि सोना भी भारत आयात करता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डीजल पेट्रोल गैस का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचें, विदेश में छुट्टी के लिए ना जाएं। ये कुछ अहम बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही हैं। उन्होंने कहा विदेशी की जगह स्वदेशी अपनाएं, विदेशी अपैरल पे भी, क्योंकि हर परिस्थिति में विदेशी आयात पर आत्मनिर्भरता कम करने की जरूरत है, क्योंकि आयात अगर करना होगा तो उसी के साथ साथ विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो भी खर्च होता है, और ऐसे में सरकार अब चाहती है कि जनता विदेशी मुद्रा बचाए। युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है और अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पूरा देश इसके लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि खाने के तेल का भी कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये भी आयात होता है, केमिकल की खपत कम करें खेतों में, सोलर पंप का इस्तेमाल करें, देश हित में एक साल तक सोना नहीं खरीदें। ये वो कदम है जिसके चलते भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकता है। इसके पहले तमाम एशियाई देशों ने इस तरह के कदम 1.5 महीने पहले ही उठाने शुरू कर दिए थे। बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, कई जगहों पर हमने एनर्जी लॉकडाउन देखा है, वर्क फ्रॉम होम देखा है, स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी हैं, और अब भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने, हालांकि इस अपील का असर भारतीय बाजार पर क्या होगा ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन बड़ी खबर इस संकट में, इस वैश्विक संकट से अब भारत भी अछूता नहीं है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि अब वो सामने आए।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। ऐसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
0: यानी सीधे सीधे जो इशारा है वो एक बड़े संकट की ओर है। उधर हॉर्मुज बाधित होने से जहां एक तरफ भारत सहित तमाम देश कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से बेहाल हैं, तो ईरान में पेट्रोल पंप पर तेल के दाम सिर्फ 2 रुपए प्रति लीटर है। देखिए तेहरान से हमारे सहयोगी गीता मोहन की रिपोर्ट।
2: ईरान ने अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है। ये ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में ये कह दिया है कि आज के डेट में भारत तेल गैस की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहा है और इसी वजह से उन्होंने लोगों को कहा है कि तेल कम इस्तेमाल करें, गैस जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखें, जो हमारे किसान हैं उनको कहा है फर्टिलाइजर्स कम यूज करें, नेचुरल तरीके जो है फार्मिंग के उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से बंद है और उसका असर अब ज्यादा से ज्यादा दिखने लगा है। लेकिन आज हम तेहरान में खड़े हैं, एक ऐसे देश में जहां तेल की कमी, रिफाइनरीज अभी भी हिट नहीं हुए तो तेल की कमी नहीं महसूस हो रही। हमारे पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां पर आज के डेट में भी 2 रुपए पर लीटर यहां पर तेल बिक रहा है। तो जो प्राइस डिफरेंस है उससे पता चलता है कि ईरान को इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने पर कोई असर नहीं हो रहा लेकिन दुनिया को हो रहा है। तो जरूरी यह है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचे और इस युद्ध को अंत करें, क्योंकि ये युद्ध आज अंत हो और कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तब भी इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को सुलझने में काफी वक्त लग जाएगा। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।
0: दरअसल परिस्थितियों को सामान्य होने में वो वक्त इसलिए भी लगेगा क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में ये लिखा कि ईरान के तथा कथित प्रतिनिधियों का जवाब उन्हें पसंद नहीं आया है, वो उसे अस्वीकार करते हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। दरअसल कल ही ईरान की ओर से अमेरिका के पहले प्रस्ताव पर अपना प्रस्ताव भेजा। उस प्रस्ताव में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही गई जिसमें सबसे बड़ी बात थी कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण हो, अमेरिका और पूरी दुनिया इसे स्वीकार करे। उसने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। डीफ्रीजिंग ऑफ एसेट, ये भी उसकी दूसरी शर्त थी। और ऐसे में अमेरिका की जो शर्तें हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो या फिर यूरेनियम को लेकर के हो, ईरान ने उसे अस्वीकार कर दिया है। और जिसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह बयान लिखा। उधर ईरान ने अमेरिका के सामने न सिर्फ झुकने से इनकार कर दिया बल्कि अपने ताजा प्रस्ताव में यह भी साफ किया कि हॉर्मुज पर उसका एकाधिकार है, वो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की तरफ से जो ताजा प्रस्ताव भेजा गया है उसमें युद्ध के दौरान हुई क्षति के मुआवजे की भी मांग की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईरान तेल की बिक्री पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को 3 दिनों के अंदर रद्द करने की भी मांग कर रहा है। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी हटाने की शर्त की है। ट्रंप ने क्या कहा उसमें बता देते हैं आपको कि ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब मुझे पसंद नहीं आया और ये जवाब मुझे पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और उसी के बाद ट्रंप की दो टूक ये भी थी कि ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब, और ये इसलिए क्योंकि अमेरिका ने जो शर्तें रखी थी उसके बाद कल ये जानकारी आई कि ईरान की तरफ से अमेरिका को न सिर्फ जवाब भेजा गया बल्कि एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि हॉर्मुज पर ईरान का एकाधिकार होगा, युद्ध में जो ईरान का नुकसान हुआ है उसके लिए अमेरिका या पूरी दुनिया जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो उसे मुआवजा देगी। ईरान पर तेल की बिक्री से प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था पटरी पर आए और समंदर में जो अमेरिका की ब्लॉकेड है, नाकेबंदी है, उसे तुरंत हटा दिया जाए। सबसे बड़ी शर्त कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का एकाधिकार है, सिर्फ उसी का कंट्रोल है, इसे पूरी दुनिया माने। ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो ईरान ने अपने प्रस्ताव में अमेरिका को भेजी हैं, जिसके बाद ट्रंप का ये बयान आता है कि ये प्रस्ताव उन्हें नामंजूर है। इस वैश्विक संकट के बीच आज तक लगातार तेहरान से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है जहां अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की, मिसाइलें दागी। वहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता गीता मोहन। देखिए किस तरह ईरान के लोग सरकार के समर्थन में एकता का संदेश दे रहे हैं। जंग में जान गंवाने वाले मासूमों को रोजाना श्रद्धांजलि दी जा रही है।
2: 28 फरवरी को जब मिनाब के एक स्कूल पर हमला हुआ तो 168 बच्चे लड़कियां मारे गए। तजरी स्क्वायर पे हैं हम तेहरान के, जहां पर उन बच्चियों को रोज याद किया जाता है। यहां पे लोग आते हैं इन्हीं बच्चियों को याद करते हुए। आज इंटरनेशनल मदर्स डे है जहां दुनिया भर में लोग, माएं अपने बच्चों के साथ इस दिन को मनाते हैं। आप सोचिए उन माओं का जो अपने बच्चे खो चुके हैं और जो ये दिन कभी नहीं मना पाएंगे। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तजरी स्क्वायर पर तेहरान, गीता मोहन आज तक। हम यहाँ तजरी स्क्वायर पर हैं और अगर आपको मैं दिखाऊं जो नज़ारे हैं यहाँ के, वहाँ पर हर एक इंसान या हर दूसरा इंसान एटलीस्ट ईरान के झंडे को पकड़े हुए है। कहा जाता है कि जब ये वॉर शुरू हुआ, ये युद्ध शुरू हुई, तो फ्लैग सबसे ज्यादा बिकने लगे। अब क्योंकि सबके पास फ्लैग्स हैं, तो सेल कम हो चुका है। लोगों से बात किया हमने, वो कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं, कहते हैं कि फ्लैग बेचने की चीज नहीं है, ये प्राइसलेस है। तो हम वो लोग नहीं दिखना चाहते हैं जो अपने नेशनल फ्लैग को बेचते हैं, इसलिए कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनसे बात किया तो पता चला कि जब वॉर शुरू हुआ और जब पीक पर था, तब सबसे ज्यादा सेल यहाँ पर इन झंडों का हुआ। और न केवल झंडे, देखिए मैसेजिंग क्या है। लोग रोज आते हैं ये कहते हुए कि हम जंग लड़ने बैटल फील्ड पे नहीं जा सकते, तो यहाँ खड़े होके जंग का अपने देश का साथ देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो बहुत और चीजें भी बिक रही हैं, टोपियां बिक रही हैं, यहाँ पे लीडरशिप के फोटोग्राफ्स, जो सुप्रीम लीडर खामेनाई मारे गए उनके फोटोग्राफ्स हैं, और ये है एक टी शर्ट स्टॉल जहाँ पे मैसेज काफी क्लियर है, हॉर्मोज इज आज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान का है। और यहाँ अगर आप देखें तो फाइट लाइक एन ईरानियन लिखा है, यानी कि जिस तरीके से ईरान ने जवाब दिया है, आज ईरान कहता है अगर लड़ना हो तो ईरानियंस की तरह लड़ो। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज है वो जो आपको वहां दिख रहा है, ये जो झंडे लहरा रहे हैं, ये सबसे बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ा सेल जो हुआ है वो भी इन झंडों का ही हुआ है। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तजरी स्क्वायर पर गीता मोहन, आज तक।
0: गुजरात में अरब सागर के किनारे बसे शिव आस्था के अनुपम केंद्र सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे, हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो होगा, पीएम महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान वायुसेना के भव्य एयर शो का आयोजन होगा। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा होगी। पीएम सद्भावना मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 तीर्थों से लाए गए जल से सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक किया जाएगा। मंदिर के इतिहास में पहली बार 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से शिखर पर कुंभाभिषेक होगा। कुंभाभिषेक की परंपरा आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में देखी जाती है। अमृत महोत्सव पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में भी इस परंपरा को शुरू किया जा रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव का उत्साह जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी दिखेगा। गुजरात की लोक संस्कृति से जुड़ी झांकियों के बीच मंदिर के आकाश पर वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम एक भव्य एयर शो में अपने कर्तव्य दिखाएगी। तो सोमनाथ मंदिर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी ने, देखिए रिपोर्ट।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर के जो है 75 साल नवनिर्माण के हो रहे हैं और 11 मई वो तारीख है कि जिस दिन इसका नवनिर्माण हुआ था और ये मंदिर इसी स्वरूप में जो है वो बना था। और यही मंदिर को लेकर जो है वो 75 साल इसके होने के चलते ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत महोत्सव में जो है वो शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि क्या सोमनाथ मंदिर का जो भव्य इतिहास है, इसकी दिव्यता है, उसकी बात उन्हें की है। जिस तरह से जो है वो ये मंदिर को सजाया गया है, यहाँ पे जो रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं, उसके साथ ही जो बात की जाए तो जो यहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम होने हैं, कलश के द्वारा मंदिर पे जो है वो जल चढ़ाया जाएगा। 11 तीर्थ स्थानों का जो जल है वो कलश के द्वारा जो है यहाँ चलाया जाएगा। साथ ही जो यज्ञ हो रहा है वो यज्ञ को लेकर भी जो है उसकी पूर्णाहुति प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और ये पूरा कार्यक्रम जो रहेगा 75 साल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी बात भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो यही एक ऐतिहासिक क्षण है जिसकी बात हमेशा मोदी सरकार करती है। सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात, जिस तरह से सोमनाथ स्वामी पर्व की शुरुआत की और अब सोमनाथ महादेव मंदिर के 75 साल पुनर्निर्माण के पूरे होने पर अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे, और वही बात यहां से की जाएगी कि क्यों ये ऐतिहासिक है और किस तरह से ये महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह रहा है सोमनाथ मंदिर को लेकर भारत के लिए।
0: गुजरात के उपमुख्यमंत्री हरसंघवी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर पूरी जानकारी दी, उनसे बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश दोषी ने।
4: साथ गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। हर्ष भाई, सोमनाथ अमृत महोत्सव पूरे देश के लिए आस्था और देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, कितना महत्वपूर्ण ये क्षण है गुजरात के लिए और पूरे देशवासियों के लिए?
5: देवाधिदेव महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ, और सोमनाथ अमृत महोत्सव ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है। कल सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी खुद सोमनाथ पधार रहे हैं। वो सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, सोमनाथ के प्रखर भक्त भी हैं, और देश की राजनीति की दुनिया में एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त करने के बाद कल वो खुद भगवान सोमनाथ जी के दर्शन के लिए भी पधार रहे हैं। ये अपने आप में बहुत सारे सहयोग कल एक साथ मिल रहे हैं। भगवान सोमनाथ जी की ये सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां पुरजोश में चल रही है। कल लाखों की जनसंख्या प्रधानमंत्री जी के स्वागत में भगवान सोमनाथ जी के दर्शन के लिए यहाँ पधार रही है। सभी प्रकार की तैयारियां मैनेजमेंट द्वारा की गई है।
4: कितना बड़ा क्षण है ये, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद जो 50 साल थे उसका भी सेलिब्रेशन हुआ था। प्रधानमंत्री उस वक्त के और उप प्रधानमंत्री दोनों आए थे, और उसके बाद अब 25 साल के बाद ये सुवर्ण महोत्सव, और तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और वो आ रहे हैं।
5: देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री तौर पर शपथ ली, उसके ठीक 24वें दिन यहीं पे, यही धरती पे सोमनाथ जी के सुवर्ण अवसर का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें अटल जी भी मौजूद रहे थे। कल प्रधानमंत्री जी खुद अब प्रधानमंत्री के रूप में अमृत महोत्सव यहाँ पे मनाने आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है। देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक व्यक्ति ने सुवर्ण अवसर के तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पे पूजा की थी, और यही व्यक्ति ने फिर से एक बार अमृत महोत्सव के तौर पे यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे वो पूजा करेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है।
4: बात कही जा रही है कि भाजपा जो है हमेशा सांस्कृतिक विरासत की बात करती है, सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ती है, और जिस तरह से आध्यात्मिक धामों का विकास हो रहा है, चाहे वो उज्जैन महाकाल की कॉरिडोर की बात हो, काशी विश्वनाथ की बात हो, या अब सोमनाथ की, किस तरह से देशवासियों को ये मैसेज और यहाँ से दिया जाएगा?
5: देखिये, मोदी जी वो हमेशा सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करते आए हुए हैं। सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा करते करते साथ में ही आधुनिक भारत के शिल्पी भी हैं, तो वो हमेशा विकास और विरासत को साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, उज्जैन कॉरिडोर हो, पावागढ़ हो, या आप सोमनाथ की बात करूं, ये सभी धामों को उसको डेवलप करने में, जिस प्रकार से सनातन धर्मियों के जो सनातनी है उनकी ये धामों में व्यवस्थाओं की बात हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में बहुत ही बढ़ोतरी हुई, और आने वाले दिनों में भी ये काम चालू रहेगा।
0: उधर सोमनाथ मंदिर परिसर को अमृत पर्व के लिए फूलों से विशेष रूप से सजाया गया है, जो राष्ट्र की अटूट आस्था, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके अलावा पीएम मोदी के आने के चलते यहां कड़ी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है।
6: के तहत देश के माननीय वड़ा प्रधान श्री एक कल विजिट है, उस संदर्भ में हमने 11 एसपी लेवल ऑफिसर से लेके डिप्टी एसपी, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स और वन विभाग के कर्मचारियों की भी हेल्प लेके 2000 से ज्यादा हमारे पुलिसकर्मी, वनकर्मी और होमगार्ड, जीआरडी और सब सीनियर ऑफिसर को ड्यूटी में लगाए रखे। क्यूआरटी की टीम्स है, बीडीडीएस की टीम्स राउंड द क्लॉक बीडीएस चेक कर रही है। पूरा इलाका हमारी निगरानी में है, और साथ साथ वेकेशन का टाइम चल रहा है, तो जो रूटीन पर्यटक आ रहे हैं, रूटीन जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इस हिसाब से हमने पूरा आयोजन करके रखा है।
0: बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सचिवालय भगवा रंग में रंगा नजर आया। शुभेंदु अधिकारी आज पहली कैबिनेट बैठक लेंगे। उस बैठक से पहले दरअसल बंगाल के तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके पहले सचिवालय की इमारत भगवा रंग में जगमगाती दिखी। शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट बैठक आज होगी शपथ ग्रहण के बाद, और उसके पहले ये बंगाल का सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, जो पहली बार भगवा रंग में नजर आया। बंगाल के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी बैठक, लेकिन उस बैठक से पहले सचिवालय भगवा रंग में नजर आया। नजर इस पर होगी कि जब बतौर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपनी पहली कैबिनेट की बैठक लेंगे, किन योजनाओं पर काम होगा, कौन सी बड़ी बातें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो नजर आया है वो है सचिवालय का बदला हुआ रंग। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
8: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
10: कलाई घड़ी के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है क्या? घड़ी हर आदमी को नहीं देनी चाहिए? बंद और टूटी घड़ी के प्रयोग से समय को कैसे बदल सकते हैं? जानिए घड़ी के प्रयोग से कैसे बदलेगा भाग्य सिर्फ भाग्यचक्र।
11: It never happens at a good time. The pipe bursts at midnight. The heater quits on the coldest night. Suddenly, you're overwhelmed. That's when Home Serve is here. For $4.99 a month, you're never alone. Just call their 24/7 hotline and a local pro is on the way. Trusted by millions, Home Serve delivers peace of mind when you need it most. For plans starting at just $4.99 a month, go to homeserve.com. That's homeserve.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
12: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

तेल संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने की बड़ी अपील, कहा अगले एक साल तक न खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल की बचत की सलाह, बोले विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति। सोमनाथ मंदिर में आज ऐतिहासिक कुंभाभिषेक की तैयारी, पीएम मोदी करेंगे महापूजा, ध्वजारोहण, 11 तीर्थों से लाया गया पवित्र जल, हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो। भगवा रंग में रंगा बंगाल का सचिवालय, आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली अहम बैठक, टीएमसी से निलंबित रिजु दत्ता का बड़ा बयान, कहा सीएम ने बचाई 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार। असम में 12 मई को हेमंता फिर लेंगे सीएम पद की शपथ, उससे पहले कहा 2021 से 26 सिर्फ ट्रेलर था, 2031 तक दिखाऊंगा पूरी पिक्चर।

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 27 का शंखनाद कर दिया है। योगी सरकार का दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ। इस विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया और 6 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया। यूपी में सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक बिसात पर नई चाल चली गई है। कैसे साधा गया है 27 का यह समीकरण, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए।
1: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं।
2: मैं मनोज कुमार पांडे।
3: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं।
4: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
5: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा।
6: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
7: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
6: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
8: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर।
6: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
9: सुरेंद्र दिलेर।
6: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है।
10: मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे।
11: मेरा इस संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है, उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे।
12: इतना अच्छा दिन है आज, भारतीय जनता पार्टी मातृ डे है और मातृ डे में आज मुझे शपथ दिलाई है। तो आप जानते हो कि महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति कितना ज्यादा संवेदनशील है भारत।
13: जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा।
6: उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर कैबिनेट विस्तार सिर्फ शपथ नहीं होता, आने वाले चुनावों के संकेत भी होते हैं। इस संकेत को साफ साफ पढ़ा जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर का इस मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। योगी कैबिनेट में सोमेंद्र तोमर का कद बढ़ा है। सोमेंद्र तोमर को बीजेपी का मजबूत गुर्जर चेहरा माना जाता है। योगी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री अजीत पाल का भी मंत्रिमंडल विस्तार में प्रमोशन हुआ है। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से अजीत सिंह पाल विधायक हैं। ये पाल समुदाय के बड़े नेता हैं। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने।
14: जिम्मेवारी मिलेगी, अभी संगठन का काम कर रहा था, एमएलसी का काम कर रहा था, अब सरकार के मंत्री के रूप में जो काम मिलेगा, निश्चित तौर पर एक संगठन सेवा है हमारा, और वो तो ये है, सरकार का जो काम मिलेगा उसको जितना सच्चा उसको किया।
6: राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है।
9: 2024 का सबक हो या फिर ये पीडीए का असर, इतना है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में दलितों, ओबीसी और ब्राह्मणों को ही तवज्जो दी गई है। और जो नया आंकड़ा है वो दिखाता है कि किस तरीके से 2024 में मुंह खा चुकी बीजेपी 2027 में कोई भी मौका देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार में 6 में से 5 मंत्री ओबीसी और दलित बिरादरी से हैं। ब्राह्मणों को भी खुश करने की ये कोशिश। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: तो एक तरफ समीकरण साधने की तैयारी उत्तर प्रदेश में है, तो एक समीकरण तेलंगाना में दिखाई दिया। पीएम मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे। एक कार्यक्रम के दौरान वहां सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता की बात की। इसका जवाब बाद में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया, जिससे वहां हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी के भाषण का वो खास हिस्सा जिस पर पीएम मोदी ने जवाब दिया।
15: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी, मोदी जी कुछ साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद ही तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं।
0: अब सुनिए रेवंत रेड्डी के बयान पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाजिर जवाबी की, जिसे सुनकर वहां हर किसी ने ठहाके लगाए।
16: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
0: तमिलनाडु में रविवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि तमिलनाडु ने अपना मुख्यमंत्री चुना है। तमिलनाडु की सियासत में थलापति विजय ने इतिहास रच दिया। पहली बार ही चुनावी रण में उतरने वाले जोसेफ विजय अब तमिलनाडु के नए थलापति हैं। नेहरू स्टेडियम में विजय ने सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ 9 और विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, और इस तरह से विजय तमिलनाडु के 9वें सीएम बन गए।
6: तमिलनाडु में शुरू हो गया है विजय राज, थलापति विजय अब रचेंगे तमिलनाडु का मुस्तकबिल।
17: There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion, and even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration.
6: वो विजय जो अब तक रियल लाइफ के हीरो थे अब रियल लाइफ के हीरो बन गए हैं। तमिलनाडु की जनता ने दिल खोल कर उनका साथ दिया है, उन पर भरोसा किया है। और अब उस भरोसे पर खरे उतरने की जिम्मेदारी विजय की है। शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने दो सबसे बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया। इससे राज्य की जनता चहक उठी। विजय ने शपथ स्थल से अपनी सरकार के पहले बड़े फैसलों में से एक के तौर पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और सिंगापुर स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया। विजय के दिल में क्या था वो अपनी फिल्म के जरिए ये बताते रहे हैं, जताते रहे हैं कि क्यों वो तमिलनाडु की सियासत में घुसे हैं। तमिलनाडु में पिछले 59 साल 1 महीने और 28 दिनों तक सिर्फ दो ही पार्टियों का राज था। तमिलनाडु में पिछले 21,608 से सिर्फ दो ही पार्टियां शासन करती थी, डीएमके और एडीएमके। बीच बीच में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन भी रहा, लेकिन दोनों पार्टियों के अलावा किसी तीसरे की एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन अब इन दोनों पार्टियों के राज को 59 साल के बाद थलापति विजय की टीवीके ने ध्वस्त कर दिया है।

विजय ने वो करके दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। किसने सोचा था कि सिर्फ 2 साल में ऐसा कमाल दिखाएंगे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाएंगे।

0: मानूंगा।
1: विजय मौजूदा वक्त में तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। विजय के पास पैसा, स्टारडम, फैन फॉलोइंग सब कुछ था। वो चाहते तो आराम से सुपरस्टार बने रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। ...2016 में जयललिता की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति में एक शून्य था, एक खालीपन था। डीएमके के सामने तो जैसे कि खुला हुआ रास्ता था, दूर दूर तक कोई भी टक्कर में नहीं था। इसीलिए 2021 में स्टालिन मुख्यमंत्री बने तो सबको लगा कि स्टालिन को कौन टक्कर देगा। इसीलिए ज्यादातर एग्जिट पोल में उनकी जीत बताई जा रही थी। लेकिन वो विजय ही थे जिन्होंने जयललिता की मौत से खाली हुई तमिलनाडु की राजनीति के शून्य को भर दिया। उनकी रैलियों की भीड़ बता तो रही थी कि तमिलनाडु में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ भीड़ नहीं है, उनके मतदाता भी हैं। और विजय के इन फैंस ने ये साबित कर दिया कि वो रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए नहीं जमा हुए थे, वो तमिलनाडु को बदलने के लिए आए थे। तमिलनाडु में थलापति विजय ने इतिहास तो रचा है, लेकिन उनको ये कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को उनके अंदर एक ऐसा नायक नजर आया जो उनके राज्य को आगे ले जा सकता है। विजय की इस जीत के पीछे उनके वो फैंस थे जो उन्हें किसी भी हद तक फॉलो करते हैं। विजय ने अपने फैन क्लब को वेलफेयर नेटवर्क में बदला, लोगों की मद, युवाओं के कनेक्शन और जमीनी पकड़ मजबूत की और टीवीके के अपने वोटर तैयार किए। तमिलनाडु में विजय के 85,000 से ज्यादा फैन क्लब का नेटवर्क है जिन्होंने उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उनका यह नेटवर्क पिछले 10 वर्षों से उनकी शैडो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही काम कर रहे थे। विजय के ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में सामाजिक काम कर रहे थे, लोगों को विजय से जोड़ रहे थे। विजय आर्मी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु की गलियों में दिख रही थी। विजय की जीत की सबसे बड़ी वजह है उनकी लोकप्रियता। विजय भले ही 51 साल के हों, लेकिन उन्हें युवाओं का जेंजी नेता कहा जाता है। तमिलनाडु में 40 से कम उम्र के युवाओं की संख्या 2 करोड़ है, जो तमिलनाडु के करीब 41.5% वोटर होते हैं। विजय का यही युवा कैडर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था, जिन्होंने तमिलनाडु में विजय के पक्ष में हवा बनाई। विजय ने किसी बड़े गठबंधन का सहारा नहीं लिया, न डीएमके, न एडीएमके, न बीजेपी, सीधे जनता के बीच गए। मुद्दे थे रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और बदलाव, और नतीजा ये कि टीवी के सबको चौंकाते हुए आज अपनी सरकार बना चुकी है और मुख्यमंत्री बन गए हैं थलापति विजय। चेन्नई से अक्षिता नंदगोपाल के साथ आज तक ब्यूरो।
2: चुनाव तो 5 राज्यों में थे, लेकिन जो तमिलनाडु में हुआ वो ऐतिहासिक था। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: क्या कलाई घड़ी के प्रयोग से आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या घड़ी हर आदमी को नहीं देनी चाहिए? बंद और टूटी घड़ी के प्रयोग से समय को कैसे बदल सकते हैं? जानिए घड़ी के प्रयोग से कैसे बदलेगा भाग्य सिर्फ भाग्य चक्र।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: TuneIn has the music.
5: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
7: TuneIn Poolside has the music I love.
5: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask
0: ask your device to play Poolside on TuneIn.

रसोई में चढ़ती आज का असर जेब की गर्मी को बढ़ाने लगा है। होटल की थाली हो, सड़क किनारे मिलने वाली चाय हो, या सुबह के नाश्ते के ब्रेड बटर, हर तरफ महंगाई की तपिश महसूस होने लगी है। दरअसल दुनिया में छिड़े तनाव का असर सीधे भारतीय घरों के किचन तक पहुंच रहा है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बड़ा उछाल आने से सबसे पहले तो बाहर खाने पर असर दिखाई दे सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, केटरिंग और स्ट्रीट फूड का बड़ा हिस्सा इसी गैस पर चलता है। ऐसे में कारोबारियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर ग्राहकों की प्लेट तक पहुंच सकता है, जिससे थाली, चाय, कॉफी और स्नैक्स महंगे हो सकते हैं। बिरयानी, फास्ट फूड और मिठाइयों के दाम भी बढ़ने की आशंका है। वहीं छोटे फूड बिजनेस पर खर्च का दबाव बढ़ गया है। लेकिन महंगाई की आग होटल तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर आपके घर तक भी पहुंचना तय है, क्योंकि पैक्ड फूड बनाने वाली यूनिट्स भी कमर्शियल LPG पर काफी हद तक निर्भर हैं, जिससे ब्रेड, बन, केक, कुकीज और बिस्किट की लागत बढ़ सकती है। नमकीन, पापड़ और तले स्नैक्स पर भी असर संभव है। इससे फूड प्रोसेसिंग और मिठाई कारोबार के मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। महंगाई का ये असर खाने के तेल पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जल्द दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। आशंका है कि खाने के तेल की कीमतों में 5-6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह पश्चिम एशिया संकट से इम्पोर्ट कॉस्ट का बढ़ना है। इससे घर के महीने भर के राशन का खर्च बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को भी झटका दिया है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। कच्चे तेल में तेजी का असर पेट्रोल डीजल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा रहा है। इसकी वजह है कच्चे तेल के दाम 4 साल की हाई पर पहुंच चुके हैं, जिससे कंपनियों की पेट्रोल डीजल, LPG और ATF पर लागत बढ़ गई है। एविएशन सेक्टर पर भी महंगे क्रूड का असर साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते एयर इंडिया रोजाना 100 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स घटाएगी। महंगे फ्यूल के अलावा स्पेयर पार्ट्स की कमी का असर भी उड़ानों में कमी की वजह है। इससे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया की जंग का धुआं भारत में लोगों की रसोई और घरों तक पहुंच चुका है। कमर्शियल गैस से लेकर खाने के तेल और फ्लाइट टिकट तक खर्च का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में बाहर खाना, सफर करना और रोजमर्रा के कई सामान लोगों की जेब पर काफी भारी पड़ सकते हैं। आदित्य केराना, आज तक।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ.
4: मैं मनोज कुमार पांडे.
5: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ.
6: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा.
7: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा.
8: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है. योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन.
4: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा.
8: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ. इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली. यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है. पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी. रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं. यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है. 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे.
9: मैं कृष्णा पासवान ईश्वर.
8: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने. चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है. लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है. कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है.
10: सुरेंद्र दिलेर.
8: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है. एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर. यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं. पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है. योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है. ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने. राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है. इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है. फोकस 2027 विधानसभा चुनाव. टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है. पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है. पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है. महिला चेहरा को शामिल किया गया है. समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है. पीडीए फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है. गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है. गैर जाट और दलित वोट साधने की कोशिश हुई है. बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है. यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है. गुर्जर पाल पिछड़ा दलित ब्राह्मण, हर क्षेत्र हर जाति हर समीकरण का ध्यान रखा गया है. या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है. राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है. और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है. 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है. आज तक ब्यूरो.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तेल संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी ने की बड़ी अपील, कहा अगले एक साल तक न खरीदें सोना, पेट्रोल डीजल की बचत की सलाह, बोले विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति। सोमनाथ मंदिर में आज ऐतिहासिक कुंभाभिषेक की तैयारी, पीएम मोदी करेंगे महापूजा, ध्वजारोहण, 11 तीर्थों से लाया गया पवित्र जल, हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो। भगवा रंग में रंगा बंगाल का सचिवालय, आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली अहम बैठक, टीएमसी से निलंबित रिजु दत्ता का बड़ा बयान, कहा सीएम ने बचाई 5,000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जान। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनावी समीकरण साधने के लिए योगी कैबिनेट का विस्तार, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए चेहरे, 2 राज्य मंत्री, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर को मिला स्वतंत्र प्रभार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। कलाई पर लगाने वाली घड़ी हो या दीवार घड़ी हो, ये आपके समय को कैसे बदल सकती है, आपके समय पर कैसे असर डाल सकती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन सोमवार तिथि है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:24 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं घड़ी के बारे में और आपकी किस्मत के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि घड़ी का आपके ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, सामान्यतः जो कलाई घड़ी है, रिस्ट वॉच है, ये ज्योतिष के दो ग्रहों से जुड़ी हुई है। इसमें सर्वाधिक भूमिका होती है सूर्य और चंद्रमा की, क्योंकि इन्हीं के आधार पर समय बदलता है, इन्हीं के आधार पर तिथियां बदलती हैं। सेकंड की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, तो इसलिए इसमें तेजी से बदलने वाले राहु का रोल भी होता है। घड़ी का स्ट्रैप, डायल और घड़ी का रंग अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और कलाई घड़ी आप अपनी कलाई में लगाते हैं, जहां पर तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं। इसीलिए जब आप घड़ी लगाते हैं तो ये आपकी नाड़ियों को भी प्रभावित करती है। गलत तरीके की घड़ी लगाएंगे, अपने लिए प्रतिकूल घड़ी लगाएंगे, बिना सोचे समझे घड़ी लगाएंगे, तो इसका आपके मन पर भी और आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। घड़ी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं,

बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि।

ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब आप कैसी घड़ी अपनी कलाई में पहने, कैसी रिस्ट वॉच का इस्तेमाल करें, ये जानते हैं कि सही कलाई घड़ी का चुनाव कैसे करें। देखिए, घड़ी का चुनाव आप दो तरीके से कर सकते हैं, अपने ग्रहों के हिसाब से और अपने करियर के हिसाब से। अगर आप बृहस्पति प्रधान हैं, जुपिटेरियन हैं, तो गोल्डन घड़ी या पीले स्ट्रैप वाली घड़ी आपके लिए उत्तम रहेगी। अगर आप शनि प्रधान हैं यानी सेनिटेरियन हैं, तो स्ट्रैप वाली काली घड़ी या नीले स्ट्रैप वाली घड़ी उत्तम रहेगी। अगर शुक्र या चंद्र को बल देना चाहते हैं तो वाइट मेटल की घड़ी या सफेद स्ट्रैप की घड़ी पहनना, या जिस घड़ी का डायल सफेद हो ऐसी घड़ी पहनना अच्छा होगा। घड़ी का डायल जितना स्पष्ट होगा, उसमें नंबर जितने साफ लिखे होंगे या बने होंगे, उतना ही ज्यादा ये आपको लाभ देगा। पूरी तरह से अगर आप काली घड़ी पहनते हैं, स्ट्रैप भी काली, डायल भी काला, घड़ी का केस भी काला, पूरी तरह से अगर आप ब्लैक घड़ी पहनते हैं, तो मेहनत भी बढ़ेगी जिंदगी में और अनुशासन भी बढ़ेगा। अगर जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी चीजों को पाने में स्ट्रगल करना पड़ता है, तो पूरी तरह से काली घड़ी पहनने से बचना चाहिए। घड़ी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज

कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम हो जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रुचि शर्मा ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखती हैं। रुचि की जन्म तारीख है 8 दिसंबर 1986। जन्म का समय रात में 9:10। जन्म स्थान है मुरादाबाद। मेल लिखती हैं मेरठ से। ये कह रही हैं कि मैं अभी नौकरी कर रही हूं मेरठ में टीचिंग की। करियर मेरा अच्छा चल रहा है लेकिन मेरा पहला विवाह टूट गया है। क्या मेरी किस्मत में दूसरी शादी की संभावना है और अगर है तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? रुचि, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी दूसरी शादी अवश्य होगी। साल 2026 के अंत में इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आपका दूसरा विवाह होगा। ज्यादा से ज्यादा साल 2027 का आरंभ आ सकता है। विवाह आपका दूसरा सफल होगा और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं दिखती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। अब आप घड़ी लगाते हैं या घड़ी खरीदते हैं या घड़ी किसी को देना चाहते हैं तो घड़ी के मामले में किन किन सावधानियों का पालन आपको करना चाहिए? देखिए, बहुत ज्यादा घड़ियां रखने से बचना चाहिए। बहुत सारे लोग घड़ी के बड़े शौकीन होते हैं, 10-10 घड़ियां, 15-15 घड़ियां रखते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा घड़ियां रखने से बचना चाहिए। अगर ज्यादा घड़ियां हैं तो सबको चालू हालात में रखिए, बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। अगर घड़ियां बंद हैं तो उसको चालू करिए और अगर वो ठीक नहीं हो सकती, घड़ी टूट गई है, उसकी मशीनरी खराब हो गई है, तो उसको जितना जल्दी हटा दें उतना ज्यादा अच्छा होगा। सामान्यतः घड़ियां उपहार में नहीं देनी चाहिए। घड़ियां उसी को उपहार में दें जो आपका बहुत करीबी हो। किसी ऐसे व्यक्ति को घड़ी दे दीजिए जिसका समय खराब चल रहा हो तो उसका खराब समय आपको मिल जाएगा। और बिना जाने पहचाने ऐसे ही किसी को घड़ी पकड़ाएंगे तो आपका समय ट्रांसफर होगा, आपको नुकसान होगा। अगर मित्रता बहुत गहरी है, प्रेम बहुत गंभीर है, तब घड़ी देना सर्वोत्तम होता है। ऐसे ही किसी फंक्शन में सामान्य गिफ्ट के तौर पर घड़ी देने से बचना चाहिए। घड़ी देने का मतलब समय को परिवर्तित करना होता है। बंद घड़ियों के बारे में जो एकदम खराब हो गई हों या जो घड़ियां एकदम टूट हो गई हों, जिनके रिपेयरिंग की कोई संभावना ना हो,
ऐसी घड़ियों को लेकर के नदी या समुद्र के किनारे जाइए। अगर आपका समय बहुत बुरा चल रहा हो तो बंद घड़ी या टूटी घड़ी को अपने सर पर से घुमाइए और इसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपका रुका हुआ, आपका बहुत खराब वक्त बेहतर होगा। लेकिन उसी घड़ी को हटाइएगा जो बन ना सकती हो या जो टूट गई हो, जिसमें सुधार की कोई उम्मीद ना हो। दीवार घड़ी आपके जीवन पर कैसे असर डालती है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों की समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

के पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब जब आप दीवार घड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, दीवार घड़ी खरीद रहे हैं, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें? दीवार घड़ी अगर गोल हो तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वर्गाकार यानी स्क्वायर या आयताकार रेक्टेंगल वाली दीवार घड़ी भी चल जाएगी। टेढ़े मेढ़े डिजाइन की दीवार घड़ी का प्रयोग ना करें। टेढ़े मेढ़े डिजाइन की दीवार घड़ी आपके जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करेगी। दीवार घड़ी के अंदर का रंग यानी डायल अगर सफेद हो और उसके नंबर काले रंग के हो तो बहुत अच्छा होगा। सफेद डायल और काले नंबर वाली दीवार घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। दीवार घड़ी को पूरब या पश्चिम की दीवार पर लगाना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। इसको दरवाजे पर या खिड़की के आसपास मत लगाइए। दरवाजे या खिड़की की चौखट पर दीवार घड़ी लगाने से समय बिगड़ सकता है। जैसे कलाई घड़ी सबको उपहार में नहीं देनी चाहिए, वो बात दीवार घड़ी के साथ नहीं है। दीवार घड़ी आप उपहार में ले भी सकते हैं और उपहार में दे भी सकते हैं। वॉल क्लॉक अगर आप उपहार में दें या लें तो उससे समस्या नहीं होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

भाव बना रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हिंदू परंपरा में जब दाह संस्कार हो जाता है तो उसके बाद जो जली हुई अस्थियां होती हैं उनको जल में प्रवाहित किया जाता है। क्या ऐसा केवल धार्मिक कारणों से है या कोई और वजह है? ऐसा क्यों है? देखिए, व्यक्ति के शरीर के जल जाने के बाद जो उसकी अस्थियां होती हैं वो भी जल जाती हैं, और हड्डियों में अस्थियों में होता है फास्फोरस। तो जब जल में अस्थियां डाली जाती हैं मृत व्यक्ति की, तो उसका फास्फोरस जल में मिल जाता है। वो जल को शुद्ध करने में और जल के जीवों को जीवन देने में सहायता करता है। धार्मिक कारण तो ये कहता है कि मुक्ति मिलती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से फास्फोरस जल में मिलके जल को शुद्ध करता है और जल में रहने वाले जीवों को जीवन देता है। इसीलिए मृत्यु हो जाने के बाद, दाह संस्कार हो जाने के बाद अस्थियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। नंबर 5, संतान पक्ष की उन्नति होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। और नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो शिव मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके स्वास्थ्य की तमाम स्थितियों में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हल्की सुगंध लगाकर जाइएगा, काम बन जाएगा।
अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कुंभ राशि के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, चिंताएं दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि के लोगों के लिए, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को, स्वास्थ्य का ध्यान दें, बेवजह के विवादों से बचाव करें। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज नवमी तिथि है, नवमी तिथि रिक्तता तिथि है, इसलिए आज कोई नया और शुभ कार्य ना करें। नवमी तिथि की स्वामिनी माता दुर्गा हैं, इसलिए आज थोड़ा समय निकालकर माता दुर्गा की उपासना जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

वैश्विक संकट के बीच तेलंगाना के सिकंदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों से अपील, कहा देश हित में एक साल तक सोना नहीं खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति है। तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कई उपाय सुझाए, कहा पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर के भी लोगों से अपील की है, कहा हमें कम से कम एक साल के लिए विदेश यात्रा टालनी चाहिए, देश में कई खूबसूरत जगह हैं, यहीं घूमने की सलाह भी दी। पश्चिम एशिया जंग का असर कम करने के लिए पीएम मोदी ने मंत्र भी दिया, कहा हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए या आधा करें और नेचुरल खेती की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर के तंज कसा, बेंगलुरु की रैली में कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी, कहा तमिलनाडु में मौका मिलते ही साथी की पीठ में छुरा घोंप दिया। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा देश को बांटना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी सौगात, 9400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए, ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज से दो दिनों के गुजरात दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लेंगे, इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक होगा, 11 तीर्थों के पवित्र जल से ये अभिषेक किया जाएगा। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री विजय ने डीएमके पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डीएमके ने 10 लाख करोड़ का कर्ज तमिलनाडु पर छोड़ा है। बेंगलुरु में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा मौका मिलते ही कांग्रेस अपने सहयोगियों को छोड़ देती है, सत्ता की लालसा में कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ दिया। कांग्रेस से टीवीके के गठबंधन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा विजय की पार्टी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूब जाएगी। गठबंधन पर सियासी संग्राम तेज हो गया है, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी था। हावड़ा के नाबन्ना सभागार में कानून व्यवस्था पर अहम बैठक हुई, पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की पुलिस अधिकारियों के साथ पहली बड़ी बैठक हुई, जिला एसपी और कमिश्नर भी शामिल हुए। बैठक में आईएएस और आईपीएस स्तर पर बड़े फेरबदल और कानून व्यवस्था की समीक्षा की भी संभावना है। सुवेंदु के करीबी चंद्रनाथरथ हत्या मामले में जांच, यूपीआई और फास्टैग से अहम सुराग, एसआईटी ने एक आरोपी की पहचान भी की। पूर्व तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य बताया, कहा टीएमसी नेतृत्व पर संगठनात्मक विफलता। कल शपथ लेंगे हिमंता विश्व शर्मा, असम दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनेंगे। केरला में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में अभी तक मंथन चल रहा है, अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो पाया, दौड़ में केसी वेणुगोपाल फिलहाल सबसे आगे हैं। दिल्ली में अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की, हीटवेव से लेकर बाढ़ संकट की तैयारियों को लेकर के समीक्षा की गई। बंगाल के सचिवालय नबन्ना को केसरिया सजावटी लाइटों से रोशन किया गया, आज सचिवालय में शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होनी है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ, पार्टी के दिग्गजों का हुजूम उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं, 83.87% रहा कुल रिजल्ट, 160 टॉपर्स में 83 लड़कियां। रामायण शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा अयोध्या, एक ही छत के नीचे मिलेगा श्रीराम साहित्य, पांडुलिपि और शोध सामग्री। तमिलनाडु के त्रिची में चित्राई फेस्टिवल की रौनक देखने को मिली, 1008 पालकुंडम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। टिहरी गढ़वाल में विधि विधान से निकाली गई जगदीशिला डोली यात्रा, जगह जगह डोली का भव्य स्वागत किया गया। गुजरात के सूरत में शादी के पवित्र बंधन में बंधे आदिवासी समाज के 32 जोड़े, स्थानीय विधायक ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 17 दिनों में अब तक दर्शन किए। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब परिसर को अंतिम रूप देने और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। बलिया में घायल दूल्हे ने शादी के दिन ही अस्पताल में आकर गाड़ी में भरी दुल्हन की मांग, हादसे में दूल्हा घायल हो गया था। कोनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकलते चीते का रेस्क्यू किया गया, 23 दिनों से बाहरी इलाके में चीता घूम रहा था। श्योपुर में मदर्स डे पर कूनो की चीता माताओं पर शॉर्ट फिल्म बन रही रिलीज की गई, भारत में चीतों का कुनबा अब 57 हो चुका है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी के साथ यौन शोषण और दबंगों की धमकियों से परेशान पिता ने आत्महत्या कर ली, मृतक ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। महाराष्ट्र के अकोला में 6 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया, पुलिस हिरासत में लिया गया नाबालिग आरोपी। उल्लासनगर में पेट्रोल पंप पर खूनी खेल देखने को मिला, साले ने जीजा पर चाकू से जानलेवा हमला किया।
पुणे में 8वीं मंजिल से कूदकर एक महिला ने जान दे दी, पति ने हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं सका। देहरादून से महानंदा एक्सप्रेस में सवार महिला रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई है। केदारनाथ के दर्शन करके परिवार लौट रहा था, महिला ट्रेन से लापता। गुजरात के पंचमहल में 3 युवकों की मौत हो गई है, 2 अलग अलग सड़क हादसों में जान गई। आगरा में ऑटो पलट गया, पिता पुत्र की मौत हो गई, परिवार में कोहराम। मिर्जापुर में कथित अपहरण और 4 दिनों तक बंधक बनाए जाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर पैसे की उगाही करने की फिराक में आरोपी युवती थी। इंदौर में सड़क की सफाई कर रहे महिला सफाईकर्मी पर बस एक पार्सल गिर गया, 1 क्विंटल वजनी पार्सल गिरने से महिला घायल हो गई। वाराणसी में गन पॉइंट पर लूट की कोशिश की गई, सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, पुलिस जांच में। महाराज के वसई में शादी समारोह में मारपीट हुआ, वीडियो वायरल हुआ, दोनों तरफ के लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जमशेदपुर के पतंजलि के नाम पर लेकव्यू होटल रिजॉर्ट में देह व्यापार का गांव वालों ने विरोध किया, लड़का और लड़की को बंधक बना दिया। झारखंड के गढ़वा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 12 यात्री घायल हो गए, 2 गाड़ियों में टक्कर हुई थी। आगरा में कई दिनों से लापता युवक का शव मिला है, 110 फीट गहरे गड्ढे में बरामद किया गया है, हत्या का आरोपी उसका सगा भाई ही निकला। रांची में आरपीएफ की महिला सिपाही फरिश्ता बनी, चलती ट्रेन से गिर रही महिला यात्री की उसने जान बचाई। चीन के वुहान में यांगसी नदी किनारे हरियाली की नई तस्वीर सामने आई है, 10 साल में भारी उद्योगों की जगह अब ग्रीन डेवलपमेंट ने ले ली है। वुहान प्रशासन ने नदी को बचाने के लिए 150 पर्यावरण प्रोजेक्ट शुरू किए, नदी किनारे 26 डॉक बंद कर उन्हें हरित पार्कों में बदल दिया गया। चाइना बीजिंग इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो का समापन हो चुका है, इस हाईटेक एक्सपो में AI तकनीक ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। 3 दिनों में 70,000 से ज्यादा ऑफलाइन विजिटर्स इसमें शामिल हुए, 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। इस एक्सपो में AI फिजियोथेरेपी रोबोट ने लोगों को चौंकाया, ये रोबोट एक्यूप्रेशर जैसी थेरेपी देने में भी सक्षम है। IPL में बड़ा उलटफेर हुआ है, लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से अब बाहर हो चुकी है। चिपॉक में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति काम आई, टॉस जीतकर पहले उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया था। लखनऊ ने 203 रन का मजबूत स्कोर बनाया, चेन्नई ने 19.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया था। आखिरी ओवर में शिवम दुबे के लगातार 2 छक्कों से चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत हुई। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा, 52 दिन में 1795 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पहुंच चुका है फिल्म का। 23वें दिन अक्षय की भूत बंगला की कमाई में भी उछाल देखने को मिला, फिल्म ने शनिवार को 3 करोड़ का कारोबार किया। बॉक्स ऑफिस पर नई थम रही है राजा शिवाजी की दहाड़, 9वें दिन भी नोटों की बारिश हुई। 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करते दिखाई दिए रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रचेगी इतिहास, 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मराठी फिल्म बन सकती है। मोहनलाल ममूटी स्टारर पेट्रियट भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी बंपर कमाई कर रही है। इधर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है माइथोलॉजिकल फिल्म द कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदय, दर्शकों को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है। जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म एक दिन की कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है, 9 दिन में दुनिया भर के थिएटर्स में सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया है फिल्म ने। नीतू कपूर कपिल शर्मा स्टारर दादी की शादी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में नाकाम रही, 2 दिन में महज 2,10,00,000 रुपए फिल्म ने कमाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं एक्टर नहीं हूं भी थिएटर्स में फ्लॉप हो गए, फिल्म ने 2 दिन में 1,46,00,000 की कमाई की। विदेश में ऑरा टूर 2026 में अपने गीतों से जलवा बिखेर रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ, कल शिकागो में अगला धमाकेदार कॉन्सर्ट होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए नया प्रस्ताव रखा है, प्रतिबंध हटाने और युद्ध विराम की मांग की है। ईरान की मांग की है कि समुद्री नाकाबंदी खत्म हो, सभी मोर्चों पर संघर्ष को समाप्त किया जाए। ईरान ने अमेरिका से तत्काल युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी देने की मांग रखी है। ईरान ने अमेरिकी OFAC प्रतिबंध 30 दिनों में हटाने की शर्त रखी है लेकिन अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने पोलैंड और मोल्दोवा के 5 कैदियों को रिहा कराया, टैरिफ मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। मिडल ईस्ट में जंग पर विराम की तैयारी, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को प्रस्ताव दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेस में तनाव कम करने के लिए सुरक्षा का भी जिक्र किया गया है। ईरान की सेना ने दुश्मन देशों को बड़ी चेतावनी दी है, कहा अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो नए हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया के जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला हुआ, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अज्ञात वस्तु जहाज के पिछले हिस्से से टकराया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन में युद्ध अब खत्म होने जा रहा है।
स्थानीय चुनाव में हार के बाद ब्रिटेन के पीएम के स्टार्मर को हटाने की मांग हो रही है। विपक्षी दलों ने इस्तीफा मांगा है। इसराइल ने गाजा में फिर युद्ध विराम तोड़ा है। खान यूनिस में इजरायली हमले में दो पुलिस अफसरों की मौत हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा आतंकी हमला हुआ। विस्फोटक से भरी गाड़ी चेकपोस्ट से टकराई। हमले में 15 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। इंडोनेशिया के माउंट दुकोने में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हादसे में सिंगापुर के दो लोगों की मौत हुई। हंता वायरस से प्रभावित क्रूज से यात्रियों को निकालने का काम तेज किया गया। स्पेन के टेनरिफ तट पर यह जहाज पहुंचा। ईरान ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए शर्त रखी है। ईरानी महासंघ ने कहा, हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे।

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
6: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
10: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: विक्रम चाहे जितना भी फड़ फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
12: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
13: विक्रम, एक हिंट तो देते।
14: विक्रम!
13: हिंट।
12: बड़े आराम से।
13: बहुत टाइड हो गई।
15: Take it, take it, date, not bites.
16: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
15: लायन डेट नट बाइट्स।
17: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
19: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
18: आप कैसे कर लेते हो?
20: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
19: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
20: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
18: नहीं,
19: और म्यूचुअल फंड्स है
18: सही।
21: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
22: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
23: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
24: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग रहे। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
25: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
26: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
27: सोच बदलो और बैंक भी।
28: Like I said before, we better hold the sins.
29: यार
30: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
31: इसमें माइक्रोफाइबर है।
30: माइक्रोफाइबर यानी
31: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
30: हमारे सीमेंट में नहीं है,
31: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
32: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
33: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
34: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
35: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: In association with
2: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Hint, bade aaram se.
2: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
4: Summer Cool Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful.
1: Vimal, bolo zubaan kesri.
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
3: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
4: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
5: Gone! Home run!
4: NHL.
5: Scores!
4: College basketball.
6: He shoots it immediately.
5: He makes it in!
4: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
7: One lap to go.
4: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
8: The music you love is all right here on

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
4: Jahan swad, wahan JK.
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
6: इसमें माइक्रोफाइबर है
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
5: हमारे सीमेंट में नहीं है
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
10: सोच बदलो और बैंक भी
11: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही
13: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं
14: मैं मनोज कुमार पांडे
15: मैं अजय सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं
16: सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा
17: मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा
18: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन
19: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
18: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे
2: मैं कृष्णा पासवान
18: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता है लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है
4: सुरेंद्र दिलेर
18: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित यानी एक ब्राह्मण दो दलित पांच ओबीसी यानी एक तीर से कई निशाने राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है फोकस 2027 विधानसभा चुनाव टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण इनमें सवर्ण भी शामिल है पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है महिला चेहरा को शामिल किया गया है समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है

पीडीएफ फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है, गैर जाट और दलित वोट साधने की कोशिश हुई है, बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति, क्षेत्र और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है। आज तक ब्यूरो।

रसोई में चढ़ती आज का असर जेब की गर्मी को बढ़ाने लगा है। होटल की थाली हो, सड़क किनारे मिलने वाली चाय हो, या सुबह के नाश्ते के ब्रेड बटर, हर तरफ महंगाई की तपेश महसूस होने लगी है। दरअसल दुनिया में छिड़े तनाव का असर सीधे भारतीय घरों के किचन तक पहुंच रहा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ा उछाल आने से सबसे पहले तो बाहर खाने पर असर दिखाई दे सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, केटरिंग और स्ट्रीट फूड का बड़ा हिस्सा इसी गैस पर चलता है। ऐसे में कारोबारियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर ग्राहकों की प्लेट तक पहुंच सकता है, जिससे थाली, चाय, कॉफी और स्नैक्स महंगे हो सकते हैं। बिरयानी, फास्ट फूड और मिठाइयों के दाम भी बढ़ने की आशंका है। वहीं छोटे फूड बिजनेस पर खर्च का दबाव बढ़ गया है। लेकिन महंगाई की आग होटल तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर आपके घर तक भी पहुंचना तय है, क्योंकि पैक्ड फूड बनाने वाली यूनिट्स भी कमर्शियल एलपीजी पर काफी हद तक निर्भर हैं, जिससे ब्रेड, बन, केक, कुकीज और बिस्किट की लागत बढ़ सकती है। नमकीन, पापड़ और तले स्नैक्स पर भी असर संभव है। इससे फूड प्रोसेसिंग और मिठाई कारोबार के मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। महंगाई का ये असर खाने के तेल पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जल्द दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। आशंका है कि खाने के तेल की कीमतों में 5-6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह पश्चिम एशिया संकट से इम्पोर्ट कॉस्ट का बढ़ना है। इससे घर के महीने भर के राशन का खर्च बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को भी झटका दिया है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। कच्चे तेल में तेजी का असर पेट्रोल डीजल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा रहा है। इसकी वजह है कच्चे तेल के दाम 4 साल की हाई पर पहुंच चुके हैं, जिससे कंपनियों की पेट्रोल डीजल, एलपीजी और एटीएफ पर लागत बढ़ गई है। एविएशन सेक्टर पर भी महंगे क्रूड का असर साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते एयर इंडिया रोजाना 100 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स घटाएगी। महंगे फ्यूल के अलावा स्पेयर पार्ट्स की कमी का असर भी उड़ानों में कमी की वजह है। इससे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया की जंग का धुआं भारत में लोगों की रसोई और घरों तक पहुंच चुका है। कमर्शियल गैस से लेकर खाने के तेल और फ्लाइट टिकट तक खर्च का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में बाहर खाना, सफर करना और रोजमर्रा के कई सामान लोगों की जेब पर काफी भारी पड़ सकते हैं। आदित्य केराना, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

तेल संकट से निपटने के लिए पीएम मोदी की बड़ी अपील, कहा अगले एक साल तक ना खरीदे सोना, पेट्रोल डीजल की बचत की सलाह, बोले विदेशी मुद्रा बचाना देशभक्ति।

से लाया गया पवित्र जल, हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो। बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक, कई चुनावी वादों को पूरा करने का हो सकता है फैसला, भगवा रोशनी से जगमगाया सचिवालय। दो हजार 2027 के लिए योगी की नई टीम तैयार, अंतिम कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण साधा, एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 एससी नेताओं को मौका, 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन।

0: भारत की आध्यात्मिक अस्मिता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर में 11 मई 2026 का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मई 1951 में मंदिर के प्रथम लोकार्पण से मई 2026 के भव्य दर्शनों तक सोमनाथ की समृद्धशाली विरासत ने 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तय कर ली। पचहत्तर वर्ष की ये यात्रा है विध्वंस के विचार से सृजन की शक्ति की विजय की। सदियों आक्रांताओं की क्रूरता से पीड़ित सभ्यता के स्वाभिमान स्थापना की। भारत के जन जन की आत्मा में बसी आस्था के पुनर्स्थापना की। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं।
1: ओम नमः पार्वती पते हर।

0: 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पृथ्वी का जो पहला मंदिर है, वहां लेकर हम आपको आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सोमनाथ मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे। मंदिर पुनर्निर्माण के 75 वर्ष उत्सव ही नहीं, स्मरण की भी वो यात्रा है जो पिछले 1000 वर्षों के छल को कभी न भूलने की प्रेरणा भी देते हैं। सोमनाथ के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ अवसर है उन बलिदानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का जिन्होंने जान से ऊपर सोमनाथ के मान को रखा, जिन्होंने सोमनाथ के प्रताप को प्राण देकर भी धूमिल नहीं होने दिया। मंदिर पुनर्निर्माण की 75वीं जयंती पर समुद्र की लहरें जोश में हैं। सोमनाथ मंदिर गर्वोन्नत है, प्रधानमंत्री मोदी उत्साहित हैं और समय तो प्रतीक्षा कर ही रहा है पावन पलों का साक्षी बनने के लिए। जब जब भारत अपनी जड़ों को पहचानना चाहता है तब तब सोमनाथ सामने खड़ा होता है। तलवारों के जोर और आक्रांताओं के क्रूर मंसूबे, सदियों तक कोशिशें करने के बाद भी सोमनाथ के अस्तित्व को खत्म नहीं कर पाए। सोमनाथ गिरा लेकिन टूटा नहीं, लूटा गया लेकिन मिटा नहीं, जलाया गया लेकिन अपनी ही राख से फिर उठ खड़ा हुआ। देश आजाद हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र के स्वाभिमान में संचार करने के लिए सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में मंदिर तो बना लेकिन सरदार नहीं रहे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का प्रथम लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर खुद को सोमनाथ के श्री चरणों में होने को अपना सौभाग्य मान रहे हैं और देश एक तारीख बनते देख रहा है जो सदियों तक दोहराई जाती रही।
1: सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का।
0: मई 2026 अगर मंदिर की पुनर्स्थापना की 75वीं वर्षगांठ का वर्ष है तो साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले प्रहार के 1000 वर्ष भी पूरे होते हैं। जनवरी 2026 में सोमनाथ की धरती से पूरे देश ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया था।
2: निशंक रूप से 75 साल पूरा करना एक लैंडमार्क अवश्य है। इतनी बार टूटने के बाद इनका नवसर्जन हुआ, मगर 13 नवंबर 1947 के दिन सरदार साहब ने जो संकल्प किया था वो संकल्प के हिसाब से आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज्यादा कलश है।
0: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धर्मांध कट्टर क्रूरता के जवाब में सोमनाथ के युग युगीन गौरव का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी उस स्वर्णिम पल के भी साक्षी बने तो भावुक हो उठे।
1: आते रहे मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है।
3: सोमनाथ, भारत की आत्मा, राष्ट्र की चेतना और श्रद्धा का वो अटूट विश्वास है जो सदियों से उद्घोष कर रहा है इस सत्य का कि आस्था अडिग हो तो सांस्कृतिक विरासत कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने की कोशिशें करने वाले आतताई मिट गए, उनके साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, उनके कुलवंशों के दीप सदा के लिए बुझ गए, लेकिन सौ राष्ट्र में समुद्र की लहरों को प्रतिदिन उपकृत करता सोमनाथ अब भी गर्वोन्नत सा खड़ा।
0: मूर्तियां संरक्षित हैं, उस दौर की गवाही दे रही हैं जब श्री सोमनाथ मंदिर को बार बार आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, तोड़ा था। ये प्रतिमाएं खंडित जरूर हैं, लेकिन ये हमारे संगठित, हमारे संयुक्त इतिहास का प्रतिबिंब है। हमारी आस्था, हमारा इतिहास, हमारी राष्ट्रीयता, ये सबका प्रतीक है। और ये प्रतीक है इस बात का कि जितनी बार भी दमन किया जाएगा, आक्रमणकारियों द्वारा हमला किया जाएगा, विध्वंस किया जाएगा, उतनी बार उठ खड़ा होगा पूरा हिंदुस्तान।
4: गुजरात सरकार की वेबसाइट के अनुसार फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का विस्तृत वर्णन किया, जिसके कारण ये सैकड़ों साल पहले से चर्चा में रहा और आक्रांताओं ने इसे बार बार तोड़ा। ७२५ ईस्वी में पहली बार सिंध के सूबेदार अल जुनैद के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने का इतिहास मिलता है, लेकिन प्रतिहार राजा नागभट्ट ने मंदिर को फिर से भव्यता दी। ১০২৫ में सोमनाथ मंदिर पर सबसे क्रूर हमला महमूद गजनवी ने किया, हजारों लोगों को कत्ल किया, मंदिर को तहस नहस किया और खजाना लूट कर ले गया। लेकिन चालुक्य राजा भीम प्रथम ने फिर मंदिर का निर्माण करवाया, फिर सोलंकी राजा कुमार पाल ने मंदिर को और भव्यता प्रदान की और साथ ही मंदिर को रत्नों से सजाया।
5: सोमनाथ की ये जाहो जलालील को देखकर मोहम्मद गजनवी ने जनवरी 1026 में आक्रमण किया। जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उसकी बातें, उसका हिस्टोरियन था, उसका नाम अलबेरूनी था, उसने सोमनाथ का जिक्र उनके अहवाल में किया है।
6: यहाँ से जो कोई भी यवन विधर्मी लूट के गया, वो पहुंच नहीं पाया अपने डेस्टिनेशन पे। आज भी कच्छ में आप जाओगे तो वहाँ के म्यूजियम में आपको सोमनाथ के अवशेष मिलेंगे, सोमनाथ का दरवाजा भी शायद वहाँ पे है। ऐसा मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, पुराणों में भी पढ़ा है। और विधर्मी का लक्ष्य सिर्फ संपत्ति था, जबकि सनातनियों का लक्ष्य धर्म था।
4: १२९७ में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने और फिर मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने बार बार आस्था के स्थल को चोट पहुंचाई। १६६५ में औरंगजेब ने मंदिर को दो बार तोड़वाया और जब देखा कि लोग खंडहर में भी पूजा करने आ रहे हैं तो भक्तों के कत्ल के लिए सेना भेजी और मंदिर का निशान तक मिटाने का आदेश दिया।
7: औरंगजेब ने उसका नाश किया। औरंगजेब ने 20 नवंबर 1665 को एक फरमान जारी किया कि अभी भी गुजरात में जो मूर्ति पूजा होती है उसका नाश करो, जो भी मंदिर है उसका नाश करो। वो फरमान का उपयोग करते हुए सोमनाथ में जो मूर्ति पूजा चलती थी वो नाश नष्ट हो गई। फिर से औरंगजेब ने 1704 में नया फरमान किया और उसमें सोमनाथ में जो भी मूर्ति थी, जो भी पूजा पाठ होता था, वो सब का नष्ट किया। तो आखिरी जो खंडेर था सोमनाथ का, इसके बाद आज का नया सोमनाथ उस जगह पर बनाया गया है।
4: सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार उसका निर्माण होता रहा। मराठा राजाओं के हाथ में जब देश का बड़ा हिस्सा रहा,
3: तो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के स्थान पर ही मंदिर बनवाया।
0: अहिल्याबाई जिन्होंने पूरे देश में बहुत अलग अलग मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था, उनकी भी स्मृति जीवित रहती है। लेकिन देखिए, इसी तरीके से जो पुराना रास्ता यानी कि सरदार पटेल ने जब मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, उससे पहले जो रास्ता था वो इसी रास्ते का प्रयोग होता था।
3: भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर को पूर्ण गौरव प्रदान करने का संकल्प लिया और विरोध की परवाह न करते हुए सोमनाथ मंदिर का निर्माण जनता से मिले धन की मदद से करवाया।
5: तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और जामनगर के जाम साहेब दिग्विजय सिंह दोनों की अडग शक्ति और उसकी वजह से सोमनाथ ट्रस्ट का रचना की गई थी। और सोमनाथ ट्रस्ट ने ये पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त चंदा लेने का शुरुआत की थी और जाम साहिब और सामलदास गांधी ये बड़े बड़े नेताओं ने रकम जमा करवाई थी। बाद में पूरे हिंदुस्तान में सोमनाथ मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति की गई थी। सोमनाथ ट्रस्ट का गठन किया गया और सोमनाथ ट्रस्ट ने 2-3 साल में ही ये मंदिर का बांधकाम सोमपुरा शिल्पी के पास बनवाया।
3: सोमनाथ मंदिर आज संदेश देता है कि सत्ता बदलती है, सेनाएं आती जाती हैं, लेकिन श्रद्धा और सत्य को कभी तलवार या तोप के बल पर मिटाया नहीं जा सकता। आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी दिव्यता के साथ खड़ा होकर भारत के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा है। गजनवी मंदिर विध्वंस के साथ यहाँ का अकूत खजाना भी लूट कर ले गया, लेकिन खजाना लूटा जा सकता था, इमारत तोड़ी जा सकती थी, श्रद्धालुओं का विश्वास नहीं खत्म किया जा सकता था। मंदिर आज भी पूर्ण वैभव के साथ सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बना हुआ है। गजनवी और उसकी सल्तनत का आज कोई नाम लेवा तक नहीं।
0: यहाँ पर आप जो भी अवशेष देख रहे हैं, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी, अलग अलग सदियों को इंगित आप इसमें देखेंगे। 1169 की एक खंडित प्रतिमा है। ये इतना सहेज कर अब इन सबको रखा गया है। यहाँ गजलक्ष्मी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, पार्वती जी की प्रतिमा को आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन चूंकि खंडित मूर्तियाँ हैं तो जब सब धरती में से निकाले गए उसके बाद सबको लाकर यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 6 बार मंदिर को तोड़ा गया, 6 बार पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन कुछ और वर्णन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लगभग 17 बार ऐसा हुआ था। इतिहास दर्ज भी है, इतिहास मौखिक भी है, लेकिन उस सब के बीच जब आप इस पूरे, और ये भी मंदिर है, ये भी एक सूर्य मंदिर का अवशेष है। यहां पर बताया जाता है कि करीब 16 सूर्य मंदिर इस प्रकार के थे जो 7 किलोमीटर के दायरे में है। और बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया कि जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती थी उस हिसाब से उतनी उतनी दूरी पर इन सभी सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। लेकिन आज जिस रूप में है वो आपको केवल देखकर प्रतीत होगा कि ये मंदिर रहा होगा संरक्षित करने और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को यहाँ पर जीवित रखने का एक बहुत सुंदर प्रयास यहाँ पर है।

0: शास्त्रों में 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जब भी इनकी गणना की जाती है तो सबसे पहले बोला जाता है सौराष्ट्र सोमनाथम च, यानी सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने कराया था, इसीलिए चंद्र ग्रहण के समय यहाँ की गई पूजा का विशेष फल मिलने की मान्यता है।
1: चंद्र अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मून इज द फर्स्ट प्लेनेट, 2.25 दिन एक राशि में चलता है और सबसे लेट चलता है शनि महाराज, 30 महीना एक राशि में चलता है, 13 महीना गुरु महाराज एक राशि में चलते हैं, 18 महीना राहु महाराज एक राशि में चलते हैं, लेकिन फास्ट प्लेनेट इज द मून, 2.25 दिन में वो राशि बदल देता है। तो चंचल होता है, जिसी का चंद्र दोष होता है ना, वो आदमी चंचल होता है, यहाँ बैठा है तो वहाँ भागता है मन से, वहाँ बैठा है तो यहाँ भागता है, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आने से उनको नेचुरल पीस मिलती है, जैसे हिल स्टेशन पे हम पैबल पीस लेने जाते हैं, वैसे यहाँ नेचुरल पीस मिलती है।
0: ये भी माना जाता है कि यहाँ चंद्रदेव के रूप के क्षय यानी नष्ट होने से बचने का अक्षय वरदान मिला था, तो यहाँ मनोकामना का जो भी फल मिलता है वो अक्षय होता है और उसका प्रभाव कभी खत्म नहीं होता।
2: पहले के पूर्वजों ने इस तरीके से इतनी बार इस मंदिर पे आक्रमण हुए हैं और उसके बाद में जीर्णोद्धार हुआ है, महादेव की कृपा से सब चीजें ठीक रही हैं, काफी अच्छा लगता है, काफी अलौकिक शांति मिलती है यहाँ करके।
3: शुरू में तो हमें एंटर करते वक्त लगा कि भीड़ बहुत होगी, लेकिन हर चीज इतना डिसिप्लिन वे है में है, जैसा जो मैं शांति फील कर रही हूँ वो सारे दर्शनार्थी वही फील कर रहे हैं।
4: बहुत यहाँ आने पर शांति हमको महसूस हुआ। मैं अपने बेटा पोतोई के साथ आया हूँ,
5: बस यही प्रार्थना लेके आए हैं कि हमारी जितने भी पहले के पाप थे और सारी चीजें थी साफ हो जाएं और आगे की जो भी हमारी मनोकामनाएं वो भगवान जल्द से जल्द पूर्ण कर दे।
0: सनातन मान्यताओं में सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत महत्व है, उसमें भी सोमनाथ चूंकि प्रथम है तो इस ज्योतिर्लिंग को लेकर अलग ही आस्था का भाव रहता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम है और सबसे प्राचीन है और माना जाता है कि यहाँ शिव की ऊर्जा बसती है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
9: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
8: आप कैसे कर लेते हो?
10: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
11: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
12: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं,
11: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
19: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
20: लायन डेट नट बाइट्स।
21: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है, और धूप में सीधा काम करने को टाली।
22: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
23: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
24: सोच बदलो और बैंक भी।
25: Director, the taste of success.
26: Like I said before, we better own the sins.
7: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: यार
2: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है.
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत.
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है.
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़. ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है.
5: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन.
6: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी.
7: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे.
6: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया.
8: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर.
5: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर.
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
10: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you? Hint, bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek. Summer Cool Cooler, hawa aisi chhode, puri family ko thandak se jode. Summer Cool Cooler, life banaye wonderful. Vimal, bolo zubaan kesri.
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
2: हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है, लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकमबेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है, ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है।
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India।

अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति। सोमनाथ मंदिर में आज ऐतिहासिक कुंभ अभिषेक की तैयारी। पीएम मोदी करेंगे महापूजा। ध्वजारोहण, 11 तीर्थों से लाया गया पवित्र जल। हेलीपैड से मंदिर तक रोड शो। बंगाल में आज शुभेंदु कैबिनेट की पहली बैठक। कई चुनावी वादों को पूरा करने का हो सकता है फैसला। भगवा रोशनी से जगमगाया सचिवालय। के लिए योगी की नई टीम तैयार। अंतिम कैबिनेट विस्तार में साधा जातीय समीकरण। एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 एसपी नेताओं को मौका। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन। अमेरिका ईरान की तनातनी के बीच ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट भेजी नौसेना। नेवल ब्लॉकेट से भड़का तेहरान। यूरोपीय देशों को अंजाम भुगतने की धमकी।

का वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर काठमांडू से आपको बता दें कि यहाँ पर लैंडिंग के दौरान चौकी के विमान में आग लग गई, विमान के पहियों में आग लगी है। समय रहते सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये विमान इस्तांबुल से काठमांडू आया था और इसमें 277 यात्री भी सवार थे, सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस घटना की वजह से काठमांडू एयरपोर्ट लैंडिंग टेक ऑफ प्रभावित रहा। वहीं दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया की AI-215 और UAE के शारजा से काठमांडू पहुंचे विमान को आसमान में ही होल्ड किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विमान इस्तांबुल से काठमांडू आया था, इसमें लगभग 277 यात्री सवार थे, सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन सभी को वहां से निकाल लिया गया है। नेपाल में टर्की के विमान में भीषण आग लग गई, पहियों के कारण ये आग लगी है। काठमांडू से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है अब नॉनस्टॉप 100 का।

बीच तेलंगाना के सिकंदराबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के लोगों से अपील, कहा देश हित में एक साल तक सोना नहीं खरीदे लोग। विदेशी मुद्रा बचाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जोर, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति। तेल संकट के बीच पीएम मोदी ने सुझाए उपाय, कहा पेट्रोल डीजल का उपयोग करें कम, भारत में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर भी अपील की, कहा हमें कम से कम एक साल के लिए टालना चाहिए विदेश यात्रा, देश में कई खूबसूरत जगह, यहीं घूमने की सलाह। पश्चिम एशिया जंग का असर कम करने के लिए पीएम मोदी ने दिए मंत्र, कहा हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर देना चाहिए आधा और नेचुरल खेती की ओर बढ़ना चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर कसा तंज, बेंगलुरु की रैली में कांग्रेस को बताया परजीवी पार्टी, कहा तमिलनाडु में मौका मिलते ही साथी की पीठ में छुरा घोंपा। कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, देश को बांटना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। तेलंगाना को पीएम मोदी ने दी सौगात, 9400 करोड़ की परियोजना का किया उद्घाटन। पीएम मोदी बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में हुए शामिल, ध्यान मंदिर का किया उद्घाटन। श्री श्री रविशंकर के 70वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, सोमनाथ अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा, इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर होगा कुंभ अभिषेक, 11 तीर्थों के पवित्र जल से होगा अभिषेक। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान। सीएम विजय का डीएमके पर गंभीर आरोप, कहा डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। बेंगलुरु में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा मौका मिलते ही कांग्रेस अपने सहयोगियों को छोड़ देती है, सत्ता की लालसा में कांग्रेस ने डीएमके को छोड़ा। कांग्रेस से टीवीके के गठबंधन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा विजय की पार्टी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूब जाएगी। गठबंधन पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस नेता राष्ट्रदल भी बोले बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी। हावड़ा के नावन्ना सभागार में कानून व्यवस्था पर अहम बैठक, पुलिस अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी की पुलिस अधिकारियों के साथ पहली बड़ी बैठक, जिला एसपी और एससीपी शामिल हुए। बैठक में आईएएस और आईपीएस स्तर पर बड़े फेरबदल और कानून व्यवस्था की समीक्षा की संभावना। शुभेंदु के करीबी चंद्रनाथ रथ हत्या मामले की जांच में यूपीआई और फास्टैग से अहम सुराग, एसआईटी ने एक आरोपी की पहचान भी की। पूर्व टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य बताया, टीएमसी नेतृत्व पर संगठनात्मक विफलता का आरोप लगाया। कल शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, असम के बनेंगे दूसरी बार सीएम। केरलम में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन, अभी तक नहीं तय हो सका मुख्यमंत्री का नाम, लेकिन दौड़ में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे। दिल्ली में अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक, हीटवेव से लेकर बाढ़ संकट की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। बंगाल के सचिवालय नबन्ना को केसरिया सजावटी लाइटों से किया गया रोशन, आज सचिवालय में शुभेंदु की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, उमड़ा पार्टी के दिग्गजों का हुजूम। हिमाचल बोर्ड ने जारी किए 10वीं की परीक्षा परिणाम, 83.87% रहा रिजल्ट, 107 टॉपर्स में 83 लड़कियां। रामायण शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा अयोध्या, एक ही छत के नीचे मिलेगा श्रीराम साहित्य, पांडुलिपि और शोध सामग्री। तमिलनाडु के त्रिची में चित्तिराई फेस्टिवल की रौनक देखने को मिली, 1008 पाल कुंडम यात्रा में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब। टेरी गढ़वाल में विधि विधान से निकाली गई जगदीशिला डोली यात्रा, जगह जगह डोली का भव्य स्वागत। गुजरात के सूरत में शादी के पवित्र बंधन में बंधे आदिवासी समाज के 32 जोड़े, स्थानीय विधायक ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया आयोजन। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब, 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु ने किए 17 दिनों में दर्शन। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, अब परिसर को अंतिम रूप देने और सौंदर्यकरण का तेजी से चल रहा है काम। बलिया में घायल दूल्हे ने शादी के दिन ही अस्पताल से आकर गाड़ी में भरी दुल्हन की मांग, हादसे में घायल हो गया था दूल्हा। कुनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकले चीते का रेस्क्यू, 23 दिनों से बाहरी इलाके में घूम रहा था चीता। श्योपुर में मदर्स डे पर कुनो की चीता माताओं पर बने शॉर्ट फिल्म रिलीज, भारत में चीतों का कुनबा बढ़कर हुआ 57। यूपी के हाथरस में बेटी के साथ यौन शोषण और दबंगों की धमकियों से परेशान पिता ने की आत्महत्या, मृतक ने एक युवक के खिलाफ दर्ज करवाया था केस। महाराष्ट्र के अकोला में 6 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, पुलिस हिरासत में नाबालिग आरोपी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पेट्रोल पंप पर खूनी खेल, साले ने किया जीजा पर चाकू से जानलेवा हमला। पुणे में 8वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, पति पकड़ता रहा हाथ लेकिन नहीं बच सकी जिंदगी। देहरादून से महानंदा एक्सप्रेस में सवार महिला रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लौट रही थी महिला।
गुजरात के पंचमहल में 3 युवकों की मौत, 2 अलग अलग सड़क हादसे में गई जान। आगरा में पलटा ऑटो, पिता पुत्र की मौके पर मौत, परिवार में मचा कोहरा। मिर्जापुर में कथित अपहरण और 4 दिनों तक बंधक बनाए जाने के मामले में खुलासा, पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर पैसे की उगाही करने की फिराक में थी आरोपी युवती। इंदौर में सड़क की सफाई कर रही महिला सफाईकर्मी पर गिरा बस से पार्सल, 1 क्विंटल वजनी पार्सल गिरने की वजह से महिला घायल। वाराणसी में गन प्वाइंट पर लूट की कोशिश, सीसीटीवी में वारदात कैद। महाराष्ट्र के वसई में शादी समारोह में मारपीट, वीडियो वायरल, दोनों तरफ से लोगों पर केस दर्ज। जमशेदपुर के पतंजलि के नाम पर लेक व्यू होटल रिजॉर्ट में देव व्यापार का गांव वालों ने किया विरोध, लड़का और लड़की को बनाया बंधक। झारखंड के गढ़वा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 12 यात्री घायल, 2 गाड़ियों में हुई थी भीषण टक्कर। आगरा में कई दिनों से लापता युवक का मिला शव, 10 फीट गहरे गड्ढे से बरामद, हत्या का आरोपी निकला सगा भाई। रांची में आरपीएफ की महिला सिपाही बनी फरिश्ता, चलती ट्रेन से गिर रही महिला यात्री की बचाई गई जान। चीन के वुहान में यांगत्ज़ी नदी किनारे हरियाली की नई तस्वीर आई सामने, 10 साल में भारी उद्योगों की जगह ग्रीन डेवलपमेंट ने ली। वुहान प्रशासन ने नदी बचाने के लिए 150 पर्यावरण प्रोजेक्ट शुरू किए, नदी किनारे के 26 डॉक बंद कर उन्हें हरित पार्कों में बदला गया। चाइना बीजिंग इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो का हुआ समापन, इस हाईटेक एक्सपो में एआई तकनीकों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। 3 दिनों में 70,000 से ज्यादा ऑफलाइन विजिटर्स शामिल हुए, 500,000 से ज्यादा लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। एक्सपो में एआई फिजियोथेरेपी रोबोट ने लोगों को चौंकाया, ये रोबोट एक्यूप्रेशर जैसी थेरेपी देने में सक्षम है। आईपीएल में बड़ा उलटफेर, लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। चिपक में रोमांचक मुकाबला, चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति का माई, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। लखनऊ ने 203 रन का मजबूत स्कोर बनाया, चेन्नई ने 19.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आखिरी ओवर में शिवम दुबे के लगातार 2 छक्कों से चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का शानदार प्रदर्शन, 52 दिन में 1795 करोड़ पहुंचा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 23वें दिन अक्षय की भूत बंगला की कमाई में उछाल, फिल्म ने शनिवार को 3 करोड़ का किया कारोबार। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही राजा शिवाजी की दहाड़, 9वें दिन भी हुई नोटों की बारिश। 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करते ही रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रचेगी इतिहास, 100 करोड़ की कमाई करने वाली बनेगी पहली मराठी फिल्म। मोहनलाल ममूटी स्टारर पेट्रियट भारत ही नहीं दुनिया भर में कर रही है बंपर कमाई। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम दर्शकों को खूब आ रही है पसंद। जुनैद खान साई पल्लवी की फिल्म 1 दिन की कमाई में गिरावट जारी, 9 दिन में दुनिया भर के थिएटर्स में सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस किया। नीतू कपूर कपिल शर्मा स्टारर दादी की शादी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में नाकाम रही, 2 दिन में महज 2.10 करोड़ रुपए कमाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं एक्टर नहीं हूं भी थिएटर्स में फ्लॉप, फिल्म ने 2 दिन में 1.46 करोड़ की कमाई की। विदेश में ऑरा टॉर 2026 में अपने गीतों से जलवा बिखेर रहे सिंगर दिलजीत दोसांझ, कल शिकागो में होगा अगला धमाकेदार कॉन्सर्ट। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए नया प्रस्ताव रखा, प्रतिबंध हटाने और युद्ध विराम की मांग की। ईरान की मांग समुद्री नाकेबंदी खत्म हो और सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त किया जाए। ईरान ने अमेरिका से तत्काल युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी देने की मांग रखी। ईरान ने अमेरिकी ओएफएसी प्रतिबंध 30 दिनों में हटाने की शर्त रखी, लेकिन अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज किया। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अमेरिका ने पोलैंड और मोल्दोवा के 5 कैदियों को रिहा कराया और टैरिफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की। मिडल ईस्ट में जंग पर विराम की तैयारी, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी प्रस्ताव का दिया जवाब, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और सुरक्षा का जिक्र। ईरान की सेना ने दुश्मन देशों को बड़ी चेतावनी दी, कहा अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस्तेमाल करेंगे नए हथियार। हॉर्मुज स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया के जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा अज्ञात वस्तु जहाज के पिछले हिस्से से जाकर टकराई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा रूस और यूक्रेन में युद्ध खत्म होने जा रहा है। स्थानीय चुनाव में हार के बाद ब्रिटेन के पीएम केयर स्टार्मर को हटाने की मांग की गई, विपक्षी दलों ने मांगा इस्तीफा।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर 3:24 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधा दूर होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, संतान से आपको सुख मिलेगा, किसी यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम हो जाएगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वृश्चिक राशि, धन की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों की समस्या का ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

कि रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा, काफी दौड़ भाग रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today. From pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
1: I'm in the game, I shoot at joy with this G23.
0: Today's hits will keep the party going 24-7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
5: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: विक्रम, एक हिंट तो देते।
7: विक्रम!
6: हिंट
8: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
4: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
5: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
6: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
7: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
6: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
8: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
5: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: Joseph Vijayanum Nan. Tamil Nadu Arasin Mudalamachar Endra Murayil. Yenadu Gavanathirkullavadum.
11: Ye kshan aitihasik hai. Ye mauka bade badlav ka hai. Is shapath ke saath Tamil Nadu ki rajneeti mein bada parivartan ho gaya hai. Cinema ka thalapati Vijay ab Tamil Nadu ka mukhyamantri ban gaya hai.
10: Aandavan meedhu aaniyittu uridhi mozhugiren.
11: ये तस्वीरें अद्भुत है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय के नाम के नारे और जयकारे गूंज रहे थे। तख्ती और तस्वीर लेकर कई समर्थक पहुंचे थे। विजय की झलक पाते ही समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया। हर ओर विजय के नाम का शोर छा गया। विजय मंच पर आए, लोगों का आभार जताने के लिए भाषण देने लगे तो राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया।
10: சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற
11: ये जनता से मिले अपार प्रेम की भावनाएं थी जो विजय के चेहरे पर साफ झलक रही थी। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई टीम में उनकी विजन की साफ झलक है।

0: அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியலமைப்பின் பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா.
1: विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए.
2: जोसेफ विजय.
1: विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती. तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ और अब इस शपथ के साथ तमिलनाडु की सियासत में विजय सरकार का आगाज हो गया है. संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जननायकन की है और अब वो तमिलनाडु के जननायक बन चुके हैं. आज तक ब्यूरो.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बचाने और विदेश ना जाने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार का एक्शन। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति। आज दुनिया देखेगी सोमनाथ का दिव्य अमृत महोत्सव। ऐतिहासिक कुंभाभिषेक के साक्षी बनेंगे पीएम। 11 तीर्थों के पावन जल से विशेष अनुष्ठान। सूर्य किरण शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ के कातिल अब तक फरार। तलाश में यूपी से बिहार तक छापेमारी। बक्सर पहुंची जांच टीम। कोलकाता में आज नई कैबिनेट की बैठक। हो सकते हैं कई बड़े फैसले। 2027 को साधने के लिए जातीय समीकरणों के रथ पर सवार हुए सीएम योगी। अंतिम कैबिनेट विस्तार में एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 एससी चेहरों पर दाम। आज होगा नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव। का मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस से मिडिल ईस्ट में भेजी नौसेना। नेवल ब्लॉकेट से भड़का तेहरान। यूरोपीय देशों को अंजाम भुगतने की धमकी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कोरोना काल वाली व्यवस्था लागू करने के बारे में सोचना चाहिए? तेल, सोना और विदेशी दौरे पर पीएम की सलाह के क्या है मायने? इस बड़ी खबर पर विस्तार से होगी बात। सोमनाथ में आज है बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री की शिव साधना आज वहां होगी। पुनर्निर्माण के 75 साल होने पर आज सोमनाथ मंदिर का अमृत महोत्सव है, सीधे आपको वहां भी लिए चलेंगे। दुनिया में तेल को लेकर है हाहाकार, लेकिन तेहरान में क्या है हाल, दिखाएंगे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तेहरान से। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि नीट यूजी परीक्षा से जुड़ी हुई। राजस्थान एसओजी की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। केरल से सीकर एक सैंपल पेपर आया था, जिसमें 600 नंबर यानी 150 प्रश्न की हूबहू वही संख्या दी गई थी जो नीट परीक्षा में पूछा गया था। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है, 180 प्रश्न इसमें होते हैं, और इसमें से एक गैस पेपर यानी कि अनुमानित पेपर से 150 प्रश्न वही के वही हो जाते हैं जो परीक्षा में आए थे। बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों के उत्तर के ऑप्शंस भी गैस पेपर के प्रश्नों में क्रम में दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पहले दिन 2 से 5 लाख में ये गैस पेपर बिके, लेकिन परीक्षा के एक रात पहले 30,000 में ये गैस पेपर बिक गया। एसओजी का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंच गए हैं। राजस्थान एसओजी इसकी भी जांच कर रही है। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, इस बात की कितनी संभावना लोगों की थी कि यही गैस पेपर एक्चुअल पेपर में आने वाला है, और यही वजह था कि पहले से इसकी खरीद फरोख्त होने लगी?
1: देखिए नेहा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा में जो ये प्रश्न गेस पेपर से हूबहू मिल रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंचे हैं, और ये अभी तक एसओजी पता नहीं लगा पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 मई को नीट की परीक्षा थी जिसमें 20 लाख से ज़्यादा छात्र बैठे थे। 1 मई को राकेश मंडारिया एक काउंसलर है सीकर में, जो छोटा सा एक MBBS कराने का एक टेलीफोन बूथ जैसा खोल कर बैठता है, उसके पास आता है। केरल से MBBS कर रहा है एक लड़का चूरू का, वो भेजता है कि दक्षिण भारत में ये गैस पेपर बिक रहे हैं, और कहा जा रहा है कि यहीं से नीट के सवाल आएंगे। वो आगे भेजता है, उसके बाद धड़ाधड़ कई कोचिंग संस्थाओं में ये पेपर घूमते हैं। 13 काउंसलर कोचिंग संस्थाओं के हिरासत में लिए गए हैं। सारी चीजें NTA को बता दी गई है, NTA को डिसाइड करना है कि इस बारे में क्या आगे फैसला लेना है। एक्सपर्ट कमिटी फैसला लेगी, मगर जिस तरह से ये केरल से आया है और यहां पर सीकर, झुंझुनू, देहरादून से भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है, देहरादून में भी ये पेपर बिका है, और आखिरी दिन तो यानी कि 3 मई की एक रात पहले तो YouTube पे इन सवालों को पूरी तरह से समझाया गया है और बताया गया है कि ये नीट के सवाल हो सकते हैं, आप तैयारी कर लीजिए। तो आप समझिए,
0: धड़ल्ले से पेपर को लेकर धांधली चल रही थी। अब इस बात की कितनी संभावना है कि री एग्जामिनेशन होगा, दोबारा पेपर कराया जाएगा और ये पेपर कैंसिल होगा?
1: एसओजी का कहना है कि नीट के तरफ से, NTA के तरफ से इस मामले में फैसला लेना है। NTA जैसे ही बताएगी हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अभी तक प्रारंभिक जांच में हम हिरासत में लिए हैं और सारे तथ्य NTA को बता दिया गया है। भारत सरकार से रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत से जब ये पेपर सीकर पहुंचा है तो केरल में और दक्षिण भारत के किन किन राज्यों में गैस पेपर पहुंचा था उसकी भी जांच जरूरी है। ये महासंयोग है या जानबूझ इस तरह का खेल किया गया है गैस पेपर के जरिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए 20 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है ये, और पिछली बार भी यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा कि कुछ एक जिलों में हुआ है इसलिए हम पूरे पेपर को कैंसिल नहीं कर सकते, और कुछ एक जगहों पर परीक्षा कराई गई। 2024 में भी यही हुआ था। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या NTA ने जिस तरह से परीक्षा को संचालित किया है, वो कहीं से लीक हुआ है या महज संयोग हो गया है? अगर महज संयोग था तो ये गैस पेपर 3 दिन पहले कैसे पहुंचता है और इस तरह सर्कुलेट कैसे होता है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब एनटीए को देना है और एक्सपर्ट कमेटी जिन्होंने सवालों को यहाँ पर सेट किया है नीट परीक्षा के लिए, परीक्षार्थी जो हैं इस खबर से काफी संशय में है, अभिभावक परेशान है क्योंकि खून पसीना लगाकर छात्र मेहनत करते हैं, गार्जियन मेहनत करते हैं, इसलिए सभी के सभी लोग
0: शरद जिन्होंने फेयर मींस ये एग्जाम दिया था, बाकी उन्हें धांधली का भी मालूम नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की क्राइसिस हो सकती है। बैठते हैं अगली खबर की ओर। कुछ क्या बड़ा होने वाला है, ये सवाल सबके जहन में इसलिए है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में देश की जनता से जो अपील की उसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पीएम ने क्या अपील की थी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे जुड़ी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पश्चिम एशिया जंग से जुड़ा हुआ जो संकट है उसी के चलते प्रधानमंत्री की अपील के बाद आज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की बैठक होने जा रही है। थोड़ी देर बाद सुबह 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में युद्ध से उपजे संकट पर सभी संबंधित मंत्रालयों के सचिव मंत्रियों को जानकारी देंगे।

0: तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने कल क्या कुछ कहा जिसकी कल शाम से ही देश भर में चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री की अपील की 6 बड़ी बातें आपको दिखा देते हैं। पहला, पेट्रोल और डीजल का संयमित इस्तेमाल करें। दूसरा, 1 साल तक विदेशी यात्रा से बचें। तीसरा, 1 साल तक सोना ना खरीदें। चौथी बात, खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करें, प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें, उर्वरक का इस्तेमाल कम करें, तेल की खपत कम करने के लिए कोविड काल में अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स जैसे उपायों पर लौटें। पीएम की सलाह का मुख्य फोकस विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर है, क्योंकि सोने की खरीद हो या फिर विदेशी दौरा, पेट्रोल डीजल हो या फिर उर्वरक, इन्हें खरीदने में विदेशी मुद्रा की खपत होती है।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: तो पेट्रोल डीजल पर आपने प्रधानमंत्री मोदी की अपील सुन ली। अब आपको सोना, विदेशी दौरे और वर्क फ्रॉम होम पर प्रधानमंत्री का वो बयान दिखाते हैं जो कल शाम से चर्चा के केंद्र में है।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। ऐसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा।
0: मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु मिश्रा और चेतन भुटानी। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, जो मंत्रियों की आज बैठक बुलाई गई है उसमें कौन कौन शामिल होने वाला है और जो कल प्रधानमंत्री द्वारा तमाम बातें कही गई उसके अलावा आने वाले वक्त में क्या एक्शन प्लान हो सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी?
2: देखिए, जो भी संकट है उसके सामने जो संकट है, जो चुनौतियां हैं, उसका कैसे सरकार जो है वो सामना करेगी, इसको लेकर ये सारा डिस्कशन होगा। और जो स्थिति अभी मिडल ईस्ट एशिया के अंदर उत्पन्न है, उस पर भारत किस तरीके से जो है वो अपनी रणनीति को तैयार करे, इसको लेकर जो है चर्चा होनी है। इसमें जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव समेत कई तमाम बड़े मंत्री जो हैं इस बैठक के अंदर रहेंगे और उनके मंत्रालयों के सचिव, क्योंकि ये जो इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है इसके अंदर चर्चाएं होंगी और ये चर्चाएं फिर सरकार जो है किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी, इन सब चीजों को लेकर जो है रणनीति तैयार की जानी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल साफ कर दिया है कि आप जो है अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो उसके लिए जान देने की जरूरत नहीं, बल्कि संकट के समय में जिम्मेदारियों से कर्तव्यों का पालन करना देश के लिए, वो भी एक सच्ची जो है देशभक्ति है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें प्रधानमंत्री ने कही हैं इसको लेकर भी एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि गोल्ड कम खरीदा जाए, खरीदे लोग। ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जाए, इस तरीके की भी जो चर्चाएं जो है वो हो सकती है।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद से ही कल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एक्स पर पेट्रोल और डीजल के संकट पर विस्तार से उन्होंने लिखा। हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक तेल कंपनियों को रोजाना 1,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और इस तिमाही में नुकसान 1,00,000 करोड़ पहुंचने की आशंका है। ये प्लेटफॉर्म एक्स पर हरदीप पुरी का बयान, तेल कंपनियों के नुकसान के बारे में जानकारी दी है। चेतन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चेतन, पहले तो सरकार ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त तेल भंडार है, पर्याप्त ईंधन है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अचानक से संकट का जिक्र क्यों प्रधानमंत्री के भाषण में हुआ है? क्या वाकई तेल कंपनियों के नुकसान को लेकर तमाम आशंकाएं जताई जा रही हैं? और ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले वैश्विक संकट को देखते हुए 10 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम, क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है? और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम ये बातें कही हैं।
3: देखिए, सरकार की तरफ से तो हिंट्स चलती आ रही है और हमने पहले आज तक के भी खबर देख करी थी कि सरकार पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हाइक करेगी, लेकिन जो पीएम की कल जो स्पीच थी उसपे ये फोकस करके चलना चाहिए कि इकोनॉमिक सेल्फ डिसिप्लिन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिडक्शन पर पीएम ने ज्यादा फोकस किया है। और ज्यादा से ज्यादा देखें तो सरकार अब ये मैसेजिंग लेके आ रही है कि कंजम्पशन बिहेवियर और रिसोर्स कंजर्वेशन को व्यू में रखना चाहिए। अगर पॉइंट को इंडिविजुअली देखें यहाँ तो ये नजर आता है कि अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो पेट्रोल डीजल की कंजम्पशन है वो कम से कम हो, और क्योंकि हमारी लगभग 85% से ज्यादा इंपोर्ट होता है पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल, जिसके लगभग 130 से 140 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट रफली हमने पिछले साल किया था जो कि डॉलर में होता है, तो हिंदुस्तान को विदेशी मुद्रा खर्चनी पड़ती है। अभी आप रुपये को देख लेंगे तो लगभग 95 रुपए के आसपास रुपया भारत के डॉलर के सामने चल चुका है। गोल्ड परचेजेस जो प्रधानमंत्री ने बोला वो भी यूजुअली डॉलर करेंसी टर्म पे ही लिया जाता है, तो उसके लिए भी भारत को विदेशी मुद्रा बहुत खर्चनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा मैसेज था कि आप इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें, एज फार एज स्वदेशी इंपोर्ट अडॉप्ट करें, एंड उसकी तरफ से बाहर ट्रैवल करना बंद करें, क्योंकि जब आप बाहर ट्रैवल करना बंद करेंगे तो आप दोबारा रुपी को ही इस्तेमाल करेंगे, रुपी को ही सर्कुलेट करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, और बाहर दूसरी करेंसी को बढ़ावा नहीं देंगे, और इंडिया का रुपी का जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी जिसमें ऑफकोर्स।
0: ठीक है, चेतन और हिमांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बात सोमनाथ अमृत महोत्सव की करेंगे, क्योंकि मंदिर के पुनर्निर्माण के आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।

0: सोमनाथ सनातन आस्था का वो केंद्र जो सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि हर संकट में बार बार उठ खड़ा होने की सनातन शौर्य की अमिट गाथा है। सोमनाथ के शिखर पर लहराता सनातन का गौरवशाली परचम भारत की आध्यात्मिक निरंतरता और अटूट राष्ट्रीय भावना का एक अमिट प्रतीक है। गुजरात में अरब सागर के किनारे बसे शिव आस्था के अनुपम केंद्र प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आज 75 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है जिसमें शामिल होने थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर के जो है 75 साल नवनिर्माण के हो रहे हैं और 11 मई वो तारीख है कि जिस दिन इसका नवनिर्माण हुआ था और ये मंदिर इसी स्वरूप में जो है वो बना था और यही मंदिर को लेकर जो है वो 75 साल इसके होने के चलते ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत महोत्सव में जो है वो शामिल हो रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री सुबह 10:15 बजे सोमनाथ पहुंचेंगे जहां हेलीपैड से मंदिर तक पीएम का रोड शो होगा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग समेत अलग अलग झांकियां रहेंगी। सोमनाथ पहुंचकर पीएम महापूजा कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश के 11 से अधिक तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक करेंगे। इसके लिए 90 मीटर ऊंची क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा। कुंभाभिषेक के बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पर ध्वजा भी चढ़ाएंगे। पीएम अति रुद्र यज्ञ का समापन भी करेंगे। पीएम मोदी सोमनाथ के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाने वाले एक विशेष डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। इस दौरान वायुसेना की सूर्य किरण टीम का भव्य एयर शो होगा। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा होगी। प्रधानमंत्री सद्भावना मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा के बाद पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे।
2: देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। 2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री तौर पे शपथ ली, उसके ठीक 24वें दिन यहीं पे, यही धरती पे सोमनाथ जी के सुवर्ण अवसर का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री के रूप में अमृत महोत्सव यहाँ पे मनाने आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक है। देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक व्यक्ति ने सुवर्ण अवसर के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे पूजा की थी और वही व्यक्ति ने फिर से एक बार अमृत महोत्सव के तौर पे यहाँ पे प्रधानमंत्री के तौर पे वो पूजा करेंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है।
0: सोमनाथ का इतिहास सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि संघर्ष और पुनर्निर्माण का इतिहास भी है। महमूद गजनवी समेत आक्रमणकारियों द्वारा 17 बार हमले के बावजूद और अधिक भव्यता के साथ फिर खड़ा हुआ।
3: इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवट, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है।
0: आजादी के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 11 मई 1951 को मंदिर निर्माण पूरा हुआ और आज उस अद्भुत यात्रा के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। ब्रजेश दोषी, सोमनाथ आज तक।
4: ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का सोमनाथ मंदिर में?
5: देखिए, आज जो सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जो है करीब 10:15 बजे पहुंचेंगे। 10 बजे वो हेलीपैड पे आएंगे, उसके बाद 10 मिनट का रोड शो है और उसके बाद मंदिर में पहुंचेंगे। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा मंदिर की, जहां पे जो आपको क्रेन भी दिख रही है, उस क्रेन के द्वारा जो है वहां पे कुंभाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद ध्वजारोहण भी है। प्रधानमंत्री यहां पे विशेष पूजा और दर्शन करेंगे। ये पूरा तकरीबन 1 घंटे का कार्यक्रम है जो यज्ञ चल रहा है, उसके अंदर आहुति देके समापन भी यज्ञ का जो है प्रधानमंत्री करेंगे। सोमनाथ के गौरवमय इतिहास के 75 साल जो है मंदिर पुनर्निर्माण के, इसलिए इसको अमृत महोत्सव कहा गया है। और अंदर जो है वो काफी अलग अलग झांकियां भी हैं, साथ में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है कि सोमनाथ मंदिर के इतिहास को लेकर प्रदर्शनी का भी निरीक्षण जो है प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां की गई हैं। कलश लेके बहने भी जो है खड़ी है जो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। इसके साथ ढोल नगाड़े भी बजेंगे, जिस तरह पिछली बार जब स्वाभिमान पर्व में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री का जिस तरह स्वागत हुआ डमरुओं से, वैसा ही स्वागत जो है इस बार भी यहां पे होगा। और विनाश पर विकास के 75 साल, ये जो थीम है उस पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और ये कार्यक्रम रहेगा तकरीबन 11 बजे के बाद। सूर्य किरण की टीम जो अपनी वायुसेना की है उसका जो है वो एयर शो भी होगा और एयर शो के साथ जो है यहाँ पे पूरी तरह से रंगारंग कार्यक्रम किया गया है। उसके अलावा बाद में एक जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री सद्भावना मैदान में और वहां पे उनका संबोधन होगा। उस संबोधन में पूरी तरह से वो बात करेंगे किस तरह से 1947 में आजादी के वक्त और आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात की थी और 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए थे और उन्होंने मंदिर के लोकार्पण किया था। उसको आज 75 साल हो रहे हैं, 11 मई वही दिन था और इसीलिए इसको आज यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है वो इस पूरी विशेष पूजा में शामिल होंगे और उसके बाद उनका संबोधन भी होगा।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर आ रही है। बिहार के बक्सर से शूटर की गिरफ्तारी हुई है, बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है। शूटर का नाम राज सिंह है जो बक्सर से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद से ही राज सिंह अयोध्या में छिप रहा था, फिर बक्सर भाग गया और अब कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसे लेकर कोलकाता गई है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, किस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया यूपी पुलिस और कोलकाता पुलिस द्वारा?
6: देखिए, कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसमें एक जो बिहार के बक्सर का मूलता रहने वाला राज सिंह है, ये असल में बलिया का रहने वाला है और इसी को ट्रैक करते हुए, इसके इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स को ट्रैक करते हुए कोलकाता पुलिस अयोध्या पहुंची थी और अयोध्या से इसको गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या पुलिस और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इस राज सिंह को, जो बलिया का रहने वाला है और बक्सर में फिलहाल रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया है शुभेंदु अधिकारी के जो पीए चंद्राकर की हत्या के मामले में। और अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के जो अयोध्या पुलिस है वो कोलकाता पहुंच भी चुकी है और वहां पर जितने भी शूटर हैं जो और भी कोलकाता पुलिस के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन में उनके कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो राज सिंह है ये बलिया का रहने वाला है और वारदात को अंजाम देने के बाद जब इसके फुटप्रिंट्स खंगाले जाने लगे तो ये अयोध्या में आकर छिपकर रह रहा था और इसके बाद अयोध्या पुलिस से इंफॉर्मेशन शेयर की गई और जिसके बाद इसको दबोचा गया है अयोध्या से और अब इसको कोलकाता लेकर अयोध्या पुलिस और कोलकाता पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं। तो एक ये बड़ा कनेक्शन सामने आया है शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में, यूपी कनेक्शन सामने आया है जिसमें एक शूटर जो राज सिंह बताया जा रहा है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको कोलकाता ले जाया गया है। जी
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं आज शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है जिसमें बंगाल के तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक से पहले सचिवालय की इमारत भगवा रंग में जगमगाती हुई दिखाई दी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक से पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने राज्य भर के सभी एसपी और सीपी को अवैध पशु परिवहन पर सख्ती से कार्रवाई करने और बिना लाइसेंस वाले पशु बाजारों को बंद कराने के निर्देश दिए। आज की कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग, महिलाओं और युवाओं को 3,000 रुपए देने और आयुष्मान भारत योजना के लागू किए जाने पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर थे और एक कार्यक्रम के दौरान वहां सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। पहले बोलते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में विकास का मुद्दा उठाया और इशारों में पीएम मोदी से केंद्र से मिलने वाली सहायता की बात कह दी। इसका जवाब बाद में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अपने अंदाज में दिया जिससे वहां हंसी की लहर दौड़ गई। पहले आपको सुनाते हैं सीएम रेवंत रेड्डी के भाषण का वो खास हिस्सा जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया।
7: जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 trillion इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 trillion इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 trillion इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं।
4: और अब सुनिए रेवंत रेड्डी के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हाजिर जवाब, जिसे सुनकर वहां हर किसी ने ठहाके लगा दिए।
3: मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो।
4: और अब बात हॉर्मुज स्ट्रेट की करेंगे, जिसके बाधित होने से एक तरफ भारत सहित तमाम देश कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से बेहाल है, वहीं ईरान में पेट्रोल पंप पर तेल के दाम सिर्फ 2 रुपए प्रति लीटर हैं। देखिए तेहरान से मेरी सहयोगी गीता मोहन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
8: ईरान ने अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है, ये ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में ये कह दिया है कि आज के डेट में भारत तेल गैस की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहा है, और इसी वजह से उन्होंने लोगों को कहा है कि तेल कम इस्तेमाल करें, गैस जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखें, जो हमारे किसान हैं उनको कहा है फर्टिलाइजर्स कम यूज करें, नेचुरल तरीके जो है फार्मिंग के उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से बंद है और उसका असर अब ज्यादा से ज्यादा दिखने लगा है। लेकिन आज हम तेहरान में खड़े हैं, एक ऐसे देश में जहां तेल की कमी, रिफाइनरीज अभी भी हिट नहीं हुए तो तेल की कमी नहीं महसूस हो रही। हमारे पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां पर आज के डेट में भी 2 रुपए पर लीटर यहां पर तेल बिक रहा है। तो जो प्राइस डिफरेंस है उससे पता चलता है कि ईरान को इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया को हो रहा है। तो जरूरी यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचे और इस युद्ध को अंत करें, क्योंकि ये युद्ध आज अंत हो और कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तब भी इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को सुलझने में काफी वक्त लग जाएगा। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।
4: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

गोल्ड ना खरीदने, तेल बचाने और विदेश ना जाने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद सरकार का एक्शन। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति। आज दुनिया देखेगी सोमनाथ का दिव्य अमृत महोत्सव। ऐतिहासिक कुंभाभिषेक के साक्षी बनेंगे पीएम। 11 तीर्थों के पावन जल से विशेष अनुष्ठान। सूर्यकिरण ऐशो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। पीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में यूपी से पहली गिरफ्तारी। वारदात के बाद अयोध्या में छिपा था राज सिंह। बिहार से भी है शार्प शूटर का कनेक्शन। कोलकाता लेकर आ रही है टीम। 2027 को साधने के लिए जातीय समीकरणों के रथ पर सवार हुए सीएम योगी। अंतिम कैबिनेट विस्तार में एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 एससी चेहरों पर दांव। आज होगा नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव। का मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में भेजी नौसेना। नेवल ब्लॉकेड से भड़का तेहरान। यूरोपीय देशों को अंजाम भुगतने की धमकी।

वैश्विक संकट के बीच तेलंगाना के सिकंदराबाद से प्रधानमंत्री मोदी की देश के लोगों से अपील, कहा देश हित में एक साल तक सोना न खरीदें। विदेशी मुद्रा बचाने पर प्रधानमंत्री ने दिया जोर, कहा विदेशी मुद्रा बचाना भी देशभक्ति है। तेल संकट के बीच प्रधानमंत्री ने सुझाए उपाय, कहा पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, भारत में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा को लेकर भी अपील की, कहा हमें कम से कम एक साल के लिए टालना चाहिए विदेश यात्रा, देश में कई खूबसूरत जगह हैं, यहीं घूमने की सलाह। पश्चिम एशिया जंग का असर कम करने के लिए प्रधानमंत्री ने दिए मंत्र, कहा हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नेचुरल खेती को बढ़ाना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम पर हमला, कहा रुपया कमजोर होने पर नीति के बजाय भारतीयों को सुझाव दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा 12 मई को असम के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कार्यक्रम से ही उम्मीद करती हूं, वहां से वॉच फ्रॉम होम की शुरुआत हो जाएगी, बड़ी रैलियों को एक साल के लिए बंद कराएं। कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री, देश को बांटना कांग्रेस का काम है, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए, ध्यान मंदिर का किया उद्घाटन, श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में लिया हिस्सा। यहां से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री सोमनाथ, अमृत महोत्सव में लेंगे हिस्सा, इतिहास पहली बार मंदिर के शिखर पर होगा कुंभाभिषेक, 11 तीर्थों के पवित्र जल से होगा अभिषेक। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते एक्शन में विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान। सीएम विजय का डीएमके पर गंभीर आरोप, का डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। बेंगलुरु में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा मौका मिलते ही कांग्रेस अपने सहयोगियों को छोड़ देती है। कांग्रेस से टीवी के गठबंधन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा विजय की पार्टी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूब जाएगी। गठबंधन पर सियासी संग्राम तेज, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी है। हावड़ा के नाबन्ना सभागार में कानून व्यवस्था पर अहम बैठक, पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा। बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी की पुलिस अधिकारियों के साथ पहली बड़ी बैठक, जिला एसपी और सीपी शामिल। बैठक में आईएएस और आईपीएस के बड़े फेरबदल, कानून व्यवस्था की समीक्षा की संभावना। शुभेंदु के करीबी चंद्रनाथ रथ हत्या मामले में यूपी और फास्टैग से अहम सुराग, यूपीआई और फास्टैग से अहम सुराग, एसआईटी ने एक आरोपी की पहचान की। पूर्व टीएमसी प्रवक्ता रिजु दत्ता ने शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे योग्य बताया, टीएमसी नेतृत्व पर संगठनात्मक विफलता का आरोप लगाया। कल शपथ लेंगे हेमंत बिस्व शर्मा, असम के बनेंगे दूसरी बार सीएम। केरला में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस से बंधन, अब तक का नाम नहीं तय हो सका है, लेकिन दौड़ में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे। दिल्ली में अमित शाह की उत्तरीय बैठक, हीट वेव को लेकर, बाढ़ संकट की तैयारी को लेकर समीक्षा। बंगाल में सचिवालय नबन्ना के केसरिया सजावटी लाइट से किया गया रोशन, आज सचिवालय में शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत, उमड़ा पार्टी के दिग्गजों का हुजूम। हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं के परीक्षा परिणाम, 83.87% रहा रिजल्ट, 107 टॉपर्स में 83 हैं लड़कियां। रामायण शोध का वैश्विक केंद्र बनेगा अयोध्या, एक ही छत के नीचे मिलेगा श्रीराम साहित्य, पांडुलिपि और शोध सामग्री। तमिलनाडु के त्रिची में चित्राई फेस्टिवल की रौनक, 1008 पालकुंडम यात्रा में उमड़ा श्रद्धा का जन सैलाब। टिहरी गढ़वाल में विधिदान से निकाली गई जगदीशिला डोली यात्रा, जगह जगह डोली का भव्य स्वागत। गुजरात के सूरत में शादी के पवित्र बंधन में बंधे आदिवासी समाज के 32 जोड़े, स्थानीय विधायक ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का किया आयोजन। नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा बड़ा मामला, केरल से सीकर एक सैंपल पेपर आया जिसमें 600 नंबर यानी 150 प्रश्न हुबू वही थे जो नीट परीक्षा में पूछे गए। सूत्र अनुसार पहले दिन 2 से 5-5 लाख में बिके गैस पेपर, लेकिन परीक्षा के एक रात पहले 30,000 में गैस पेपर बिका। एसओजी ने कहा हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्ड के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंचा है, जांच जारी। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन उग्र, अनिश्चितकालीन धरने पर 158 और रामरण अनशन पर 23 दिन पूरे हुए। 23 दिन पूरे होने के बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर चढ़ गए। काठमांडू में लैंडिंग के दौरान तुर्की के विमान में लगी आग, विमान के पहियों में लगी आग, समय रहते 270 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। विमान स्थानों से काठमांडू लाया गया, दिल्ली से काठमांडू जा रही एयर इंडिया का प्लेन और यूएई के शारजाह से काठमांडू पहुंचे विमान को आसमान में किया गया होल्ड। भोपाल बना देश का पहला कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी एल्गी ट्री लगाने वाला शहर, एक एल्गी वृक्ष जो 25 वृक्षों के बराबर है। पटना पुलिस ने बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्र नेता दिलीप सहित 4 प्रदर्शनकारियों को भेजा जेल।
पुलिस ने बताया प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों से झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। भिंड के अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में छत गिरी, तीन महिलाएं एक नवजात हुआ घायल। गोड्डा में फर्जी अस्पताल में हुई मौत के मामले में झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी साथियों की तलाश तेज। फिरोजाबाद में गाड़ी चोरी के मामले में दो छात्र चोरों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया, आरोपी के पैर में गोली। नोएडा में गेट गिरने से 5 साल के मासूम की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। गोरखपुर में आईएएस की तैयारी कर रहे युवक ने अपने ही कॉलेज में फंदे से लटक कर दी जान, दो पन्ने का सुसाइड नोट बरामद। नोएडा में पिज्जा पर थूकने का आरोप, वीडियो वायरल होने के बाद युवक हिरासत में लिया गया। पाली में परीक्षा देने आ रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में जंगली जानवर घर में घुसा, दो महिलाओं पर हमला, ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। हाथरस से बेटी के साथ यौन शोषण और दबंगों की धमकियों से परेशान पिता ने आत्महत्या की, मृतक ने युवक के खिलाफ दर्ज करवाया था केस। महाराष्ट्र के कोला में 6 साल की बच्ची से रिश्तेदार ने किया दुष्कर्म, पुलिस हिरासत में नाबालिग आरोपी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में पेट्रोल पंप पर खूनी खेल, साले ने किया जीजा पर चाकू से वार। पुणे में 8वीं मंजिल से कूदकर महिला ने दी जान, पति पकड़ता रहा हाथ लेकिन नहीं बच सकी जिंदगी। देहरादून में मानंदा एक्सप्रेस में सवार महिला रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता, बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लौट रही थी महिला। गुजरात के पंचमहल में 3 युवकों की मौत, 2 अलग अलग सड़क हादसे में गई जान। आगरा में पलटा ऑटो, पिता पुत्र की मौत, परिवार में मचा मातम। मिर्जापुर में कथित अपहरण और 4 दिनों तक बंधक बनाए जाने के मामले में नया खुलासा, पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर पैसे की उगाही करने की फिराक में थी आरोपी युवती। इंदौर में सड़क की सफाई कर रही महिला सफाईकर्मी पर गिरा बस से गिरा पार्सल, 1 क्विंटल वजनी पार्सल गिरने से महिला घायल। वाराणसी में गन पॉइंट पर लूट की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के वसई में शादी समारोह में मारपीट, वीडियो वायरल। जमशेदपुर में पतंजलि के नाम पर लेक व्यू होटल रिजॉर्ट में देव्या पार्क का गांव वालों ने किया विरोध, लड़का लड़की को बनाया बंधक। झारखंड गढ़वा में सड़क हादसे में 3 की गई जान, 12 यात्री घायल। आगरा में कई दिनों से लापता युवक का मिला शव, 10 फीट गहरे गड्ढे में बरामद, हत्या का आरोपी निकला सगा भाई। रांची में आरपीएफ की महिला सिपाही बनी फरिश्ता, चलती ट्रेन में गिर रही महिला यात्री की बचाई जान। चीन के वुहान में यांगसी नदी किनारे हरियाली की नई तस्वीर आई सामने, 10 साल में भारी उद्योगों की जगह ग्रीन डेवलपमेंट ने ली है। वुहान प्रशासन ने नदी बचाने के लिए 150 पर्यावरण प्रोजेक्ट शुरू किए, नदी किनारे 26 डॉक बंद कर उन्हें हरित पार्कों में बदला। चीन बीजिंग इंटरनेशनल हाईटेक एक्सपो का समापन, इस हाईटेक एक्सपो में AI तकनीकों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। 3 दिन में 70,000 से ज्यादा ऑफलाइन विजिटर शामिल हुए, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे ऑनलाइन भी देखा। एक्सपो में आए फिजियोथेरेपी रोबोट ने चौंकाया, ये रोबोट एक्यूप्रेशर जैसे थेरेपी देने में सक्षम। आईपीएल में बड़ा उलटफेर, लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ की रेस से बाहर। चेपॉक में रोमांचक मुकाबला, चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ को 5 विकेट से हराया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति काम आई, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। लखनऊ ने 203 रन का मजबूत स्कोर बनाया, चेन्नई ने इसे 19.2 ओवर में हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने लगातार 2 छक्कों ने चेन्नई सुपर किंग्स को शानदार जीत दिलाई। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का शानदार प्रदर्शन, 52 दिन में 1,795 करोड़ पहुंचा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 23वें दिन अक्षय की भूत बंगला की कमाई में उछाल, शनिवार को 3 करोड़ का कारोबार। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रहा है राजा शिवाजी की धूम, 9वें दिन नोटों की बारिश, 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करते रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रचेगी इतिहास, 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली मराठी फिल्म बनेगी। मोहनलाल ममूटी स्टारर पेट्रियट, भारत ही नहीं दुनिया भर में कर रही है बंपर कमाई। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है माइथोलॉजिकल फिल्म कृष्णावतारम पार्ट 1 हृदयम, दर्शकों को खूब आ रही है पसंद। जुनैद खान साई पल्लवी की फिल्म, 1 दिन की कमाई में गिरावट जारी, 9 दिन में दुनिया भर में थिएटर में सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस। नीति कपूर कपिल शर्मा स्टार दादी की शादी, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में रही नाकाम, 2 दिन में 2 करोड़ 10 लाख की कमाई। नवाजुद्दीन की मैं एक्टर नहीं हूं थिएटर में फ्लॉप फिल्म में 2 दिन में सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख की कमाई की। विदेश में ऑरा टूर 2026 अपने गीतों से जलवा बिखेर रहे हैं सिंगर दलजीत दोसांझ, कल शिकागो में होगा धमाकेदार कॉन्सर्ट। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए नया प्रस्ताव रखा, प्रतिबंध हटाने और युद्ध विराम की मांग। ईरान की मांग, समुद्री नाकेबंदी खत्म हो और सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त किया जाए। ईरान अमेरिका से तत्काल युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी की मांग रखी। ईरान अमेरिकी OFAC प्रतिबंध 30 दिन में हटाने की शर्त रखी लेकिन अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज किया। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, अमेरिका ने पोलैंड और
मोल्दोवा के 5 कैदियों को रिहा कराया। टैरिफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की पर टिप्पणी। रिलीज में जंग पर विराम की तैयारी। ईरान ने अमेरिका के जरिए अमेरिकी प्रस्ताव का दिया जवाब। होम स्ट्रेट में तनाव कम करने और सुरक्षा का जिक्र। ईरान की सेना ने दुश्मन देशों को चेतावनी दी, कहा अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस्तेमाल करेंगे नए हथियार। होम स्ट्रेट में दक्षिण कोरिया के जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा अज्ञात वस्तु जहाज के पिछले हिस्से से टकराई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान, कहा रूस और यूक्रेन में युद्ध खत्म होने जा रहा है। स्थानीय चुनाव में हार के बाद ब्रिटेन के पीएम केयर स्टॉर्मर को हटाने की मांग। विपक्षी दलों ने मांगा इस्तीफा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रोफाइबर है।
6: माइक्रोफाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
6: हमारे सीमेंट में नहीं है?
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
9: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
11: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
12: Take a date, not bites.
13: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
12: लायन डेट नट बाइट्स।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
1: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
2: Ba-da-ba-ba-ba.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, यूपी में 2027 की चुनावी पटकथा का पहला बड़ा अध्याय है। योगी कैबिनेट विस्तार में सबसे बड़ा फोकस रहा जाति और क्षेत्रीय संतुलन।
8: सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
7: लखनऊ में 6 नए मंत्रियों के साथ 2 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। इस तरह योगी सरकार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है। पश्चिमी यूपी का अहम जाट चेहरा है भूपेंद्र चौधरी। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं। यूपी में मनोज पांडे बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक है। 2024 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर मनोज पांडे योगी सरकार में शामिल हुए थे।
9: मैं कृष्णा पासवान
7: यूपी की खागा सीट से कृष्णा पासवान मंत्री बने। चौथी बार की विधायक कृष्णा पासवान पासी समुदाय की नेता हैं। लोधी समुदाय से आने वाले कैलाश राजपूत को भी मंत्री बनाया गया है। कन्नौज के तिरवा से बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत की ओबीसी में अच्छी पकड़ है।
10: सुरेंद्र दिलेर
7: अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री बनाया गया है। एससी समुदाय के बड़े नेता हैं सुरेंद्र दिलेर। यूपी विधान परिषद के सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बन गए हैं। पिछड़े समाज के नेता के रूप में हंसराज विश्वकर्मा की धमक है। योगी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यूपी की सियासत बदल दी है। ब्राह्मण प्लस ओबीसी प्लस दलित, यानी एक ब्राह्मण 2 दलित 5 ओबीसी, यानी एक तीर से कई निशाने। राजनीति में कुर्सियां सिर्फ नेताओं को नहीं मिलती, उनके पीछे खड़े समाज को संदेश मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर योगी मंत्रिमंडल के विस्तार से बीजेपी ने भविष्य की सत्ता की रणनीति बनाई है। फोकस 2027 विधानसभा चुनाव, टारगेट ओबीसी प्लस दलित प्लस ब्राह्मण, इनमें सवर्ण भी शामिल है। पश्चिमी यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। पूर्वांचल में विशेष फोकस किया गया है। महिला चेहरा को शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी के बागियों को साधा गया है। पीडीए फॉर्मूले की काट का प्लान बनाया गया है। गैर यादव ओबीसी पर नजर रखी गई है। गैर जाटव दलित वोट साधने की कोशिश हुई है। बूथ से लेकर बिरादरी तक पकड़ बनाने की कोशिश हुई है। यूपी में पश्चिम से पूर्वांचल तक योगी का बैलेंस गेम दिखता है। गुर्जर, पाल, पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण, हर क्षेत्र, हर जाति, हर समीकरण का ध्यान रखा गया है। या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले के जवाब में बीजेपी ने सत्ता का नया सामाजिक गणित सामने रख दिया है। राजनीति सिर्फ सत्ता चलाने की कला नहीं है, समाज के मन को पढ़ने का विज्ञान भी है। और उत्तर प्रदेश में जिसने जाति

और भावनाओं का संतुलन साध लिया, दिल्ली का रास्ता अक्सर उसी के लिए आसान हो जाता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट लखनऊ के सत्ता गलियारों में आज साफ सुनाई दे रही है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

गोल्ड न खरीदने, तेल बचाने और विदेश न जाने की प्रधानमंत्री की अपील पर सियासत गर्म। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति। राहुल ने बताया नाकामी। आज दुनिया देखेगी सोमनाथ का दिव्य अमृत महोत्सव। ऐतिहासिक कुंभाभिषेक का साक्षी बनेंगे पीएम मोदी। 11 तीर्थों के पावन जल से विशेष अनुष्ठान। सूर्यकिरण एयर शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में यूपी से पहली गिरफ्तारी। वारदात के बाद से अयोध्या में छिपा था राज सिंह। बिहार से भी है शार्प शूटर का कनेक्शन। सत्ता संभालते ही शुभेंदु का एक्शन। बंद होगी पशु तस्करी। तीन मई को हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका से सहमे लाखों छात्र। केरल से मिले सैंपल में 600 नंबर के हूबहू सवाल। राजस्थान एसओजी की जांच पर बड़ा खुलासा। परीक्षा से पहले 30,000 रुपए तक बिका था पेपर। डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव। कहा, मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडल ईस्ट में भेजी नौसेना। नेवल ब्लॉकेड से भड़का तेहरान। यूरोपीय देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी।

0: नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं, सुबह के 10 बजे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से आ रही है। वहां ककीरा इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पर्यटकों से भरी एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई, जिससे हादसे में 6 पर्यटकों की मौत की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में सवार सभी पर्यटक गुजरात से बताए जा रहे हैं। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कमलजीत संधू। कमलजीत, ये बताइए कि इस वक्त स्थिति वहां कैसी है, क्या किसी को बचाया जा पाया है और जो मृत हैं उनके परिवारजनों के बारे में क्या पता चल पाया है?
1: देखिए, आज सुबह 3:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और हादसे में गुजरात के ये आए पर्यटक बताए जा रहे हैं, जिसमें से 10 लोग इस इनोवा में सवार थे। इसमें से एक बच्चा है जो कि मृतक है, 2 लेडीज हैं और 3 जेंट्स बताए जा रहे हैं। तो 6 लोगों की डेथ हुई है और बाकी लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। अब ये जो एरिया है वो थोड़ा सीधा रास्ता बताया जा रहा है, तो गाड़ी क्या ओवर स्पीड कर रही थी, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है या रात के अंधेरे में कुछ मिसजजमेंट हुई है, तो ये बताया जा रहा है। और खासतौर पर ये गुजरात के टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। इलाका अभी तक साफ नहीं हो पाया कि कहाँ किस एरिया से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन पहाड़ों पे कई बार रात को जाना अपने आप में, खासतौर पे लाइटिंग या बाकी सारी चीजों को देखते हुए, घाटी है वहां पे क्या इस तरह के सर्कमस्टांसेस हुए जहां पे ये गाड़ी गिर गई है। लेकिन
0: जी
1: अभी तक 6 लोग इसमें मारे गए हैं।
0: जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ी हुई खबर। बिहार के बक्सर से एक शूटर की गिरफ्तारी हुई है। बलिया का रहने वाला शूटर राज सिंह अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छुप कर रह रहा था और अब कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उसे लेकर कोलकाता भी चली गई है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष शर्मा। संतोष, इस मामले में क्या पता चल रहा है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और कौन है ये शार्प शूटर?
2: देखिए, ये राज सिंह है जिसको शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में कस्टडी में ले जाया गया है, कलकत्ता ले जाया गया है, वहां पर कोलकाता पुलिस इसको पूछताछ कर रही है। राज सिंह मूलतः बलिया का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर का बलिया जिला है, वहां का रहने वाला है, लेकिन ये बीते लंबे सालों से बक्सर में रह रहा था। और दूसरी चीज कि ये वारदात के बाद अयोध्या में रह रहा था, इसका हाइडआउट अयोध्या बना हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट को तलाश करते हुए कोलकाता पुलिस ने अयोध्या में डेरा डाला, वहां पर अयोध्या पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इसको ले जा कोलकाता ले जाया जा चुका है। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस की टीमें राज सिंह को लेकर कोलकाता पहुंच चुकी हैं और वहां पर इसकी भूमिका की पूछताछ की जा रही है, भूमिका की जांच की जा रही है, इससे तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कोलकाता की जो एसआईटी गठित हुई उसके पास तमाम ऐसे कनेक्शन हैं जो राज सिंह से कनेक्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा राज सिंह की भूमिका, राज सिंह के किस तरीके से चंद्रनाथ रथ की जो हत्या में संदिग्ध नजर आ रहे हैं उनसे कनेक्शन से, तमाम चीजें हैं जो अब कोलकाता में इससे पूछताछ की जा रही है। तो ये जरूर है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में यूपी कनेक्शन सामने आया है, जिसमें बलिया का मूलतः रहने वाला जो बक्सर में रह रहा था उसको अयोध्या में छिपकर बैठा था राज सिंह, उसको गिरफ्तार कर कोलकाता ले जाया जा चुका है और कोलकाता में उससे पूछताछ की जा रही है। जी अंजलि।
0: जी संतोष, ये जो पूरी जांच चल रही थी इसके दायरे में कई राज्यों के इलाके आ रहे थे, इस पर थोड़ी जानकारी दे, क्योंकि कल भी जो कार पकड़ी गई थी उसके फास्ट टैग के बारे में भी कुछ जानकारी आई थी, तो किस तरह से इसकी परतें खुल रही हैं और अलग अलग राज्यों से कनेक्शन जुड़ रहे हैं?
2: देखिए, इस पूरे मामले को लेकर चंद्रनाथ रथ की हत्या में एसआईटी गठित हुई और 2 दिन पहले भी एक यूपी का कनेक्शन सामने आया। दरअसल जो कार चंद्रनाथ रथ की हत्या में प्रयुक्त हुई थी, जिससे चंद्रनाथ रथ की जो एसयूवी थी उसको रोका गया, जिससे शूटर्स आए थे, वो सिलीगुड़ी के रहने वाले विलियम जेम्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उस कार को सेल आउट करने के लिए ओएलएक्स पर डाला गया था कि इस कार फॉर सेल। उसके बाद 4 लोगों ने क्वेरी की, उन 4 लोगों की क्वेरी में एक जो शख्स था वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। हालांकि कोलकाता पुलिस ने उस जो चौथा शख्स था जिसने पूछताछ की थी, क्वेरी की थी, उसकी भूमिका को लेकर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है और उसको क्लीन चिट ही मिली है कि उसने सिर्फ ओएलएक्स को देख करके जानकारी हासिल की थी। लेकिन उसके बाद से जो तमाम एविडेंसेस मिले उसके बाद यूपी कनेक्शन सामने आया कि जैसे बक्सर में विशाल श्रीवास्तव से पूछताछ की गई और विशाल श्रीवास्तव से पूछताछ के बाद बक्सर का ही में ही रह रहा था जो बीते कई सालों से राज सिंह, जो मूलतः बलिया का रहने वाला है और बक्सर से भागकर अयोध्या में बैठा हुआ था, अयोध्या से उसको गिरफ्तार किया गया है। तो राज सिंह की गिरफ्तारी से कहीं ना कहीं कोलकाता में हुए शुभेंदु अधिकारी के पीए चन्नाथ रथ की हत्या में यूपी कनेक्शन जरूर सामने आया है और उसके साथ ही जो सिलीगुड़ी कनेक्शन है जहां की ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी विलियम जेम्स के नाम से, उसका भी कनेक्शन सामने आया। तो मल्टीपल स्टेट्स का ये एसआईटी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कोलकाता पुलिस का, जिसमें यूपी के कनेक्शन में राज सिंह को गिरफ्तार कर ले जाया गया और उसकी संदिग्ध मान करके पूछताछ की जा रही है।
0: जी संतोष, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और रुक करते हैं दूसरी खबर का। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक गोल्ड नहीं खरीदने, पेट्रोल डीजल बचाने, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने जैसी अपील की है। एक दिन पहले सिकंदराबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही हैं। पहला, पेट्रोल और डीजल का संयमित इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि एक साल तक विदेशी यात्रा से बचें। तीसरी अहम अपील ये कि एक साल तक सोना न खरीदें। चौथी बात कि खाद्य तेल का इस्तेमाल भी कम करें। पांचवी बात ये कि प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें और उर्वरक का इस्तेमाल कम ही किया जाए। और ये भी कि तेल की खपत कम करने के लिए कोविड काल में अपनाए गए वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स जैसे उपायों पर लौटें। पीएम की इस सलाह का मुख्य फोकस विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर है, क्योंकि सोने की खरीद हो या विदेश दौरा, पेट्रोल डीजल हो या उर्वरक, इन्हें खरीदने में विदेशी मुद्रा की खपत होती है।
3: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने सोने की खरीद को लेकर क्या कहा है, आइए वो भी सुनते हैं।
3: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: और जाहिर तौर पर इस मुद्दे को लेकर अब विपक्षी नेताओं ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने पीएम मोदी की अपील को लेकर सवाल भी उठाए हैं और सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने में तेल कम इस्तेमाल करो। राहुल का कहना है कि ये उपदेश नहीं है, नाकामी के सबूत हैं। वहीं अखिलेश यादव की तरफ से भी सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। अखिलेश ने कहा है कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री को संकट याद आ गया है। कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपील जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तेल का इस्तेमाल कम करें, सोना कम खरीदें, क्योंकि विदेशी मुद्रा इसमें इस्तेमाल होती है। और अब विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि ये उपदेश नहीं, नाकामी के सबूत हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया है। तो ये सब जुड़ा है। दरअसल जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, आर्थिक स्थिति जो उत्पन्न हुई है, उसे लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ अपीलें जारी की गई थी। उन्होंने देश के लोगों से कहा, देशवासियों से ये अपील की कि वो तेल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि उसके लिए विदेशी मुद्रास्फीति का इस्तेमाल किया जाता है और उसका भंडार कम होगा अगर उसे हम इस्तेमाल करेंगे। और आइए एक बार सुनते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या इस मुद्दे पर कहा है। दरअसल उन्होंने कहा है, वैश्विक संकट के दौर में मोदी जी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में संयम, वर्क फ्रॉम होम का को बढ़ावा और केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका ये आह्वान भारत को आत्मनिर्भर और एनर्जी सेक्युलर राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। ये वैश्विक चुनौतियों के बीच देश को एक स्थिर, सशक्त और अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध होगा। तो गृह मंत्री अब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एक रोड मैप है जो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। उधर प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोगों की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की है आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने।
4: मध्य एशिया में तनाव के हालात का असर पूरी दुनिया पर है, तो भारत भी उसे अछूता नहीं है और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि अब ये वक्त है कि लोग भी इस एनर्जी क्राइसिस में सामने आए, ऊर्जा की बचत की जरूरत है, खासकर पेट्रोल डीजल। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कम से कम एक साल के लिए जो सोने की खरीद है उस पर रोक लगाएं, उसको कोशिश करें, और ये जरूरी इसलिए है ताकि मुद्रा भंडार जो है उसे बचाया जा सके। तेल कंपनियां हवाला दे रही हैं कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है और खासकर पिछले डेढ़ महीनों की जो स्थिति है उसमें भारत पर भी असर पड़ा है, खासकर पेट्रोल डीजल जिसका आयात होता है वहां हॉर्मुज के चलते दरअसल उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है, गैस की किल्लत के चलते छोटी और मध्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी असर पड़ा है, और ऐसे में वो किल्लत और गंभीर ना हो, क्या ये सही समय है कि अब एनर्जी लॉकडाउन जैसे वो कदम जो दुनिया के दूसरों में खासकर एशियाई देशों ने उठाए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, और अब ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, कई स्तर पर कुछ कटौती करनी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके। लोगों की इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है, विपक्ष इसको लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी देरी से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि संकट तो डेढ़ महीने से गहरा रहा था। जाहिर है एक तरफ कदम उठाने की जरूरत है, दूसरी तरफ इस पर सियासत है, इन सब के बीच जो ऊर्जा संकट है, जो विश्व वैश्विक संकट है, भारत भी अब उसकी चपेट में है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
5: देखिए, सोना नहीं खरीदना चलेगा, जो ट्रेवल है बाहर का वो भी चल जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है जाने की हम लोगों को। एनर्जी में क्या है, अगर हम पूलिंग करना भी चाहें ना तो हर किसी के अपने टाइमिंग्स हैं ऑफिस के, वो कोशिश तो हम कर सकते हैं पूरा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं उनको, उनके साथ मैं कारपूल करूं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू कैन से कि कारपूलिंग से एक तो पॉल्यूशन में भी फर्क पड़ता है और एनर्जी तो सेव होगी।
6: हम डेफिनेटली इसके साथ है क्योंकि अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है। हम कार पुलिंग भी कर लेंगे, एज अ कोई भी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री हम लोगों को बताते हैं, मोदी जी हमको बताते हैं, हम डेफिनेटली उसके साथ रहेंगे। और एज अ इंडियन सिटीजन हमारा काम यह है कि हम एनर्जी सेविंग करें। एनर्जी सेविंग हर जगह से हो सकती है, आपका डीजल एनर्जी सेविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जो भी चीजें हम कर सकते हैं या अपने देश के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे।
5: गोल्ड का इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
4: आपको लग रहा है कि सभी नागरिक मिल करके इस संकट से, जो ग्लोबल क्राइसिस है, इससे हम मुश्किल से बाहर आ सकते हैं?
5: ऑफकोर्स, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको कोई एक रास्ता दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करके बाहर आ जाएंगे।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट right before it ends.
10: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
11: If you're serious about sports, NBC Sports Radio is the place for you. Start your day with NFL updates from Mike Florio. Then join Dan Patrick and the Danettes for in-depth discussions and the biggest guests in sports. Plus, don't miss Dan Le Batard at the intersection of sports and pop culture. Then when the games are on, tune in for live events and highlights from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
12: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: और इस वक्त की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। एक दिन पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन भी मंदिर पहुंची हैं और ये तस्वीर हम आपके लिए वहां की लेकर आ रहे हैं, जो इस वक्त आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल ही योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ था, विस्तार किया गया था, जिसमें हमने देखा था कि 6 नए मंत्री और 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे दरअसल 2027 की तैयारी के तौर पर देखा था और आज मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
3: जेके वॉल मैक्स
1: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
9: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
10: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
11: नहीं,
10: और म्यूचुअल फंड से
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: Like I said before, we better own the sins.
14: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
15: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
16: इसमें माइक्रोफाइबर है।
15: माइक्रोफाइबर यानी
16: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
15: हमारे सीमेंट में नहीं है,
16: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
17: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
18: हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है, लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकमबेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सोना न खरीदने, तेल बचाने और विदेश न जाने की प्रधानमंत्री की अपील पर सियासत गर्म। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति। राहुल गांधी ने बताया नाकामी। आज दुनिया देखेगी सोमनाथ का दिव्य अमृत महोत्सव। ऐतिहासिक कुंभाभिषेक का साक्षी बनेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11 तीर्थों के पावन जल से विशेष अनुष्ठान। सूर्य किरण एयर शो के दौरान आसमान से होगी पुष्प वर्षा। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश से पहली गिरफ्तारी। वारदात के बाद से अयोध्या में छिपा था राज सिंह। बिहार से भी है शार्प शूटर का कनेक्शन। सत्ता संभालते ही शुभेंदु का एक्शन। बंद होगी पशु तस्करी। 3 मई को हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका से सहमे लाखों छात्र। सैंपल में 600 नंबर के हूबहू सवाल। राजस्थान एसओजी की जांच पर बड़ा खुलासा। केरल से सीकर आया था गेस्ट पेपर। परीक्षा से पहले 30,000 रुपए में बिका। डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव। कहा, मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडल ईस्ट में भेजी नौसेना। नेवल ब्लॉकेट से भड़का तेहरान। यूरोपीय देशों को अंजाम भुगतने की धमकी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंच रहे हैं। ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने हैं और इस पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव के लिए प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं, जहां वे विशेष पूजा अर्चना में शामिल भी होंगे। हेलीपैड से प्रधानमंत्री मोदी मंदिर तक रोड शो करने वाले हैं। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री सोमनाथ परिसर का दौरा भी करेंगे। यहां से वे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मंदिर में सोमनाथ महादेव की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएम विशेष पूजा कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में शामिल होंगे। कुंभाभिषेक के दौरान 11 तीर्थ स्थानों से लाए गए जल से सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद सोमनाथ में वायु सेना की सूर्य किरण टीम का भव्य एयर शो होने वाला है। एयर शो करने वाली टीम सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा भी करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही सोमनाथ पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे और सोमनाथ में पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भगवान नटराज के समक्ष कलाओं का एक सुंदर संगम दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, तो इस मौके पर उनका ढोल, डमरू, शंख बजाकर और 100 कलश नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया जाना है। मंदिर परिसर में उड़ीसा के 2 कलाकारों ने भगवान शिव और सोमनाथ की रेत की मूर्तियां भी बनाई हैं। सोमनाथ की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव कई मायनों में विशेष बन रहा है। सोमनाथ मंदिर परिसर में विभिन्न कलाओं, ध्वनियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का एक अनूठा संगम रचा गया है, मानो ये आयोजन भगवान नटराज के समक्ष ही हो रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंदिर परिसर में पहुंचते ही अमृत पर्व के प्रतीक 75 ढोल, नासिका ढोल और तूती वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठेगा। 100 कन्याएं पारंपरिक काठियावाड़ी वेशभूषा में सजी हुई हैं और सिर पर अमृत कलश लिए हुए लोक नृत्य से प्रधानमंत्री का स्वागत भी करेंगे और दिग्विजय गेट के बाहर एक घंटी मार्क बनाया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जोशी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त सोमनाथ में ही मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं?
1: बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और उनका रोड शो भी शुरू हो चुका है। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री जो है जो मंदिर परिसर का गेट है वहां पे पहुंचेंगे। तैयारी है प्रधानमंत्री के गेट के पास पहुंचने की। ये रोड शो बहुत छोटा है, 1 किलोमीटर का ही रोड शो है, पर जिस तरह से झांकियां रखी गई है, प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाए कि जहां पे प्रधानमंत्री का रोड शो का समापन होना है, जहां पे रोड शो का समापन होगा, लोग जिस तरह से वहां पे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि उनका काफिला आए और वहां पे डमरू से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए। पिछली बार हमने ऐसी तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान देखी थी कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में प्रधानमंत्री खुद इस तरह का डमरू लेके जो है वो अपनी गाड़ी पे सवार थे और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ में हैं और उसी गाड़ी से जो प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचेगा। ये हमीरजी सर्कल है जहाँ पे इसका समापन होना है रोड शो का और उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला वीआईपी गेट से मंदिर परिसर में जाएगा, जहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। जो स्थानीय महिलाएं हैं वो कलश के साथ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी और उसके बाद जो कार्यक्रम है मंदिर के अंदर परिसर में वो कार्यक्रम शुरू होंगे। तो बहुत कुछ ही क्षणों का फासला बाकी है और प्रधानमंत्री का काफिला जो है यहाँ पे पहुंचेगा तय कार्यक्रम से। हालांकि लेट चल रहा है, आधे घंटे का देरी हो रही है। प्रधानमंत्री का रोड शो 10:15 को खत्म हो जाना था पर अभी तक वो रोड शो चल रहा है, आधे घंटे की देरी जो है वो मानी जा रही है। और मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे अलग अलग नृत्य मंडलियां जो है वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। जब प्रधानमंत्री हमीरजी संकल्प सर्कल पे पहुंचेंगे, अलग अलग पारंपरिक वेशभूषा में गुजरात की मंडलियां हैं जो रास है, उसके अलावा गरबा भी किया जाएगा और साथ ही मडुली रास जो है वो किया जाएगा। ये पारंपरिक वेशभूषा में जो लोग आए हैं वो यहाँ की अलग अलग मंडलियां हैं जो अपने नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगी, और साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत भी, प्रधानमंत्री इसी गेट से जो है यहाँ से अंदर जाएंगे। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री का काफिला कुछ ही क्षणों में वीआईपी गेट पे पहुंचेगा, जहां से वो परिसर के अंदर जाएंगे और उसके बाद सारे वो कार्यक्रम जिसमें रुद्र यज्ञ की समाप्ति, जिसके अंदर प्रधानमंत्री आहुति देंगे और उसके बाद उसका समापन होगा। उसके साथ साथ सूर्य किरण का एयर शो भी होना है और कलश के द्वारा कुंभाभिषेक जो मंदिर के शिखर है वहां पे कुंभाभिषेक किया जाएगा। 11 पवित्र स्थानों से वो जल लाया गया है, करीब 1000 लीटर से ज्यादा वो जल है जिसका कुंभाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे।
0: जी ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्दी आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि सोमनाथ पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर वहां 5 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है। 8 मई से ही इसका आयोजन हुआ है, आज चौथा दिन है। इस पर ट्रस्ट के सचिव पीके लहरी बता रहे हैं कि इसकी कितनी अहमियत है, आइए सुनते हैं।
2: निशंक रूप से 75 साल पूरा करना एक लैंडमार्क अवश्य है, किंतु सोमनाथ के हजारों वर्ष के इतिहास में ये जो महत्व है वो इसलिए सबसे ज़्यादा है कि इतनी बार टूटने के बाद इनका नवसर्जन हुआ, मगर 13 नवंबर 1947 के दिन सरदार साहब ने जो संकल्प किया था वो संकल्प के हिसाब से आज सोमनाथ मंदिर पूरे कार्विंग के साथ गर्भगृह सुवर्ण मंडित होने के बाद, और शिखर भी जो उस पर कलश है वो भी पहले सुवर्ण मंडित था और आज 1500 से ज़्यादा कलश हैं, वो सब सुवर्ण मंडित होने से एक नए प्रकार की एक भव्यता और दिव्यता का लोगों को एहसास करा रहा है। इसलिए 75 साल पे जो ये काम हो रहा है उसमें यात्रियों की सुविधा, यात्रियों की सुरक्षा एवं मंदिर की सुरक्षा हर पहलू को ध्यान में लेते हुए अगले 50 साल में जो भी हो सकता है वो अभी से उसके करने की शुरुआत कर रहे हैं।
0: तो चलिए एक बार फिर से लौटते हैं सोमनाथ में मौजूद हमारे सहयोगी ब्रजेश दोषी के पास। ब्रजेश, अब क्या पता चल रहा है कितने वक्त तक प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे और किस तरह का उत्साह वहां आप देख रहे हैं जमीन पर?
1: देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री के उत्साह की बात है तो कुछ ही क्षणों का फासला बाकी रह गया है। प्रधानमंत्री का काफिला जो है यहां पे पहुंचेगा, उनकी पायलटिंग कार्स जो थी वो आगे आ चुकी हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी यहां पे पहुंचेंगे। लोगों के उत्साह की बात करें तो जिस तरह से यहां पे लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, डमरू से लेके प्रधानमंत्री की झलक के लिए जिस तरह से लोगों के हाथ में झंडियां भी है, सोमनाथ अमृत महोत्सव की झंडियां जिस तरह से देखिए वहां पे छोटे बालक से लेके सब लोग प्रधानमंत्री की झलक के लिए खड़े हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे और उनका अभिवादन कर पाए, क्योंकि वो आखिरी पॉइंट है जहाँ पे ये रोड शो खत्म होना है, और यहाँ पे जैसे ही रोड शो खत्म होता है उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में जाएंगे और वहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति को माल्यार्पण करेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि भारत के लिए, क्योंकि ये देश का पहला ज्योतिर्लिंग है जिसके पुनर्निर्माण के 75 साल हो रहे हैं, और साथ ही इसका जो एक इतिहास है 1000 साल तक विदेशी आक्रांताओं के हमले सहन करने का, जो विनाश करने के लिए सोमनाथ आए थे पर उनकी हस्तियां मिट गई और सोमनाथ अभी भी वहीं पे है, और इसीलिए सोमनाथ का महत्व प्रधानमंत्री बार बार बताते हैं क्यों सोमनाथ का ऐतिहासिक महत्व है और किस लिए सोमनाथ की ये अमृत महोत्सव और स्वाभिमान पर्व पूरे एक साल जो स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, और साथ ही आज के दिन इसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के कारण सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। आज वो वही बात करेंगे कि किस तरह से 1947 में सरदार पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था और किस तरह से उस सपने को साकार होने के बाद 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे लोकार्पण करने के लिए आए थे, और ये पल क्यों खास है इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री आज करेंगे। और इसीलिए ये जो कुंभाभिषेक हो रहा है, आमतौर पे उत्तर भारत और पश्चिम भारत के किसी भी मंदिर में कुंभाभिषेक की कोई प्रथा नहीं है, पर दक्षिण भारत के राज्यों में कुंभाभिषेक होता है, और वो कुंभाभिषेक आज यहाँ सोमनाथ में होने वाला है, पहली बार हो रहा है, जहां इसमें 11 तीर्थ स्थानों का जल लाया गया है और उसके द्वारा ये कुंभाभिषेक किया जाएगा, जिसके लिए वो जो क्रेन मंगवाई गई है वो क्रेन से कुंभाभिषेक होगा और वहां पे क्रेन पे जो है कलश बनाया गया है जिसके अंदर 1000 लीटर जल रहेगा। ये जो 11 स्थानों से आया हुआ जल है और उसका जो है जलाभिषेक मंदिर के शिखर पे किया जाएगा, तो इसीलिए कुंभाभिषेक जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिसके बाद प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, किसी भी मंदिर के ध्वज पताका लहराने का जो है एक संकेत होता है और वो एक आध्यात्मिक महत्व है और वही आध्यात्मिक महत्व आज खुद देश के प्रधानमंत्री और सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, और इसीलिए उनके हाथों आज ध्वजारोहण होगा। तो अभी कुछ ही घड़ियां बाकी है कि प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो यहाँ पे हमीरजी सर्कल पे पहुंचे और उसके बाद रोड शो जो है उसका समापन होगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का काफिला आखिरी पॉइंट तक कैसे पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए। यहाँ पे जय सोमनाथ और हर हर महादेव के नारों के साथ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। जो लोग डमरू लेके खड़े हैं वो डमरू बजाएंगे और साथ ही मंत्रोच्चार जो है वो मंदिर परिसर में होते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्पीकर लगाए गए हैं उसमें भी वो मंत्रोच्चार होंगे। तो जहाँ पे भी आप नजर डालेंगे हर कोने में लोग खड़े हैं सिर्फ प्रधानमंत्री के झलक के लिए। गुजरातियों का विशेष नाता प्रधानमंत्री के साथ रहा है और आज वो देखने को फिर से एक बार मिलेगा। हमने इसी तरीके का नाता सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में भी देखा था कि किस तरह से हजारों की मेदनी जो है वो रोड शो भी छोटा था पर फिर भी रोड की दोनों ओर लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए थे और प्रधानमंत्री का अभिवादन किया था।
0: जी ब्रजेश, और इस वक्त तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री के रोड शो की, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे कि हमारे सहयोगी ब्रजेश भी बता रहे थे कि थोड़ी सी देरी से चल रहा है लेकिन जल्दी इसका समापन होने वाला है। ज्यादा वक्त नहीं रह गया क्योंकि जो पायलट कार्स हैं वो जो समापन का पॉइंट है वहां तक पहुंच चुकी हैं जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। आइए एक बार सुन लेते हैं कि किस तरह से डमरुओं से स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। सीधी सोमनाथ से जहां प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं और उनके स्वागत के लिए वहां पर भव्य आयोजन किया गया है। ब्रजेश दोषी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के रथ के आगे कई ऐसे ऋषि कुमार हैं जो कि हाथ में डमरू लेकर चल रहे हैं, उसे बजा रहे हैं और साथ में जो लोग खड़े हैं उनके हाथों में ध्वज है, उनके हाथों में भी डमरू है। तो जो प्रोग्राम है, जो प्लान है वो क्या है कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा?
1: हाँ, देखिए ये वही जो मैंने आपको बताया कि सोमनाथ के अमृत महोत्सव का ये समय है। जो ध्वज दिए गए हैं वो सोमनाथ अमृत महोत्सव के ध्वज दिए गए हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया गया क्योंकि इसी ट्रस्ट के अध्यक्ष और चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी और इसीलिए जो है ये एक विशेष और ऐतिहासिक पल, जिस तरह से हमने सुना ट्रस्ट के सचिव को कि क्यों ये क्षण ऐतिहासिक है, 75 साल गौरवपूर्ण जो है वो यहाँ पे हो रहे हैं और इसी के लिए प्रधानमंत्री का काफिला जो है, जिस तरह से आपको गाड़ियां दिख रही है प्रधानमंत्री की मुख्य कार जो है वो यहाँ पे आ गई है और उसके पीछे जो ऋषि कुमार आप बात कर रहे थे और बाद में खुली जीप जो है जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो अब ये जो एंडिंग पॉइंट है जहाँ पे रोड शो का समापन होना है उस समापन के पॉइंट पे प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और यहाँ पे जो है जनता प्रधानमंत्री का अभिवादन, उनकी एक तस्वीर और एक झलक के लिए जो है वो खड़ी है। मोबाइल अपने निकाल के सब लोग इंतजार कर रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री आए, उनका स्वागत किया जाए। ये ऐतिहासिक क्षण यहाँ के लिए, सोमनाथ के लिए, पूरे देश के लिए और सोमनाथ वासियों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है क्योंकि 6 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। पहले जनवरी महीने में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए आए थे। ये जो ऋषि कुमार हैं वो डमरू लेके पहुंच चुके हैं और इसके ठीक पीछे प्रधानमंत्री का जो है वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है जिसमें वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आ रहे हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ में हैं और ये प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंचा है। लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए रास्ते के दोनों साइड देखिए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये समापन पॉइंट है, यहाँ पे रोड शो का समापन है। प्रधानमंत्री खुली गाड़ी में सवार है, उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों साथ में है। और ये जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत और आज का दिन जिसमें अमृत महोत्सव के दिन आज प्रधानमंत्री का यहां आना, ये दोनों चीजें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद अब जो है ये सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला वीआईपी गेट के अंदर जा रहा है, ये मंदिर परिसर में जाएगा जहां पे उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत होगा। जो महिलाएं कलश आई हैं कलश पूजन और कलश यात्रा के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का काफिला सोमनाथ मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। अब वहां पे अंदर आगे कार्यक्रम जो होंगे वो सारे मंदिर परिसर में कार्यक्रम होंगे जिसमें यज्ञ की बात है, उसके बाद कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण और साथ ही जो यज्ञ का समापन है वो प्रधानमंत्री करेंगे।

0: सोमनाथ मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। अब वहां पे अंदर आगे कार्यक्रम जो होंगे वो सारे मंदिर परिसर में कार्यक्रम होंगे, जिसमें यज्ञ की बात है, उसके बाद कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण और साथ ही जो यज्ञ का समापन है वो प्रधानमंत्री करेंगे। तो जिस तरह से जो है वो रोड शो का समापन जो है वो किया जा रहा है, समापन के साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला अंदर पहुंचा है, उस काफिले में उनका स्वागत अलग अलग हो गई है।
1: जी बिल्कुल, इस वक्त हमें मंत्रोच्चारण सुनाई दे रहा है। तो इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री को देख सकते हैं कि वो पहुंचने वाले हैं, और जैसा कि ब्रिजेश हमें बता ही रहे हैं कि वहां पर उनकी तैयारी, उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। डमरुओं से जो जो प्रतीक हैं बाबा भोलेनाथ के, उन प्रतीकों के साथ आप देख सकते हैं उनका वहां पर स्वागत किया जा रहा है। एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम है जिसके तहत पहले उनका स्वागत होगा, फिर वो मंदिर परिसर के अंदर जब जाएंगे तो पूजा अर्चना में शामिल होंगे, यज्ञ में शामिल होंगे, उनकी तरफ से जलाभिषेक भी किया जाएगा, कुछ ऐसी चीजें भी की जाएंगी जो पहले कभी नहीं हुई हैं। तो सोमनाथ का महत्व जो है उसको जानने के लिए एक बार फिर से ब्रिजेश के पास चलते हैं। ब्रिजेश, तस्वीरें अब पहुंचने लगी हम तक, जहां पर हम लोगों को भी देख सकते हैं जो इंतजार में बैठे थे प्रधानमंत्री मोदी के। लेकिन बात अगर सोमनाथ की करें और प्रधानमंत्री मोदी का उससे जुड़ाव और बीजेपी का भी जो उससे एक जुड़ाव रहा है, क्या वजह है कि ये महत्व रखता है न सिर्फ गुजरात और देश के लिए बल्कि खास तौर पर एक प्रतीकात्मक रूप में किस तरीके से ये अहम है?
0: बिल्कुल, देखिए प्रतीकात्मक जहां तक बात की जाए तो सोमनाथ का ऐतिहासिक महत्व सबने पढ़ा हुआ है भी है, पर प्रधानमंत्री ने जब सोमनाथ स्मरण पर्व में जनवरी में वो सोमनाथ आए तब उन्होंने बात की थी कि सोमनाथ के 1000 साल के जो इतिहास, जिसमें विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पे हमले किए, वो पीढ़ियों को पढ़ाया नहीं गया, किस तरह से सोमनाथ का रक्षण यहां के स्थानीय लोगों ने किया, क्योंकि उस समय ये रजवाड़े थे और वहां पे लोग थे, उन्होंने चाहे वो वीर हमीर जी हो या कान्हा जी हो, मैं कैमरामैन को कहूंगा आपको वो तस्वीर दिखाए कि जहां पे प्रधानमंत्री ने पिछली बार माल्यार्पण किया था, वीर हमीर जी की ये प्रतिमा है। 17 साल का वो युवा था जिसने यहां पे विदेशी आक्रांताओं के सामने लड़ाई लड़ी और सोमनाथ के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी और उनको माल्यार्पण किया था। अभी प्रधानमंत्री जहां मंदिर परिसर में पहुंचे वहां सरदार पटेल की प्रतिमा को किया जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी थी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद नवंबर 1947 में इस मंदिर के पुनर्निर्माण की परिकल्पना और संकल्पना की गई थी और उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने की थी, तो इसलिए इसका महत्व बढ़ गया है। ये तब से देश के लिए कितनी बड़ी धरोहर है वो हमने देखा है। सोमनाथ महामंदिर के लिए किस तरह की जो है वो लड़ाइयां लड़ी गई, उसके साथ साथ उस वक्त किस तरह से नेता आने से रोका गया 1951 में, जिसकी बात प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान भी की थी, और आज भी जब ये मंदिर का कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो जनसभा में संबोधन करेंगे तब भी वो कहेंगे किस तरह से 1991 में लोकार्पण के वक्त प्रथम राष्ट्रपति को यहाँ पर आने से रोका गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो तब की जाएगी। प्रधानमंत्री जो हैं अभी मंदिर परिसर में पहुंच चुके और माल्यार्पण करने जा रहे हैं सरदार पटेल प्रतिमा को। माल्यार्पण के बाद सारे कार्यक्रम शुरू होंगे, पर जो सोमनाथ के ऐतिहासिक महत्व की बात आप कर रही थी, इसका राजकीय महत्व भी है, क्योंकि भाजपा की जब राम मंदिर की यात्रा भी शुरू हुई थी तो उसमें सोमनाथ एक अहम पड़ाव था, सोमनाथ से वो यात्रा शुरू हुई थी, और उस वक्त एक सामान्य नेता थे नरेंद्र मोदी जिन्होंने यहां से उस यात्रा की परिकल्पना की थी, वो हमेशा वो यात्रा में साथ में रहे थे और उससे राम मंदिर आंदोलन में किस तरह से उस रथ यात्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका बजी उसका सब कोई हर कोई उस है। तो भाजपा के लिए सोमनाथ सिर्फ ऐतिहासिक तौर पे ही नहीं पर राजकीय तौर पे भी हमेशा महत्व रखता है, और प्रधानमंत्री बार बार माफ कीजिएगा इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ क्यों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आने वाली पीढ़ियों को क्यों ये बताना है कि किस से ये देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग के ऊपर इतने बार हमले हुए, पर वो जो जिन लोगों ने हमले किए उन लोगों की हस्तियां मिट गई, पर ये मंदिर आज भी ठीक वैसे ही खड़ा है। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को जोड़ते हैं अपने साथ और ये उनकी खूबी रही है, जिस तरह से उन्होंने कल लोगों को अपील भी की तो हर बार उनकी अपील का असर होता है, वो हमने देखा है, चाहे कोरोना काल हो तब भी हमने देखा।

0: था और अब जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे आज उनका संबोधन इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि उसमें वो कौन कौन सी बातें कहेंगे। जब ये मंदिर की पुनर्निर्माण की संकल्पना हुई उसके बाद उसके लोकार्पण तक का जो उस वक्त था वो वक्त कैसा रहा, उस वक्त क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री कहेंगे। साथ ही एक प्रदर्शनी बनी है सरदार पटेल के जीवनी के साथ साथ उस प्रदर्शनी में जो बात है वो मंदिर की पुनर्निर्माण की संकल्पना के साथ उसको साकार करने का जो इतिहास रहा है उसकी प्रदर्शनी भी है, उसकी भी मुलाकात प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तो वो एक साफ संदेश यहां से प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, और तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि परिसर में प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री, उनका जो काफिला है उनका जो रोड शो है वहां अंदर पहुंच चुका है और स्वागत उनका इस वक्त हो रहा है, मंत्रोच्चारण आप सुन सकते हैं। और जैसे ब्रजेश हमें बता ही रहे थे कि कई ऐसे रिवाज हैं जो पहले नहीं होते थे, लेकिन इस बार पहली बार वहां सोमनाथ के मंदिर में देखा जाएगा, कुंभाभिषेक हो चाहे जल से अभिषेक हो, ये सब इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। ब्रजेश, इस वक्त तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप सोमनाथ में मौजूद हैं, वहां जो लोग कह रहे हैं महसूस कर रहे हैं वो हमें बताएं, और इस वक्त प्रधानमंत्री कितना दूर है मंदिर से?
0: देखिए

जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा की वजह से सभी लोगों को बाहर ही रख दिया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से जो मंदिर का मुख्य गेट है जो सामान्य श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है वहाँ पे जनता को जाने दिया जा रहा है, श्रद्धालुओं को जाने दिया जा रहा है, पर वहाँ से यहाँ आगे आने के लिए रोक गई है क्योंकि ये प्रधानमंत्री का सुरक्षा प्रोटोकॉल का एरिया है, इसलिए यहाँ पे रोक लगी हुई है। वहाँ से श्रद्धालु आम जनता मंदिर परिसर में जा रही है, उनको जाने की अनुमति है। और ये दूसरा गेट जहाँ पे जो है प्रधानमंत्री वीआईपी गेट से जहाँ पे अंदर गए थे उस गेट से जो है करीब 500 मीटर की दूरी वो तय हो चुकी है और अब कुछ ही क्षणों की बात है कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में जो है अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो आज के सारे कार्यक्रम है, चाहे वो कुंभाभिषेक की बात हो या रुद्र यज्ञ में आहुति की बात हो, जिसका समापन होना है वो प्रधानमंत्री समापन करेंगे। उसके बाद कुंभाभिषेक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 जगहों का तीर्थ धामों से वो पवित्र जल लाया गया है जिसको एक क्रेन के जरिए जो है वो मंदिर परिसर में जा रही है, उनको जाने की अनुमति है। और ये दूसरा गेट जहाँ पे जो है प्रधानमंत्री वीआईपी गेट से जहाँ पे अंदर गए थे उस गेट से जो है करीब 500 मीटर की दूरी वो तय हो चुकी है और अब कुछ ही क्षणों की बात है कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में जो है अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो आज के सारे कार्यक्रम है, चाहे वो कुंभाभिषेक की बात हो या

0: चुकी है और अब कुछ ही क्षणों की बात है कि प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में जो है अंदर जाएंगे और वहां पे जो आज के सारे कार्यक्रम है, चाहे वो कुंभाभिषेक की बात हो या रुद्र यज्ञ में आहुति की बात हो, जिसका समापन होना है वो प्रधानमंत्री समापन करेंगे। उसके बाद कुंभाभिषेक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 जगहों का तीर्थ धामों से वो पवित्र जल लाया गया है, जिसको एक क्रेन के जरिए जो है वो उसका कुंभाभिषेक किया जाएगा। करीब 1,000 लीटर से ज्यादा वो जल होगा पवित्र, जिसके द्वारा मंदिर के शिखर पे कुंभाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। उससे पहले सूर्य किरण का एयर शो भी होना है, वायुसेना की टीम जो है सूर्य किरण उसका एक एरोबेटिक एयर शो भी होगा और पुष्प वर्षा भी होगा। और अब सोमनाथ में भी ठीक ऐसा ही कॉरिडोर बनने जा रहा है, जहां पे लोगों की यात्रियों की सुविधा बढ़े उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और हमेशा भाजपा बात करती है सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की, तो वो सांस्कृतिक विरासत किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी उसकी बात भी प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में करेंगे कि क्यों ये जरूरी है, आने वाली पीढ़ियों को क्यों ये समझाना है कि किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने या हमारी पुरानी पीढ़ियों ने इतिहास को संजो के रखा था और जो उनके वो पढ़ नहीं पाए, किस तरह से यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं के हुए और उस हमलों में कैसे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, उन सारी चीजों की बात जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान भी की थी और आज भी वो की जाएगी। और अब जो प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो मंदिर में पहुंच चुका है और वहां पे जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है।
1: बिल्कुल ब्रजेश, आप बने रहे हमारे साथ, इस समय सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ऐतिहासिक क्षण भी है। 1991 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे थे, तब उन्होंने ये कहा भी था कि प्राण विनाश की शक्तियों से ज्यादा ताकत निर्माण की शक्तियों में होती है और वो दिख रहा है। और महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। 75 साल सोमनाथ पुनर्निर्माण के उस समय प्राण प्रतिष्ठा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। रोड शो इस समय चल रहा है। ब्रजेश, अभी तो रोड शो चल रहा है, कितना लंबा ये रोड शो है और उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, एक बार सिलसिलेवार बता भी दें।
0: राजू, रोड शो खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें कुछ क्षणों के बाद की आती है क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल होता है। रोड शो अभी खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री जो है वो परिसर में पहुंच चुके हैं और वहां पे परिसर के अंदर के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व इस मंदिर का जो है वो पुनर्निर्माण हुआ था और उसके 75 साल खत्म होने के अवसर पर प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और सोमनाथ अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है और अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है। इसके 50 वर्ष जब हुए से 25 साल पहले, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए थे, उसके 20 दिन ही हुए थे और उसके बाद वो यहाँ पे सोमनाथ के स्वर्ण महोत्सव में भी शामिल हुए थे पुनर्निर्माण के। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी भी यहाँ पे मौजूद थे। उस टाइम पे भी जो है स्वर्ण महोत्सव धामधूम से मनाया गया था और अब ये अमृत महोत्सव धामधूम से मनाया जा रहा है। रंगारंग कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि जो देश के लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको सोमनाथ का पुराना इतिहास पता चले, किस तरह से ये देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग है और क्यों इसका महत्व है, किस तरह इससे हमले झेले हैं, यहाँ के लोगों ने उन हमलों का किस तरह से सामना किया है, वो सारी चीजें लोगों को पता चले।
2: ये मंदिर के कार्यक्रम के बाद जब उनका सभा होगी सद्भावना मैदान में, तो वहाँ पे अमृत महोत्सव की उस जनसभा में प्रधानमंत्री उस इतिहास की बात करेंगे, किस तरह से इस मंदिर के पुनर्निर्माण की संकल्पना प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने ली थी 1947 नवंबर में और किस तरह से इसका नव पुनर्निर्माण 1951 में हुआ, उस इतिहास की बात, उस इतिहास की कुछ अनकही कहानियां माननीय प्रधानमंत्री आज सद्भावना मैदान में जिक्र करेंगे ताकि लोगों को पता चल पाए
0: ये इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता नहीं दिखने को मिल रही, आज ये मंदिर है वो कितना बड़ा हो चुका है, करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु देश विदेश से हर साल यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो कैसे ये मंदिर जो है उसका ऐतिहासिक महत्व रहा, साथ ही धार्मिक महत्व किस तरह से लोगों में बीच है, देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और प्रथम ज्योतिर्लिंग है।
3: ठीक है, मैं रोकूंगी आपको, संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, इस पवित्र स्थल की धार्मिक भावना और इसका ऐतिहासिक महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन आज जो कुंभाभिषेक की

0: प्रक्रिया होने वाली है, उस प्रक्रिया को दरअसल दर्शकों को समझाइए इसके क्या महत्व है, और आज प्रधानमंत्री जब कुंभाभिषेक करेंगे तो क्या कुछ इस प्रक्रिया में शामिल रहने वाला है।
1: सबसे पहले तो ये बताऊं कि जब मोहम्मद गजनवी ने इस प्रथम ज्योतिर्लिंग का, चूंकि ये सबसे समृद्ध मंदिर था और न केवल संपदा के मामले में समृद्ध था बल्कि अपने शक्ति और अपने ज्योतिर्लिंग के प्रभाव के मामले में भी सबसे शक्तिशाली था, इसीलिए जब 12 ज्योतिर्लिंग की जब उनका स्मरण करते हैं तो शुरुआत ही यहीं से कहते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम जय श्री शैले मल्लिकार्जुनम। तो सोमनाथ ऐसा था जिसके बारे में महमूद गजनवी ने सुना था और उसे इधर के ही लोगों ने, जब वो लूटपाट करता हुआ आया तो इधर भारत के ही लोगों ने बताया कि अगर आपको धन की आशा है तो आप वहां जाएं। और जब ये ऐसा ज्योतिर्लिंग था जिसका ज्योतिर्लिंग स्वरूप में तो छोटा था लेकिन वो ऐसा अद्भुत था कि उसको भारतीय शिल्प कला का चमत्कार कहें कि वो हवा में लटक रहा था, वो स्पर्श लिंग नहीं था, वो हवा में झूलता था क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय शक्ति थी शिवलिंग के अंदर, और ऐसे में लोहे को अलग अलग चुंबकों को अलग अलग दिशा में मंदिर में लगाकर ऐसा शक्तिशाली ऐसा कर दिया गया था कि वो हवा में ही लटकता था, यानी नॉर्थ और साउथ पोल का ऐसा सुंदर संयोजन किया था हमारे शिल्पकारों ने, तो वो दंग रह गया हवा में झूलते हुए शिवलिंग को देखकर। और उसे ये कहा गया कि इसके अंदर ही रत्न और बहुत सारा खजाना है। उसने, चूंकि वो मंदिर तोड़ने आया था और हमारे जो शिल्प हैं उनको नष्ट करने आया था, लिहाजा उसने जब अपनी तलवार तानी तो तलवार चुंबक के प्रभाव से शिवलिंग में सट गई थी। वो घबरा गया था वहां, जो उसके साथ रहे हुए लोगों ने जो अपने संस्मरण लिखे हैं उसमें कहा कि वो डर गया। फिर उसने भाला ताना, भाला ऊपर जाकर चिपक गया क्योंकि चुंबक ऊपर भी थे। इसके बाद उसने लकड़ी के हथौड़े से और उसको सारा नष्ट किया। लेकिन वहां पर दक्षिण भारत के कुछ परिवार के लोग वहां आए थे और जब लूटपाट समाप्त हो गई वो मंदिर के अंदर गए और तब उन्होंने देखा कि वहां तो वो शिवलिंग के टुकड़ों को उठाकर ले गए, और उन्होंने अब आकर इधर में रिवील किया है उन शिवलिंग के टुकड़ों में भी वो चुंबकीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में 17 बार इसे लूटा गया लेकिन इसके बावजूद सोमनाथ सिर उठाए खड़ा है, यानी ये अमृत महोत्सव है उनका। जो सबसे अब जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने इसके मंदिर का पुनर्निर्माण की बात की, और हालांकि उस समय की सरकार में जो शीर्षस्थ लोग थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि ये केंद्र एक धर्मनिरपेक्ष शासन में कैसे एक धार्मिक मंदिर का निर्माण किया जाए, लेकिन ये सिर्फ धार्मिक मंदिर नहीं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो ये बताता है कि आप चाहे मिश्र रोमा मिट गए, ये सारे मिट गए लेकिन हिंदुस्तान है, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि हम उस स्फिनिक्स जो एक काल्पनिक चरित्र है जिसमें कहा जाता है कि वो अपनी राख से पैदा होता है, लेकिन यहाँ जब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया मंदिर को लेकिन उसके अवशेषों से एक बार फिर सोमनाथ का मंदिर सिर उठाए खड़ा है गर्व के साथ।
2: बिल्कुल, और हम अब हैरत में भी हैं कि इतनी संपदा वहां पर थी। बिल्कुल, अब इतिहास की बात आप संजय कर ही रहे थे, मतलब गजनवी खिलजी की भी बात आती है, यहाँ तक कि औरंगजेब के समय तक हमले होते रहे, यानी कि इतनी संपदा यहाँ पर रही होगी। लेकिन पिछले 75 सालों में अब क्या क्या बदलाव हुआ है, कितनी बदल गई है ये भूमि, डेवलपमेंट पुनर्निर्माण मंदिर के और उसके इर्द गिर्द क्या क्या हो गया है, वो भी आप थोड़ा विस्तार से बताएं।
1: मंदिर के इर्द गिर्द एक चौड़ा गलियारा बनाया गया है, इसके अलावा वहां पर उसका सौंदर्यीकरण किया गया है चूंकि ये समुद्र के बिल्कुल,
0: अभी देखिए आप रुके यहाँ पर, बेहद दिलचस्प। यहाँ पर प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अहम भूमिका इस मंदिर के निर्माण में, क्योंकि पूरी तरीके से ये मंदिर नष्ट हो चुका था, उसके बाद कई बार इसका निर्माण किया गया और भव्य इमारत के रूप में इस पूरे गुजरात ही नहीं समस्त देश में इस ज्योतिर्लिंग का पहले नंबर पर स्थान आता है। अगर कभी आप सोमनाथ गए हैं और सोमनाथ की भव्यता को आपने देखा है तो आप समझ पाएंगे कि यह अलग तरीके का भाव आता है वहां पर जब आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बेहद भव्य प्रांगण है इस मंदिर का और आज प्रधानमंत्री की यहां मौजूदगी इस बात को दर्शाती है कि सिर्फ स्वर्ण महोत्सव में नहीं अमृत महोत्सव में भी उनकी मौजूदगी पिछले 25 सालों में जिस तरीके से इस पूरे ज्योतिर्लिंग का निर्माण, इसके आसपास की जो व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त किया गया। कभी आप जब इस मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाएंगे, तो आप देखेंगे कितनी आसानी से बिना भीड़ को चीरते हुए आप आराम से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था इस ज्योतिर्लिंग के भीतर आपको दिखाई देती है। एक बहुत बड़ा मंदिर परिसर है और इस मंदिर परिसर के निर्माण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अहम योगदान रहा है और इसीलिए आज इस चरण वंदन और पुष्प वंदन के साथ प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी है। मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर होने वाले पहला कुंभाभिषेक के आज हम सभी साक्षी बनेंगे और यही इस पूरे प्रोग्राम का हाईलाइट रहने वाला है। जो कुंभाभिषेक शिखर पर होगा एक ऐसे कलश में जिसमें 11 जगहों का पवित्र जल होगा, उससे प्रधानमंत्री यहां पर कुंभाभिषेक करेंगे। विशेष रूप से इस मंदिर परिसर को सजाया गया है। देश भर से आज यहां पर श्रद्धालु मौजूद है क्योंकि उन्हें मालूम था कि 11 मई का आज का दिन इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है। 11 तीर्थों के जल से शिखर पर पहली बार कुंभाभिषेक सोमनाथ अमृत पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण आज होने वाला है। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई है राजीव।
2: बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि संकल्प उन्हीं का था और उन्हीं के संकल्प के बाद ये पुनर्निर्माण हो सका। और संजय भी हमारे साथ जुड़े। संजय, उस समय चुनौतियां थी, धर्म निरपेक्ष देश है हम, किसी एक धार्मिक स्थल का को ऐसे विकसित कैसे कर सकते हैं, ये सवाल थे। लेकिन इन सवालों के बीच में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प सोमनाथ मंदिर को लेकर नहीं डिगा, नहीं बदला।
1: धार्मिक पहचान को आगे बढ़ाना नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान को एक स्थायी स्वरूप देना था, जिससे कि ये 17 बार इसे तोड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद 17 बार, एक बार, दो बार, 10 बार नहीं, 17 बार इसे लूटा गया, लेकिन इसके बावजूद ये अपने पूरे उत्कर्ष के साथ, ये 90 मीटर शिखर के साथ, शिखर दिखता 90 मीटर का है लेकिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अपने पूरे संपूर्ण वांगमय के साथ, संपूर्ण ज्योतिर स्पर्श के साथ यहाँ पर मौजूद है, विराजमान है। और जिस समय इसका पुनर्निर्माण कर मंदिर का जब लोकार्पण किया गया, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ये दिन देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू वहां पर उस समय के सरकार के विरोध के बावजूद, उनके नाखुशी के बावजूद, उन्होंने वहां पर जाकर और उसका पूरा कहते हैं कि पौरोहित्य किया, यानी एक तरह से वो मुख्य यजमान की भूमिका में थे और उन्होंने सारा पूजन कार्य संपन्न कराया। तो जिस बीड़े जो बीड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था, उसे फिर आगे साकार किया गया और आज भी सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण और सांस्कृतिक जागरण की मिसाल है। और वहां जो सौंदर्यीकरण किया गया, उस समय के हमारे शिल्पियों को ये पता था कि यहां से सोमनाथ मंदिर से अगर दक्षिण की दिशा में देखें तो पूर्व वहां से और दक्षिण ध्रुव तक कोई भी अब रहने लायक जमीन नहीं है, सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। उन्होंने वहां पर एक श्लोक भी लिखा है कि यहां से और दक्षिणी पूरे ध्रुव तक यहां सिर्फ जल ही जल है, और एक बाण लगाया है, उसे बाण स्तंभ कहते हैं। और वो चीज सदियों पहले हमारे ऋषियों वैज्ञानिकों ने
0: मैं रोकूंगी आपको। प्रधानमंत्री अब मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, वहां पर उनका डमरू के साथ, उसकी ध्वनि के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप सुन सकते हैं इस वक्त साफ तौर पर कितना भव्य नजारा है, जिसे प्रधानमंत्री दो पंक्तियों के बीच में अब मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ चले हैं। ये ध्वज आप मंदिर के शिखर पर देख सकते हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद अभिषेक किया जाएगा। और ये बेहद भव्य नजारा, जिसके गवाह ये सभी लोग जो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने के, प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, ये दरअसल वो ध्वनि है जो पिछले 25 सालों में इस मंदिर को और ज्यादा महत्व प्रदान करती हुई, क्योंकि बेहद आधुनिक ये निर्माण है राजीव, इसके बावजूद इसकी ऐतिहासिक महत्वता है। सोमनाथ कैसे इसका नाम पड़ा, इसके पीछे भी ऋग्वेद में पूरा वर्णन है कि भगवान सोम ने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, इसीलिए इस मंदिर का नाम
3: भारतीय संस्कृति कला,
0: भारतीय संस्कृति कला और इतिहास का ये अद्भुत संगम। और यहाँ पर आप ध्वज को देख सकते हैं जो इस मंदिर के शिखर में कई सालों से लगा हुआ है।
2: कुंभाभिषेक आज होना है, आप जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, भस्माभिषेक सुनते होंगे, लेकिन एक कुंभाभिषेक एक अत्यंत पवित्र हिंदू अनुष्ठान है और मुख्य मंदिर के शिखर यानी कि कलश और मुख्य मूर्तियों का अभिषेक करने की एक प्रक्रिया दो शब्दों से बना है, कुंभ यानी कि पवित्र कलश और अभिषेक यानी कि स्नान। वेदों का मंत्रोच्चारण यहाँ पर होता है, पवित्र जल जो कि लाया गया जैसे कि हमने आपको बताया, और फिर ये फिर गोपुरमों पर डाला जाता है। प्रधानमंत्री मोदी इसी क्षण के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और कुछ इस तरह से उनका भी स्वागत हो रहा है। आप देखेंगे डमरों की ध्वनि बज रही है, भगवान शिव का ये मंदिर
3: पुनर्जागरण जिसको हम
2: पहला ज्योतिर्लिंग
3: सांस्कृतिक पुनर्जागरण नव चेतना।
0: 2 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री ने श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर का दौरा किया, पूजा अर्चना की, उसके बाद 20 नवंबर 2022 में वो पहले पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी। 2017 में भी कुछ इस तरह का दौरा उन्होंने किया था। तो अगर इतिहास में जाकर देखें तो कई सालों से प्रधानमंत्री नियमित रूप से यहां आते रहे, लेकिन आज का दिन, आज का मौका बेहद खास है। अगर आपको इस मंदिर प्रांगण के बारे में बताएं तो सबसे पहले इस ज्योतिर्लिंग की गणना होती है, 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का पहला स्थान है, और इसके साथ ही जितनी बार भी इस मंदिर को नष्ट किया गया एक बार फिर से पुनर्निर्माण के साथ यह मंदिर जागृत हो गया। समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद और तमाम पुराणों में किया गया है। आस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र। संजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, जितनी भी गणना की जाए इस पूरे मंदिर परिसर की, तमाम अन्य ज्योतिर्लिंगों की जो व्यवस्था है उसमें सबसे उच्चतम व्यवस्था, क्योंकि मैं खुद यहां पर मौजूद थी 4 साल पहले, तो मैंने देखा और समझा है कि चाहे कितना ही आधुनिक निर्माण हो लेकिन यहां की आस्था अलग ही दिखाई देती है।
1: यह बिल्कुल, और यहां सबसे बड़ी चीज है कि सबके लिए समान व्यवस्था है। अयोध्या का श्री राम मंदिर है, रामलला के मंदिर में वीआईपी लोगों के लिए अलग व्यवस्था है, आम जनता के लिए अलग व्यवस्था है। आम जनता मोबाइल लेके नहीं जा सकती, वीआईपी मोबाइल लेके जा सकते हैं, जहां चाहे वहां फोटो खिंचा सकते हैं। ऐसा ही काशी में भी है, जहां प्रोटोकॉल आपके साथ है तो आप अंदर मोबाइल लेके जा सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन यहां की व्यवस्था सबसे अलग है। यहां गर्भगृह में कोई नहीं घुस सकता, सिर्फ जो पुजारी है वही अधिकृत है वहां जाने के, यानी गृह मंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए, उन्हें वही उसी जगह से दर्शन करने होते हैं जहां से सारे लोग दर्शन करते हैं, और आप ज्योतिर्लिंग को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ उनका ही विशेषाधिकार है जो वहां के सेवाधिकारी पुजारी हैं वो अंदर जाते हैं। ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था ये है कि इतने बड़े प्रांगण में है कि आपको भीड़ का एहसास नहीं होता, आप बिल्कुल सुनियोजित अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित ढंग से आप जाकर दर्शन कर सकते हैं और अपने जो अर्घ्य है वो अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एक वहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक कलश में आप अपना जल और पूजन सामग्री अर्पित करते हैं, वो हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए ज्योतिर्लिंग तक पहुंचता है और आपका अभिषेक वहां से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली आपका अभिषेक वहां पर, शिवलिंग का अभिषेक आपकी ओर से वहां पूरा हो जाता है। ये व्यवस्था बहुत सही है, और इसके साथ ही वहां पर जो मंदिर का प्रांगण इतना विशाल और भविष्य उन्मुखी है, जिसे भविष्य को देखते हुए इतना विशाल प्रांगण बनाया गया, लेकिन अभी भी अगर आप सोमनाथ मंदिर जाएं तो पीछे की तरफ एक मंदिर के भग्नावशेष दिखाई पड़ते हैं। जब मैं सोमनाथ गया तो मैंने वहां पर पूछा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये देवी पार्वती जी का मंदिर है, इसे इसलिए रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी को एहसास हो कि किस तरह से आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, उसकी उसका एक उनको ये ना रह जाए कि ये सिर्फ गढ़ी हुई कहानियां हैं, उन्हें अवशेष यानी जिन्हें प्रमाण चाहिए उन्हें प्रमाण मिले। और इसके साथ ही यहाँ पर ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का मंदिर था, बगल में पार्वती जी का मंदिर था जो उनकी शक्ति कही जाती है, और उनको उस भग्नावशेष को ऐसे ही रखा गया है, अभी भी वो उसी स्थिति में है, और जो पार्वती जी की प्रतिमा थी, श्री विग्रह था, उसे अंदर मंदिर में स्थापित किया गया, जो आप जब दर्शन करते हैं तो ज्योतिर्लिंग के पीछे आपको पार्वती जी दिखाई पड़ती हैं, तो उनके दर्शन होते हैं। तो अपने आप में अद्भुत व्यवस्था है, और जो व्यवस्था सोमनाथ मंदिर के लिए पुनर्निर्माण के समय की गई थी, ये मतलब इसे लगातार बरकरार रखा जा रहा है, इसे बनाए रखा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देव सोमनाथ जिसके बारे में कहते हैं कि जब चंद्रमा को कलंक लगा तो चंद्रमा ने उस कलंक की मुक्ति के लिए, क्योंकि जब वो गौतम ऋषि के यहाँ गए थे उस समय चंद्रमा और इंद्र दोनों साथ थे, चंद्रमा ने उस कलंक की मुक्ति के लिए यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की, और सोमनाथ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर शिव उन जब उन्होंने वरदान मांगा कि आप यहाँ हमेशा विराजमान रहिए, तो शिव जी ने कहा कि मैं ज्योतिष स्वरूप में यहाँ हमेशा विराजमान रहूंगा। और जहां जहां ज्योतिष स्वरूप में शिव विराजमान है वो ज्योतिर्लिंग है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर है।
0: संजय, साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि अभिषेक 11 पवित्र तीर्थ स्थलों के जल से किया जाएगा, रोकेंगे आपको यहाँ पर। प्रधानमंत्री गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए, और ये देखिए आप साक्षात दर्शन इस वक्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कर सकते हैं। आज विशेष तैयारियां की गई हैं, मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया है, और ये जलाभिषेक प्रधानमंत्री का हाइड्रोलिक माध्यम से, जैसा कि संजय जानकारी दे रहे थे, सीधे तौर पर कोई भी इस गर्भगृह के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी विशेष अतिथि हो, इस गर्भगृह के भीतर सिर्फ पुजारी की मौजूदगी रहती है। यहाँ पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री हाथ जोड़ते हुए और मंत्रोच्चार के साथ भगवान

0: संजय, हमने प्रधानमंत्री को यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देखा, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि अंदर मोबाइल फोन, कैमरा, वीडियोग्राफी कुछ भी वहां पर अलाउड नहीं है, लेकिन आज क्योंकि खास मौका है, अमृत महोत्सव है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो पूजा विधि थी वो हमने देख पाई, और तमाम वो भक्त जो इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन करना चाहते होंगे वो भी आज कृतज्ञ हुए होंगे कि अमृत महोत्सव के माध्यम से उन्हें वो भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन खास बात ये है कि इस प्रथम ज्योतिर्लिंग में आज जब अमृत महोत्सव होगा तो ना सिर्फ जमीन बल्कि आसमान तक ये उत्सव मनाया जाएगा। संजय,
1: यह बिल्कुल धरती के साथ, धरती, जल और आकाश, सबकी शक्ति महाकाल के पास, तो उसमें आसमान में एयर शो भी होगा और इसके साथ ही वहां पर कुंभाभिषेक है। कुंभाभिषेक सबसे पवित्र चीज, अभिषेक का मतलब होता है, अभिषेक का मतलब सिर्फ स्नान नहीं बल्कि अभिषेक का मतलब होता है जल की एक पतली धारा अपने आराध्य देव के ऊपर गिराना और उससे उनका अभिषेक करना। तो जब राज्याभिषेक होता है तब भी वो पवित्र तीर्थों का जल जो राजा बनने वाला होता है उसके ऊपर डाला जाता है। तो अभिषेक, और ये कहते हैं कि श्रृंगार प्रिय है विष्णु, अभिषेक प्रिय शिव, यानी विष्णु को श्रृंगार प्रिय है और शिव को अभिषेक प्रिय है। और शिव का अभिषेक इसलिए कि शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो हालाहाल विष को अपने कंठ में धारण किया और उसके उनके पूरे शरीर में जलन थी। उस जलन को शांत करने के लिए उन्होंने जब देवताओं से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। तो उस समय वो चंद्रमा उन्होंने सिर पर धारण किया, उसकी शीतलता से थोड़ा असर होगा। गंगा जी सिर पर धारण की कि उसकी शीतलता से असर होगा। चंदन धारण किया, धतूरा धारण किया, यानी ये सारी चीजें, जितनी चीजें शिव को अर्पित की जाती हैं वो शीतलता की प्रतीक हैं। दूध, कच्चा दूध उनको चढ़ाया जाता है, वो भी शीतलता का प्रतीक है। तो इसके साथ ही फिर जब उन्हें कहा गया कि उन्हें माँ का दूध अगर मिले तो वो इस विष की ज्वाला को शांत कर सकता है, तब ये शिव जी की माँ कौन बने? पार्वती जी ने फिर तारा का रूप धरा, देवी तारा का।

0: విష్ణురా విష్ణు శ్రీమద భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణు రాజ్ఞయా.
1: इस मंदिर ने भक्ति समृद्धि विदेशी आक्रमण पुनः निर्माण और अब आधुनिक ये मंदिर बन चुका है. सब देखा है हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए. संजय इस समय मंत्रोच्चार चल रहा है, उसकी गूंज सुनाई दे रही है. लेकिन जिस जो इस मंदिर की आप खासियत विशेषता बता रहे हैं वो देश के दूसरे मंदिरों में, इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है, वहां पर VIP के लिए अलग व्यवस्था होती है, आम आदमी के लिए अलग व्यवस्था होती है और उस पर प्रश्न भी खड़े होते हैं. तो जो सोमनाथ कर सकता है इस मंदिर में हो सकता है वो दूसरे मंदिरों में क्यों नहीं?
2: या बिल्कुल, ये तो अपनी जो व्यवस्था समिति है वो तय करती है. जो व्यवस्था समिति अगर राजनीति के आधार पर ही वो काम करती है तो वो तो चाहेगी कि जो शासन में रहे उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए और शासन में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुविधा भोगी हो जाता है, उसे भी लगता है कि उसे VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. यही वजह है कि जब कोई मामला धार्मिक मामलों में, ऐसे तो कोर्ट दखल नहीं देता, लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था कोर्ट में जाते हैं मामले जिसमें ये कहा जाता है कि व्यवस्था को सुचारू किया जाए, सबके लिए बराबर व्यवस्था की जाए, तो उस समय कोर्ट भी कह देता है कि हम मंदिर के मामले में दखल नहीं दे सकते हैं. ये अलग बात है, कई मंदिरों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है.
3: एक बार दोबारा इन तस्वीरों पर लौटते हैं. ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है दरअसल जलाभिषेक की है, उसमें मंत्रोच्चारण आप सुन सकते हो. प्रधानमंत्री इस पूजा अर्चना में लीन दिखाई दे रहे हैं. संजय, आप जलाभिषेक का महत्व तो समझा रहे थे, लेकिन आज जो कुंभाभिषेक किया जाएगा उसमें 11 पवित्र तीर्थों का जल लाया गया है. कौन से तीर्थ स्थल हैं, क्या इनके बारे में कोई जानकारी मिली है?
2: इसमें तीनों समुद्रों के जल हैं, इसके अलावा गंगा, सिंधु, गोदावरी, ऐसी जो पवित्र नदियां हैं उनके जल, उनका जल यहाँ पर लाया गया है. क्योंकि शिव को गंगा जल विशेष प्रिय है तो गंगोत्री से गंगा जल लाया गया. जैसा कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि गंगोत्री में सबसे विशुद्ध गंगा जल है, तो गंगोत्री से, गोमुख से गंगा जल लाया गया है. इसके अलावा जहाँ जहाँ नदियों के उद्गम स्थल हैं उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है, जहाँ से नदियां होती हैं, गोदावरी है, यमुना है, इन सबके पवित्र जल हैं. इसके अलावा समुद्र का जल है और ये 11 तीर्थों के पवित्र जल के साथ शिव को शिव का अभिषेक किया जाएगा, यानी कुंभाभिषेक. इसमें ये कहते हैं कि शिव को गंगा इसलिए प्रिय है कि शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया है. एक तो शिव को शीतलता प्रदान करती है गंगा, दूसरा शिव की जटाओं से निकलने के कारण उसका अमृतत्व और ज्यादा बढ़ जाता है. क्योंकि गंगा के बारे में कहते हैं कि वो पहले तो ब्रह्मा के कमंडलों में थी, ब्रह्मा के कमंडलों से विष्णु के चरणों तक आई और विष्णु के चरणों के नख से निकली गंगा, और इसीलिए विष्णु पथगा उसे कहा जाता है. और विष्णु के चरणों से निकलने के बाद शिव ने उन्हें अपनी जटा में धारण किया, क्योंकि ऋषि भागीरथ, राजर्षि भागीरथ ने उनके लिए तपस्या की और अपने पुरखों के उद्धार के लिए, क्योंकि कपिल मुनि के शाप से वो सब भस्म भूत हो गए थे, तो उनके शाप के उद्धार के लिए फिर ये कहा गया कि जब तक शिव उसे धारण नहीं करेंगे तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी, गंगा इतनी वेग से स्वर्ग से नीचे उतरेगी. इसलिए गंगा को त्रिपतगा कहते हैं. एक तो स्वर्ग में बहने वाली गंगा है, दूसरी धरती पर है और तीसरी रसातल में बहने वाली गंगा है. तो ये त्रिपतगा गंगा यहाँ जब पहुंची है तो शिव के जटा में होने के कारण है.
4: जामिकोंगे संतास्ते विभिन्न कत्वे शिवांगे रित्रतां गुरुमाय गोसे हे पुरुखं जगता शिवेन चात्वा गिरिशाचा वदामसि तथा नः सर्वनिज्ञागादय स्मगो सुमनासता अध्योचद अध्युक्ता प्रथमो दैवो भीखका हि च सर्वाञ्जं भयं सर्वाच धातु धान्यो ये परास्त शांतिर्भवतु अमृत.

0: ఆచమనీయం సమర్పయామి దదిష్ణానమ్మ స్వశివాదినః సురభినో ముఖాకరణ ఆయుగుపితారిఖద శంభ సదాశివాయ మహారుద్రాయ నమః దదిష్ణానమ్ సమర్పయామి. ఓం మధువాతారితాయతే మధుక్షరంతి సింధవః జోనిరింద్రాయ త్వా జుష్టతమమ్మ శర్కరాస్నానాంతే శుద్ధోదక స్నానమ్ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం నమస్తే రుద్రమన్య ఉతోతైఖవే నమః బాహుభ్యాముతతే నమః జాతే రుద్ర శివాతను రఘోరా పాపకాశినీతయా నత్తన్వాసంతమయా గిరిషంతా విజాకశీ జామిఖం గిరిషంతస్తే బిభిర్గతవే శివాంగేరిత్రతాంగురుమాయి గూషే పురుఖం జగత శివేన చాత్వా గిరిషాచ్చావదామసీ తథా నః సర్వమిధ్యాగాదయస్మగోసుమనాశత అధ్యోచదయుక్త ప్రథమో దైవో భీకకాహీ చ సర్వాంజం భయం సర్వాచ్చ ధాతు ధాన్యో.
1: संजय भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं. संजय, अभिषेक चल रहा है जल से, शहद से, दही से, दूध से, तो ये क्या पंचाभिषेक और कुंभाभिषेक क्या इसके बाद होगा ये यही है? प्लीज वो भी बताएं.
2: ये दरअसल कुंभाभिषेक शिखर पर किया जाएगा और उसके लिए अलग प्रक्रिया है संजय, और वो प्रक्रिया दरअसल हमारे दर्शकों को समझाइए कि कितनी वो अलग होने वाली है और क्या वो कभी देखी गई है इस तरह की कुंभाभिषेक प्रक्रिया पहले?
3: कई मंदिरों में ये परंपरा है कि कुंभाभिषेक किया जाता है, विशेष अवसरों पर किया जाता है और वो शिखर का अभिषेक होता है. तो ऐसे में शिखर को सबसे पवित्र मानते हैं कि अगर आपने किसी भी देव मंदिर में शिखर और वहां लहराते हुए ध्वजा के दर्शन कर लिए तो आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना अंदर जाकर अपने इष्ट देवता के दर्शन का पुण्य मिलता है. तो आप दूर से शिखर का दर्शन करें तो वो भी उतना ही पुण्यप्रद होता है. इसलिए शिखर को मंदिर के ऊपर जो शिखर है, शिखर के ऊपर कलश होता है, कलश के ऊपर कमल के फूल होते हैं, कमल के फूल के डिजाइन बने होते हैं और उसके ऊपर ध्वजा होती है. वो ध्वजा अपने आप में वो धर्म ध्वजा है और वो ध्वजा अपने आप में बहुत सारा संदेश देती है कि इस ध्वजा के नीचे आप निर्भय हैं, आप
2: ये पंचामृत से आप इस वक्त अभिषेक देख रहे हैं जो स्वरूपात्मक शिवलिंग है उस पर प्रधानमंत्री जल, दूध, दही, शहद, घी और चीनी से अभिषेक करते हुए और इसके बाद अलग अलग विधि विधान जो भी वहां पर मौजूद पंडित उन्हें बता रहे हैं उसको प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान से वहां पर करते हुए. संजय मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं. संजय देखिए, इस गर्भगृह की विशेष महत्ता है, इस गर्भगृह तक कोई नहीं पहुंच पाता है कितना भी विशिष्ट अतिथि क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि ये मंदिर समुद्र तट पर बसा हुआ है यहां तक कि समुद्र की लहरें तक ये कहा जाता है कि गर्भगृह तक नहीं पहुंच सकती चाहे ज्वार भाटा ही क्यों ना आ रहा.
3: क्योंकि ये मंदिर ऊंचाई पर है, मंदिर ऊंचाई पर है और समुद्र वहां से नीचे है. तो पहले भी मंदिर ऊंचाई पर ही बना हुआ था, जिस समय महमूद गजनवी ने यहाँ आक्रमण किए तब भी ये मंदिर वैसा ही ऊंचाई पर था. तो ऊंचाई पर है, वहां आप खड़े होंगे तो वहां आपको समुद्र दिखाई पड़ेगा. इसलिए ज्वारभाटा के समुद्र भी अगर एक मीटर भी ऊंचा होता है, एक मीटर तो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर ऊंची लहरें भी उठती हैं तब भी वो मंदिर तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि और मंदिर की जो समुद्र की गर्जना है वो भी मंदिर तक सुनाई नहीं पड़ती है. मंदिर से आप बाहर निकलेंगे तो समुद्र की गर्जना आपको सुनाई पड़ेगी. तो ये वहां की, वहां का वैचित्र भी है और वहां की खासियत भी है. और दूसरी, पहले तो शिवजी का पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है. ये पांच तरह के अमृत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जो हमारे शरीर को, तन और मन को पुष्ट करते हैं, जिसमें गाय का दूध है, गाय के दूध से बना हुआ दही है और गाय के दूध के दही से बना हुआ घृत है और इसके अलावा शहद है और शर्करा है. ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, हमारे शरीर को पुष्ट देते हैं, अमृत प्रदान करते हैं, तो इसलिए इसे अमृत कहा गया है. तो पंच अमृत का अभिषेक विशेष पुण्यप्रद माना जाता है जब आप अपने इष्ट देवता पंचामृत से अभिषेक करते हैं. इसके बाद जब ये पूजा संपन्न होगी, इसके बाद मुख्य पूजा होगी जिसमें कुंभाभिषेक होगा और कलश से बड़े पात्र को कुंभ कहते हैं और कुंभ एक राशि भी है और कुंभ एक मतलब पवित्रता का उद्घोष, पवित्रता बताने वाला शब्द है. तो वो कुंभ और कुंभ से ही शब्द बना, जो कुंभ बनाए वो कुंभकार यानी कुम्हार. तो ये कलश को ये बताया गया है कि क्रेन के माध्यम से शिखर तक पहुंचाया जाएगा और जैसा कि आपने अयोध्या में ध्वजारोहण देखा था, धर्म ध्वजा की स्थापना जब हुई थी अयोध्या में श्री राम मंदिर पे, तो रामलला के मंदिर पे, वैसे ही उनको क्रेन के माध्यम से कलश को वहां भेजा जाएगा और वहां जाने के बाद कलश वहां से अभिषेक करेगा यानी धीरे धीरे टेढ़ा होगा और शिखर के ऊपर जलधारा बहेगी और वो जलधारा नीचे तक आएगी। तो ये कार्यक्रम है और ये बहुत ही खास अवसरों पर ये कुंभाभिषेक यानी जो शिखर का अभिषेक है वो किया जाता है। हालांकि जैन आगमों में ये परंपरा काफी है, जिसमें एक तो महामस्तकाभिषेक होता है जैन आगमों में, जैसे कि भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हर 12 साल पर होता है। तो ऐसे उसमें परंपरा है और सनातन परंपरा भी है जिसमें अभिषेक के साथ विशेष अवसरों पर मंदिर के शिखरों का विशिष्ट अभिषेक किया जाता है, जिसे शिखर कुंभाभिषेक कहते हैं।
1: और ये एक विशेष मुहूर्त में ही होता है, तो कितने बजे, क्या कोई मुहूर्त तय है कुंभाभिषेक के लिए?
3: अमूमन ये होता है कि एक शुभ मुहूर्त होता है जिसमें कई ग्रहों का योग हो, और खास करके जिस दिन हो उस दिन ज्योतिषीय गणना में ये देखा जाता है कि उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए, और राहु काल को टालकर और उस समय भद्रा की स्थिति भी देखी जाती है और शुभ मुहूर्त में इसको संपन्न कराया जाता है। तो आज भी मुझे लग रहा है कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है जो लगभग 11:15 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का काल होता है, उस काल में ही मेरा अनुमान है कि ये शिखर कुंभाभिषेक होगा।
2: इसके अलावा ये कहा जाता है कि इससे ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है, और आज क्योंकि पहली बार इस तरह का आयोजन वहां पर कुंभाभिषेक का हो रहा है इस पावन अमृत महोत्सव पर, जाहिर तौर पर लोगों में काफी कौतूहल होगा कि आखिरकार इसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यही सबसे ज्यादा दिलचस्प आज रहने वाला है।
3: इसकी प्रक्रिया ये रहेगी कि जो पवित्र तीर्थों का जल है 11 तीर्थों का, उसे एक कुंभ में रखा जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये मिश्रित धातु का कुंभ होगा और उसे क्रेन की मदद से, या फिर तांबे का कुंभ हो सकता है और उसे एक मिश्रित धातु का होने से उसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें पंच धातु या अष्ट धातु उसके कलश होते हैं। तो उस कुंभ को फिर क्रेन के माध्यम से, जल पूरित कलश को ऊपर क्रेन के माध्यम से भेजा जाएगा और वहां जाकर वो धीरे धीरे टिल्ट होता हुआ और अभिषेक करेगा।
2: ठीक है, तो आपको ये थोड़ा यहाँ पर तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री की, वो अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। इधर असल वस्त्र धारण कराए गए हैं ज्योतिर्लिंग को, जो प्रतीकात्मक तौर पर जिसकी पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उसकी पूजा अर्चना किसी के लिए भी इस मंदिर में संभव नहीं है, हाइड्रोलिक माध्यम से ही जलाभिषेक भी होता है, और ऐसे में जो पंचामृत कराया गया है वो यहाँ पर एक छोटे से ज्योतिर्लिंग का किया जा रहा है, जिसपे इस वक्त पुष्प अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 पंडित उनके साथ मौजूद हैं, मंत्रोच्चार की ध्वनि लगातार इस मंदिर परिसर में गूंज रही है, बेहद भव्य और दिव्य ये मौका है जिसका दर्शन इस वक्त सिर्फ गुजरातवासी नहीं बल्कि समस्त देशवासी करना चाहते हैं, और सबके मन में ये कौतूहल है कि आज जो कुंभ अभिषेक है उसमें दरअसल क्या होने वाला है, क्योंकि कुंभ अभिषेक में एक ऐसे कलश का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें 11 पवित्र स्थलों का जल लाया गया है, और ऐसे में आज का ये अमृत महोत्सव जिसमें सोमनाथ जिसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है उसका 75वां साल आज मनाया जा रहा है। कई बार इसका निर्माण किया गया कि पिछले कई सालों में इसने कई बदलाव देखे हैं, और मंदिर व्यवस्था बेहद आधुनिक तमाम अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों के मुकाबले में। इस ज्योतिर्लिंग में जब आप जाएंगे तो पंक्तिगत रूप से आराम से बिना किसी वीआईपी टिकट लिए, बिना कोई पास लिए, आप आराम से इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन कर पाएंगे। हालांकि मंदिर के प्रकोष्ठ में यानी कि अंदर गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि पूरी परिक्रमा आप दरअसल इस ज्योतिर्लिंग की कर सकते हैं, और चंद मिनटों में दरअसल ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। राजीव, सबसे ज्यादा अहम और विशेष बात इस ज्योतिर्लिंग की यही है, और इस पूरे आयोजन के दौरान 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे सोमनाथ में एक रोड शो जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री के साथ इस गाड़ी में सवार होकर और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए ये एक बड़ा मौका कि वो साक्षी बने इस भव्य मौके के, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने दी क्योंकि उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इस ज्योतिर्लिंग के निर्माण में रहा है, इस मंदिर परिसर के निर्माण में रहा है, धीरे धीरे करके इसकी जो कल्पना की गई थी उस पर ये परिपूर्ण हुआ है।
1: और इस समय भी पूजा अर्चना चल रही है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना चल रहे हैं और वस्त्र पहनाए गए हैं, जनेऊ भी पहनाया गया। हमारे साथ संजय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, ऐसा लगता है कि जो पूजा चल रही है विधि विधान से वो अपने अंतिम चरण में ही अब है?
3: यह बिल्कुल, अब आरती होगी और आरती के बाद ये पूजा संपन्न हो जाएगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर की एक और परंपरा है, जो परंपरा कुछ ही मंदिरों में है, रोज इसमें भगवान सोमनाथ के जो शिखर पर ध्वज है वो ध्वज बदला जाता है। और ऐसी परंपरा पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी है और द्वारकाधीश मंदिर में भी रोज वहां ध्वज बदला जाता है। और जब द्वारकाधीश मंदिर भी समुद्र के किनारे है तो वहां भी गुजरात में वहां भी रोज ध्वज बदलने की परंपरा है। और जब ध्वज बदला जाता है तो नीचे हजारों जनता, हजारों श्रद्धालु इसके साक्षी होते हैं और वो इसमें वहां जय जयकार करते हैं। और ये भी परंपरा है कि रोज सदियों से ये परंपरा जारी है जिसमें कि मंदिर के ध्वज बदलने की, नया ध्वज लगाने की परंपरा है, जिसमें भगवान शिव को वृष केतु कहते हैं, उनके ध्वज पर वृष यानी नंदी की आकृति बनी होती है। और वैसे ही और जो दो मंदिर हैं अन्य वो विष्णु मंदिर हैं, लेकिन वहां भी रोज ध्वज बदलने की परंपरा है। जगन्नाथ मंदिर में तो यह परंपरा है कि अगर ध्वज नहीं बदला गया तो फिर 12 साल तक मंदिर बंद रहेगा, तो मंदिर खुलेगा नहीं। तो ऐसी कई सारी परंपराएं हैं, लिहाजा उसका पालन हमेशा। तो इसमें आदमी ध्वज लेकर तो चढ़ जाता है शिखर पर, लेकिन वो कलश लेकर नहीं चढ़ सकता, वो कुंभ लेकर नहीं चढ़ सकता। तो ऐसे में हाइड्रोलिक सिस्टम ऐसा बनाया गया है जिससे कि क्रेन की मदद से वो वहां तक 90 मीटर ऊंचे शिखर तक कलश को पहुंचाया जाएगा, कुंभ को पहुंचाया जाएगा और वहां से वो अभिषेक होगा। तो अभी जो पूजा पूजन है वो वस्त्र धारण कराने के बाद भगवान सोमनाथ का जो प्रतीकात्मक ज्योतिर शिवलिंग है उस पर भोग नैवेद्य अर्पित किया जाएगा और नैवेद्य अर्पित करने के बाद फिर उनकी पूजा आरती करके पूजा संपन्न हो जाएगी, दक्षिणा द्रव्य समर्पण किए जाएंगे, जिसमें अगर पूजा में किसी भी तरह की कोई चूक रह गई हो तो वो दक्षिणा के जरिए उसे उसका उसका उसे अर्पित किया जाता है। और इसके बाद ही ये पूजन संपन्न, ये आरती शुरू हो चुकी है,
2: हो गई है। आरती की तस्वीरें आप बस आरती के बाद जी संजय, और इसी आरती के साथ दरअसल समापन हो जाएगा इस पूजा का, प्रतीकात्मक जो ज्योतिर्लिंग यहाँ पर प्रधानमंत्री के समक्ष है उसकी पूजा अर्चना का ये अंतिम चरण है जो आरती के रूप में आप इस वक्त देख सकते हैं। मंत्रोच्चारण अब से कुछ ही देर बाद हम अगर इसका ऑडियो ला पाए तो सुना पाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री हाथ ऊपर करते हुए, और ये वो हेलीकॉप्टर है जो पुष्प अर्पण करने वाला है, इसी का इंतजार दरअसल किया जा रहा था। ये देखिए पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है, ये अमृत महोत्सव जिसका भव्य स्वरूप आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा समक्ष भारत देख रहा है। इस पर अब पुष्प वर्षा ये हेलीकॉप्टर करता हुआ, इसकी दरअसल दर्जनों रिहर्सल की गई होंगी यहां पर, किस तरीके से एक एक करके पूरे रूटीन में इस पूजा अर्चना को किया जाना है ताकि कोई भी व्यवधान राजीव इसमें ना आए और एक स्मूथ प्रोसेस के तहत आज की ये पूजा अर्चना संपन्न हो जाए। हर तरीके से ये सुनिश्चित किया गया होगा कि कैसे एक लिमिटेड समय में ये पूजा संपन्न हो जाए, क्योंकि हर चीज का एक मुहूर्त तय किया गया है, किस मुहूर्त में प्रधानमंत्री यहां पर पूजा अर्चना करेंगे, किस मुहूर्त में कुंभाभिषेक होगा, किस मुहूर्त में दरअसल पुष्प वर्षा होगी, सबका मुहूर्त तय किया गया है।
1: सनातन में मुहूर्त का बड़ा बड़ा ही अहम रोल रहता है। आप तस्वीर देखेंगे तो बीच में कलश आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, इस कलश में वो जल है और क्रेन भी बिल्कुल वहां पर हमें दिखाई दी शीर्ष पर, वहां पर पूरी तरह से तैयार। आप इस तस्वीर में देखेंगे तो पुष्प वर्षा हो रही है, हेलीकॉप्टर जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
2: संजय से यहाँ पर सवाल है, संजय कई जगह ध्वजारोहण और ध्वज के बारे में ये ज्योतिर्लिंग में खास तौर पर कहा जाता है कि वो एक ही दिशा में बहता है, एक ही दिशा में उसका जो फ्लैग होता है या जो ध्वज होता है वो बहता हुआ दिखाई देता है, चाहे विंड किसी भी दिशा में चल रही हो। क्या इसके बारे में भी यही प्रसिद्ध है इस ज्योतिर्लिंग के बारे में?
3: ये पुरी के बारे में तो लोग कहते हैं कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर में के का जो ध्वज है वो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसके बारे में जो
0: दक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदायत्री सप्तासमिदा कृता देवाद्य जगनंतर शंभ सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान समर्पयामि अस्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पताये हर हर महादेव हर

0: आठ आप सुन सकते हैं। ये दरअसल पुष्प वर्षा की जा रही है।
1: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चत्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः।
0: यहाँ पर पान अर्पित करते हुए, क्योंकि तमाम वो तत्व हैं जो ज्योतिर्लिंग पूजन में एक विधि विधान के तहत आते हैं। पंचामृत से पूजा अर्चना आपने देख ली, उसके बाद आरती भी संपन्न हो चुकी है लगभग, और पूजा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री की आज मौजूदगी है इस विशिष्ट अवसर पर, जो कि अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। स्वर्ण महोत्सव पर भी प्रधानमंत्री मौजूद थे इसी सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में। और सोमनाथ मंदिर दरअसल सिर्फ टूरिस्ट आकर्षण केंद्र नहीं है, बल्कि ये आस्था का एक विशेष वो केंद्र है जो सारे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग के तौर पर सामने आता है। और ऐसा भव्य परिसर किसी और ज्योतिर्लिंग में दरअसल राजीव नहीं दिखाई देता है। जो इस मंदिर की भव्यता है वो दरअसल किसी और ज्योतिर्लिंग में नहीं दिखती है, क्योंकि भले ये प्राचीन ना हो, ये आधुनिक हो, लेकिन जिस तरीके से इसकी निर्माण शैली है वो हर किसी को लुभाती है।
2: और संजय भी हमारे साथ बने हुए। संजय, अब निर्माण शैली की यहां बातें कर रही थी, वो भी बताएं किस शैली में बना हुआ है। पहले जो था, चूंकि पुनर्निर्माण हुआ है, तो अगर शैली में बदलाव नहीं किया गया, उसी शैली में बनाया गया जैसे जिस स्वरूप में पहले था।
3: ये नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। नागर शैली का मतलब ये होता है कि एक रेख में, एक सिधाई में उसका जो सेंटर है वो रहे, यानी आगे उसमें रंग मंडप, भोग मंडप और इसके बाद मुख्य मंडप होता है। तो ये तीन मंडप वहां पर दिखाई पड़ेंगे। जब हम उसको देखेंगे तो सबसे आगे रंग मंडप होगा, फिर भोग मंडप होगा, और भोग मंडप के बाद मुख्य शिखर होगा, जिस मुख्य शिखर के नीचे गर्भगृह होता है, और वहीं मुख्य देवता का श्री विग्रह विराजमान होता है। और इसमें ये कहते हैं कि जो आदमी जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसके पांव से लेके और गर्भवती स्त्री के पांव से लेके गर्भ तक की जो स्थिति होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण जगह गर्भगृह होता है।
2: माफ के साथ आपको टोक रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी समय तस्वीर आप देख रहे हैं, उस कलश से अब कुंभाभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुंभाभिषेक शुरू हो चुका है।

0: सबसे कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे कुंभाभिषेक, यही वो भव्य नजारा है जिसको देखने के लिए सुबह से ही वहां पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री खुद इस कुंभाभिषेक के साक्षी बने और एक पवित्र कलश में 11 पवित्र तीर्थ स्थलों का गंगा जल लाया गया है और उसी से ये कुंभाभिषेक संपन्न हुआ है। आप कलश का साइज देखिए यहाँ पर, इसमें कितनी देर तक ये दरअसल कुंभाभिषेक चला है और हाइड्रोलिक माध्यम से, क्योंकि शिखर तक सिर्फ ध्वजारोहण की इजाजत होती है, इसके अलावा अगर कुंभाभिषेक होना है तो इसी प्रक्रिया से आज यहाँ सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुआ है। यही वो चोटी है, यही वो शिखर है जिसे आज अमृत पर्व के तौर पर इस कुंभाभिषेक में पूरी मान्यता के साथ, पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर अभिषेक किया गया है। आप सोचिए कितने लंबे परिश्रम और तमाम तैयारियों के बाद आज ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एक के बाद एक आपने देखा किस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना और वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, कुंभाभिषेक अब संपन्न हो चुका है।
1: आगम शास्त्रों के अनुसार मंदिर की प्राणिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसे अनिवार्य माना जाता है और सोमनाथ मंदिर में, इस ज्योतिर्लिंग में, इस पवित्र स्थल पर कुंभाभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर
0: ठीक है। ब्रजेश दोषी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रजेश, कुंभाभिषेक संपन्न हो गया, अब इसके आगे का कार्यक्रम क्या है और वहां पर अगर तस्वीरें आप हम तक पहुंचा सके।
2: इसका एक अलग महत्व होता है हर मंदिर के शिखर पे जब ध्वजा लगाई जाती है तो मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं की जाती है कि इस तरह से लोक कल्याण की बात हो। वही लोक कल्याण की बात प्रधानमंत्री ने प्रार्थना की है मंदिर में जब उन्होंने विशेष पूजा और दर्शन किए, उसके बाद जो है मंदिर में पुष्पवर्षा हुई, जलाभिषेक हुआ, कुंभाभिषेक किया गया और अब ध्वजारोहण किया जा रहा है, जिसके बाद जो है ध्वजारोहण के बाद सूर्य ग्रहण की टीम का एक्शो होगा जिसमें सोमनाथ की बात की जाएगी और जिस तरह से सूर्य ग्रहण की टीम करतब दिखाती है तो वैसा ही एक्शो यहाँ पे जो है वो होगा कुछ क्षणों के बाद। और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है सद्भावना मैदान में संबोधन के लिए रवाना होंगे और वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वह इस मंदिर की पुनर्निर्माण की संकल्पना और उसके बाद लोकार्पण का जो वक्त था उस वक्त की जो अनकही कहानियां हैं उसकी बात करेंगे। पर उससे पहले मंदिर परिसर में एक प्रदर्शनी बनी हुई है जिसके अंदर मंदिर के इतिहास, साथ ही मंदिर के जो पुनर्निर्माण की घटनाएं हैं उसकी प्रदर्शनी। देखिए अभी ये जो है सूर्य किरण का एयर शो शुरू हो चुका है, सूर्य किरण के एयर शो की तस्वीरें जो है लगातार आप देखने को मिल रही है। सूर्य किरण की टीम, भारतीय वायुसेना की जो टीम है वो सूर्य किरण की टीम करतब दिखा रही है यहाँ पे। इस एरोबेटिक टीम की करतब हमने हर बार देखे हुए हैं किस तरह से अलग अलग करतब इस टीम के द्वारा किए जाते हैं और आज सोमनाथ में वो करतब किए जा रहे हैं। सोमनाथ के ऐतिहासिक महत्व को दिखाते हुए 75 साल सोमनाथ के दिल धड़क जो है ये एयर शो रहता है हमेशा सूर्य किरण की टीम का। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम हमेशा इस प्रकार के करतब के लिए जानी जाती है और आज
3: के लिए जानी जाती है और आज फिर एक बार सोमनाथ के 75 साल के पुनर्निर्माण के अवसर पर जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें ये सूर्य किरण की टीम जो है अब ठीक मंदिर के ऊपर पहुंचकर जो है वहां पे करतब दिखाएगी और ये किया जा रहा है।
0: ठीक है, एयर शो की तस्वीरें हम तक पहुंच रही है।
3: वायुसेना की सूर्य किरण टीम आज ये इनका मंदिर के ठीक ऊपर ये जो है सूर्य किरण की टीम पहुंची है और वहां पे अब ये जो है वो करतब दिखाती हुई 75 साल के महत्व को रेखांकित करने का ये अवसर है। जिस तरह से इसकी सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय वायुसेना की ये टुकड़ी सूर्य किरण की हर बार दिल धड़क करतब दिखाती है और अब जो है सोमनाथ मंदिर के ऊपर से ये करतब दिखाए गए हैं। 10 मिनट का ये शो जिसमें सूर्य किरण की टीम अपने अलग अलग करतब दिखाती है आमतौर पर आज इस 75 वर्ष के अमृत महोत्सव का जो आगाज है, 75 वर्ष जो है गौरवशाली क्षण, इस मंदिर का इतिहास न सिर्फ गुजरात के लिए न सिर्फ भारत के लिए पूरे दुनिया में इसका संदेश जाना है, क्योंकि
0: आधुनिकता और पौराणिकता का यहाँ पर मिलाप देखने को मिल रहा है। कैसे पहले विधि विधान से पूजा अर्चना, उसके बाद ये शो जो कि सूर्य किरण द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पर 10 मिनट तक ये एयर शो चलने वाला है राजीव। और इसमें आपने देखा है कि किस तरीके से एक सिंक्रोनाइज पैटर्न में तमाम वायुसेना के विमान दिखाई दे रहे हैं जो अगले 10 मिनट तक परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये पूरा आयोजन भव्य बनाने के लिए इन अलग अलग चीजों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, चाहे वो थोड़ी देर पहले किया गया कुंभाभिषेक हो या फिर इस वक्त जारी एयर शो।
1: बिल्कुल, एयर शो चल रहा है इस समय। अब ब्रजेश वहां से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, क्या प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं इस एयर शो को?
3: तो ये प्रधानमंत्री बिल्कुल इस एयर शो को देख रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पे ये कर्तव्य ये सूर्य किरण की टीम के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, लोग रोमांचित हो चुके हैं। हमेशा सूर्य किरण की टीम इसी प्रकार के दिल धड़क जो है वो कर्तव्य दिखाती हैं। एक के बाद पहले 5 विमानों का वो फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एक एक विमान अलग अलग से फॉर्मेशन बनाते हुए अपने कर्तव्य दिखाते हैं। तो वही जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सोमनाथ के सांस्कृतिक मूल्य के साथ आधुनिकता के रंग इस सूर्य किरण की टीम के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। लोग रोमांचित होकर इसको देख रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी इस गौरवपूर्ण क्षण के दौरान मंदिर में मौजूद रहे हैं। सोमनाथ से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय जोशी, आज तक।
0: तो ये एयर शो अब से कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे, लेकिन चंद लम्हों पहले की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब अनंत ऊर्जा का अनुभव सोमनाथ का एक तस्वीर वहां पर प्रधानमंत्री ने जारी की, वहां पर सीएम की भी मौजूदगी रही। लेकिन इसके अलावा ये मंदिर प्रांगण देखिए, क्योंकि आज ये अद्भुत दिख रहा है, और वहां पर विशिष्ट तैयारियां जो की गई हैं, फूलों से इसे सजाया गया है। एक बेहद खास लम्हा, ऐतिहासिक लम्हा, और ये कुंभाभिषेक जो आप देख रहे हैं ये दरअसल ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। इसके बाद आधुनिकता का प्रतीक एयर शो आपने अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरों में देखा होगा, जिसमें वायुसेना ने तैयारियां की हैं। अगले 10 मिनट तक ये एयर शो जारी रहने वाला है, जिसमें अलग अलग कॉम्बैट फॉर्मेशंस आप वायुसेना के विमानों की देख पाएंगे।
1: और संजय भी हमारे साथ, हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, कुंभाभिषेक आज सबने देखा है और इसमें भी चल ही रहा है, क्योंकि विशाल कलश है जहां से जल की धारा नीचे धीरे धीरे धीरे आ रही है, लेकिन क्या ये इन 75 वर्षों में पहली बार हो रहा है, या क्योंकि हर 12 साल में होता भी है, आयोजित होता है आमतौर पर, तो क्या ये 12 सालों में होता रहा है या पहली बार हो रहा है?
4: मुझे, मेरी स्मृति में तो ये पहली बार हो रहा है। मैंने इस बारे में और भी

0: भगवान सोमनाथ की।
1: विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को।

0: भगवान सोमनाथ की
1: विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन।

0: और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, कुंभाभिषेक भी हो चुका है, ध्वजारोहण भी हो गया, इस समय एयर शो चल रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि ये 75 वर्षों में पहली बार हो रहा है कुंभाभिषेक।
1: यह बिल्कुल, ये 75 पहली बार ही 75 साल का उत्सव मनाया जा रहा है, यानी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अपने यहाँ जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा है उसमें जब 60 साल का इंसान होता है तो उसकी षष्ठी पूर्ति मनाई जाती है, और जब वो 75 साल का होता है तो अमृत महोत्सव होता है, और जब वो 100 साल का होता है तो कहते हैं जीवेम शरद शतम, यानी 100 साल तक 100 शरद आप देखें। शरद का चंद्रमा इसलिए अच्छा है कि शरद के चंद्रमा में अमृत तत्व होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है और वो चंद्रमा की अमृतमयी छाया में चांदनी में रखी जाती है। तो ये चूंकि 75 साल का उत्सव है तो 75 साल का अमृत महोत्सव है, बड़ा समय है, बड़ा मुहूर्त है, बड़ा काल है, लिहाजा ये ऐसा ऐतिहासिक आयोजन किया गया है। इसे ऐतिहासिक के कहना उचित होगा क्योंकि अब रोज ऐसे आयोजन नहीं होते हैं। अब ये जब शताब्दी वर्ष होगा उस समय ऐसा करने की परंपरा, अगर उस समय की जो मंदिर कमेटी है, सरकार है, वो अगर चाहेगी तो जो शताब्दी उत्सव होगा उस समय भी ऐसा ही उत्सव किया जाएगा, क्योंकि ये मंदिर
0: बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा क्षण है, आप भी बता रहे हैं। लेकिन जिस कांग्रेस से इसकी शुरुआत होती है वो कांग्रेस आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे, सत्ता पक्ष दिखाई दे रहा, पीएम है, मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम सब है, क्या ऑपोजिशन क्यों नहीं है?
1: अपोजिशन को ये लगता है कि उनके वोट बैंक में सेंध पड़ जाएगी अगर वो इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है कि ये धार्मिक आयोजन नहीं, ये सांस्कृतिक आयोजन है, देश के इतिहास और संस्कृति का एक नया अध्याय है जो लिखा जा रहा है, इसमें सारे लोगों को शामिल होना चाहिए। 1951 में जब इस मंदिर का लोकार्पण किया गया था उस समय की सरकार ने भी, मुझे लग रहा कि वो सोच संकुचित थी, वो सोच उतनी वो नहीं थी, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक इतिहास का गवाह है और ये पुनर्निर्माण का प्रतीक है और ये हमारे लगातार जमीन से फर्श से अर्श तक का सफर जो हमारी संस्कृति करती रही है लगातार, जिन्होंने भी इसे मिटाने की कोशिश की है वो मिट गए लेकिन हमारी संस्कृति नहीं मिटी, ये हमारी अमृत तत्व वाली संस्कृति है जिसका ये प्रतीक है, इसमें सारे लोगों को मिलजुल कर हिस्सा लेना चाहिए। ये सिर्फ महज एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आयोजन है जो हमारे इतिहास और परंपरा की विरासत को, हमारे गर्व को बढ़ाने वाला है, लिहाजा मुझे लग रहा है कि ये चीजें बिल्कुल उस चश्मे से नहीं, मुझे लग रहा है कि जिस चश्मे से मैं देख पा रहा हूँ

0: वो मुझे ज्यादा उचित लग रहा है, वो मुझे ज्यादा सही लग रहा। बाकी तो सबके अपने अपने चश्मे हैं, अपने अपने नंबर हैं, उन नंबरों से लोग देखते हैं। अगर मेरा चश्मा कोई दूसरा लगा ले तो उसे शायद हो सकता है धुंधला दिखने लगे, या फिर कोई और लगा ले तो हो सकता है कि मेरे से भी साफ दिखने लगे।
1: संजय, जो जो समृद्धि पहले सोमनाथ की मानी जाती थी, जिसके लिए इतने बार सोमनाथ पर आक्रमण हुआ और मतलब इतने शासन हुए भारत पर, और उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग मतलब अपनी अपनी लालच के लिए आक्रमण किया, और सोमनाथ आज भी उतना ही समृद्ध और वैसे ही शान से वो आशीर्वाद वहां से दे रहे हैं। ये
0: तो शिव की भूमि है। शिव के लिए कहते हैं कि शिव लोगों को समृद्ध करते हैं लेकिन खुद नग्न रहते हैं, खुद श्मशान में रहते हैं, लोगों को समृद्धि देते हैं। जिस समय मंदिर को लूटा गया था उस समय मंदिर के पास सांस्कृतिक समृद्धि के साथ साथ, आध्यात्मिक समृद्धि के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी थी। लुटेरे सिर्फ भौतिक समृद्धि के लिए वहां तक आए थे, उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि से कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब लोग वहां जाते हैं, वो उनका एक मकसद ये भी होता है कि आध्यात्मिक समृद्धि अपने लिए समेट कर लाना, अपने जीवन में उस समृद्धि को महसूस करना, अपने जीवन में उस आध्यात्म की शांति को, आध्यात्म की ऊर्जा को, आध्यात्म के अमृत को महसूस करना और उसे अपने साथ लेकर आना, ताकि वो जीवन में हमेशा उस अमृत की धारा बहती रहे। तो भौतिक समृद्धि ठीक है, उन लोगों ने लूट ली, लेकिन जो आध्यात्मिक समृद्धि है उसे कोई नहीं लूट सकता। विद्या और आध्यात्म और ये जो तपस्या का धन है, ये कोई आपसे न बांट सकता है, न लूट सकता है, न छीन सकता है। इसको जितना आप लोगों में अपने आप बांटेंगे वह आपके लिए बढ़ता जाएगा। इसलिए कहते हैं विद्या ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। आध्यात्म भी ऐसा ही है, और जो अपनी भावनाएं हैं जिसमें करुणा, दया, क्षमा ये है, ये भी जितना आप लोगों को देंगे, जितना आप लोगों के साथ बांटेंगे, उतना समृद्धि बढ़ती जाएगी। तो अब का मामला भौतिक समृद्धि से ज्यादा आध्यात्मिक समृद्धि का।
1: संजय, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। हमने अभी एयर शो भी वहां पर देखा है जिस पर वाई भी बनाया गया, यूथ को डेडिकेट करते हुए। हमारे साथ ब्रजेश दोषी भी जुड़ गए। ब्रजेश, क्या एयर शो समाप्त हो गया, ऐसे में चल रहा है, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दर्शकों को भी दिखाए।
2: कर रही है अभी जस्ट पहले दिल का आकार बनाया गया था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। इसके अलावा अलग अलग मंदिर से बनाया गया, जिसमें जिस तरह दो विमान एक साथ रहकर दुश्मन को चकमा देते हैं, उनके दिलता ऐसी है, और जिस तरह नीचे जो है वो कभी मतलब से नजदीक रहकर ये विमान उड़ते हैं, वही जिसकी भी कोशिश की गई है। हमारे वायु सेना के जाबाज पायलट जो काफी ट्रेन होते हैं और अलग अलग वो ट्रेनिंग लेकर ये करतब परफॉर्म करते हैं, और वही अभी भी जो है ये एयर सूर्य किरण का जो एयर शो है वो चल रहा है। अभी भी ये जो है वो चल रहा है, पहले 5 विमान का प्रदर्शन था, उसके बाद 3 उसके बाद 2 और उसके बाद एक विमान में इस तरह से अलग अलग विमान जो है कतर दिखाते हैं, और अभी आखिरी जो है प्रतिक्रिया की जा रही है, ये आखिरी कर्तव्य होगा इस दिन का और सूर्यकिरण के एयर शो का, जिसके बाद एयर शो का समापन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री प्रदर्शनी देखने जाएंगे और फिर
1: उनके बारे में भी बताएं, कौन सी टुकड़ी है, कौन से विमानों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जो अपना कर्तव्य यहाँ पर अपना कौशल दिखा रहे हैं।
2: देखिए अभी जो है सूर्य किरण की टीम जो है वो तिरंगे को लहराती हुई, तिरंगे 3 रंगों को मंदिर के ऊपर लहराया है, वो दिखा रहा है कि किस तरह से सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ राष्ट्र की बात, राष्ट्रवाद की बात जो है राष्ट्रीय गौरव तिरंगा वो देखने को मिलता है। तो ये आखिरी फॉर्मेशन था आज के दिन का, और इसके साथ सूर्य किरण की जो टीम है उसका जो शो है वो खत्म हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है वो प्रदर्शनी देखने के बाद यहाँ से रवाना होंगे जनसभा के लिए। तो सूर्य किरण की जो टीम है उसमें 6 जो वायुसेना के जाबाज हैं उनकी ये टीम बनी हुई है। इसको सूर्य किरण एरोमेटिक टीम के नाम से जाना जाता है, और ये जो है 1996 में बनी थी हमारे 52 स्क्वाड्रन में से ये जो है पार्ट, ये हमारे 52 स्क्वाड्रन का पार्ट है भारतीय वायुसेना का, और इसको 1996 में बनाया गया था जिसके अंदर 6 जो पायलट होते हैं वायुसेना के वो ये अलग अलग कर्तव्य दिखाते हैं, फॉर्मेशन उनका बनाया जाता है और उसके साथ दिल धड़क कर्तव्य जो है वो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। अलग अलग फॉर्मेशन बनाने के बाद वो एयर शो होता है और वो एयर शो अब खत्म हो चुका है। अब प्रधानमंत्री जो है प्रदर्शन निहारने के बाद यहाँ से रवाना हो गए, कुछ क्षणों का वक्त बचा है क्योंकि 12 बजे का उनका समय था जनसभा के लिए पहुंचने का, पर जिस तरह से रोड शो में थोड़ा वक्त लगा है तो उसकी वजह से अब प्रधानमंत्री जो है वो थोड़ी देर में
1: जनसभा के लिए, जो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर उनको जनसभा को संबोधित करना है वो कितना दूर है?
2: वो मंदिर से जो है 2 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से प्रधानमंत्री जो है वो कुछ ही क्षणों के अंदर वहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद जनसभा में जो है 1 से 1.5 घंटे का वक्त रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री का एक संबोधन रहेगा, गुजरात के मुख्यमंत्री भी बात करेंगे और उसके साथ उप मुख्यमंत्री का भी एक छोटा सा संबोधन रहेगा। कुल मिलाकर 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम रहेगा जिसमें प्रधानमंत्री जो है पूरी धरोहर की बात करेंगे, किस तरह से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, इसके से लेकर पुनर्निर्माण तक की कथा, और उसके बाद वो जिस तरह के साक्षी बने थे स्वर्ण महोत्सव जब यहाँ पे मनाया गया तब वो सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए उनको 20 दिन हुए थे, और तब से लेकर आज तक कितना बदल है सोमनाथ, क्या क्या सुविधाएं दी गई है और इस सांस्कृतिक इतिहास को और विरासत को किस तरह से मजबूत दी गई है उसकी बात प्रधानमंत्री आज उसमें संबोधित करेंगे।
1: जी ब्रजेश बने रहे आप हमारे साथ। तो बार बार आक्रमण और अब पुनर्निर्माण और उसी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान सोमनाथ वहां पर विराज रहे हैं। हमारे साथ संजय भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, सोमनाथ का इतिहास भारतीय सभ्यता का वो नेवर गिव अप वाली भावना का एक प्रतीक जरूर है।
0: जी हाँ बिल्कुल, ये इतिहास हमें बताता है कि हम अपनी संस्कृति के साथ, अब संस्कृति को कितना भी नष्ट करने की कोशिश की जाए लेकिन संस्कृति अमृतत्व की तरह है जो कभी नष्ट नहीं होती है, बस चाहिए तो उसे संवारने वाले, आगे बढ़ाने वाले हाथ, आगे बढ़ाने वाला हृदय, आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कृति ही सौंप कर जाती है। जब तक हम उसके मन में वो दिए से दिया नहीं जलाएंगे, ज्योति से ज्योति नहीं जलाएंगे, तब तक प्रेम की गंगा कैसे बहेगी? वही कहते हैं ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो ये वही है।
1: संजय मैं आपको माफी के साथ टोकरा, जब आप प्रेम की बात करें तो प्रेम और दिल को जोड़ा जाता है, तो एक हार्ट शेप हम देख रहे हैं कि वो बनाए गए हैं, तो एक हार्ट शेप जो है सूर्य किरण टीम सूर्य कुमार किरण ने बनाई है और एयर शो चल रहा है और बिल्कुल अपने अंतिम जो कर्तव्य है वो दिखाई चल रहे हैं। और ब्रजेश भी हमारे साथ है। ब्रजेश, बिल्कुल अलग अलग और जेन जी शेप हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर सूर्य किरण दिखा रहे हैं, हमने हार्ट शेप देखी थी। ब्रजेश के पास हम जाएंगे, देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, टीम सूर्य किरण अलग अलग कर्तव्य दिखा रहे हैं, यूथ को डेडिकेटेड ये एयर शो में कई सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और संजय, यूथ से ही शुरुआत हुई, वाई से शुरुआत हुई, हार्ट यानी कि युवाओं की तरफ बड़ा ध्यान है कि युवाओं को सोमनाथ का इतिहास पता चलना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है जो मेरा इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि ये शिव की स्तुति जो है जो सभी लोगों को पता होगी और सब लोग इसका पाठ करते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, हृदय के कमल में आप विराजमान रहो। वो हृदय का निर्माण भारतीय वायुसेना ने किया है सूर्य किरण विमानों के जरिए, और उन्होंने ये बताया है कि हृदय के अरविंद में भवंग भवानी सहितं नमामि, वो शिव और पार्वती दोनों हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करें, तो वो हृदय बनाया है, युवाओं का हृदय है, युवाओं को समर्पित है और युवाओं को संदेश देता हुआ ये एयर शो है जिसमें ये कहता है कि आप अपने कंधों को, अपने हाथों को, अपने बाजुओं को और अपने हृदय और मस्तिष्क को इतना मजबूत करिए कि आप संस्कृति की गंगा को धारण कर सकें। जब आप संस्कृति की गंगा को धारण करेंगे तभी गंगा संस्कृति के आगे बढ़ेगी, और यही इनका संदेश भी है। और मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जो वाई शेप से शुरू हुआ विमानों का कर्तव्य वो हृदय तक आकर पहुंचता है, यानी युवाओं के हृदय तक पहुंचने की जो ये भारतीय वायुसेना की कल्पना है जिसे साकार करने की क्षमता है, वो एक बड़ा संदेश देती है कि आप संस्कृति की गंगा को अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में धारण करें, तभी वो आगे बढ़ सकती है और तभी हम ये जो अमृत महोत्सव है इसको सार्थक और सफल कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारी संस्कृति अजर, अमर और अमृतमयी है। इसे नष्ट करने की कोशिश करने वाला धरती में धूल में मिल जाएगा, लेकिन ये संस्कृति हमेशा ऊपर की ओर सिर उठाकर
1: कमाल की आपकी संजय ये इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अमृत महोत्सव के जरिए अपनी प्राचीन विरासत को भारत अब दुनिया के सामने किस रूप में पेश कर रहा है?
0: भारत अपनी प्राचीन विरासत को दुनिया के सामने ये पेश कर रहा है कि हमारे जैसी संस्कृति नहीं, हमारे जैसा अध्यात्म नहीं, हमारे जैसा विज्ञान नहीं और हमारे जैसी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता नहीं। यानी यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, तो ये कहते हैं कि सिर्फ हम, हमारे अंदर, हमारी मिट्टी में ऐसी क्षमता है, हमारी हवा, मिट्टी, पानी में ऐसी क्षमता है जिससे कि हमने पूरे जहान को, पूरी दुनिया हमारी दुश्मन जब थी तब भी हम सिर उठाकर थे और आज भी हम सिर उठाकर हैं। तो ये गर्व का भाव भरने की जरूरत है, अपनी संस्कृति के प्रति दुराग्रह नहीं, अपनी संस्कृति के प्रति पूर्वाग्रह नहीं, अपनी संस्कृति के प्रति कोई हीन भावना नहीं, बल्कि गर्व की भावना हो, यही सोमनाथ का मंदिर हमें हमेशा याद दिलाता है।
1: बिल्कुल संजय, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो प्रदर्शनी में भी गए थे, वहां पर उन्होंने देखा था आस्था, आक्रमण, पूरा इतिहास समेटे हुए ये प्रदर्शनी, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण की गाथा, वो सब इस प्रदर्शनी में है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु जाते हैं तो वो इस प्रदर्शनी को भी देख सकते हैं और सोमनाथ के पूरा का पूरा इतिहास वहां पर वर्णित है, वहां चित्रित भी है। हम इस समय आपको तस्वीर भी दिखा रहे, पीएम भी पहुंचे थे और हमारे साथ ब्रजेश लगातार जुड़े हैं। ब्रजेश, इस समय पीएम क्या क्या अभी मंदिर प्रांगण में ही है या कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए, संबोधन जहां पर होना है?
3: देखिए, अभी प्रधानमंत्री जो है वो जो सर्किट हाउस है सागर दर्शन वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद वो सभा स्थल पे पहुँचेंगे क्योंकि वो जामनगर सीधा आए, उसके बाद पूजा में बैठे थे और पूजा के बाद अब जो है वो जनसभा के लिए पहुँचेंगे। उससे पहले जो है थोड़ा वक्त वो सर्किट हाउस में वहाँ पे रखा गया है आरक्षित, तो सर्किट हाउस पहुँचे हैं, वहाँ से फिर वो जनसभा पे जाएंगे, वहाँ पे संबोधन होगा और संबोधन के बाद वापस सर्किट हाउस पे थोड़ा समय आरक्षित रखा गया है बपोर के दोपहर के भोजन के लिए, और उसके बाद 3:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री यहां से वडोदरा के लिए रवाना होंगे और वडोदरा में शाम 5 बजे के बाद सरदार धाम का लोकार्पण करना है, तो वहां पे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां पे भी एक रोड शो होगा शाम को 7 बजे। तो ये आज उनका कार्यक्रम है। मंदिर के कार्यक्रम सारे संपन्न हो चुके हैं, प्रदर्शनी की मुलाकात हो या कुंभाभिषेक हो, ध्वजारोहण हो, सूर्य किरण का एयर शो हो, सारी चीजें हो गई हैं। प्रधानमंत्री मंदिर परिसर छोड़कर जो है सभा स्थल के लिए रवाना होंगे थोड़ी देर के अंदर, मंदिर परिसर से वो बाहर निकल चुके हैं और सर्किट हाउस होकर फिर जो है वो सभा स्थल पे पहुंचेंगे।
1: जी, अब चूंकि आप वहीं रहते हैं ब्रजेश, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सिर्फ तीर्थ नहीं बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन मॉडल के रूप में सोमनाथ मंदिर को सरकार का विकसित करने का प्लान है और उस पर बहुत काम हुआ है, वो काम क्या क्या हुआ है, क्या क्या सुविधाएं जोड़ी गई हैं, वो भी आप बताएंगे।
3: देखिए, मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा राजीव की, ये जो कॉरिडोर है ये पहले ये यहाँ पे ये दीवार है बनाई गई है, ये दीवार यहाँ पे नहीं थी। शुरुआत में जब हम लोग आते थे तो मंदिर के परिसर तक एंट्री होती थी, पर उसकी वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, यात्रियों को परेशानी और दिक्कत ना हो और मंदिर की सुरक्षा बनी रहे इसलिए इस परिसर को लंबा किया गया, यहाँ तक लाया गया, अभी यहाँ पे जो जालियां बनाई गई हैं और अब यहाँ से जो है मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ से एक पूरा कॉरिडोर बनेगा जिस तरह हमने उज्जैन में देखा है महाकाल कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ में वहां पे जो कॉरिडोर देखा है, ठीक उसी तरह यहाँ पे सोमनाथ कॉरिडोर बनने जा रहा है। उसका प्रारूप तय हो चुका है पर अभी तक उसका शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नहीं किया क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, तो शिलान्यास भी उनको करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे काम शुरू होगा और ठीक उज्जैन और काशी विश्वनाथ की तरह यहाँ पर भी एक नया कॉरिडोर बनेगा जिससे यात्रियों की सुविधाएं बढ़ेंगी। यहाँ पे पहले से काफी सारे बदलाव आए हैं, चाहे वो रहने करने की सुविधाओं की बात हो, यहाँ पे लोगों की मोबिलिटी की बात हो, लोग आसानी से मंदिर तक पहुंच जाएं, उसके बाद मंदिर में उनके दर्शन आसानी से हो पाए, किसी भी वीआईपी मूवमेंट से उनको परेशानी ना हो, उन सबका पूरा ध्यान रखा गया है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इस मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं, तब से उनका पूरा फोकस यही रहा है कि देश का प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पूरे देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, उनका पूरा ध्यान रखा जाए।
1: और उनकी सुविधा कि पीएम एक ट्रस्ट के सदस्य के रूप में उनके कार्य को कैसा देखा जा रहा है यहाँ?
4: सर ऋषि कुमार
3: देखिए, ट्रस्ट के सदस्य भी थे वो और अब अध्यक्ष भी हैं, तो हमने वो पूरा कार्यकाल उनका देखा है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब कर हम सोमनाथ का ये बदलाव देखते रहे हैं। 25 साल हो गए क्योंकि उस वक्त स्वर्ण महोत्सव मनाया गया था और आज अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 25 साल में काफी बदल चुका है सोमनाथ का ये भव्य मंदिर, आप देख रहे हैं उसके आसपास का जो परिसर है। फिर से एक बार मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि आपको मंदिर परिसर की वो भव्य तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से ये मंदिर जो है वो परिसर बढ़ता गया है, यहाँ पे कितने भी श्रद्धालु आए उनको कोई दिक्कत ना हो और उनको यहाँ पे किसी भी तकलीफ की परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसकी पूरी व्यवस्था जो है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा की गई है। सुरक्षा तो मंदिर की अहमियत रखती ही है, पर श्रद्धालुओं की आस्था का ये विषय है और उनकी आस्था कहीं पे दुखी नहीं होनी चाहिए, हट नहीं होनी चाहिए, उसका पूरा ध्यान मंदिर प्रशासन के द्वारा भी रखा जाता है। और इसीलिए मंदिर में बहुत आसानी से, जिस तरह से नेहा भी लगातार बात करी थी, मंदिर में आसानी से दर्शन होते हैं, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट के होने के बावजूद भी आम श्रद्धालुओं को दर्शन खुले रहते हैं, उनके लिए कहीं पर भी दिक्कत ना हो उसका पूरा ध्यान और व्यवस्था बनाई जाती है। स्थानीय पुलिस के साथ और मंदिर प्रशासन के साथ ये पूरी व्यवस्था की गई है कि श्रद्धालु कभी भी यहाँ से दुखी होकर ना जाए। यहाँ पे जब आते हैं देश विदेश से श्रद्धालु,
1: तो जो भी श्रद्धालु आए उनको कोई परेशानी ना हो, इस संबंध में बड़ा काम बता रहे हैं कि हुआ है। आप दोनों नजर बनाए रखें, आपके पास हम लौटेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की एक अपील थी, उस किफायत की अपील के बाद आज घरेलू शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 900 अंकों तक टूट गया, वहीं निफ्टी भी 250 अंकों तक नीचे गिर गया है। ये बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 900 अंकों तक टूट गया। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ गए। चेतन, जो आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिले, क्या पीएम की उस अपील का इम्पैक्ट है या और भी कारण है?
5: देखिए, और भी कारण है जो शेयर बाजार ऐसे ऐसे गिरता है, लेकिन मेजरली जो फैक्टर देखा जाए वो पीएम की स्टेटमेंट का है, क्योंकि पीएम ने बोला जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने जो बिहेवियरल पैटर्न अडॉप्ट किया था उसके चलते हमको वापस आना पड़ेगा, पुरानी आदतों पे वापस आना पड़ेगा, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा खराब हुआ है। निफ्टी लगभग 245 पॉइंट्स गिरा हुआ है, सेंसेक्स लगभग 900 पॉइंट, बैंक निफ्टी लगभग से लगभग 535 पॉइंट तक गिरा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा मार्केट का मूड थोड़ा खराब है। अगर हम ज्वेलरी स्टॉक्स देखें जैसे टाइटन है, वह 6% गिरा है, एनर्जी स्टॉक लगभग एबीवी इंडिया सीमेंट सब 5-5, 9-9% गिरा हुआ है, और जो कमर्शियल एविएशन स्टॉक्स हैं जैसे इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, वो भी आज 4.5% के आसपास टूटा हुआ है। बैंक के शेयरों में भी आज गिरावट दिख रही है और शिपिंग स्टॉक्स में भी काफी भारी गिरावट दिख रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट सेंटिमेंट अभी फिलहाल थोड़ा खराब है, लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट रिकवर करती है या नहीं करती है। लगभग अभी 3:30 तक हमारे पास समय है, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरफ का रुख लेती है और कौन से शेयर बाजार में अब ट्रेंड आगे नहीं आके बनते हैं।
1: समस्या ये भी ना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी तो मार्केट को सुधारने नहीं दे रहे, उनकी बार बार जो स्टेटमेंट आ जाते हैं और फिर उन्होंने ईरान के प्रस्ताव को भी नकार दिया। बहुत शुक्रिया चेतन आपका जानकारी के लिए। अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद भारत।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
8: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप, यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
10: The
4: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
10: Thank God I get to wake up.
4: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan this on this station. Up. Ready to find your flow?
11: It's your boy,
4: just
11: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
12: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जेके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: Like I said before, we better hold this in.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
6: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
7: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
6: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
8: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
5: जहाँ खबर वहाँ खबरदार, सिर्फ आज तक पर। इन एसोसिएशन विद
9: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा। JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
1: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
4: इसमें माइक्रोफाइबर है।
1: माइक्रोफाइबर यानी
4: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
1: हमारे सीमेंट में नहीं है?
4: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
5: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
6: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
7: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
8: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
7: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
9: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
6: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
0: Hint, bade aaram se.
1: Cool stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
0: विमल, बोलो जुबां केसरी.
4: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा. मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक. कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक.
5: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा. साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है. एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे. विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा.
6: हर राज्य में जनता बीजेपी को दूसरी बार, तीसरी बार फिर से सेवा करने का अवसर देती है, लेकिन कांग्रेस की कोई भी राज्य सरकार दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है. सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकमबेंसी शुरू हो जाती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है. ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है. कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा.

0: भारत की आध्यात्मिक अस्मिता के प्रतीक प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर में 11 मई 2026 का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। मई 1951 में मंदिर के प्रथम लोकार्पण से मई 2026 के भव्य दर्शनों तक सोमनाथ की समृद्धशाली विरासत ने 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा तय कर ली। पचहत्तर वर्ष की ये यात्रा है विध्वंस के विचार से सृजन की शक्ति की विजय की। सदियों आक्रांताओं की क्रूरता से पीड़ित सभ्यता के स्वाभिमान स्थापना की। भारत के जन जन की आत्मा में बसी आस्था के पुनर्स्थापना की। सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं।
1: ओम नमः पार्वती पते हर हर।

0: 12 ज्योतिर्लिंगों में जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, पृथ्वी का जो पहला मंदिर है, वहां लेकर हम आपको आए हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सोमनाथ मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है, वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे।
1: और इस समय हम आपको एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कुछ समय पहले वहां पर एयर शो हुआ है और सूर्य किरण ने अद्भुत परफॉर्मेंस वहां पर दी। ये करतब वहां पर दिखाए, जैसे वायु बनाया गया, हार्ट का शेप बनाया गया, त्रिशूल बनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, कुंभाभिषेक वहां हुआ और अब पीएम कार्यक्रम स्थल की तरफ जहां पर उनकी सभा होनी है उस ओर रवाना हो गए।
2: ओम विष्णुरा।
1: और मंच पर पहुंच भी गए, प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है फूलों की माला के साथ। लोग पीएम को सुनने के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे और सभा स्थल पर पीएम है।
3: यानी सोने की खरीद।
1: तो जैसे पीएम बोलेंगे दोबारा आपको लिए चलेंगे, लेकिन कुछ और बड़ी खबरों का जल्दी से रुख कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम एशिया में जारी संकट और उसके भारत पर इंपैक्ट को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से संसाधनों के संरक्षण को लेकर सोच समझकर कदम उठाने की अपील के बाद ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पहली IGOM यानी कि मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की एक बैठक है। इससे पहले 28 मार्च 2026 को पीएम ने ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े घरेलू जोखिमों, घरेलू वस्तुओं की उपलब्धता और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में हिंद महासागर क्षेत्र, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित जोखिमों के प्रभाव पर विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता शिवानी शर्मा जुड़ गए। शिवानी, मीटिंग शुरू हुए समय हो गया, क्या क्या चिंतन मंथन चल रहा है?
4: देखिए, सबसे पहले एक अपडेट आपको दे दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये बैठक अब से थोड़ी देर पहले पूरी हो चुकी है और एक घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। बहुत अहम इसलिए क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है पूरे देशवासियों से कि किस तरह से जो ऊर्जा है उसके संरक्षण की जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज को कम से कम खर्च करना है और बहुत सारे ऐसे स्टेप्स जो लोग ले सकते हैं उसको लेकर अपील प्रधानमंत्री ने की। और उसके अगले ही दिन आज राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने IGOM की अध्यक्षता करते हुए एक अहम बैठक ली है कि कम से कम इम्पैक्ट भारत पर पड़े, भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े, लोगों को ईंधन मिलने में मुश्किल ना हो, और उसके लिए ये IGOM बैठक हुई है। इससे पहले तीन और अलग अलग बैठकें हो चुकी हैं राजीव इसी संदर्भ में, लेकिन ये बैठक बेहद अहम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के अपील के बाद ये पहली बैठक थी और दिल्ली के कर्तव्य भवन में ये बैठक हुई जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन सबके साथ यहाँ पर चर्चा हुई कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। अब 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है वेस्ट एशिया क्राइसिस को, किस तरह से आपूर्ति की जा रही है, भारत पर इसका क्या असर हुआ है, क्या संभावित अर्थव्यवस्था पर इसकी का असर होने वाला है और कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि जो आम आदमी है उस पर इस वेस्ट एशिया क्राइसिस का कम से कम असर पड़े।
1: जी शिवानी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि पीएम मोदी ने कल जनता से त्याग करने के लिए कहा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाए, कहां ना जाए। इस बार जिम्मेदारी जनता पर जो है वो हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से वो बच निकले। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। अखिलेश ने आगे लिखा कि इस तरह की अपील से तो व्यापार कारोबार बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके इमरजेंसी हालातों से उबारना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं होता। तो ये राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा कि ये उपदेश नहीं, ये सरकार की नाकामी के सबूत है और हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। राहुल गांधी हमलावर दिखाई दिए, उन्होंने इसे एक उपदेश नहीं बल्कि इसे सरकार की नाकामी बताया कि आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। आप जनता पर जिम्मेदारी डाल देते हैं क्योंकि खुद जवाबदेही से बचने के लिए ऑपोजिशन के निशाने पर आ गए। ये केंद्र सरकार पीएम की अपील थी कि एक साल तक तो कम से कम आप सोना ना खरीदें। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया, उन्होंने लिखा चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। वो इसे चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं कि संकट तो था लेकिन चुनावों की वजह से बताया नहीं, अब उन्हें चुनाव खत्म हो गए तो संकट याद आ रहा है। और इस तरह की अपील से घबराहट बेचैनी निराशा फैल जाएगी आम जनता में, इसे महंगाई तमाम दूसरी तरह की दिक्कतें एक भय का माहौल एक अफरा तफरी का माहौल लोगों के बीच में रहेगा। ये अखिलेश ने लिखा कि चुनाव खत्म होते संकट याद आ गया।
5: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दो महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, एक साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए, जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए, अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।
1: हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, ऑपोजिशन को भी ऐसा लगता है कि एक मौका मिल गया और उसका भरपूर इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही है उससे तो नजर आ रहा है।
7: बिल्कुल, देखिए बेहतरीन मौका है विपक्ष के हाथ में कि सरकार को घेरा जाए और बताया जाए कि सरकार कैसे फेल हो गई है आर्थिक मोर्चे पर, डिप्लोमेटिक मोर्चे पर, और इसकी वजह से अब आपको यानी जनता को सरकार की तरफ से ये सलाह दी जा रही है कि आप खाने का तेल कम इस्तेमाल करिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करिए, सोना मत खरीदिए। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया, आज अखिलेश यादव ने हमला किया है, तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो सरकार है वो तमाम चीजें एक्सपेक्ट करती है लोगों से कि जनता ये करे लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे भाग रही है। अखिलेश यादव का अगर आप ट्वीट देखें तो उन्होंने तंज कसा है, आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकली सार्कास्म वे में उन्होंने कहा कि देश के सामने मात्र एक संकट है जिसका नाम भाजपा है। संजय सिंह की अभी हमने बाइट सुनी, उसमें उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि देखिए चुनाव के समय पर ये तमाम चीजें सरकार को याद नहीं आई और जो तमाम जो बोझ था वो उन्होंने अपने ऊपर रखा, लेकिन जैसे चुनाव ओवर हो गए हैं अब सारी की सारी समस्याएं लोगों के सामने रख दी गई हैं और अब लोगों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सहयोग करें, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। कुल मिलाकर आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में भी
1: ऑपोजिशन तो घेरना शुरू कर चुका है। राहुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सोमनाथ में बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको।
8: गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमिशम भजे लियते यत्र विश्वम, आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, यह कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे? और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा

सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में, अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से समा

0: पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक, रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: तो जय सोमनाथ के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन किया। बेहद खास मौका अमृत महोत्सव का, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसका इतिहास दोहराया और बताया कि किस तरह की परेशानियां इसके निर्माण में आई, लेकिन इसके बावजूद आज एक भव्य सिर्फ इमारत नहीं बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग में से एक है। बहुत आक्रमण झेला सोमनाथ मंदिर ने, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा, और साथ ही लुटेरों ने सोमनाथ का वैभव मिटाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अहम योगदान के बाद ये भव्य ज्योतिर्लिंग बनकर तैयार हो गया। कुंभाभिषेक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये कुंभाभिषेक संपन्न हुआ, जिसमें 11 पवित्र स्थानों का जल इस कलश के माध्यम से शिखर पर चढ़ाया गया और प्रधानमंत्री इसके साक्षी बने। इसके अलावा वहां पर सीएम और डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी रही। पूरे इस कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट व्यवस्था की गई थी ताकि जो तमाम लोग देश भर से वहां पर पहुंचे थे इस भव्य आयोजन के दर्शन के लिए, उन्हें पूरी तरीके से सुविधा मुहैया हो सके। सोमनाथ मंदिर का गौरवशाली इतिहास, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र अपने भाषण में किया और साथ ही बताया कि कैसे आक्रांताओं के हमले इस सोमनाथ मंदिर ने झेले, लेकिन इसके बावजूद आज 75 साल सोमनाथ मंदिर ने पूर्ण किए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, शिखर का कुंभाभिषेक, किस तरीके से अमृत महोत्सव 75 साल बाद मनाया जा रहा है, और उसके बाद एक भव्य एयर शो वायुसेना द्वारा आयोजित। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या की जांच में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। स्पेशल एसआईटी ने 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया। आज तक कुमली जानकारी के मुताबिक बलिया का रहने वाला शूटर राज सिंह अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छिपकर रह रहा था। अब कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इसे लेकर कोलकाता गई है। इसके अलावा बिहार के बक्सर से विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों तक एसआईटी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक हत्या की साजिश रचने और इसे अंजाम देने में कम से कम 8 लोग शामिल थे। पुलिस का मानना है कि हमलावरों ने रथ को निशाना बनाने से पहले विस्तृत रेकी की थी।

0: शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में कोलकाता एसआईटी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ये तीनों मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह बताए जा रहे हैं। और इन तीनों में राज सिंह का यूपी कनेक्शन है। यूपी के बलिया का रहने वाला राज सिंह जब कोलकाता पुलिस के रडार पर आया तो ये अयोध्या की तरफ भागा और जिसके बाद अयोध्या पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल राज सिंह से इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट के आधार पर तमाम अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। राज सिंह तो शुरुआती पूछताछ में खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोलकाता पहुंचकर जब पुलिस ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस उसके सामने रखे तो तमाम और राज भी उसने उगलना शुरू कर दिया है। फिलहाल कोलकाता पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी के पीए चरणनाथ रथ की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें से एक राज सिंह बलिया का रहने वाला बताया गया है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।
1: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में शुभेंदु सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 45 दिन के भीतर जमीनें बीएसएफ को सौंप दी जाएंगी। आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन होगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इसे राज्य में लागू करेंगी। वहीं राज्य सरकार ने राज्य के सभी केंद्रीय योजनाओं को अपनाने का निर्णय लिया है। आज से ही बंगाल में जनगणना प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया गया। उज्ज्वला 3.0 योजना के तहत लंबित आवेदनों को मंजूरी दी जाएगी। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को नियमों के अनुसार केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आज से ही भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था। राजनीतिक हिंसा में मारे गए 321 लोगों के परिवारों की सरकार पूरी जिम्मेदारी लेगी। और इस बीच बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर नीट परीक्षा लीक मामले में एसओजी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के तहत केरल से सीकर एक सैंपल पेपर भेजा गया था जिसमें तकरीबन 600 नंबर के प्रश्न हुबू वही थे जो नीट परीक्षा के सैंपल पेपर में पूछे गए थे। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है और बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों में उत्तर के ऑप्शन भी गेस पेपर के प्रश्नों के क्रम में है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पहले दिन 2 से 5 लाख के बीच गेस पेपर बिके, लेकिन परीक्षा से एक रात पहले ये 30,000 में बिक गए। एसओजी का यह भी कहना है कि रास्ते से लिए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्डर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये बहुत लोगों तक पहुंचे। राजस्थान एसओजी अब इसकी जांच कर रही है।

0: वहीं नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए ने पहली बार इस खुलासे को लेकर बयान दिया। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की कार्रवाई के बाद एनटीए ने कहा कि 7 मई 2026 की देर शाम एनटीए को परीक्षा से जुड़ी कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं हासिल हुई। इन सूचनाओं को एनटीए द्वारा 8 मई 2026 की सुबह स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु केंद्रीय एजेंसियों को प्रेषित किया गया। एनटीए ने भी कहा कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग कर रही है। एनटीए के मुताबिक ये मामला अब जांच के अधीन है और तथ्यों का निर्धारण संबंधित एजेंसियां नियमानुसार करेंगी। एनटीए जांच के निष्कर्षों का पूर्वानुमान नहीं लगाएगा और न ही संभावित परिणामों पर कोई टिप्पणी करेगा। एनटीए ने कहा कि एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी उनका पारदर्शी रूप से परीक्षण किया जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक किया जाएगा। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, एनटीए अपनी पूरी तरीके से सहयोग करेगा और इस बारे में धांधली के जांच पर अभी तक क्या तथ्य उन्होंने सामने रखे?
1: देखिए नेहा, जो एसओजी के अधिकारी जांच कर रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि एनटीए ने ये प्रेस रिलीज तो जारी कर दिया लेकिन एनटीए ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। एक होता है पेपर आउट होना, एक होता है कि परीक्षा में कदाचार का प्रयोग करना, गलत तरीके से प्रश्न पत्रों को लीक करना। कम से कम उसकी शिकायत एनटीए को करनी चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, तब जाके अरेस्ट करके पूछताछ कर पाएंगे। ये एनटीए के मुकदमा दर्ज कराने का इंतजार कर रहे हैं और बाकी जो यहाँ पर जो प्रथम कड़ी कहा जा रहा है कि सीकर के जिन लोगों को पकड़ा गया है ये प्रथम कड़ी में है। यहाँ पर केरल के एक एमबीबीएस छात्र जो है उसने भेजा था चूरू से। अब केरल के उस छात्र को पकड़ने के लिए केरल की पुलिस को सूचना दे दी गई है और बाकी भारत सरकार से भी इंतजार किया जा रहा है कि कहीं से कोई मुकदमा दर्ज हो तब जाके इस मामले में लोगों को अरेस्ट किया जाए। 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
0: नजर बनाए रखिए, इस पूरे मामले की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, बने रहिए हमारे साथ, टिकते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
5: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Beacom Auctions, the world's largest collector car auction company, returns to Indianapolis for Dana Meacham's 39th Original Spring Classic, May 8th to the 16th at the Indiana State Fairgrounds. Join us for the fun, fast-paced, high-energy Meacham experience with 3,000 vehicles up for grabs. For avid collectors, first-time buyers, and enthusiasts of all ages, there's something for everyone. Register to bid and buy spectator tickets now at Meacham.com.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
9: Thank God I get to wake.
8: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
10: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
11: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
12: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो
6: रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: Character, the taste of success.
16: Like I said before, we better own the sins.
17: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
20: जेके वॉल मैक्स।
18: बेस्ट पेंट
20: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
5: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
4: आप कैसे कर लेते हो?
6: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
7: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
6: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं
7: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
10: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रोफाइबर है।
13: माइक्रोफाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: Like I said before, we better hold the sins.
1: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
5: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
6: इसमें माइक्रोफाइबर है।
5: माइक्रोफाइबर यानी
6: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
5: हमारे सीमेंट में नहीं है?
6: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
7: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
8: देखिए, सोना नहीं खरीदना चलेगा, जो ट्रेवल है बाहर का वो भी चल जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है जाने की हम लोगों को। एनर्जी में क्या है, अगर हम पूलिंग करना भी चाहें ना, तो हर किसी के अपने टाइमिंग्स हैं ऑफिस के। वो कोशिश तो हम कर सकते हैं पूरा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं उनको, उनके साथ मैं कारपूल करूं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू कैन से कि कारपूलिंग से एक तो पॉल्यूशन में भी फर्क पड़ता है और एनर्जी तो सेव होगी होगी।
9: हम डेफिनेटली इसके साथ है, क्योंकि अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है। हम कार पुलिंग भी कर लेंगे, एज अ कोई भी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री हम लोगों को बताते हैं, मोदी जी हमको बताते हैं, हम डेफिनेटली उसके साथ रहेंगे। और एज अ इंडियन सिटीजन हमारा काम यह है कि हम एनर्जी सेविंग करें। एनर्जी सेविंग हर जगह से हो सकती है, आपका डीजल एनर्जी सेविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जो भी चीजें हम कर सकते हैं या अपने देश के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे।
8: गोल्ड का इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
10: आपको लग रहा है कि सभी नागरिक मिल करके इस संकट से, जो ग्लोबल क्राइसिस है, इससे हम मुश्किल से बाहर आ सकते हैं?
8: ऑफ कोर्स, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको कोई एक रास्ता दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करके बाहर आ जाएंगे।
11: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी। 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सोमनाथ सृजन के 75 साल पर ऐतिहासिक कुंभाभिषेक में पीएम मोदी की विशेष पूजा, 11 तीर्थों के पावन जल से हुआ विशेष अनुष्ठान, मंदिर के शिखर पर सूर्य किरण ने किया शौर्याभिषेक, ऐशो के दौरान आसमान में दिखा ओम। गोल्ड ना खरीदने, तेल बचाने और विदेश न जाने की पीएम की अपील पर सियासत गर्म, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक, प्रधानमंत्री ने कहा संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति, राहुल ने बताया नाकामी। सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी, वारदात के बाद से अयोध्या में छिपा था एक आरोपी, बिहार से भी है शार्प शूटर्स का कनेक्शन, सत्ता संभालते शुभेंदु का एक्शन। मई को ही नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका से सहमे लाखों छात्र, सैंपल में 600 नंबर के हुबहू सवाल, राजस्थान एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा, केरल से सीकर आया था गैस पेपर, परीक्षा से पहले 30,000 में बिका। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, कहा मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में भेजी नौसेना, नेवल ब्लॉकेड से भड़का तेहरान, यूरोपीय देशों को अंजाम भुगतने की धमकी।

नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग फिर धधक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। दोनों देश आमने सामने हैं, दुनिया की चिंता बढ़ गई है। ऐसे हालात के बीच भारत ने तमाम मोर्चों पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले अपने देश के लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत, सोने की खरीद को लेकर कई अपील की। वैश्विक बाजार से बढ़ते दबाव के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफा नहीं किया। हालांकि अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं तो इसे लेकर कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। इन आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संकट के समय लोगों से एकजुट होकर कुछ विशेष कदम उठाने की अपील की है। तो ईरान की जंग में सीजफायर तो है ही, लेकिन सुलह नहीं हो पा रही है। झड़पें हो रही है लेकिन जंग नहीं हो रही है। इन्हीं झड़पों के बीच बात यह भी हो रही है कि बात बन नहीं रही। नतीजा यह है कि हॉर्मुज वैसे ही अटका पड़ा हुआ है। तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से कभी ईरान के ऊपर तो कभी ईरान की ओर से हम लोग की खबरें आ रही हैं।

0: कहने को तो ईरान और अमेरिका के बीच 39 दिन की जंग के बाद सीजफायर चल रहा है। इस सीजफायर में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और मिलिट्री साइट्स भले ही अमेरिकी प्रकोप से बचे हुए हैं, लेकिन ईरान के आसपास के मुल्कों में आग बुझी नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात रोज शिकायतें कर रहा है कि उसकी जमीन से लेकर समंदर तक हमले हो रहे हैं। बारह मई को भी एक ड्रोन ने कतर के पास एक जहाज पर हमला किया और इस हमले से जहाज में आग लग गई। यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत ने ड्रोन के उनके एयर स्पेस में घुसने की रिपोर्ट की है और यूएई ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को गुनहगार ठहराया है, जबकि कतर ने कहा है कि ऐसे हमले से तनाव बढ़ने ही वाला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि हमला राजधानी दोहा से 23 नॉटिकल मील यानी 43 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ था। हालांकि जहाज के मालिक या उसके मुल्क के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान की ओर से इन छिटपुट हमलों के बीच अमेरिका सब्र दिखाने को मजबूर दिख रहा है और अमेरिकी विदेश मंत्री हरमंद से हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों को आतंकवाद ठहराते हुए नजर आ रहे हैं।
1: Yeah, the whole world's been impacted, unfortunately, because Iran is violating every law known by striking commercial vessels in the Strait of Hormuz, and it's a big problem for the world. I mean, this is a regime that doesn't believe in laws, rules, or anything like that. It's a state sponsor of terrorism, so it's not surprising that they're now conducting terrorist activity against commercial vessels. So.
0: हालांकि सीज़फ़ायर के बावजूद ईरान पर अमेरिकी हमले भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। पिछले हफ्ते बंदर अब्बास से लेकर कश्म द्वीप तक अमेरिकी हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इन्हीं हमलों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन 10 मई को ईरानी प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है और ट्रंप ने पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर अंतरिक्ष से 2400 घंटे नजर रखी जा रही है और जहां भी एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
2: Well, we'll get that at some point, whatever we want. We have it surveilled. You know, I did a thing called Space Force, and they are watching that every. If somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it, and we'll blow them up.
0: दरअसल एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज ही दो मसले हैं जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पटरी पर नहीं लौट पा रही है। अब ईरान ने यूरेनियम सौंपने से मना कर दिया है और अमेरिका हॉर्मुज पर हारने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
3: ईरान और अमेरिका की इस तनातनी से दुनिया की सांसें थम गई, क्योंकि आखिरकार मसला हॉर्मुज पर टक गया है। हॉर्मुज में क्या हो रहा है वो बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार आखिरी बात किस बात पर अड़ गई।
4: ईरान पर 39 दिन तक बारूदी बारिश करने के बाद आखिरकार अमेरिका ने ईरान से बातचीत की मोहलत सीजफायर के नाम पर दी। 39 दिन में सुप्रीम लीडर, दर्जनों सैन्य कमांडर, सैकड़ों जवान, हजारों लोग और लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान झेलने वाला ईरान फिर भी बातचीत की टेबल पर ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें ट्रंप ने कहा था कि अब सीधे फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान दोनों ने जब कहा कि अमेरिका को नई ईरानी शर्तें भेज दी गई हैं, तो ईरानी मीडिया के मुताबिक इन शर्तों में ईरान ने फिर से वही बातें दोहराई थी जिसमें एक था कि जंग सभी मोर्चे पर खत्म हो और पूरी तरह खत्म हो, दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी दी जाए, हॉर्मुज पर अधिकार और आवाजाही की सुरक्षा का जिम्मा ईरान को दिया जाए, 30 दिन के अंदर ईरानी तेल बिक्री पर लगी पाबंदी हटाई जाए, युद्ध से ईरान को हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगी। पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान का ये संदेश ट्रंप तक पहुंचा दिया गया है और उसके चंद मिनटों के अंदर ही ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया और उसमें ट्रंप ने लिखा कि मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर साफ हो गया कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत हो रही है वो शायद ही किसी एक सहमति के बिंदु तक पहुंच पा रही है, क्योंकि ईरान की ओर से भेजी गई शर्तों में न तो कुछ नया था और न ही अमेरिका की शर्तों में कोई झुकाव। उधर ट्रंप की ओर से पेशकश खारिज किए जाने के बाद ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख के साथ बैठक के दौरान दुश्मनों के खिलाफ जमीन से समंदर तक ईरान के जंगी ऑपरेशंस को जारी रखने और दुश्मनों के साथ जोरदार टकराव के लिए नए और निर्णायक निर्देश जारी किए। ईरान चाहे सीजफायर के मौके का फायदा उठाकर गतिरोध को लंबे वक्त तक खींचने की फिराक में हो, लेकिन अमेरिका शायद लंबा इंतजार नहीं कर पाए। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा भी है कि 47 सालों से ईरानी हमें बहलाते आ रहे हैं, हमें इंतजार करवाते रहे, अपने सड़क किनारे लगाए गए बमों से हमारे लोगों को मारते रहे, विरोध प्रदर्शनों को कुचलते रहे हैं और हाल ही में 42,000 बेकसूर निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया और अब फिर से महान बन रहे देश पर हंसते रहे हैं, अब वे और नहीं हंस पाएंगे। दरअसल ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान हुर्मुज को फिर से खोलने और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस लेने के एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं करता है तो वह बड़े पैमाने पर बमबारी फिर से शुरू कर देगा। इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन की ओर से बयान आया है कि हम दुश्मन के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे और यदि बातचीत या मोल भाव की बात उठती है तो इसका अर्थ आत्मसमर्पण या पीछे हटना नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को बनाए रखना और दृढ़ शक्ति के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। मतलब सोशल मीडिया की लड़ाई में भी कोई झुकने को तैयार नहीं। असली जंग के मैदान के सूरत हालत तो दुनिया देख ही रही है और उसका खामियाजा भी भुगत रही है। आज तक ब्यूरो।
3: तो सीज फायर के बावजूद जब ईरान और अमेरिका में बातचीत नहीं बन पाई तो उसका आखिरी असर हॉर्मुज पर दिख रहा है। अमेरिका ये कहता है कि 13 अप्रैल से अब तक 61 जहाजों को ब्लॉकेड में रोका गया है। उधर ईरान ये कह रहा है कि हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरेगा तो उसकी शर्तों पर गुजरेगा, वरना उसे हॉर्मुज के समंदर में ही दफन कर दिया जाएगा। तनातनी बढ़ गई है। ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी सब ने हॉर्मुज पर गंभीरता से सैन्य कदम बढ़ा दिए।

0: ईरान की जंग में सीज फायर क्या हुआ है, हुर्मुज का समंदर फायर फायर नजर आ रहा है। उधर ईरान की सेना स्पीड बोट से लेकर सी माइंस तैनात करके किसी भी जहाज को गुजरने से रोकने के लिए खड़ी है। इधर अमेरिकी ब्लॉकेड में अमेरिकी सेना के युद्धपोत अपने डिस्ट्रॉयर्स से लेकर फाइटर्स तक लेकर खड़े हैं। ईरान की ओर से हुर्मुज पर आवाजाही रोके जाने को लेकर जिस तरह से तैनाती की गई है उसे देखते हुए अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की नेवी खाड़ी पहुंच रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेज रहा है जो हुर्मुज में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है और ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्काई हैमर मिसाइलों समेत कई सैन्य कर्मी भी भेजे हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कतर में टाइफून जेट्स के स्क्वाड्रन की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच हुर्मुज में ब्रिटिश और फ्रांस की सेना की तैनाती को लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है।
1: हुर्मुज में फ्रांसीसी और ब्रिटिश जंगी जहाजों की किसी भी तैनाती का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान किसी भी देश को हुर्मुज की सुरक्षा में दखल देने की इजाजत नहीं देगा।
0: हालांकि ट्रंप बार बार शिकायत करते रहे हैं कि ईरान से जंग में यूरोप के देशों ने कोई मदद नहीं की है, जैसे कि ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब हुर्मुज की नाकेबंदी से यूरोप की जेब जलने लगी तो अब उनका रुख भी सख्त होता जा रहा है। ईरान की जंग में ट्रंप के कदमों की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब हुर्मुज पर एकजुट हो रहे हैं। फ्रांस ने भी हुर्मुज में सैन्य मदद भेजना शुरू किया है, क्योंकि फ्रांस इन दिनों खाड़ी में यूरोपियन मिशन एस्पाइडस की अगुवाई कर रहा है, जिसमें जहाजों की निगरानी के लिए फ्रिगेट्स और हवाई निगरानी के लिए राफेल तैनात किए हैं। इसके अलावा इटली और जर्मनी मुख्य रूप से लाल सागर और खाड़ी के प्रवेश द्वारों पर अपने युद्धपोत तैनात कर चुके हैं, ताकि कमर्शियल जहाजों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। इन सैन्य तैनातियों में बहरीन खुले तौर पर पश्चिमी देशों के लिए मुख्यालय का काम कर रहा है, जबकि कतर और सऊदी अरब ज्यादातर खुफिया जानकारियां ही साझा कर रहे हैं। इसे लेकर ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी में ईरान की हल्की पनडुब्बियां, जिन्हें डॉल्फिन कहा जाता है, वो पर्याप्त संख्या में तैनात हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता अकरबिनिया ने कहा है कि फारस की खाड़ी की डॉल्फिन खतरों, क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर हुर्मुज में तैनात की जा रही हैं। ये हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं। इसके अलावा ईरान ने हुर्मुज में जगह जगह सी माइंस बिछी होने का भी दावा किया है। ऐसे में अगर हुर्मुज में सैन्य टकराव बढ़ता है तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
2: तो ट्रंप ये सोचते हैं कि अमेरिकी ब्लॉकेड जब तक रहेगा तब तक ईरान की हालत पतली होती रहेगी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हुर्मुज जब तक बंद रहेगा तब तक दुनिया में हाहाकार बढ़ता रहेगा, और इसी दुनिया में अमेरिका भी है जहां ट्रंप की जेब भी अब तेल संकट से जलने लगी है। हुर्मुज बंद होने के कारण दुनिया को रोजाना तकरीबन 1,30,00,000 बैरल कम तेल मिल रहा है, जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का 13% हिस्सा है। हालांकि अमेरिका रोज 1,40,00,000 बैरल का तेल निर्यात कर रहा है। इसका नतीजा है कि अमेरिका का घरेलू भंडार 2005 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इधर जंग के बाद से अब तक कच्चे तेल के दाम 40% ज्यादा बढ़ गए हैं। यूरोप में डीजल $200 प्रति बैरल बिक रहा है। अमेरिका में पेट्रोल $180.6 प्रति बैरल है। इस बीच नवंबर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, जिसमें अमेरिकी संसद की 435 सीटों और सेनेट की 35 सीट और 36 राज्यों के गवर्नर्स के चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। जंग के बाद हालात ये हैं कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39.7% गिर गई है। 84% अमेरिकी चाहते हैं कि ट्रंप जंग की बजाय अमेरिकी इकोनॉमी पर ध्यान दें। 29 साल तक के 63% अमेरिकी युवा ईरानी जंग के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अब ईरान जंग के खिलाफ राय मुखर हो रही है। जाहिर तौर पर ईरान की जंग दुनिया के लिए जितनी मुश्किल है उससे जरा भी कम ट्रंप की सियासत और हुकूमत के लिए नहीं है। इसी के साथ यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल, वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट। right before it ends.
6: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
8: It's college football time. College basketball feels
7: Pardon
8: like
7: in
8: it's
7: my take.
9: The Rams catching the Commanders.
7: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: उसे छूता नहीं है और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि अब ये वक्त है कि लोग भी इस एनर्जी क्राइसिस में सामने आए. ऊर्जा की बचत की जरूरत है, खासकर पेट्रोल डीजल. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कम से कम एक साल के लिए जो सोने की खरीद है उस पर रोक लगाएं, उसको कोशिश करें. और ये जरूरी इसलिए है ताकि मुद्रा भंडार जो है उसे बचाया जा सके. तेल कंपनियां हवाला दे रही हैं कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है और खासकर पिछले डेढ़ महीनों की जो स्थिति है उसमें भारत पर भी असर पड़ा है. खासकर पेट्रोल डीजल जिसका आयात होता है वहां हॉर्मुज के चलते दरअसल उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है. गैस की किल्लत के चलते छोटी और मध्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी असर पड़ा है. और ऐसे में वो किल्लत और गंभीर ना हो, क्या ये सही समय है कि अब एनर्जी लॉकडाउन जैसे वो कदम जो दुनिया के दूसरों में खासकर एशियाई देशों ने उठाए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, और अब ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, कई स्तर पर कुछ कटौती करनी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके. लोगों की इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है. विपक्ष इसको लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी देरी से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि संकट तो डेढ़ महीने से गहरा रहा था. जाहिर है एक तरफ कदम उठाने की जरूरत है, दूसरी तरफ इस पर सियासत है. इन सब के बीच जो ऊर्जा संकट है, जो विश्व वैश्विक संकट है, भारत भी अब उसकी चपेट में है. दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक.

रसोई में चढ़ती आज का असर जेब की गर्मी को बढ़ाने लगा है। होटल की थाली हो, सड़क किनारे मिलने वाली चाय हो या सुबह के नाश्ते के ब्रेड बटर, हर तरफ महंगाई की तपेश महसूस होने लगी है। दरअसल दुनिया में छिड़े तनाव का असर सीधे भारतीय घरों के किचन तक पहुंच रहा है। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में बड़ा उछाल आने से सबसे पहले तो बाहर खाने पर असर दिखाई दे सकता है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, केटरिंग और स्ट्रीट फूड का बड़ा हिस्सा इसी गैस पर चलता है। ऐसे में कारोबारियों की लागत बढ़ेगी और इसका असर ग्राहकों की प्लेट तक पहुंच सकता है, जिससे थाली, चाय, कॉफी और स्नैक्स महंगे हो सकते हैं। बिरयानी, फास्ट फूड और मिठाइयों के दाम भी बढ़ने की आशंका है। वहीं छोटे फूड बिजनेस पर खर्च का दबाव बढ़ गया है। लेकिन महंगाई की आग होटल तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर आपके घर तक भी पहुंचना तय है, क्योंकि पैक्ड फूड बनाने वाली यूनिट्स भी कमर्शियल LPG पर काफी हद तक निर्भर है, जिससे ब्रेड, बन, केक, कुकीज और बिस्किट की लागत बढ़ सकती है। नमकीन, पापड़ और तले स्नैक्स पर भी असर संभव है। इससे फूड प्रोसेसिंग और मिठाई कारोबार के मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। महंगाई का ये असर खाने के तेल पर भी पड़ने जा रहा है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जल्द दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। आशंका है कि खाने के तेल की कीमतों में 5-6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी वजह पश्चिम एशिया संकट से इम्पोर्ट कॉस्ट का बढ़ना है। इससे घर के महीने भर के राशन का खर्च बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को भी झटका दिया है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने का खतरा बढ़ गया है। कच्चे तेल में तेजी का असर पेट्रोल डीजल कंपनियों पर भी दबाव बढ़ा रहा है। इसकी वजह है कच्चे तेल के दाम 4 साल की हाई पर पहुंच चुके हैं, जिससे कंपनियों की पेट्रोल डीजल, LPG और ATF पर लागत बढ़ गई है। एविएशन सेक्टर पर भी महंगे क्रूड का असर साफ नजर आ रहा है, जिसके चलते एयर इंडिया रोजाना 100 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स घटाएगी। महंगे फ्यूल के अलावा स्पेयर पार्ट्स की कमी का असर भी उड़ानों में कमी की वजह है। इससे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। मतलब साफ है कि पश्चिम एशिया की जंग का धुआं भारत में लोगों की रसोई और घरों तक पहुंच चुका है। कमर्शियल गैस से लेकर खाने के तेल और फ्लाइट टिकट तक खर्च का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इससे आने वाले दिनों में बाहर खाना, सफर करना और रोजमर्रा के कई सामान लोगों की जेब पर काफी भारी पड़ सकते हैं। आदित्य किराना, आज तक।

सोमनाथ सृजन के 75 साल पर ऐतिहासिक कुंभाभिषेक में प्रधानमंत्री मोदी की विशेष पूजा। 11 तीर्थों के पावन जल से हुआ विशेष अनुष्ठान। मंदिर के शिखर पर सूर्य किरण ने किया शौर्य अभिषेक। एयर शो के दौरान आसमान में लिखा ओम। गोल्ड ना खरीदने, तेल बचाने और विदेश ना जाने की पीएम की अपील पर सियासत गर्म। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकट के वक्त विदेशी मुद्रा बचाना असली देशभक्ति, राहुल ने बताया नाकामी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। वारदात के बाद से अयोध्या में छिपा था आरोपी। बिहार से भी है शार्प शूटर का कनेक्शन। सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी का एक्शन। बंद होगी पशु तस्करी। 3 मई को हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका से सहमे लाखों छात्र। सैंपल में 600 नंबर के हूबहू सवाल। राजस्थान एसओजी की जांच का बड़ा खुलासा। केरल में सीकर आया था गैस पेपर, परीक्षा से पहले 30,000 रुपए में बिका। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव। कहा मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में भेजी अपनी नौसेना। नेवल ब्लॉकेट से भड़का तेहरान। यूरेनियम देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दी।

नमस्कार, 2 बजे के इस खास बुलेटिन न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। 2 बजे के इस खास बुलेटिन में हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिक्र करेंगे, उनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले 3 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार इन खबरों के अंदर की खबर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम नीट परीक्षा में उस धांधली को लेकर, यानी पेपर लीक को लेकर हुए खुलासे की जिक्र करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इससे कितने ज्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर होगी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्याकांड में नए खुलासों को लेकर कैसे लगातार बड़े और नए खुलासे भी किए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जिस पर हम लगातार विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, वो होगा सोमनाथ में 75 साल का गौरव पर्व।

0: किस तरीके से मनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद रहे और क्या क्या झलकियां ऐसी थी जिसे पूरे देश ने देखा, इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारा विश्लेषण रहेगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उस बड़ी खबर पर जिसने दुनिया भर में खासतौर पर देश के तमाम छात्रों की फिक्र बढ़ा दी है, यानी जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि वो पेपर राजस्थान में ही छपा था। ये लगातार इनपुट मिल रहा है और ये भी जानकारी मिल रही है कि आखिरकार इससे जुड़े कनेक्शन और कौन कौन से राज्यों में हो सकते हैं, इसको लेकर भी SOG जो है वो पड़ताल कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये कि जयपुर में ही ये पेपर छपा था, गैस पेपर में। ये खबरें मिल रही है कि बायोलॉजी केमिस्ट्री के सभी प्रश्न लगातार इसमें एक साथ थे, यानी वो सामान्य तौर पर 600 अंक का जो पेपर था वो एक तरीके से बिल्कुल सेम था। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। शरद, इसको लेकर कई खुलासे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, सबसे नया अपडेट ये कि ये पेपर जयपुर में खासतौर पर वहीं छपा था और इसके कनेक्शन या फिर इसका जो एपिसेंटर था इस पूरे लीक का वो राजस्थान ही बताया जा रहा है।
1: बिल्कुल सुमित, जो आज तक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है इसके अनुसार ये सारा जो है जयपुर में रचा गया है, जयपुर में ही पेपर छपा है और अभी तक 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, दो पेपर करीब करीब आउट इसलिए कहा जा सकता है कि फिजिक्स का पेपर गेस पेपर नहीं मिला है इन्हें, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का पेपर मिला है। बायोलॉजी में जो 90 सवाल थे, 90 सवाल के लिए इन्होंने क्या किया कि 200 सवाल बनाया, उसमें 90 सवाल घुसा दिए। और केमिस्ट्री का क्या किया है कि इन्होंने केमिस्ट्री के जो 36 सवाल पहले दूसरे रखे हैं और 36 नंबर के बाद लगातार जो सवाल हैं, सारे सवाल जो पूछे गए हैं नीट में बिना फुल स्टॉप कमा और ऑप्शन चेंज किए ये रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जिस तरह से ये किया गया है, अभी तक जो SOG के पास जानकारी मिली है 29 अप्रैल तक का व्यक्ति पकड़ा गया है जिसके मोबाइल में ये गेस पेपर था। ये सारी जानकारी NTA को दे दी गई है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये NTA बताए, राजस्थान सरकार बताए, भारत सरकार बताए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर रखा गया है। अब कब तक पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर रख सकती है? मुकदमा दर्ज होने के बाद ये जांच आगे बढ़ पाएगी। NTA को आगे बढ़कर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। जब सारे के सारे प्रश्न एक साथ बिना फुल स्टॉप कमा के मिल रहे हैं तो ये महासंयोग नहीं हो सकता है। जहां पेपर छपा है वहीं से मिल रहे हैं। सीकर में देखिए, सीकर में ये जो प्रश्न पत्र इसलिए पकड़ा गया सुमित, क्योंकि सीकर के एक व्यक्ति काउंसलर के हॉस्टल संचालक के पास ये मोबाइल पे पेपर पहुंचता है और वो उसका बेटा जो है केरल से भेजता है जो MBBS कर रहा था, और वो जब एक कोचिंग वाले को देता है तो परीक्षा खत्म होने के बाद जब मिलान होती है तो पूरा का पूरा प्रश्न मिल जाता है। वो सीधे थाने पहुंचता है, थाने वाले पुलिस वाले भगा देते हैं कि क्यों हंगामा कर रहे हो, अफवाह फैला रहे हो। फिर वो दूसरी जगह जाता है, हर जगह भगा दिया जाता है। पूरे सबूत के साथ वो NTA को भेजता है, NTA जो है वो IB को भेजती है, IB जो है राजस्थान सरकार को भेजती है, राजस्थान सरकार SOG को भेजती है, और ये सारा मामला अब खुल गया है एक तरह से कहा जा सके तो एक सदमे की तरह है। अगर हम SOG के जांच करने वाले अधिकारियों के माने तो इसे लीक ही कहा जा सकता है। हूबहू जब पूरे प्रश्न इस तरह से मिल रहे हैं एक आवरण में खिसाकर, लेकिन देखिए NTA के लेवल पे लीक नहीं हो सकता जैसा कि ये बता रहे हैं, क्योंकि फुल प्रूफ वहां से NTA से पेपर निकला है। NTA के बाद से पेपर छपने के समय लीक हुआ है या पेपर सेट करने वाला लीक किया है, दो ही गुंजाइश है। अब इन दो गुंजाइशों में
0: शरद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये पेपर
1: उस पर ये पकड़ा जाएगा।
0: बिल्कुल शरद, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जब पेपर लीक हो रहा था तो ये पहले से ही 5-5 लाख रुपए में बिक रहा था, लेकिन आखिरी दिन इसके बाद 30-30 हजार रुपए में बिका, यानी बहुत ज्यादा लोगों तक ये पहुंच चुका था। लेकिन सबसे पहले मुख्य बातें कुछ आपको बता देते हैं कि आखिरकार इस पेपर लीक को लेकर क्या मुख्य बातें हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि केरल से सीकर पहुंचा गैस पेपर, जैसा शरद बता रहे थे कि देखिए वहां पर जो काउंसलर थे उनके पास ये पहुंचा, उनके बेटे ने भेजा, यानी ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है। अब 1 मई को ही ये गैस पेपर मिले थे और इस गैस पेपर के मिलने के बाद ही लगातार ये आकलन किया जा रहा था कि बिल्कुल जो 90% से ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम थे मेन पेपर से, यानी 1 और 2 मई को 5-5 लाख रुपए में बिका ये पेपर। यानी हम जो लगातार बात कह रहे हैं कि पहले लगातार कई लोगों ने इसको खरीदा और फिर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी आगे सर्कुलेट कर लिया, पैसे देकर पैसे लेकर आगे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये क्या है कि परीक्षा से ठीक पहले 30,000 रुपए में बेचा गया ये पेपर, मल्टीपल टाइम्स इसको फॉरवर्ड किया गया। तो ये सारी तमाम चीजें ये बताती है कि देखिए पेपर एक शख्स के हाथ में जरूर लगा होगा, लेकिन ये पेपर कई लोगों के हाथ में पेपर आने से पहले पहुंच चुका था। और निट गैस पेपर में 300 प्रश्न होते हैं, बताया जा रहा है कि करीबन 200 से 250 प्रश्न जो थे वो बिल्कुल सेम थे, 300 में से 140 सवाल हूबहू वैसे ही मिलते थे, यानी लगातार जो सवाल पूछे गए थे वो उसी सीक्वेंस में थे, उसी क्रम में थे और सेम सवाल थे। अब कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिरकार इसके पीछे क्या एक शख्स मौजूद है या कई ऐसे बड़े गिरोह हैं या फिर एक सिंडिकेट है जो इसके पीछे काम करता था। हमारे साथ शरद हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शरद, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें क्या मुख्य आरोपी यानी वो शख्स भी इसमें मौजूद है जिसने पूरा का पूरा ये पेपर लीक का जो कह सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम को रचा, इन चीजों को रचा, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा हाई प्रोफाइल शख्स हो सकता है?
1: असो भी थोड़ा सा सुधार कर दूं मैं आपको, गिरफ्तारी नहीं हुई है और यही मसला है कि एसओ जी परेशान है कि एनटीए या भारत सरकार राजस्थान सरकार इजाजत दे मुकदमा दर्ज करने के ताकि गिरफ्तारी करके जांच को आगे बढ़ाया जा सके। हिरासत में लिए गए हैं, हिरासत में लिए गया शख्स जो है उन्होंने अभी नाम नहीं बताने के लिए कहा है। 29 अप्रैल को उसके पास सवाल आ गए थे और एक महीना पहले से नागौर से और सीकर से लड़के उसके पास आ रहे थे कि पेपर आउट होने की सूचना हमें मिल गई है, आपके पास पेपर आने वाला है, हमें दीजिए। शुरू में 30 लाख की डील हुई थी। और एक और सूचना मैं दुरुस्त कर दूं, हम लोग सुबह जब बात किए थे तो पता चला था कि 1 मई को पेपर मिला था, अभी तक की जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल को पेपर आ गया था। और दूसरा कि सीकर से ही केरल गया था, फिर केरल से वापस सीकर आया है, तो यानी कि राजस्थान ही एपी सेंटर है, नागौर सीकर झुंझुनू जयपुर यही एपी सेंटर है। और यहीं से करीब 15 लोग हिरासत में लिए गए हैं, बहुत सारे बच्चे हिरासत में लिए गए हैं जिनके माँ बाप यहाँ पर भटक रहे हैं कि भाई आप या तो मुकदमा दर्ज कर लो या हमारे बच्चों को छोड़ो। अब एसओ जी के सामने समस्या है कि या तो राजस्थान सरकार कहे मुकदमा दर्ज करने के लिए, राजस्थान पुलिस कहे, डीजीपी कहे, एनटीए कहे, तब तो ये जांच आगे बढ़े। जी
0: बिल्कुल शरद, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इसको लेकर एक और बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसको लेकर एक जानकारी मिल रही है कि 7 मार्च को पहली बार ये खबरें मिल रही है कि 7 मार्च को ये 7 मई को बताया जा रहा, माफ कीजिएगा, 7 मई को पहली जानकारी इसको लेकर मिली थी जयपुर की प्रिंटिंग प्रेस में, ये छापा गया था पेपर, हम आपको लगातार खबरें बता रहे हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण अपडेट के नेट में धांधली की खबरों पर एनटीए का पहला बयान सामने आया। एनटीए ने कहा है कि देखिए ये जो पेपर है 7 मई को इसकी जानकारी मिल गई थी, एनटीए द्वारा ये पुष्टि की गई है कि 7 मई को इसकी जानकारी मिल गई थी। और देखिए लगातार इसके बाद जांच एजेंसी लगातार कह रही है कि वो मदद के लिए लगातार सभी एजेंसी से संपर्क किए हुए। 3 मई को पूरी सुरक्षा प्रोटोकॉल के बीच परीक्षा यह हुई थी, लेकिन 7 मई को कथित धांधली की जानकारी मिल पाई, यानी परीक्षा हो जाने के बाद। एनटीए का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने माना कि 7 मई को पहली जानकारी मिली थी, 8 मई को ही केंद्रीय एजेंसी को इसके बारे में जानकारी साझा कर दी गई और इन एजेंसी से कहा गया इसको इन्वेस्टिगेट करने। जांच एजेंसियों ने कई लोगों को पकड़ा है, जैसा शरद बता रहे थे कि अभी भी लगातार कई लोगों से पूछताछ जारी है, गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ जरूर जारी है। एनटीए जांच कर रही है, एजेंसियों की सराहना करता हुआ कहा गया है कि देखिए उनको लेकर अभी भी कई लोगों के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जा रही है, आखिरकार इसकी इन्वॉल्वमेंट कहां कहां है, इसके बारे में जांच एजेंसी अभी भी और आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी जुड़ गए, आशुतोष मिश्रा का रुख करते हैं। आशुतोष, देखिए जिस तरीके से शरद बता रहे थे कि पहले केरला की बात की गई कि देखिए वहां से इसका लीड मिला, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो इसका एपिसेंटर है या फिर जो पूरा सिंडिकेट है ये राजस्थान में ही काम कर रहा था।
2: और प्राथमिक तौर पर एसओजी जिसके पास ये मामला है और अगर उसे लग रहा है कि प्रथम दृष्टया अपराध हुआ है तो उसे किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है एक एफआईआर दर्ज करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ से एनटीए कह रहा है कि जैसे हमें जानकारी मिली हमने केंद्रीय एजेंसियों को सूचित किया, उसके बाद से इस पर कार्रवाई, और ये भी कह रहे हैं मेरे पास जो बयान एनटीए का उसमें कह रहे हैं कि इसमें जो भी जरूरी एक्शन होगा शिक्षा मंत्रालय उसको फैसला तय करेगा, करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम इसको प्री जज नहीं करना चाहते, ना वो इसे पेपर लीक कह रहे हैं, ना वो मान रहे हैं कि क्या दोबारा परीक्षा की नौबत आएगी, वो कह रहे हैं पहले जांच एजेंसियां किसी नौबत पर आए। जानते परीक्षा कैसे होती है, दरअसल ये जो पूरा मैकेनिज्म है, जो गाड़ियां जाती हैं वो जीपीएस इनेबल ट्रैकर पे होती हैं, जहां ये परीक्षा 3 तारीख को हो रही थी 5G सर्विसेज तक वहां डीएक्टिवेट कर दिया गया था। और जिस तरह के कोर्स एआई असिस्टेड कैमरे, हाई सिक्योरिटी जोन में पेपर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के परीक्षा होती है बिना संलिप्तता, ये संभव ही नहीं है कि ये परीक्षा या पर्चे लीक हो जाएं, और ये इस तरह का कभी भी कहते ना कि स्थिति नहीं बनती है कि अचानक से एक ऐसी स्थिति बन जाए कि वहां पर 700 में से 600 पेपर आपके बिल्कुल हो जाएं। तो बिना संलिप्त और एनटीए के साथ पहली बार तो घटना हो नहीं रहा, उनका तो अब ये इतिहास रह चुका है। तो नजर एनटीए पर है, शिक्षा मंत्रालय पर है, लेकिन दरअसल यहां देखना होगा कि जिस राजस्थान के एसओजी के पास आईबी ने केस भेजा है, उन्हें अगर लग रहा है वो जांच पड़ताल कर रहे हैं तो मुकदमा तो उन्हें दर्ज करना होगा, उन्हें शिक्षा मंत्रालय के या फिर एनटीए के किसी तरह की अनुमति या आदेश की जरूरत नहीं है उन्हें।
0: बिल्कुल आशुतोष, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब ये इतना ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है, इतना ज्यादा सिक्योर किया जाता है, इतना आपने बताया कि ट्रैकिंग की जाती है, पेपर जहां पे छपते हैं उसके बाद जो गाड़ी लेके जा रही है, तो आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि लीक कैसे हुआ। अब अहम सवाल क्या है ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि नेट में 180 में से गेस्ट पेपर में 140 प्रश्न एक ही जैसे कैसे हुए, यानी एक ही सवाल एक ही सिक्वेंस, आखिरकार ये मुमकिन कैसे है? अब कैसे मुमकिन है 140 प्रश्न हूबहू वैसे ही मिले, सिक्वेंस मिले, ये तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी उठ रहे हैं कि देखिए आखिरकार इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है, अब 140 सवाल उनके उत्तर पहले ही मिल चुके थे, इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? और ये सबसे बड़ा सवाल ये कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा की ये सबसे बड़े लैप्स कैसे किए गए? अब अगर गेस्ट पेपर था तो 5-5 लाख रुपए में आखिरकार ये क्यों बिका, और उसके बाद आखिरी दिन में भी आखिरी वक्त यानी पेपर आने से ठीक पहले भी 33,000 रुपए में बिकता रहा, लाखों देकर गेस्ट पेपर बेचने खरीदने वाले आखिरकार लोग कौन है? क्या ये लोग सीधे तौर पर उस पेपर को बनाने से इन्वॉल्व थे, प्रिंटिंग प्रेस से इन्वॉल्व थे? ये तमाम बड़ी खबरें, ये तमाम बड़े सवाल इसको लेकर अब भी खड़े हुए हैं। अब आगे खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के सीएम यानी शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले पर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसको लेकर कई महत्वपूर्ण चीजें भी सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि बलिया का शार्प शूटर राज सिंह अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है, 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें कि बलिया का शार्प शूटर राज सिंह अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है, यही वो शख्स है जिसको कहा जाता है कि शार्प शूटर है। बिहार के बक्सर से आरोपी विक्की को भी और मयंक को भी गिरफ्तार किया गया, यानी बिहार से 2 गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश से 1 गिरफ्तारी की गई है। यूपी और कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ना सिर्फ बलिया से बल्कि बिहार से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हत्या में कम से कम 8 लोगों के शामिल होने की खबरें लगातार पुलिस द्वारा मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या केस में अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष का रुख करते हैं। संतोष, 8 लोगों के बारे में जिक्र किया जा रहा है लेकिन 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आखिरकार ये कहां जुड़े हुए थे, कौन है इस पूरे में जो आप कह सकते हैं कि मास्टरमाइंड हो या वो मुख्य आरोपी हो जिसने सारी चीजों को रचा?
3: देखिए, इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है उसने 2 टीमें बनाई थी, एक में 4 लोग थे और एक में 3 लोग थे, और इन चार और 3 की जो टीमें थी उसी में एक कनेक्शन बक्सर से निकला, बक्सर से कनेक्शन निकला, वहां पर राज सिंह के बारे में इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट मिले, राज सिंह को ट्रैक करते हुए बलिया के बारे में जानकारी मिली कि बलिया के आनंद नगर का रहने वाला राज सिंह इसमें इन्वॉल्व है, फिर राज सिंह को ट्रैक करते हुए जब कोलकाता पुलिस अयोध्या की तरफ बढ़ी तब अयोध्या पुलिस की मदद से उसने राज सिंह को गिरफ्तार किया, और राज सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए, एक का नाम मयंक मिश्रा है और दूसरा है विक्की मौर्य। मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य, इन दोनों की भी गिरफ्तारी, और तीसरा राज सिंह। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि राज सिंह मुख्य शूटर, इसने अपने आप को खुद बेगुनाह बताया, लेकिन जो मुख्य शूटर है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ये कॉमन नंबर्स मिले हैं, जो कॉल डिटेल खंगाली गई उसमें राज सिंह से कनेक्शन निकला, मयंक से कनेक्शन निकला है, मयंक नहीं राज का नाम बताया था पूछताछ में, मयंक मिश्रा जो बक्सर से अरेस्ट हुआ और दूसरा जो विक्की विक्की मौर्य, इन दोनों से इंट्रोगेशन के बाद राज का नाम आया, राज को गिरफ्तार किया गया। तब ये तीनों ही कोलकाता पुलिस की गिरफ्त में है, जेल भेजे जाएंगे, उनसे गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये
0: बिल्कुल संतोष आपका रुख करेंगे दोबारा से, लेकिन ये तमाम बड़े अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। संतोष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि बनते ही यानी पश्चिम बंगाल के सीएम बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, वो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु सरकार का अहम फैसला भी एक महत्वपूर्ण फैसला जो हम आपको बता दें कि शुभेंदु सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले पहले ही दिन लिए हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, और उनके बारे में क्या क्या बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सरकार की तरफ से तय की गई है। पहली कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र कर रहे हैं हम लगातार, कौन कौन से? सबसे पहली बात कि बीएसएफ की फेंसिंग के लिए सौंपी जाएगी जमीन, यानी जो बात कही जा रही थी कि उन इलाकों के अंदर यानी जहां पर बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर लगता है उस पे बीएसएफ को जमीन सौंपी जाएगी। पहला बड़ा फैसला आपको बता दे। दूसरा बड़ा फैसला है आयुष्मान योजना को लेकर पश्चिम बंगाल में लागू किया जाएगा। इसको लेकर पहले भी तनातनी थी पश्चिम बंगाल यानी ममता बनर्जी सरकार में और कैबिनेट यानी केंद्र सरकार में। इसके बाद तीसरा बड़ा फैसला, केंद्र की सभी योजनाएं राज्य में लागू की जाएंगी। यानी ये बड़ा इशू था खासतौर पर सेंट्रल वर्सेस स्टेट को लेकर, इसको लेकर फैसला लिया गया कि जो केंद्र की योजना है वो राज्य में लागू की जाएगी। आज से ही पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू की जाएगी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। पांचवा बड़ा फैसला क्या है, केंद्र सरकार के जनगणना का आदेश तुरंत लागू किया जाएगा। पांचवा बड़ा फैसला जो कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया।
4: आज के अमरा प्रथम दिन ही अमरा केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर तथा बीएसएफ सीमांत सुरक्षित करार जन्य जमी ट्रांसफार प्रक्रिया अमरा आज के अनुमोदन दिलाम एवं आज थेके लैंड ट्रांसफार प्रक्रिया शुरू होबे। भूमि और राजस्व सचिव ताके एवं मुख्य सचिव के दायित्व देवा हलो 45 दिनेर मध्ये बीएसएफ एर प्रयोजनीय जमी हस्तांतर सम्पूर्ण करते हबे।
0: चले न्यूज रूम लाइव में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट, मैकडॉनल्ड्स ब्रेकफास्ट पीपल वी वेक अप फॉर द स्वीट रश ऑफ गेटिंग दैट वार्म डिलीशियस ब्रेकफास्ट राइट बिफोर इट एंड्स।
8: हॉट केक्स, सॉसेज पैटी, हैश ब्राउन, स्क्रैम्बल्ड एग्स, बिस्किट, रियल बटर एंड सिरप, यू नो हाउ आवर बिग ब्रेकफास्ट गॉट इट्स नेम, एंड यू नो वेयर योर होल फैमिली कैन शेयर वन फॉर जस्ट $6। मैकडॉनल्ड्स, लिमिटेड टाइम ओनली, प्राइस एंड पार्टिसिपेशन मे वेरी, कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर ऑफर अ कॉम्बो मील।
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long.
11: This guitar about as hard as a cane.
10: To top 40 hits you just can't get enough of.
12: Thank God I get to
10: TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
13: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
14: What about me, Jack? What about me?
13: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
15: Well played, Jack. Well played.
13: Jack FM, playing what we want.
16: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
17: जीके मैक्स।
18: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
17: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
18: जेके वॉल मैक्स।
17: बेस्ट पेंट
18: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
20: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
21: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: शादी का किचन महके जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
4: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
5: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
6: नहीं,
5: और म्यूचुअल फंड से सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
9: Like I said before, we better own the sins.
10: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
11: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
12: इसमें माइक्रो फाइबर है।
11: माइक्रो फाइबर यानी
12: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
11: हमारे सीमेंट में नहीं है?
12: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
13: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
14: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
15: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
16: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
15: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
17: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
14: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
18: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस बीच वो सोमनाथ मंदिर भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ पहुंचे थे। वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की, साथ ही कुंभ अभिषेक के भी किया। साथ ही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पुनः निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर के शीश पर कुंभ अभिषेक किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर ना सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि वहां पर एक रोड शो भी किया। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

जिनके 75 साल पर ऐतिहासिक कुंभ अभिषेक में प्रधानमंत्री मोदी की विशेष पूजा, 11 तीर्थों के पावन जल से हुआ विशेष अनुष्ठान, मंदिर के शिखर पर सूर्य किरण टीम ने किया शौर्य अभिषेक, एयर शो के दौरान आसमान में लिखा ओम। गोल्ड ना खरीदने, तेल बचाने और विदेश ना जाने की पीएम की अपील पर सियासत गर्म, राहुल गांधी ने कहा कि ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में बिहार और यूपी से 3 लोगों की गिरफ्तारी, सत्ता संभालते ही शुभेंदु का एक्शन, बंद होगी पशु तस्करी, बंगाल में लागू होगी केंद्र की सभी योजनाएं। तीन मई को हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका से सहमे लाखों छात्र, सैंपल में 600 नंबर के हूबहू सवाल, जयपुर में छापा था पेपर, देहरादून से केरल तक एनटीए ने कहा जांच पर है नजर। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव, कहा मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में भेजी अपनी नौसेना, नेवल ब्लॉकेट पर भड़का तेहरान, यूरोपियन देशों को अंजाम भुगतने की दी धमकी।

घर तक, घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा।

अमेरिका और ईरान में तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से दुनिया में कहीं महाविश्वयुद्ध न फैल जाए या फिर दोनों के बीच में एक नई जंग का आगाज न हो जाए। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक रूप से पड़ने वाला है। संकेत यह भी है कि इसके प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो ना सिर्फ तेल की बचत करे, पेट्रोल की बचत करे, बल्कि ये भी कहा है कि अगले एक साल तक सोना ना खरीदे। इसको लेकर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
1: धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है।
2: जब दुनिया जंग की विभीषिका में जल रहा है, तेल का संकट भीषण शक्ल ले रहा है, कोई नहीं जानता कि तेल की सप्लाई चेन कब सामान्य होगी, तो भारत ने इन चुनौतियों का जवाब अपने अंदाज में निकाला है। संकट का समाधान अनुशासन से निकालने की ठानी है। पीएम मोदी ने देश से अपील की है, एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें, खाद्य तेल की खपत कम करें, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, एक साल विदेश यात्राओं पर जाने से बचें। और ये सब अपील इसलिए कि देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार इन सब चीजों के आयात पर खर्च न करना पड़े, क्योंकि देश को इस वक्त बेहद महंगी कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है।
0: साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
2: पीएम मोदी ने अपनी अपील में कोरोना संकट की याद दिलाई, देश को याद दिलाया कि कोविड जैसे वैश्विक संकट का भारत ने कैसे अपने तरीके से सामना किया, और ये भी याद दिलाई कि एक बार फिर वही त्याग और एकजुटता दिखाने का वक्त आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024-26 में भारत ने 4.89 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया, 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए का आयात रहा, 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस साल भारत ने विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है, ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं।
0: हमारी धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े।
2: देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव पेट्रोल डीजल की जरूरतों को पूरा करना है। ये वो सेक्टर है जहां जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अमेरिका ईरान की जंग की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं, सप्लाई ठप पड़ी है, इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत रखना ही होगा।
3: मिडल ईस्ट में युद्ध के संकट के बीच लगातार देश पे इसके संकट के बादल नाम मंडरा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कई अपील की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अपील थी विदेशी मुद्रा को बचाना, और इसका सबसे बड़ा बात उन्होंने कही कि आपको एक साल तक सोना नहीं खरीदना। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की इस अपील के क्या मायने निकलते हैं, और आखिरकार इससे अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, ये आपको इस रिपोर्ट के मायने से समझाते हैं।
0: साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
4: एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की और अगले दिन शेयर बाजार पर प्रधानमंत्री के इस बयान का सीधा असर दिखा। बाजार खुला, मार्केट ने गोता लगाया। सबसे ज्यादा हाहाकार ज्वेलरी स्टॉक में मचा। कई कंपनियों के शेयर तो 10 से 12 फीसदी तक गिर गए। इस हलाहल से हर कोई हैरान है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी अपील करने ही क्यों पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा हो गईं कि पीएम सोना खरीद पर देशवासियों से साल भर का समर्थन मांग रहे हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का ये बयान और उसके बाद बाजार का गिरना क्या संकेत दे रहा है। इस पर चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने कहा क्या और इस बयान के पीछे की असल वजह क्या है।
0: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
4: देश के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का सबसे बड़ा मकसद आयात खर्च को कम करना है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट के चलते कच्चा तेल पहले ही आसमान छू रहा है। ऐसे में सोने के आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा और ये दबाव बना रहा तो देश के सामने महंगाई का संकट पैदा होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है और इसके लिए एक साल तक सोना न खरीदने की मांग की है। माना जा रहा है कि इसका असर हुआ तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात बिल में कमी होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार से कम खर्च करना होगा। बात अगर विदेशी मुद्रा भंडार की करें तो इस पर अमेरिका ईरान युद्ध का सीधा असर दिख रहा है। 27 फरवरी को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर था जो 1 मई को घटकर 690 अरब डॉलर पहुंच गया। ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही शेयर बाजार से लेकर कच्चे तेल और सोने चांदी के दाम में अस्थिरता देखी जा रही है। युद्ध के चलते दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे समय में निवेशक जोखिम उठाने के बजाय पारंपरिक संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं जिससे सोने की मांग में भारी इजाफा हो रहा है जिसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जब दुनिया जंग की विभीषिका की मार झेल रही है, हर दिन के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अपनी कोशिशों में लगी है। इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से सोना न खरीदने की अपील की है। इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों से सहयोग की मांग की है। आज तक ब्यूरो।
3: प्रधानमंत्री मोदी के एक साल सोना न खरीदने की अपील के बाद लोगों के दिमाग में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश में सोने की कमी हो गई है, क्या सोना खरीदने से सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
5: देश के लोग एक साल तक सोने की खरीदारी न करें, भले ही पीएम मोदी की ये अपील, ये सलाह इसलिए है कि लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में योगदान दें। लेकिन इस बयान के बाद सोने को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार सोने की खरीद को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सवाल ये भी कि जिन घरों में आने वाले दिनों या कुछ महीनों में शादियां हैं वो लोग क्या करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा और क्या सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सोने के आयात शुल्क में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कई जानकार पीएम मोदी के बयान को आने वाले संभावित कदमों का संकेत मान रहे हैं।
6: मोदी ने कह तो दिया एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर घर में फंक्शन रहते हैं, किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है, तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है।
5: दरअसल देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची रहें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार अब गैर जरूरी आयात को सीमित करने के विकल्पों पर नजर रख रही है। ऐसे में सरकार अगर सोने पर आयात शुल्क बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं और मांग कुछ कम हो सकती है। सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है ताकि डॉलर की बचत हो और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम किया जा सके। उधर पीएम मोदी के इस अपील का सीधा असर सोना कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, ऐसे में सोने की बिक्री ना होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है।
7: अपील अच्छी है, मानने लायक है, लेकिन उनको सोचना है कि यहाँ पे इतने बड़े हिंदुस्तान में गली गली में ज्वेलरी शोरूम खुले हुए हैं। सरकार ने लाइसेंस प्रथा बंद कर दिए, एक एक गली में ज्वेलरी शोरूम खुले हुए और करीबन 3,000 कारीगर हैं जिनके रोजी रोटी का सवाल है। जिस तरह डायमंड में सीवीडी आया, हल्का डायमंड आया तो वहाँ के कारीगर भाग गए और सूरत छोड़ के सब चले गए। इस तरह कहीं ना कहीं यहाँ जो कारीगर सब छोड़ के अगर बम्बई छोड़ के कलकत्ता वगैरह चले जाएंगे तो वो बड़ा नुकसान होगा, तो सरकार को ये देखना जरूरी है।
5: आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक साल में अमूमन 700 से 800 टन से अधिक सोने की खपत होती है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील का सीधा असर इस बड़े कारोबार पर पड़ सकता है। देश में साल भर में सोने की जितनी मांग होती है उसका 60-70% हिस्सा शादियों के सीजन में बिकता है। क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई में भी शादियों के मुहूर्त हैं। ऐसे में सोने की खरीद में कमी आई तो कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
7: लोग अपनी शादियों में सोना कम लेवे, इन्वेस्टमेंट कम करें, ये जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब मैंने बोल रहा हूँ, गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो ज्वेलरी शोरूम है उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी और उनके कारीगर जो उनके भरोसे है उनके भी काम कैसा चलेगा, ये भी सोचना जरूरी।
5: एक साल तक सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सवाल कई, चर्चाएं कई हैं, लेकिन पीएम की ओर से ये अपील देश की जरूरत को देखते हुए ही की गई है और उम्मीद जताई गई है कि इस अपील का असर होगा, लोगों के सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
3: चलिए न्यूज रूम लाइव में एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: Morning people wake up for peace and quiet. McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
11: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like

0: Si Joseph ishte një numnan. தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும்
1: ये क्षण ऐतिहासिक है, ये मौका बड़े बदलाव का है। इस शपथ के साथ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हो गया है। सिनेमा का थलापति विजय अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बन गया है।
0: ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: ये तस्वीरें अद्भुत है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय के नाम के नारे और जयकारे गूंज रहे थे। तख्ती और तस्वीर लेकर कई समर्थक पहुंचे थे। विजय की झलक पाते ही समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया। हर ओर विजय के नाम का शोर छा गया। विजय मंच पर आए, लोगों का आभार जताने के लिए भाषण देने लगे तो राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया। ये जनता से मिले अपार प्रेम की भावनाएं थी जो विजय के चेहरे पर साफ झलक रही थी। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई टीम में उनकी विजन की साफ झलक है। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए।
2: जोसेफ विजय।
1: विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती। तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ और अब इस शपथ के साथ तमिलनाडु की सियासत में विजय सरकार का आगाज हो गया है। संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जननायकन की है और अब वो तमिलनाडु के जननायक बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर राजस्थान एसओजी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह हुआ है कि केरल से सीकर एक सैंपल पेपर आया था जिसमें करीब 600 नंबर के प्रश्न हूबहू वैसे ही थे जो नीट परीक्षा से पूछे गए थे। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है। बड़ी बात यह कि नीट परीक्षा में पूछे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी गैस पेपर के प्रश्नों के क्रमों में ही थे। सूत्रों के अनुसार पहले एक दिन 2 से 5 लाख रुपए में ये पेपर बिका था, लेकिन परीक्षा के एक रात पहले 30-30 हजार रुपए में ये गैस पेपर बिका। एसओजी का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन भी आया, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंचाए गए थे। राजस्थान एसओजी इसकी जांच लगातार कर रही है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: मॉर्निंग पीपल वेक अप फॉर पीस एंड क्वाइट। McDonald's breakfast people, we wake up for the sweet rush of getting that warm, delicious breakfast right before it ends.
4: Hotcakes, sausage patty, hash browns, scrambled eggs, biscuit, real butter and syrup. You know how our big breakfast got its name, and you know where your whole family can share one for just $6. McDonald's, limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal.
5: Ba-da-ba-ba-ba.
6: The Tailgate Top 20. Hey, it's Blake from the Garth Channel, and I'm your host of the Tailgate Top 20. Join me every weekend as we pick a year, go back in time, and count down the biggest tailgating songs around. And since this is Tailgate Radio, you know anything goes. The Tailgate Top 20. This weekend with me, Blake, from the Garth Channel, only on Tailgate Radio.
7: The Tailgate Top 20.
8: Search for Tailgate Radio on TuneIn to listen.
6: Try to keep up.
9: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: महंगाई की मार ऐसी है जो चुपचाप जीप खाली करती है और इसका असर रसोई से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक साफ नजर आता है। कभी सब्जियों के दाम चौंकाते हैं तो कभी पेट्रोल डीजल जेब पर बोझ बढ़ा देता है। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि एक साथ कई मोर्चों से दबाव बन रहा है। देश में एक तरफ जहां भीषण गर्मी पड़ रही है और कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ मॉनसून कमजोर रहने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक इस बार जून से सितंबर के बीच औसत 96% ही बारिश होगी। कम बारिश से फसल और ग्रामीण इनकम पर असर पड़ने की आशंका है। वैसे खाने पीने के सामान भी महंगे हो सकते हैं। महंगाई की इस तस्वीर में तेल का खेल भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई हैं। तेल महंगा होने का मतलब है महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगी खेती और आखिर में हर सामान की कीमत में बढ़ोतरी। इस बीच चुनौती ये है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो RBI को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिसका असर ग्रोथ पर पड़ सकता है। वैश्विक हालात भी इस आग में घी डाल रहे हैं। ईरान से जुड़े तनाव ने सप्लाई चेन को झटका दिया, क्योंकि दुनिया का 25% पॉलीप्रोपाइलीन मिडिल ईस्ट से आता है, जबकि 20% पॉलीएथिलीन की सप्लाई भी वहीं से होती है। इसके अलावा यूरिया की कीमत भी फरवरी से दोगुनी हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि प्लास्टिक, केमिकल और फर्टिलाइजर महंगे हो रहे हैं और इसका असर हर इंडस्ट्री और आम आदमी पर पड़ रहा है।
1: एज प्रेसिडेंट ऑफ एपेक चैम्बर, मैं मानता हूं कि ईरान वार का डायरेक्ट इम्पैक्ट MSME सेक्टर पर पड़ रहा है। ऑयल एंड गैस के दाम बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लास्टिक एंड अदर रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में MSME सेक्टर को एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल और अल्टरनेटिव सोर्सिंग पर फोकस करना होगा।
0: साफ है कि युद्ध की आज फैक्ट्री से लेकर बाजार तक महसूस हो रही है। इसकी वजह बढ़ती लागत है जो कंपनियों की कीमतें बढ़ाने को मजबूर कर रही है। वैसे हालात केवल भारत तक सीमित नहीं है, अमेरिका में भी महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया। एनर्जी महंगी होने से खाने, बिजली और ट्रांसपोर्ट सब पर असर पड़ा और यही असर धीरे धीरे दुनिया भर में फैल रहा है। हालांकि भारत के पास एक राहत भी है। दरअसल देश में 602 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा अनाज भंडार मौजूद है। इसमें 222 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 380 लाख मीट्रिक टन चावल है। ये स्टॉक कीमतों को काबू में रखने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर बारिश लंबे समय तक कम रही तो ये सहारा भी कमजोर पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

सियासत गर्व, राहुल गांधी ने कहा यह उपदेश नहीं नाकामी के सबूत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों की संयुक्त की बैठक। सोमनाथ सज्जन के 75 साल पर ऐतिहासिक कुंभाभिषेक में प्रधानमंत्री मोदी की विशेष पूजा अर्चना, 11 तीर्थों के पावन जल से हुआ अनुष्ठान, मंदिर के शिखर पर सूर्य किरण टीम ने किया शौर्य अभिषेक।

के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में बिहार यूपी में तीन लोगों की गिरफ्तारी। सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी का एक्शन। बंद होगी पशु तस्करी, बंगाल में लागू होंगी केंद्र की सभी योजनाएं। तीन मई को हुई नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की आशंका के से सहमे लाखों छात्र। सैंपल में 600 नंबर के हूबहू सवाल। जयपुर में छापा था पेपर, देहरादून से केरल तक तार। एनटीए ने कहा जांच पर है नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराया ईरान के शांति का प्रस्ताव। का मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट में भेजी अपनी नौसेना। तेहरान बोला अंजाम बुरा होगा।

0: सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, हजारों साल की आध्यात्मिक चेतना और भारत की अविनाशी शक्ति को कोई मिटा नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पोखरण परमाणु परीक्षण का भी किया याद, कहा कि दुनिया के दबाव के बावजूद भारत नहीं झुका। सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी बोले, मंदिर बार बार टूटा लेकिन हर बार और मजबूती से खड़ा हुआ।
1: कोई ढांचे को तोड़ा, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा।
0: भव्य दिव्य और भगवा में हुआ प्रभास पाटन का हर कोना, सोमनाथ अमृत महोत्सव पर बिखरी सांस्कृतिक विरासत की छटा। पीएम मोदी का हेलीपैड से लेकर मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो, डमरू की डुक डुक और परंपरागत वाद्य यंत्रों की नाद से बीच निकली यात्रा। शंख और डमरू की गूंज के साथ किया गया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत, 100 कन्याओं ने कलश नृत्य पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में लाखों लोगों ने किए जयकारे, रोड शो के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का किया माल्यार्पण,

0: दुल्हन की तरह सजाया गया था मंदिर परिसर। प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच किया गया रुद्राभिषेक। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य ग्रहण टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर किया पुष्पवर्षा, आसमान में किया शौर्य और संतुलन का बेजोड़ प्रदर्शन। सोमनाथ मंदिर पर फहराया गया धर्म ध्वज, भव्य समारोह में मंदिर के इतिहास को किया गया याद। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में पहली बार कुंभ अभिषेक में 11 तीर्थों के पवित्र जल का हुआ इस्तेमाल। विशाल कुंभ को मंदिर के शिखर पर ले जाने के लिए 90 मीटर ऊंचे क्रेन का इस्तेमाल किया गया, वैदिक मंत्रों ने से किया गया अभिषेक। वैश्विक संकट के बीच तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से की अपील, कहा कि देश हित में एक साल तक सोना नहीं खरीदे लोग। विदेशी मुद्रा बचाने में प्रधानमंत्री मोदी ने किया दिया जोर, कार के विदेशी मुद्रा बचाने की देशभक्ति, पेट्रोल डीजल का उपयोग करें कम, भारत में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले कि ग्लोबल प्रॉब्लम है जंग, मोदी जी ने नहीं करवाई है, समस्या है तो क्राइसिस भी होगा। आप सांसद संजय सिंह ने देश और वासियों को चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म, अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। संजय सिंह ने कहा कि लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर के लाएंगे, विदेशी यात्रा भी करेंगे, खूब तेल फूकेंगे, उनके लोग पूरे देश में संपत्तियां खरीदेंगे, लेकिन आप फटीचर बने रहिए। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर राहुल गांधी का भी हमला, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कुछ मत खरीदो, ये उपदेश नहीं नाकामी के सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा कि रुपया कमजोर होने पर नीति के बजाय भारतीयों को सुझाव दे रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 12 मई को असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से ही उम्मीद करती हूं कि वहां से वॉच फ्रॉम होम की शुरुआत होगी, बड़ी रैलियां एक साल के लिए बंद कराएंगे। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, कहा कि चुनाव खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी को संकट याद आ गया, देश के लिए संकट सिर्फ बीजेपी है। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में आए विजय, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स का ऐलान किया गया। विजय का डीएमके पर गंभीर आरोप, कहा कि डीएमके ने छोड़ा 10 लाख करोड़ का कर्ज। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कि मौका मिलते ही कांग्रेस अपने सहयोगियों को छोड़ देती है, सत्ता की लालसा में कांग्रेस ने डीएमके को भी छोड़ा। कांग्रेस ने टीवी के गठबंधन पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि विजय की पार्टी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचार में डूब जाएगी। गठबंधन पर सियासी संग्राम तेज हुआ, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन जरूरी। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच में बड़ी कामयाबी मिली है, स्पेशल एसआईटी टीम ने 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक बलिया के रहने वाला है शूटर राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद राज सिंह ने अयोध्या में छुपकर रह रहा था, अब कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया है, पुलिस शूटर को लेकर कोलकाता चली गई। पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी के मंत्रियों के साथ की है बैठक, कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पश्चिम बंगाल की नई सरकार का बड़ा फैसला, आयुष्मान भारत, बीएनएस लागू, बीएसएफ को जमीन भी दी जाएगी, केंद्रीय योजनाओं को मंजूरी दी गई। कल शपथ लेंगे हिमंता बिस्वा सरमा, असम के बनेंगे दूसरी बार सीएम। केरला में नए मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में मंथन अभी जारी है, अभी तक नहीं तय हो सका है मुख्यमंत्री का नाम, लेकिन दौड़ में केसी वेणुगोपाल सबसे आगे हैं। नीट यूजी परीक्षा में जुड़ा बड़ा मामला, केरलम से सीकर एक सैंपल पेपर आया था जिसमें 600 से यानी करीबन 150 प्रश्न हुबहू वही थे जो नीट परीक्षा में छपे हुए थे। सूत्रों के अनुसार पहले ही दिन 200 से 5 लाख रुपए में बिके थे गैस पेपर, लेकिन परीक्षा के एक रात पहले 30,000 रुपए में बिके गैस पेपर। एसओजी ने कहा है कि हिरासत में ले गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों को पहुंच चुका है। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का आंदोलन हो रहा है उग्र। अनिश्चितकालीन धरने में 158 और आमरण अनशन पर 23 दिन हुए पूरे। 23 दिन पूरे होने पर बावजूद सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर चढ़े। काठमांडू में लैंडिंग के दौरान तुर्की के विमान में लगी आग। विमान के पहिए में लगी आग समय रहते करीबन 277 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। विमान इस्तांबुल से काठमांडू आया था। दिल्ली से काठमांडू जा रही है एयर इंडिया का प्लेन और यूएई के शारजहां से काठमांडू पहुंचे विमान की आसमान में ही किया गया हुड़। भोपाल बना देश का पहला कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी यानी एलगिरी ट्री लगाने वाला शहर। एलगिरी वृक्ष जो 25 वर्षों के बराबर है। महबूबनगर में बाइक रेसिंग के जुनून में बाइक कार से टकराई, 5 लोगों की जान गई। फरीदाबाद में एक के बाद एक कई कंपनियों के मजदूर अपनी मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। मजदूरों के आरोप है कि कंपनी उनका शोषण कर रही है, ना वेतन दे रही है। बेतिया में स्कूल में शिक्षिका के मौजूद नहीं होने पर लगी हाजिरी, जांच में शिक्षिका गायब मिली और शिक्षक शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। चंदौली में अस्पताल में घुसकर महिला मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ग्रामीणों ने हमलावर को पकड़ लिया। नवादा में थाने में तैनात चौकीदार ने चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई, हमलावर की पहचान में जुट गया पुलिस। संबल के स्कूल में धार्मिक गतिविधियों पर 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया, शिकायत दर्ज की गई। हरदोई में पुलिस की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने मुठभेड़ हुई, 2 छात्र बदमाशों के पैर में गोली भी मारी गई। लुधियाना में घरेलू विवाद के बाद रिटायर्ड फौजी के पिता ने अपने बेटे को गोलियों से भूना, बेटे की मौके पर ही मौत। हिमाचल के चंबा में गुजरात के पर्यटकों से भरी गाड़ी खाई में गिरी, 6 लोगों की गई जान। भोपाल में मुस्लिम युवक के मुंह पर बजरंग दल ने पोता गोबर और लगाई स्याही, होटल में ठहरे युवक युवती को पकड़कर की गई मारपीट। पटना पुलिस ने बीपीएससी 3-4 का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्र नेता दिलीप सहित 4 प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की थी और पुलिस कर्मियों से झड़प भी हुई थी। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। भिंड के अस्पताल में एसएनसीयू वार्ड में छत गिरी, 3 महिलाओं और 1 नवजात हुआ घायल। कोरोना में फर्जी अस्पताल में हुई मौत के मामले में झोला छाप डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बाकी साथियों की तलाश जारी है। फिरोजाबाद में गाड़ी चोरी के मामले में 2 छात्र चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, आरोपी के पैर में लगी है गोली। नोएडा में गेट गिरने से 5 साल के मासूम की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक हादसा। गोरखपुर में आईएएस की तैयारी कर रहे युवक ने अपने ही कॉलेज में फंदे से लटक कर दी जान, 2 पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद किया गया, प्रेमिका और उसके परिवार पर लगाया आरोप। नोएडा में पिज्जा पर थूकने का वीडियो वायरल हो रहा है और युवक वीडियो वायरल हो जाने के बाद हिरासत में युवक को लिया गया है। पाली में परीक्षा के देने में युवक की कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी है, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। सिद्धार्थनगर में जंगली जानवर घर में घुसा, 2 महिलाओं पर किया हमला, ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों के आंकड़ा पहुंचकर करीबन 10.5 लाख पहुंचा है। केदारनाथ धाम रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है, अब तक सबसे ज्यादा करीबन 42,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे धाम। बद्रीनाथ धाम में भी रविवार को 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए हैं दर्शन, अब तक करीबन आंकड़ा 2,68,000 के करीब पहुंचा है। यमुनोत्री धाम में 12,560 भक्तों ने किए दर्शन, अब तक करीबन 68,000 से ज्यादा लोग पहुंचे दरबार। गंगोत्री धाम में 10 मई को करीब 12,000 भक्तों ने किए दर्शन, अभी तक करीबन 1,66,000 से ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं। खंडपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया विकास योजनाओं का उद्घाटन, 194 करोड़ रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुंबई को मिले 2 सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट की सौगात, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन। मुंबई के बीआर अंबेडकर में 135वीं जयंती पर ड्रोन शो का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया गया आयोजन। विदिशा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की है मामा कोचिंग, फ्री होगी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारियां। केरला में ग्रामीणों ने बचाई अजगर से सियार की जान, जंगल की ओर अजगर को लोगों ने छोड़ा। कैटरीना कैफ ने बेटे रिहान के साथ शेयर की अपनी प्यारी फोटो, मम्मी संग 6 महीने के लाडले का मनाया गया मदर्स डे। खतरों के खिलाड़ी 15 में दिखेंगी फरहाना भट्ट, बोली असली लड़ाई कॉन्टेस्टेंट से नहीं अपने डर से होगी। तमिलनाडु के सीएम विजयन की आखिरी फिल्म जनाजन नायक 2 सप्ताह में रिलीज होने की उम्मीद है, कहा सर्टिफिकेट मिलते ही जल्द होगी फिल्म रिलीज। राजा शिवाजी का दूसरे संडे पर भी मचा धमाल, 10 दिन में 75 करोड़ रुपए की ज्यादा की कमाई, बनी तीसरी सबसे बड़ी मराठी फिल्म। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे फिल्म निर्माता डीवीवी तनयन, विधि विधान से की भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना। बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर ट्रू का शानदार प्रदर्शन, 92 दिन के अंदर 1795 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की। 23वें दिन अक्षय की भूत बंगला की कमाई के उछाला है, फिल्म में शनिवार को 3 करोड़ का कारोबार किया है। बॉक्स ऑफिस पर नहीं थम रही है राजा शिवाजी की दहाड़, 9वें दिन भी हुई नोटों की बारिश। 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करते ही रितेश देशमुख की राजा शिवाजी रचेगी इतिहास, 100 करोड़ की कमाई करने वाली बनेगी पहली मराठी फिल्म। मोहनलाल ममूटी स्टारर पैट्रियट भारत ही नहीं दुनिया भर में कर रही है बंपर कमाई। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत के लिए नया प्रस्ताव रखा है, प्रतिबंध हटाने और युद्ध विराम की मांग की है। ईरान की मांग में समुद्री नाकेबंदी खत्म होने और सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त किया जाए। ईरान ने अमेरिका के तत्काल युद्ध विराम और सुरक्षा गारंटी देने की भी मांग रखी है। ईरान ने अमेरिका से ओफैक प्रतिबंध 30 दिनों में हटाने की शर्त रखी है, लेकिन अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ने पोलैंड और मालदोवो को के 5 कैदियों को रिहा कराया, टैरिफ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी की गई। मिडिल ईस्ट में जंग पर विराम को तैयार है ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को प्रस्ताव का जवाब दिया है, हॉर्मुज स्ट्रेट पर तनाव कम करने की और सुरक्षा का जिक्र किया गया। ईरान की सेना ने दुश्मन देशों को यह बड़ी चेतावनी, अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो इस्तेमाल करेंगे नए हथियार। हॉर्मुज स्ट्रेट पर दक्षिण कोरिया के जहाज पर अज्ञात वस्तु से हमला किया गया है, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अज्ञात वस्तु जहाज के पिछले हिस्से में टकराई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध खत्म होने जा रहा है। स्थानीय चुनाव में हार के बाद ब्रिटेन के पीएम केयर स्टार्मर को हटाने की मांग की गई, विपक्षी दलों की मांग के साथ इस्तीफा मांगा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: और खबरें के सिलसिले को आगे चलाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज सोमनाथ पहुंचे, वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की, साथ ही कुंभ अभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पूर्ण निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर के शीश पर कुंभ अभिषेक किया गया। और देखिए, हम आपको कई तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी आज वहां सोमनाथ पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट से लेकर मंदिर परिसर तक करीबन रोड शो किया, हजारों की संख्या में लोग वहां प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। इसके बाद मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की और इसके साथ ही मंदिर के पुष्प वर्षा भी की गई। इंडियन एयरफोर्स की जो टीम है उसने यहां पर पुष्प वर्षा की और हैरतअंगेज एयर शो भी किया। सूर्यकिरण टीम की तरफ से मंदिर में पुष्प वर्षा करने के साथ साथ ही एयर शो भी किया गया। और देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी की पूजा अर्चना के साथ साथ वहां पर आप देख सकते हैं कि सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, वहां पर पूजा अर्चना की गई। इसके साथ साथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर मंदिर परिसर में सभी ज्योतिर्लिंग से जल अभिषेक किया गया। और हम आपको कुंभ अभिषेक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ ही हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पे सूर्य किरण टीम की तरफ से यानी इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम की तरफ से ना सिर्फ एयर शो का आयोजन किया गया बल्कि वहां पर मंदिर के शीश पर पुष्प वर्षा भी की गई। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: Presented by पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Like I said before, we better hold the sins.
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: JK Maxx Paints, खुशियों के रंग।
16: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
17: AU,
18: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
3: इसमें माइक्रो फाइबर है।
2: माइक्रो फाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
2: हमारे सीमेंट में नहीं है?
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
5: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
6: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Director, the taste of success.
2: In association with
3: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Hint, bade aaram se.
3: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
4: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल.
2: विमल, बोलो जुबां केसरी.
5: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
6: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
5: इसमें माइक्रो फाइबर है।
4: माइक्रो फाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
4: हमारे सीमेंट में नहीं है?
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
7: कहने को तो ईरान और अमेरिका के बीच 39 दिन की जंग के बाद सीज फायर चल रहा है। इस सीज फायर में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और मिलिट्री साइट्स भले ही अमेरिकी प्रकोप से बचे हुए हैं, लेकिन ईरान के आसपास के मुल्कों में आग बुझी नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात रोज शिकायतें कर रहा है कि उसकी जमीन से लेकर समंदर तक हमले हो रहे हैं। बारह मई को भी एक ड्रोन ने कतर के पास एक जहाज पर हमला किया और इस हमले से जहाज में आग लग गई। यूनाइटेड अरब अमीरात और कुवैत ने ड्रोन के उनके एयर स्पेस में घुसने की रिपोर्ट की है और यूएई ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को गुनहगार ठहराया है, जबकि कतर ने कहा है कि ऐसे हमले से तनाव बढ़ने ही वाला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा है कि हमला राजधानी दोहा से 23 नॉटिकल मील यानी 43 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुआ था। हालांकि जहाज के मालिक या उसके मुल्क के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली। ईरान की ओर से इन छिटपुट हमलों के बीच अमेरिका सब्र दिखाने को मजबूर दिख रहा है और अमेरिकी विदेश मंत्री हरमन से हॉर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों को आतंकवाद ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीजफायर के बावजूद ईरान पर अमेरिकी हमले भी पूरी तरह बंद नहीं हुए। पिछले हफ्ते बंदर अब्बास से लेकर कश्म द्वीप तक अमेरिकी हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इन्हीं हमलों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन 10 मई को ईरानी प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है और ट्रंप ने पश्चिमी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर अंतरिक्ष से 2400 घंटे नजर रखी जा रही है और जहां भी एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल एनरिच्ड यूरेनियम और हॉर्मुज ही दो मसले हैं जिसे लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पटरी पर नहीं लौट पा रही है। अब ईरान ने यूरेनियम सौंपने से मना कर दिया है और अमेरिका हॉर्मुज पर हारने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
8: अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सृजन के 75 साल पर पीएम मोदी ने किया ऐतिहासिक कुंभाभिषेक। 11 तीर्थों के जल से अनुष्ठान, शिखर पर सूर्य किरणों ने किया शौर्याभिषेक। बंगाल में सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी के कड़े तेवर। राज्य में अब पशु तस्करी बंद और केंद्र की योजनाओं का बोलबाला। नीट पेपर लीक का गहराया साया। 600 नंबर के सवाल मैच होने से मचा हड़कंप। जयपुर से केरल तक एसओजी की दबिश। एनटीए की जांच जारी। ट्रंप ने ठुकराया ईरान का शांति प्रस्ताव। कहा मुआवजा देने और यूरेनियम छोड़ने का सवाल ही नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडल ईस्ट में भेजी नौसेना। तेहरान बोला अंजाम बुरा होगा।

0: सरदार का और आज की सबसे बड़ी खबर है कि क्या 3 मई को देश भर में छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने वाली नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। सबसे पहले इस सवाल की वजह समझ लीजिए। 3 मई को देश भर में नीट की परीक्षा हुई। दावा है कि 1 मई को केरल से एक MBBS छात्र के जरिए सीकर के एक प्रतियोगी छात्र के पास गेस पेपर पहुंचा। दावा यह भी है कि 1-2 मई को यही गेस पेपर लाखों रुपए में फिर बेचा तक गया। अब सवाल है कि क्या यह गेस पेपर ऐसा है जिसके आधार पर कहा जाएगा कि नीट पेपर लीक हुआ है। राजस्थान SOG की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि केरल से सीकर एक गेस पेपर आया था जिसमें 140 प्रश्न यानी 560 नंबर के प्रश्न वही थे जो नीट की परीक्षा के दौरान 3 मई को पूछे गए। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है। उनमें से 560 नंबर के प्रश्नों के हूबहू मिलने से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीट परीक्षा में पूछे सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी गेस पेपर के प्रश्नों के क्रमों में हैं। सूत्रों के अनुसार 1 मई को केरल के मेडिकल कॉलेज से एक छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को वो गेस पेपर भेजा था। उसके बाद 2 दिनों तक 5-5 लाख में वो गेस पेपर बेचे गए। परीक्षा के एक रात पहले 30,000 में गेस पेपर बिका। SOG का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्डेड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंचा है। राजस्थान SOG इसकी जांच कर रही है। अभी जांच जारी है और इस बीच एक और बड़ी खबर नीट के कथित पेपर लीक के दावे से जुड़ी आ रही है। जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र छपा था। खबर है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे प्रश्न इसी गेस पेपर से मिलान हो रहे हैं। अभी तक 29 अप्रैल तक गेस पेपर एक काउंसलर के मोबाइल में आना पकड़ा गया है। गेस पेपर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, देहरादून और केरल तक जाने के सबूत मिले हैं। SOG को शक काफी पहले हो गया था। दावा यह भी है कि शुरू में 30 लाख में बिका था। और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ रहे हैं। शरद, ये बहुत गंभीर, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे लिए गए थे सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से, ताकि इस तरह की घटना फिर दोबारा न हो। लेकिन अगर गेस पेपर के इतने प्रश्न हूबहू मिलते हैं, उसी क्रम में मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है और सरकार को आने वाले दिनों में संभव है इससे जुड़ा एक फैसला लेना पड़ेगा ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।
1: बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रही हैं। मैं SOG में खड़ा हूं और पिछले 4 घंटे से SOG में हूं। जिस तरह से यहां पर हालात है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कल तो उन्होंने एक दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हाँ 120 सवाल मिल रहे हैं, लेकिन आज हमारी बातचीत हुई। जिस तरह से यहाँ का जयपुर का एक किंग पिन पकड़ा गया है, मनीष के मोबाइल में 29 अप्रैल को एक गेस पेपर था जिसमें बायोलॉजी के सभी 90 सवाल और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल थे बाकी गेस पेपरों में जो वहां पर थे। और अब जो है यहाँ पर करीब 15 लोग हिरासत में रखे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मुकदमा दर्ज करने की इजाजत नहीं मिल रही है। NTA के तरफ से अभिषेक सिंह को बनाया गया है जांच अधिकारी, एक्सपर्ट कमेटी। NTA अभी तक अध्ययन करके इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि इसे हम पेपर लीक माने ना माने, जिसकी वजह से जो बच्चे यहां पर लाए गए हैं SOG में या फिर जो काउंसलर लाए गए हैं, उनके घर वाले आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप या तो मुकदमा दर्ज करो या छोड़ो। 3-4 दिन हो गए, अब SOG यह भी नहीं कह सकती कि हम 4 दिन में हिरासत में रख सकते हैं, तो अजीब सा मामला हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी की सूचना है, श्वेता थोड़ा सा सुधार कर दूं कि दरअसल सीकर में एक PG हॉस्टल संचालक था, उसके पास केरल से MBBS से एक लड़का ने भेजा था अपने पिताजी को कि हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियों को ये दे देना। लेकिन जो केरल में MBBS छात्र के पास पेपर पहुंचा था वो दरअसल सीकर से ही पहुंचा था, केरल से नहीं आया था।
0: अच्छा।
1: सीकर से ही पहुंचा था, तो एपी सेंटर राजस्थान ही है जो राकेश पकड़ा गया है। राकेश ने कहा कि 29 अप्रैल को मेरे पास आ गए थे और नागौर से एक व्यक्ति हमारे पास आ गया था जिसे मेरा नंबर दिया गया था कि 4 बार उसका फोन आ चुका था, आपके पास पेपर आ रहे हैं मुझे दे देना, यानी कि इसकी पूरी तैयारी थी। NTA से ये पेपर आउट नहीं हुआ है, ये साफ साफ कह रही है SOG, क्योंकि NTA का फुल प्रूफ यहाँ पर काफी इंतजाम था। अब प्रिंटिंग पेपर प्रेस से लीक हो गया या फिर कोई पेपर बनाने वाला लीक कर दिया, ये दो चीजों पर जांच चल रही है।
0: प्रिंटिंग प्रेस वाला एंगल है,
1: केमिस्ट्री और बायो का है
0: जी। ये प्रिंटिंग प्रेस वाला एंगल जो है वो क्या है, उससे साफ तौर पर क्या स्थापित हो सकता है कि ये स्थानीय तौर पर एक लीक है और यहां से निकला है?
1: और एनटीए कह रही है कि ये हम अभी तक एसओजी को एनटीए और प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सूचना नहीं दे रही है, कह रही पहले हम यहाँ तफ्तीश कर लें उसके बाद आपको सूचना देंगे। इसीलिए एसओजी वाले इंतजार कर रहे हैं कि या तो एनटीए मुकदमा दर्ज करा दे या राजस्थान सरकार करा दे या भारत सरकार करा दे। एनटीए कह रही है कि हमने सारा मामला भारत सरकार को बता दिया है, भारत सरकार के तरफ से जैसे इजाजत मिलेगी इस बारे में कदम उठाया जाएगा। कुल मिलाकर अब ये फैसला लेना है कि क्या इसे पेपर लीक माने नहीं माने, उसके बाद ही एक्शन होना है और इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी के साथ यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन गिरफ्तारी माफ कीजिएगा हिरासत में लेने का क्रम जारी है, अभी भी दो लोग लाए गए हैं उठाकर। अब 29 अप्रैल से आगे भी ये पेपर किसी के पास पहुंच गया था, इसकी बहुत सारी गुंजाइश है, जिसके लिए छापेमारी जयपुर में भी चल रही है और बाकी सीकर में भी बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो एसओजी अपना जांच जारी रखे हुए है, मगर इनकी एक शिकायत है कि अगर राजस्थान सरकार डीजीपी कहे तो मुकदमा दर्ज करके आगे बढ़ा जाए। मैंने डीजीपी से बात की, डीजीपी ने कहा कि आप एसओजी के डीजी से बात कर लिए। एसओजी के डीजी आनंद जी ने कहा कि नहीं, आप एडीजी से बात करें। एडीजी कह रहे हैं कि हम इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, एनटीए से बात कर लो। तो कुल मिलाकर ये ऑफ द रिकॉर्ड तो सारी जानकारी मिल रही है मगर ऑन द रिकॉर्ड नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से
0: परिस्थिति मुश्किल इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर अगर वाकई एक एक छोटे जगह पर कुछ शहरों में केवल इस तरह की खबरें आ रही हो तो फिर बाकी जगह जहां पर बच्चों ने बहुत परिश्रम के साथ बहुत तैयारी के साथ अपनी परीक्षा दी तो उनके साथ क्या ये अन्याय होगा। तो ये सारी चीजों को देखकर उसके बाद एक फैसला लेना होगा। नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए ने भी पहली बार इस खुलासे को लेकर बयान दिया है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की कार्रवाई के बाद एनटीए ने कहा है कि 7 मई 2026 की देर शाम एनटीए को परीक्षा से जुड़ी कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई। इन सूचनाओं को एनटीए द्वारा 8 मई 2026 की सुबह स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को प्रेषित किया गया। एनटीए ने यह भी कहा है कि वो जांच एजेंसियों को हर संभव सहयोग कर रहा है। एनटीए के अनुसार यह मामला अभी जांच के दायरे में है और तथ्यों को का निर्धारण संबंधित एजेंसियां नियम के अनुसार करेंगी। एनटीए जांच के निष्कर्ष का पूर्वानुमान नहीं लगाएगा और न ही संभावित परिणामों पर कोई टिप्पणी करेगा। एनटीए ने कहा है कि एजेंसियां जो भी निष्कर्ष निकालेंगी उनका पारदर्शी रूप से परीक्षण किया जाएगा और तय प्रक्रिया के अनुसार उसे पब्लिक किया जाएगा। जाहिर है शरद, इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी एक तरीके से कमिट भी नहीं कर सकता है एनटीए, और जिस पैमाने पर जांच की जरूरत है उसमें हम एक एंगल जो कि छात्रों की तरफ से भी, छात्रों के जो अभिभावक है उनकी तरफ से भी जो ये रहेगा कि उनके बच्चों ने मेहनत की और आज क्या फिर एनटीए का पेपर लीक हो गया, ये तो देशव्यापी है। देश में सबको इस बात को लेकर चिंता होगी और इसीलिए राजस्थान की तरफ निगाहें रहेंगी कि आखिर पैमाना क्या है, अगर वाकई लीक हुआ है तो पैमाना क्या है उसके लीक का।
1: बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि चूंकि 20 लाख छात्र हैं और दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, इसलिए बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, फूक फूक कर कदम रखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के खून पसीने से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए सरकार बहुत जल्दीबाजी में कदम नहीं उठा रही है। मगर ये स्थिति है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, मुकदमा पहले कौन दर्ज कराए। एनटीए कह रही है कि एसओजी को लग रहा है कदाचार हुआ है तो क्यों नहीं दर्ज करा ले रही है। एसओजी कह रही है कि अब सरकार कहे तो हम तो 2 मिनट में दर्ज कर लें। सरकार कह रही है कि भारत सरकार से पूछा गया है, निर्देश मिले तो दर्ज कर लें। तो कुल मिलाकर मुकदमा कम से कम अगर कदाचार हुआ है तो, अगर मानती है तो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश होनी चाहिए। मुकदमा दर्ज ना होने की वजह से अभी मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है अगर कदाचार हुआ है तो, वरना एनटीए कहे कदाचार नहीं हुआ है। ये सवाल तो है, एनटीए की परीक्षा पूरी तरह से फुल प्रूफ रही है ये कहा जा सकता है। दो संभावनाएं हैं, दो ही संभावनाओं पर एसओजी जांच कर रही है। एनटीए से कहीं जांच नहीं हो सकती, लीक नहीं हो सकती। सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस में रहता है पूरा पेपर। या तो ये परीक्षा सेट पेपर सेट करने से पहले रिलीज हो गया हो, या प्रिंटिंग प्रेस से कोई लीक कर दिया हो, यही संभावना है। एनटीए से ये पेपर लीक नहीं हो सकता, ये तो एसओजी मान रही है। मगर ये दो जगह से लीक हो सकता है, इसकी आशंका को जांच करने के लिए मुकदमा होना जरूरी है। अभी इस पे मुकदमे की पहल कैसे हो, इसलिए यहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में ये फैसला कौन ले कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि अब इतने लोग हिरासत में तो कितने दिन रखे जा सकते हैं, इन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा।
0: सही बात है, और इसमें जल्दी इसका निष्कर्ष की जरूरत है। हालांकि जांच के आदेश जिस तरीके के दिए गए हैं उसमें अभी देखना है कि इसे कहा क्या जाता है। अभी फिलहाल आरोप लग रहे हैं कि इस तरह की एक लीक है, लेकिन वो लीक है या नहीं, किस पैमाने पर है, इस सब को जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। शरद कुमार हमारे संवाददाता ये अहम जानकारियां हमें दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 75 साल पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 वर्ष पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया है। इसी से जुड़े मौके पर काशी विश्वनाथ में पूजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी दोनों ने सनातन की मजबूती पर जोर दिया, साथ ही देश में तुष्टीकरण वाली राजनीति पर वार किया।

0: ये सोमनाथ का गौरव काल है। पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हुए हैं तो वहाँ इस ऐतिहासिक महत्व वाले मौके पर उत्सव जारी है। इस पावन त्योहार के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
1: ओम सद्यो जातम प्रपद्या।
0: सोमनाथ की शरण में पहुंचते ही पीएम मोदी नतमस्तक हुए। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया।
1: ओम सद्यो जातम प्रपद्या।
2: लोकज कर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन।
0: मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान में शामिल हुए और देर तक इस उत्सव में शामिल रहे।
2: सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम्। ओम विष्णुरा विष्णुरा।
0: सुबह करीब 10:30 बजे पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचे। वहां से उनका करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हुआ। इस दौरान हजारों हजार की भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। इसी दौरान अमृत पर्व के प्रतीक 75 ढोल, नासिका ढोल और तुति वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। पारंपरिक काठियावाड़ी वेशभूषा में सजी 100 कन्याएं सिर पर अमृत कलश लिए पीएम मोदी का स्वागत कर रही थी तो 75 ऋषि कुमार ढोल बजाते और शंख वादन करते दिखे। इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री सोमनाथ के प्रांगण में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले उस विभूति को नमन किया जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा और उस पर अमल किया। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। विशेष पूजा के साथ साथ पीएम मोदी कुंभाभिषेक में भी शामिल हुए।
3: सोमनाथ अमृत महोत्सव के आज एक विशेष कार्यक्रम, पहली बार सोमनाथ मंदिर पे जो है कुंभाभिषेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तों के द्वारा, क्योंकि वह सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन और अध्यक्ष हैं। 11 जगहों से लाया गया पवित्र जल जो है 11 तीर्थ धामों का यह पवित्र जल जो है मंदिर के शिखर पे उसका अभिषेक किया जा रहा है। कुंभाभिषेक आम तौर पर दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो है वहां पे प्रथा है कि कुंभाभिषेक किया जाता है, वो तेल से भी।
4: दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी है जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टिकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
5: 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरे से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता।
6: सियासी लड़ाई 2027 की अब जोर पकड़ रही है। नजर 27 को साधकर 2029 के लिए जमीन मजबूत करने पर भी। कल ही उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जहां पिछड़े वोट से पीडीए की काट को खोजा गया।
7: नरेंद्र मोदी 2024 में ये भांप चुके हैं कि जातियों में वोट बढ़ते ही नुकसान किस तरह कितना बड़ा होता है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पीडीए और राहुल गांधी के हाथ में संविधान लेकर घूमने और 400 पार वाले बीजेपी के नारे पर संविधान बदल देने का नैरेटिव फैला देने से किस तरह सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ,
8: ये आपसे चोरी हो रही।
9: मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान।
10: इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है, समाजवादी पार्टी वैसे ही काम करेगी। इस बार पीडीए भारतीय जनता पार्टी को पूरा का पूरा हटा देगा और हमेशा के लिए हटा देगा।
11: जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया।
7: क्या इसीलिए बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद, पश्चिम बंगाल का शपथ ग्रहण कराने के बाद बीजेपी ने रणनीतिक रूप से जरूरी सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश पर अपनी जमीन को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया।
12: धरती पर सोए नदियों में स्नान किया।
7: नरेंद्र मोदी जानते हैं कि 2029 जीतना है तो तैयारी पहले 2027 की करनी होगी। इसीलिए योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा कैबिनेट विस्तार होता है।
13: मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ,
7: जहां 6 नए मंत्री बनाए जाते हैं, 2 पुराने मंत्री का प्रमोशन किया जाता है।
13: मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनोज कुमार पांडे।
7: इस शपथ के साथ नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ ने मिलकर पिछड़ा वोट वाला वो चक्रव्यूह तोड़ने की रणनीति बना ली, जिसके दम पर विपक्ष यूपी में एक बार कामयाबी 2024 में पा गया। नए बनने वाले यूपी के मंत्रियों का जाति गणित समझिए। भूपेंद्र चौधरी जाट ओबीसी वर्ग से आते हैं, सुरेंद्र दिलेर एससी वर्ग से, कृष्णा पासवान एससी वर्ग से, हंसराज विश्वकर्मा ओबीसी, कैलाश राजपूत लोधी हैं ओबीसी वर्ग से आते हैं, मनोज पांडे ब्राह्मण है। जो 2 मंत्री अब की बार प्रमोशन पा रहे हैं उनमें अजीत पाल पाल वर्ग से आते हैं ओबीसी है, सोमेंद्र तोमर गुर्जर है ओबीसी वर्ग से आते हैं। इस तरह यूपी में 8 में 5 ओबीसी, 2 एससी और 1 ब्राह्मण चेहरे को जगह मिली। प्रतिशत में देखिए तो नए चेहरे में 62% ओबीसी जगह पाए, वो भी गैर यादव ओबीसी।
6: खबरें असरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
17: Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

ईरान की जंग में सीज फायर क्या हुआ है, हुर्मुज का समंदर फायर फायर नजर आ रहा है। उधर ईरान की सेना स्पीड बोट से लेकर सी माइंस तैनात करके किसी भी जहाज को गुजरने से रोकने के लिए खड़ी है। इधर अमेरिकी ब्लॉकेड में अमेरिकी सेना के युद्धपोत अपने डिस्ट्रॉयर्स से लेकर फाइटर्स तक लेकर खड़े हैं। ईरान की ओर से हुर्मुज पर आवाजाही रोके जाने को लेकर जिस तरह से तैनाती की गई है, उसे देखते हुए अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की नेवी खाड़ी पहुंच रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेज रहा है, जो हुर्मुज में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है और ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्काई हैमर मिसाइलों समेत कई सैन्य कर्मी भी भेजे हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कतर में टाइफून जेट्स के स्क्वाड्रन की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच हुर्मुज में ब्रिटिश और फ्रांस की सेना की तैनाती को लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है। हालांकि ट्रंप बार बार शिकायत करते रहे हैं कि ईरान से जंग में यूरोप के देशों ने कोई मदद नहीं की है, जैसे कि ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब हुर्मुज की नाकेबंदी से यूरोप की जेब जलने लगी तो अब उनका रुख भी सख्त होता जा रहा है। ईरान की जंग में ट्रंप के कदमों की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब हुर्मुज पर एकजुट हो रहे हैं। फ्रांस ने भी हुर्मुज में सैन्य मदद भेजना शुरू किया है, क्योंकि फ्रांस इन दिनों खाड़ी में यूरोपियन मिशन एस्पाइडस की अगुवाई कर रहा है, जिसमें जहाजों की निगरानी के लिए फ्रिगेट्स और हवाई निगरानी के लिए राफेल तैनात किए हैं। इसके अलावा इटली और जर्मनी मुख्य रूप से लाल सागर और खाड़ी के प्रवेश द्वारों पर अपने युद्धपोत तैनात कर चुके हैं।

जलसे अनुष्ठान शिखर पर सूर्य किरण विमानों ने किया शौर्याभिषेक। बंगाल में सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी के कड़े तेवर, राज्य में अब गौतस्करी बंद, केंद्र की योजनाओं का बोलबाला। नीट पेपर लीक पर गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने से मचा हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, एनटीए की जांच जारी।

0: ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट पे भेजी नौसेना, तेहरान बोला अंजाम बुरा होगा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकु।
3: मध्य पूर्व में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म, तेहरान की दो टूक ना रुकेंगे ना ट्रंप के आगे झुकेंगे। खाड़ी के आसमान में मौत की दस्तक, ड्रोन हमलों से थर्राई दुनिया, समुद्र बना रण क्षेत्र, हुर्मुज की लहरों पर महायुद्ध की आहट तेज। इजरायली कहर से लेबनन धुआं धुआं, हर तरफ बिछ रही है लाशें। ट्रंप नेतन्याहू की सीक्रेट कॉल, क्या तय हो गया ईरान का अंत? परमाणु जिद पर अड़ा ईरान, ट्रंप की 14 शर्तों से फिर भड़केंगे शोले। समझौते का वक्त खत्म, अब सिर्फ महाविनाश का रंग।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। मध्य पूर्व के मोर्चे पर सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर यह है कि शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब बारूद के धुएं में खोती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह ईरान के प्रस्ताव को अस्वीकार्य करार दिया है। यानी ईरान का जो प्रस्ताव है वो अमेरिका को मंजूर नहीं। ट्रंप ने विशेष रूप से ईरान की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें युद्ध के हर्जाने के अलावा ईरान ने हॉर्मूज पर अपने वर्चस्व का दावा किया था। दूसरी तरफ तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जिद के आगे आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं करेगा। इस बीच बीती रात राष्ट्रपति ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बेहद लंबी फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत के मायने साफ है कि लेबनान के बाद अब इसराइल जो है वो ईरान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अब अगले 24 या 48 घंटों में, यानी किसी भी समय, आने वाले समय में ईरान पर अमेरिका और इसराइल या तो मिलकर या फिर पहले इसराइल एक बार फिर बड़ा प्रहार शुरू कर सकता है, वार कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि ईरान के साथ उनकी डील होने वाली है, बातचीत चल रही है, सकारात्मक है, अचानक बातचीत फेल कैसे हो गई? हम आपको ना विस्तार से समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे अमेरिका और ईरान के बीच बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है। जो सबसे बड़ा टकराव है वो परमाणु मुद्दे पर है। यानी ईरान की जो मांग है, जो उस पे जितने प्रतिबंध हैं सभी हटे, एक बार जब प्रतिबंध हट जाएगा तब वो जो संवर्धन है, इनरिचमेंट है यूरेनियम का, वो बंद कर देगा। अमेरिका क्या क्या कह रहा है, इनरिचमेंट पहले बंद हो, आश्वासन दे ईरान की कोई इनरिचमेंट नहीं होगा, उसी के

बाद बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर प्रतिबंध हटाए जाएंगे। यानी यूरेनियम का संवर्धन न केवल बंद हो बल्कि जो संवर्धित यूरेनियम है वो ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका का कहना यह है कि ईरान एक संवर्धन पूरी तरह से बंद करे, जो 450 किलोग्राम उसके पास इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे, तभी पाबंदी हटेगी। हॉर्मूज का जो मुद्दा है, हॉर्मूज के मुद्दे पर भी ईरान चाहता है कि उसका वर्चस्व है, उसने साबित कर दिया। अब हर जहाज अगर वहां से निकलेगा तो ईरान उस पर $2 मिलियन हर जहाज से लेगा। पूरा नियंत्रण अमेरिका का है और अमेरिका न केवल अपनी नौसेना वहां से हटा ले बल्कि पूरे मध्य पूर्व से अमेरिका हट जाए। सभी देशों की सुरक्षा के लिए यूएस नेवी वहां बहुत जरूरी है, ये अमेरिका ने साफ कह दिया है कि न केवल अमेरिका की बेसिस जो लगभग दर्जन भर से ज्यादा 17 बेसिस अमेरिका के कतर से लेकर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर इराक में है वो नहीं हटेंगी। ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए, जो उसने फैक्ट्रियां ध्वस्त की हैं वो दोबारा ना बने, ईरान अब मिसाइलें ना बनाए। ईरान का कहना है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और वो इस पे कोई समझौता नहीं करेगा। यानी वो जो 1500 किलोमीटर से दूर उसकी मिसाइलें ना वार करे उस पर तो वो बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि मिसाइलों की न केवल दूरी कम हो बल्कि मिसाइलें बनाई ही नहीं ईरान। दूसरा, हिजबुल्ला और जो हूथी विद्रोही या आतंकी संगठन है उन पर जो ईरान जो उनको समर्थन देता है वो बंद करे। ईरान ने कहा इसका सवाल ही नहीं उठता। ईरान चाहता है मुख्य गारंटी जो वो मांग कर रहा है, जो भी डील हो कभी ईरान पर दोबारा हमला ना हो, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति डील को तोड़ ना पाए। यानी ओबामा के समय जो JCPOA पर हस्ताक्षर हुए थे, जो एक जॉइंट एक्शन की बात की जा रही थी, एक प्लान ऑफ एक्शन बना था, ऐसा JCPOA जैसा एक प्लान ऑफ एक्शन बने तो वो दोबारा उसको रद्दी की टोकरी में कोई आगे का राष्ट्रपति अमेरिका का ना डाल पाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जाएगी जो आने वाली सरकारों को कमजोर करे या आने वाली सरकारों के विकल्प को कम कर सके। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी मुद्दे पर तालमेल दोनों ही देशों में नहीं है। तो एक तरफ जहां ईरान चाहता है कि अमेरिका खाड़ी के देशों से निकल जाए, यानी ना सऊदी अरेबिया में अमेरिका का बेस हो, ना यूएई में हो, ना कतर में हो, ना कुवैत में हो, कोई मिलिट्री बेसिस ना हो, सब हटा ले। इजरायली मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर इस समय ये आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका एक नया बेस इजरायल में बना सकता है। जी हां, अमेरिका स्थायी तैनाती पर विचार कर रहा है इजरायल की सुरक्षा के लिए। इजरायली मीडिया ने वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ये चाहता है कि उसकी सेना स्थायी रूप से इजरायल में तैनात रहे। उसमें नौसेना भी शामिल होगी, उसमें वायुसेना भी शामिल होगी और सैनिक मरीन कमांडोज भी शामिल होंगे। अगर खाड़ी के देशों से अमेरिका को अपनी मौजूदगी कम भी करनी पड़ती है तो वो पश्चिम एशिया में मौजूद रहेगा हर परिस्थिति में। इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बजट पर हस्ताक्षर किए उसमें इसराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देने का प्रावधान है। यही नहीं, ईरान के साथ सीजफायर के दौरान अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की जो बिक्री है वो भी बहुत तेजी से बढ़ाई। जितने उसके हथियार खर्च हुए थे उसकी बहुत तेजी से आपूर्ति भी की जा रही है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तो मैं भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में इसराइल की सुरक्षा के लिए हाइफा के पास तैनात भी किया गया था। वैसे मध्य पूर्व की इस रणभूमि के एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है जिसने पूरी दुनिया में शक्ति का जो संतुलन है उसको हिला कर रख दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर सैन्य निर्भरता को खत्म करने का मन बना लिया है। इसराइल अब अमेरिका की अरबों डॉलर की सैन्य मदद को ठुकराने पर विचार कर रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का लक्ष्य साफ है कि अगले 10 वर्षों में अमेरिकी मदद को शून्य कर दिया जाए, जीरो हेल्प फ्रॉम अमेरिका, और इसराइल को रक्षा के मामलों में दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर देश वो बनना चाहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन इस खबर के मायने आप समझिए, अब तक इसराइल के हाथ वॉशिंगटन की कूटनीति से बंध जाते थे,
जब वो बड़ा वार करना चाहता था तो अमेरिका कई बार हथियारों की सप्लाई को कमजोर कर देता था, रोक लेता था, डिले कर देता था कि देर में हथियार पहुंचते थे तो, और यही जो बाइडेन ने किया भी था। और इसीलिए इसराइल उस समय कभी हिजबुल्ला के खिलाफ तो कभी ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति को उसे रोकना पड़ता था, अपने युद्ध को रोकना पड़ता था। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू संकेत ये दे रहे हैं कि वो ईरान से बिना अमेरिका से पूछे दो दो हाथ करने की स्थिति में है, तैयार है और इस युद्ध पे वो जीत भी सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। नेतन्याहू ये मान चुके हैं कि होर्मुज की लहरों पर ईरान की ताकत को भांपने में चूक हुई है। किसी भी कीमत पर अमेरिका अगर रुको और देखो की नीति पर आगे बढ़ना चाहता है तो ये इसराइल बिल्कुल नहीं चाहता। $110 बिलियन का स्वदेशी डिफेंस प्लान उनका इस समय तैयार है, चाहे वो होर्मुज में ईरान की घेराबंदी हो या तेहरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार और जरूरत पड़ने पर जमीनी प्रहार। इसराइल अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना चाहता है, यानी बेंजामिन नेतन्याहू का ये ऐलान सिर्फ एक बयान भर नहीं है बल्कि ईरान के खिलाफ सीधे महायुद्ध का इसराइल का ये शंखनाद है। और खाड़ी के देशों में इस समय तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खाड़ी के देशों से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यहां पर जो एक के बाद एक ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, पूरे मध्य पूर्व को इसने हिलाकर रख दिया है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की अगर बात करें या कुवैत की बात करें तो यूएई और कुवैत के एयर स्पेस में कई संदिग्ध ड्रोन इस समय देखे जा रहे हैं, एक तरह से घुसपैठ वहां बढ़ गई है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये यूएई की तस्वीरें हैं। कतर के समुद्री तट के पास एक मालवाहक जहाज पर भी ड्रोन से हमला हुआ है और इससे जहाज में आग लगने की खबर इस समय आ रही है। इस हमले के बाद खाड़ी में जारी जो बेहद नाजुक सीज फायर है अब लगभग टूटने की एक कगार पर पहुंच गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी सीमा में घुसे दो ड्रोन को मार गिराया है। यूएई ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर तेहरान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल उतैबी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो कुवैत की सेनाएं हैं घुसपैठ कर रहे ड्रोन का उन्होंने जवाब दे दिया है। ये जो आप एयर रेड सायरन की आवाज सुन रहे हैं और ये जो ढक ढक आवाज आ रही है ये काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो हैं, एयर रेड सायरन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स एक के बाद एक यूएई में भी और कुवैत में भी सुनाई दे रहे हैं। इन हमलों में फिलहाल किसी के जानमाल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है लेकिन अभी तक ईरान ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है। लेकिन जिस तरह से खाड़ी देशों के आसमान में आफत मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है, उससे साफ यह है कि ईरान और अरब देशों के बीच अब स्थिति बद से बदतर हो सकती है। कई देश ये कह रहे हैं कि अगर ये चलता रहा तो युद्ध हो सकता है। युद्ध के मुहाने पर इस समय मध्य पूर्व खड़ा है। ईरान के अंदर से बड़ी खबर समय आ रही है। ईरान की सेना ने दावा यह किया है कि उसने अपने दक्षिण पश्चिम के इलाके में दुश्मन का ड्रोन मार गिराया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने सीमा पार से आ रहे एक विदेशी ड्रोन को पहले ट्रैक किया और फिर हवा में ही उसे तबाह भी कर दिया। ईरान की सेना ने इसे अपनी संप्रभुता पर एक बड़ा हमला बताया है। एक तरफ जहां यूएई और कुवैत ईरान पर ड्रोन से अटैक का होने का आरोप लगा रहे हैं वहीं ईरान ने भी अब दुश्मन का ड्रोन गिराकर जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह ड्रोन किस देश से आया था, किस देश का था, लेकिन सीधे तौर पर इसराइल या अमेरिका के लिए इसे चेतावनी भी माना जा रहा है। साफ है कि खाड़ी के आसमान अब एक बार फिर यहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ड्रोन वॉर क्या यह शुरू हो चुकी है या बड़े ड्रोन वॉर का खतरा अब मंडरा रहा है। ईरान के इस दावे के बाद अब तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से महायुद्ध की शुरुआत एक बार फिर किसी भी वक्त हो सकती है। ईरान चाहता है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से दुनिया मान ले। इस बीच ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को सीधे शब्दों में युद्ध की चेतावनी दे डाली है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर ब्रिटेन या फ्रांस के युद्धपोत
हॉर्मोन्स स्ट्रेट में दाखिल होते हैं या तैनात किए जाते हैं तो अंजाम दोनों ही देशों के लिए भयानक होगा। ईरान के उप विदेश मंत्री खाजिम गरीबाबादी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा है कि हॉर्मोन्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी यूरोप के युद्धपोत की मौजूदगी का सीधा मतलब तत्काल और निर्णायक सैन्य कार्रवाई है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी विदेशी दखल, चाहे वो अमेरिका की हो या इजराइल की, फ्रांस की हो या ब्रिटेन की, यूरोप के किसी भी देश की, किसी भी बाहरी ताकत की दखल को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेस टीवी के हवाले से आ रही खबर ने पूरी दुनिया के शिपिंग रूट और ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका, इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ तक सीमित नहीं रह गई है। ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई सीधी धमकी के बाद अब यह संघर्ष एक ग्लोबल वॉर की दशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और ये न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत कड़ी चेतावनी है। और संभवतः तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सचेत भी किया कि अब देश को भी कमर कसने की आवश्यकता है। लेकिन इस समय हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप यही शिकायत कर रहे थे कि यूरोप के देश हॉर्मुज खुलवाने में मदद नहीं कर रहे हैं, अब न केवल ब्रिटेन और फ्रांस बल्कि जर्मनी और इटली भी अपनी तैनाती मध्य पूर्व में बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि ईरान अब यूरोप के देशों को भी धमकी दे रहा है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे यूरोप के देश, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें या फ्रांस की, इटली की बात करें या जर्मनी की, वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले। लेकिन जब बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो क्या है तैयारी आगे की, देखिए ये रिपोर्ट।

0: ईरान की जंग में सीज फायर क्या हुआ है, हुर्मुज का समंदर फायर फायर नजर आ रहा है। उधर ईरान की सेना स्पीड बोट से लेकर सी माइंस तैनात करके किसी भी जहाज को गुजरने से रोकने के लिए खड़ी है। इधर अमेरिकी ब्लॉकेड में अमेरिकी सेना के युद्धपोत अपने डिस्ट्रॉयर से लेकर फाइटर्स तक लेकर खड़े हैं। ईरान की ओर से हुर्मुज पर आवाजाही रोके जाने को लेकर जिस तरह से तैनाती की गई है उसे देखते हुए अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की नेवी खाड़ी पहुंच रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेज रहा है जो हुर्मुज में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है और ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्काई हैमर मिसाइलों समेत कई सैन्य कर्मी भी भेजे हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कतर में टाइफून जेट्स के स्क्वाड्रन की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच हुर्मुज में ब्रिटिश और फ्रांस की सेना की तैनाती को लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है।
1: हुर्मुज में फ्रांसीसी और ब्रिटिश जंगी जहाजों की किसी भी तैनाती का तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान किसी भी देश को हुर्मुज की सुरक्षा में दखल देने की इजाजत नहीं देगा।
0: हालांकि ट्रंप बार बार शिकायत करते रहे हैं कि ईरान से जंग में यूरोप के देशों ने कोई मदद नहीं की है, जैसे कि ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब हुर्मुज की नाकेबंदी से यूरोप की जेब जलने लगी तो अब उनका रुख भी सख्त होता जा रहा है। ईरान की जंग में ट्रंप के कदमों की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब हुर्मुज पर एकजुट हो रहे हैं। फ्रांस ने भी हुर्मुज में सैन्य मदद भेजना शुरू किया है क्योंकि फ्रांस इन दिनों खाड़ी में यूरोपियन मिशन एस्पाइडस की अगुवाई कर रहा है जिसमें जहाजों की निगरानी के लिए फ्रिगेट्स और हवाई निगरानी के लिए राफेल तैनात किए हैं। इसके अलावा इटली और जर्मनी मुख्य रूप से लाल सागर और खाड़ी के प्रवेश द्वारों पर अपने युद्धपोत तैनात कर चुके हैं ताकि कमर्शियल जहाजों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। इन सैन्य तैनातियों में बहरीन खुले तौर पर पश्चिमी देशों के लिए मुख्यालय का काम कर रहा है जबकि कतर और सऊदी अरब ज्यादातर खुफिया जानकारियां ही साझा कर रहे हैं। इसे लेकर ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी में ईरान की हल्की पनडुब्बियां जिन्हें डॉल्फिन कहा जाता है वो पर्याप्त संख्या में तैनात हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता अकरबिनिया ने कहा है कि फारस की खाड़ी की डॉल्फिन्स खतरों, क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर हुर्मुज में तैनात की जा रही हैं। ये हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं। इसके अलावा ईरान ने हुर्मुज में जगह जगह सी माइंस बिछी होने का भी दावा किया है। ऐसे में अगर हुर्मुज में सैन्य टकराव बढ़ता है तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
2: अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि अमेरिकी ब्लॉकेड जब तक रहेगा ईरान की तब तक स्थिति बद से बदतर होती रहेगी और पतली होती रहेगी। लेकिन असर कुछ ऐसा हो रहा है कि हुर्मुज जब तक बंद रहेगा तब तक हाहाकार न केवल इस क्षेत्र में बल्कि दुनिया में होता रहेगा और इसी दुनिया में अमेरिका भी है जहां अब डोनाल्ड ट्रंप की जेब पर भी तेल का संकट आ रहा है। अमेरिका की भी जेब जलने लगी है। हुर्मुज बंद होने के कारण दुनिया को रोज लगभग 1,30,00,000 बैरल कम तेल मिल पा रहा है जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का लगभग 13% होता है। हालांकि अमेरिका रोज 1,40,00,000 बैरल का तेल अतिरिक्त निर्यात भी कर रहा है लेकिन इसका नतीजा यह है कि अमेरिका का जो घरेलू भंडार है 2005 के बाद अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। फिर जंग के बाद अब कच्चे तेल के जो दाम है वो लगभग 40% से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में अगर डीजल की बात करें तो $200 प्रति बैरल इस समय डीजल बिक रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की अगर बात करें तो ये $180.60 प्रति बैरल बिक रहा है। यानी दबाव इन देशों पर भी है। इसी बीच नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। इसमें अमेरिका की जो संसद है उसमें 445 सीटें हैं, सेनेट में 35 सीटें हैं, 36 राज्यों में गवर्नर का चुनाव होने वाला है, उसके लिए मतदान होना है। अब अगर जंग की स्थिति को आप देखें तो जंग के बाद हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है या एक तरह से कहें जो उनकी लोकप्रियता है वो लगभग 39% गिर गई है, 39% पर आ गई है। और अब स्थिति यह है कि 84% अमेरिका के लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अगर आप जिस तरह की आप जंग की बात कर रहे हो उस जंग के बजाय वो इकोनॉमी पर ध्यान दें 29 साल से लेकर 63% जो अमेरिकी युवा हैं, 29 साल के जो युवा हैं, 63% वो ऐसे हैं जो ईरान में जो जंग हो रही है उसके धुर खिलाफ, वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति नौकरी की बात करे, इकोनॉमी की बात करे, जंग की बात करे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर भी ईरान जंग के खिलाफ अब राय मुखर होती जा रही है। और जाहिर तौर पर ईरान की जंग दुनिया के लिए जितनी मुश्किल पैदा कर रही है या दुनिया के लिए जितनी कठिनाई इससे पैदा हो रही है उससे कम नहीं है जो अमेरिका की सियासत है या डोनाल्ड ट्रंप की सियासत है और जो अमेरिका की हुकूमत है उसके लिए भी कम समस्या इससे पैदा नहीं हो रही है। दरअसल होर्मुज बाधित होने से जहां एक तरफ भारत सहित तमाम देश कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से दो चार हो रहे हैं, स्थिति दुनिया भर में दुनिया से बेहाल है, वहीं ईरान में पेट्रोल पंप पर तेल के कम दाम यानी तेल की जो कीमत है 2 रुपए प्रति लीटर है। जी हां, ये ईरान में ईंधन की कीमत है। तेहरान से मेरी सहयोगी गीता मोहन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
3: ईरान ने अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है, ये ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में ये कह दिया है कि आज के डेट में भारत तेल गैस की कमी बहुत ही ज्यादा महसूस कर रहा है और इसी वजह से उन्होंने लोगों को कहा है कि तेल कम इस्तेमाल करें, गैस जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखें, जो हमारे किसान हैं उनको कहा है फर्टिलाइजर्स कम यूज करें और नेचुरल तरीके जो है फार्मिंग के उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से बंद है और उसका असर अब ज्यादा से ज्यादा दिखने लगा है। लेकिन आज हम तेहरान में खड़े हैं, एक ऐसे देश में जहां तेल की कमी, रिफाइनरीज अभी भी हिट नहीं हुए तो तेल की कमी नहीं महसूस हो रही। हमारे पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां पर आज के डेट में भी 2 रुपए पर लीटर यहां पर तेल बिक रहा है। तो जो प्राइस डिफरेंस है उससे पता चलता है कि ईरान को इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने पर कोई असर नहीं हो रहा लेकिन दुनिया को हो रहा है। तो जरूरी यह है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचे और इस युद्ध को अंत करे, क्योंकि ये युद्ध आज अंत हो और कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तब भी इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को सुलझने में काफी वक्त लग जाएगा। कैमरा पर्सन सत्य राउत्रे के साथ तेहरान से गीता मोहन आज तक।
2: बड़ी खबर इस समय पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट में घुसपैठ के खिलाफ और घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी की सरकार के दौर में सीमा पर कांटेदार तार या फेंसिंग को लेकर जारी बरसों का विवाद खत्म हो जाएगा। शुभेंदु कैबिनेट ने बांग्लादेश सीमा पर कांटेदार तार लगाने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। सरकार ने निर्णय किया है कि सीमा सुरक्षा बल को लगभग 600 एकड़ भूमि सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 45 दिनों की सख्त समय सीमा प्रशासन के लिए तय कर दी है ताकि सीमा के उन हिस्सों की भी फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा हो सके जो अब तक खुले हुए थे, जहां से खुली घुसपैठ हो रही थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि यह कदम अवैध घुसपैठ को जड़ से मिटाने का के लिए उठाया गया है। ये निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस संकल्प को पूरा करता है जिसमें बंगाल की सीमा को अभेद्य बनाने का वादा किया गया था। भारत बांग्लादेश सीमा की जो कुल लंबाई है वो लगभग 2216.7 किलोमीटर है, इसमें लगभग 1647.7 किलोमीटर पे तो कांटेदार तार लग चुके हैं। जमीन मिल जाना कुछ इलाकों में बाकी है, एक बार जमीन आवंटित हो गई तो वहां पर भी युद्ध स्तर पर कांटेदार तार लगा दिया जाएगा।
4: आज के आम्रा प्रथम दिन ही आम्रा केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर तथा बीएसएफ सीमांत सुरक्षित करार जन्य जमी ट्रांसफार प्रक्रिया আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভূমি ও রাজস্ব সচিব তাকে এবং মুখ্য সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হল 45 দিনের মধ্যে বিএসএফ এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করতে হবে।
2: ये बहुत बड़ा कदम है। 45 दिन के अंदर अगर भूमि आवंटित हो गई तो न केवल ये कांटेदार तार लग पाएगा बल्कि जो बॉर्डर आउटपोस्ट लगाने की बात है, जो सीओबी बनाने की बात है, कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस बनाने की बात है, ये काम हो पाएगा जो ममता सरकार में कतई नहीं हो पा रहा था। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
7: Thank God I get to wake
6: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: Now in India.
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: करेक्टर The taste of success.
11: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
12: Money, money, money, money every month.
13: सोच बदलो और बैंक भी.
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
14: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
14: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत, और ये रण है सदियों के संघर्ष का। भूमि गुजरात की। दशक बीत गए, कभी साल कभी दशक कभी सदियां बीतती चली गई। विदेशी आक्रांता आते गए, सोमनाथ पर आक्रमण करते गए, जो पौराणिक और धार्मिक पहचान है उसको समाप्त करने की कोशिश करते गए, क्योंकि उनकी कोशिश थी गजवाए हिंद की, कि हिंदुओं का सर्वनाश कर दिया जाए। हर विदेशी आक्रांता यही चाहता था, लेकिन भारत की पहचान, हिंदुओं की पहचान, कौन इसे नष्ट कर सकता है? कितने प्रयास हुए, जिसका डंका पूरी सृष्टि में बजता है, क्या उसको विदेशी आक्रांता बर्बाद कर सकते थे? आखिरकार स्वाधीनता के बाद सोमनाथ के पुनर्निर्माण का निर्णय हुआ, और विरोध अपने ही देश में हो रहा था, उसके बावजूद हुआ, और 1951 में प्राण प्रतिष्ठा की। हम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे, के मुंशी के बारे में बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद कैसे ये अडिग रहे, डटे रहे, और स्वतंत्र भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू के विरोध के बावजूद वो गए। आज उस पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस अवसर को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया, फिर मंदिर में पूजा अर्चना की, और 11 तीर्थ स्थलों का जो पवित्र जल लाया गया था उससे शिखर का अभिषेक किया गया। भारतीय वायुसेना ने भी शौर्य दिखाते हुए एक जबरदस्त एयर शो का प्रदर्शन किया यहां पर। सियासी तौर पर देखें तो एक कार्यक्रम, आप इसे अंग और कलिंग के बाद बंग में भारतीय जनता पार्टी की विजय के ठीक बाद एक रूप में देख सकते हैं, कि कहां गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है, भगवा ध्वज लहरा रहा है। वहीं सोमनाथ से कामरूप तक, या यूं कहे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार भी बना ली, और एक लक्ष्य के साथ वो सरकार बनाई गई है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जिस अमृत महोत्सव की बात की जा रही है, हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। पौराणिक एक अलग विचार, धार्मिक और सांस्कृतिक एक अलग विचार, और सामरिक शक्ति, क्योंकि अगर आपके पास सामरिक शक्ति नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, तो फिर विदेशी आक्रांता किसी ना किसी तरह से आपको कमजोर कर ही सकेंगे, और भारत के साथ तो ये कई बार हो भी चुका है। लेकिन भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का जो प्रतीक है सोमनाथ का ये दिव्य भव्य मंदिर, इस महोत्सव को कैसे याद रखा जाएगा, न केवल संघर्ष के लिए बल्कि समर्थ और सामर्थ्य के लिए भी, विरासत के लिए भी और विकास के लिए भी।

0: 11 तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
1: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
1: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है।
2: मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया।
0: इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
3: कई सदियों से सोमनाथ मंदिर को वैभवहीन करने की साजिशें रची गई थी। जो विदेशी आक्रमणकारी आते थे इसको लूटते चले जाते थे। कहते हैं कि इस पर कुल 17 बार बड़े हमले किए गए, मंदिर को ध्वस्त किया गया। अच्छा, कुछ जो प्रमुख हमले थे हम उनके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे 725 वर्ष में कॉमन एरा में अल जुनेद ने मंदिर को तोड़ा था और यहां पर लूटपाट की थी। इनको गजवाए हिंद का नारा ऐसा लगता था कि बस यहां पर आकर अगर सोमनाथ को ध्वस्त कर दिया तो आस्था को ध्वस्त कर देंगे और तब धर्मांतरण करने में उनको मदद मिल जाएगी, ऐसा विदेशी आक्रांता सोचा करते थे। फिर 1026 में मंदिर पर पहला सबसे बड़ा हमला किया गया और ऐसे एक के बाद एक हमले होते चले गए। 1026 में हुआ, महमूद जो गजनवी से आया था उसकी सेना ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, मंदिर को लूटा। कोशिश उनकी यह थी कि ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दो। अगर आपने ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया, उनकी जो सोच थी, तो हिंदुओं का मनोबल टूट जाएगा और धर्मांतरण में उनको मदद मिल जाएगी। फिर 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने भी आक्रमण किया, तब तक यहां पर उन्होंने परिवर्तन करने की कोशिशें शुरू कर दी थी, लेकिन एक मत उनका होता था कि सोमनाथ अगर गया तो हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र चला जाएगा। 1299 को, उसके बाद 1395 में जफर खान ने आक्रमण किया और तबाही मचाई। हिंदू आमतौर पर अपना पैसा मंदिरों में दान भी देते थे, राजा भी वहां पर दान दिया करते थे, वहां से इकोनॉमी भी चलती थी, व्यापार वाणिज्य की अगर बात की जाए, शिक्षा के केंद्र थे, तो वहां पर इसीलिए पैसा काफी होता था, वहां से सोना बहुत लूटा जाता था। फिर 1451 में गुजरात के जो तत्कालीन सुल्तान जो था महमूद बेगड़ा ने भी इस मंदिर को अपवित्र किया था। वही मंशा थी, लूट लो, पैसा लूट लो, मंदिर को ध्वस्त कर दो और धर्मांतरण कर दो। लेकिन हिंदुओं की आस्था को देखिए कितनी बार कोशिश की गई, नहीं टूटे, फिर खड़े हुए, फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया और बार बार किया। फिर 1665 में औरंगजेब ने बकायदा फरमान जारी किया और औरंगजेब की

0: उसने कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए। 1706 में औरंगजेब ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया और पूजा बंद कर देने का वहां पर आदेश दिया गया। वो अलग बात है कि 1707 में खुद ही औरंगजेब मर गया जब वो दक्कन में मराठों के खिलाफ अपने युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। 1707 में औरंगजेब मारा भी गया। फिर अब क्या कोशिश थी भारतीयों ने, जब स्वतंत्रता मिल गई क्या सोचा? ये सोचा कि भारत के पुनर्निर्माण के लिए एक बार फिर वो जो आपको प्रेरणा चाहिए, सोमनाथ को एक बार फिर से पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है, और इसका बीड़ा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। के मुंशी ने उनका साथ दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनका साथ दिया, कई लोग एकजुट आए। फिर क्योंकि पंडित नेहरू ने यह विरोध किया था कि सरकारी खजाने का इस्तेमाल ना हो इसके लिए, तो ठीक है जनता ने इसके लिए बढ़ चढ़कर पैसा दिया। क्यों? क्योंकि एक बार फिर ये जो भगवा ध्वज वहां पर आएगा तो उससे राष्ट्र गौरव एक बार फिर बढ़ेगा, आत्मसम्मान एक बार फिर बढ़ेगा। और कोशिश ये थी कि पहले सोमनाथ, फिर अयोध्या और एक के बाद एक मंदिर फिर बनते चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी अपने भाषण में आक्रमणों का जिक्र किया और कहा कि मंदिर तोड़ने वालों को मालूम नहीं था कि जो हमारा राष्ट्र है उसका जो वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को तो नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो आत्मा अविनाशी है, और शिव, भगवान शिव तो सर्वात्मा है।
1: जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया। आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए।
0: बड़ी बात प्रधानमंत्री ने की। 11 मई 1998 यही दिन था जब भारत ने एक बार फिर परमाणु परीक्षण किए और पूरे विश्व में भारत ने अपनी ताकत एक बार फिर दिखाई। बहुत दबाव था भारत पर कि भारत परमाणु परीक्षण ना करे। अच्छा, अमेरिका की पैनी निगाहें भी थी, लेकिन उसके बावजूद यह निर्णय किया गया और भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में और एक बहुत शक्तिशाली परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में अब अपनी शक्ति को और आगे बढ़ा रहा है। सामरिक शक्ति भी, धार्मिक शक्ति भी और आर्थिक शक्ति भी। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
4: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
5: Gone! Home run!
4: NHL. It
5: scores!
4: College basketball.
6: He shoots it immediately. He banks it in!
4: Tennis. Golf. and even top motorsports like NASCAR.
6: One lap to go.
4: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता, तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: एक बजे अचानक अपने बॉस को कौन मैसेज करता है? नहीं करता है ना। अगर करेगा भी तो एक आध दो मिनट बात करके रख देगा ना।
12: ऐसे भी तो कुछ फूट रहा था।
13: कुछ भी नहीं फूट रहा था।
14: छुपा के रखा है वो बच्चे को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड दैट वुड बी इलीगल।
15: Joseph Vijayanum Nan. Tamil Nadu Arasin Mudalamachar Endra Murayil. Yenadu Gavanathirkullavadum.
16: Ye kshan aitihasik hai. Ye mauka bade badlav ka hai. Is shapath ke saath Tamil Nadu ki rajneeti mein bada parivartan ho gaya hai. Cinema ka thalapati Vijay ab Tamil Nadu ka mukhyamantri ban gaya hai.
15: Aandavan meedhu aanaiyittu uridhi mozhugiren.
16: ये तस्वीरें अद्भुत है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय के नाम के नारे और जयकारे गूंज रहे थे। तख्ती और तस्वीर लेकर कई समर्थक पहुंचे थे। विजय की झलक पाते ही समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ गया। हर ओर विजय के नाम का शोर छा गया। विजय मंच पर आए, लोगों का आभार जताने के लिए भाषण देने लगे तो राज्यपाल ने उन्हें रोक दिया।
15: சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற
16: ये जनता से मिले अपार प्रेम की भावनाएं थी जो विजय के चेहरे पर साफ झलक रही थी। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। उनकी नई टीम में उनकी विजन की साफ झलक है। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज पहुंचे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विजय के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। विजय की 2 साल पुरानी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 234 में 108 सीटें जीती। तमाम पार्टियों के साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा छुआ और अब इस शपथ के साथ तमिलनाडु की सियासत में विजय सरकार का आगाज हो गया है। संयोग देखिए कि विजय ने अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन की है और अब वो तमिलनाडु के जन नायक बन चुके हैं। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed. Whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest, you can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
4: just
5: Jay-Z.
4: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: ईरान पर 39 दिन तक बारूदी बारिश करने के बाद आखिरकार अमेरिका ने ईरान से बातचीत की मोहलत सीज फायर के नाम पर दी। 39 दिन में सुप्रीम लीडर, दर्जनों सैन्य कमांडर, सैकड़ों जवान, हजारों लोग और लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान झेलने वाला ईरान फिर भी बातचीत की टेबल पर ट्रंप की शर्तें मानने को तैयार नहीं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें ट्रंप ने कहा था कि अब सीधे फोन पर बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान दोनों ने जब कहा कि अमेरिका को नई ईरानी शर्तें भेज दी गई हैं, तो ईरानी मीडिया के मुताबिक इन शर्तों में ईरान ने फिर से वही बातें दोहराई थी, जिसमें एक था कि जंग सभी मोर्चे पर खत्म हो और पूरी तरह खत्म हो, दोबारा हमले नहीं किए जाने की गारंटी दी जाए, होर्मुज पर अधिकार और आवाजाही की सुरक्षा का जिम्मा ईरान को दिया जाए, 30 दिन के अंदर ईरानी तेल बिक्री पर लगी पाबंदी हटाई जाए, युद्ध से ईरान को हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका करेगी। पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान का ये संदेश ट्रंप तक पहुंचा दिया गया है और उसके चंद मिनटों के अंदर ही ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया और उसमें ट्रंप ने लिखा कि मैंने अभी अभी ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर साफ हो गया कि ईरान और अमेरिका के बीच जो भी बातचीत हो रही है वो शायद ही किसी एक सहमति के बिंदु तक पहुंच पा रही है, क्योंकि ईरान की ओर से भेजी गई शर्तों में न तो कुछ नया था और न ही अमेरिका की शर्तों में कोई झुकाव। उधर ट्रंप की ओर से पेशकश खारिज किए जाने के बाद ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख के साथ बैठक के दौरान दुश्मनों के खिलाफ जमीन से समंदर तक ईरान के जंगी ऑपरेशंस को जारी रखने और दुश्मनों के साथ जोरदार टकराव के लिए नए और निर्णायक निर्देश जारी किए। ईरान चाहे सीजफायर के मौके का फायदा उठाकर गतिरोध को लंबे वक्त तक खींचने की फिराक में हो, लेकिन अमेरिका शायद लंबा इंतजार नहीं कर पाया। ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा भी है कि 47 सालों से ईरानी हमें बहलाते आ रहे हैं, हमें इंतजार करवाते रहे, अपने सड़क किनारे लगाए गए बमों से हमारे लोगों को मारते रहे, विरोध प्रदर्शनों को कुचलते रहे हैं और हाल ही में 42,000 बेकसूर निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया और अब फिर से महान बन रहे देश पर हंसते रहे हैं, अब वे और नहीं हंस पाएंगे। दरअसल ट्रंप ने फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान हुर्मुज को फिर से खोलने और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वापस लेने के एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं करता है तो वह बड़े पैमाने पर बमबारी फिर से शुरू कर देगा। इस पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन की ओर से बयान आया है कि हम दुश्मन के सामने कभी अपना सिर नहीं झुकाएंगे और यदि बातचीत या मोल भाव की बात उठती है तो इसका अर्थ आत्मसमर्पण या पीछे हटना नहीं है बल्कि इसका लक्ष्य ईरानी राष्ट्र के अधिकारों को बनाए रखना और दृढ़ शक्ति के साथ राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। मतलब सोशल मीडिया की लड़ाई में भी कोई झुकने को तैयार नहीं। असली जंग के मैदान के सूरत हालत तो दुनिया देख ही रही है और उसका खामियाजा भी भुगत रही है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

700 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही है। सरकार को एक्साइज ड्यूटी में 14,000 करोड़ की चपत लग चुकी है। ऊपर से कच्चा तेल $126 बैरल के दाम छू रहा है। ऐसे में भी भारत में अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े और इसे बढ़ाना ना पड़े, इसीलिए पीएम मोदी ने तेलंगाना की सियासी रैली से देशवासियों के सामने 8 सूत्री अपील की। इसमें खासकर पेट्रोल डीजल के कम इस्तेमाल से लेकर खाने के तेल के कम इस्तेमाल तक और विदेशों में सैर सपाटे से लेकर किसानों को खाद तक के कम इस्तेमाल की नसीहत दी गई है, क्योंकि इसमें भारत के खजाने से डॉलर के पते तेजी से घिस रहे हैं। ऊपर से डॉलर ताकतवर हो रहा है, रुपया बेचारा टूटता जा रहा है और उनमें भी भारतीयों के शौक ऐसे कि 6 लाख करोड़ रुपए का तो गोल्ड ही खरीद डालते हैं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि कम से कम साल भर के लिए सबर कर ले, गोल्ड मत खरीदे, खजाने में डॉलर बचेंगे तो सरकार के काम भी आ सकेंगे। अब विपक्ष कह रहा है कि सरकार सच बता दे कि क्या आर्थिक इमरजेंसी आने वाली है, क्योंकि वो ज्यादा गंभीर होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब इनमें सरकार नहीं बचा पाई। कांग्रेस ही कहते हैं कि जब इतनी ही किल्लत है तो तेलंगाना से सोमनाथ और जामनगर से बड़ोदरा तक मजमा लगाने की क्या दरकार थी। उधर सरकार भी पूरी कोशिश में है, जंग के बाद से 3 बैठकें कर चुकी है। आज भी राजनाथ सिंह की अगुवाई में बैठक हुई है, हालात की समीक्षा की जा रही है। राहत है कि तेल के दाम बढ़ेंगे या नहीं अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ये दाम बढ़ाए जाए। लेकिन पीएम के अष्टांगिक मार्ग वाली नसीहत के बाद सवाल वही है कि क्या आगे संकट काल आ रहा है। इसी पर दंगल में चर्चा है, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखें।

0: तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
1: ईरान में ट्रंप ने ऐसी जंग शुरू कर दी जिसमें बारूदी धमाके तो थम भी जाएं, मगर दुनिया की जेब में लगी आग थमती नहीं दिखती। और हिंदुस्तान में तो चुनावी महीने निकलते ही कोविड जैसे एहतियात की बारी आ गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, 2 राज्यों में खालिस जीत, 3 राज्यों में हुकूमत बनाने के बाद पीएम मोदी जब दक्षिण के कांग्रेसी सूबे में पहुंचे तो देश को 8 नसीहतें दे दी।
0: टालना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तो खाने पीने वाले तेल का इस्तेमाल संयम से करें, फिर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल भी संयम से करें। कोशिश करें कि बस, मेट्रो, ईवी वाहनों से यात्रा करें। दफ्तर के बजाय वर्क फ्रॉम होम करें। 1 साल तक ना तो छुट्टी मनाने, ना तो डेस्टिनेशन वेडिंग के चक्कर में विदेश जाएं। और साल भर तक तो शादी विवाह भी हो तो गोल्ड मत खरीदें, विदेशी ब्रांड के बजाय स्वदेशी सामान खरीदें। और तो और, किसान खाद इस्तेमाल करने की जगह प्राकृतिक खेती करें।
0: फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती माँ को बचा सकते हैं, और यह हमें करना ही होगा।
2: चुनाव तक चंगा सी और चुनाव के बाद नंगा सी, ये रवैया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। वो कहते हैं कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, कम तेल खाओ, सब कुछ कम कर दो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, और खुद शाम को 100 कारों का काफिला लेकर जामनगर में रोड शो करते हैं। इनके कौन आर्थिक सलाहकार है वो समझ में नहीं आता।
1: पीएम की अपील पर देशवासी पेट्रोल डीजल, दफ्तर बाजार, सैर सपाटा, खेती बाड़ी सब में सब्र कर ले, लेकिन सोने पर सब्र कैसे करें?
3: हमारे देश में गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लोगों के कुछ इमोशंस जुड़े हैं, ट्रेडिशन है और कल्चर जुड़ा हुआ है कि लोग ज्यादातर शादियों में गोल्ड खरीदते हैं।
4: नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो का यूज करने के लिए बोला है, मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिससे मेट्रो एक बहुत अच्छा ऑप्शन।
5: प्रधानमंत्री जी ने जो अपील करी है कि 1 साल तक हमें सोना नहीं लेना है, इस फैसले में मैं उनके साथ हूँ।
6: अगर पीएम मोदी ने कोई हमसे अपील की है देश के हित को ध्यान में रखते हुए, तो हमें उस अपील को सुनना चाहिए।
1: अब जिस मुल्क में सोमनाथ मंदिर तक से गजनवी 6,000 करोड़ का सोना लूटकर भाग गया था, आज भी 300-400 किलो सोना भक्तों ने मंदिरों में मढ़ा रखा है। 35,000 से 40,000 टन के सोने के गहने तो घरों में लॉकर में रखे हैं। 3-4 करोड़ लोग सोने चांदी के कारोबार से जुड़े हों, वो सोने से सब्र कर

0: से करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान है जहां देश में सोना उत्पादन ना के बराबर है, फिर भी सालाना 800 टन सोना भारतीय विदेशों से मंगा लेते हैं। मतलब कुल इंपोर्ट बिल में 9-10% का तो हम भारतीय सिर्फ गोल्ड खरीद लेते हैं। पिछले साल ही 6,00,000 करोड़ रुपए का सोना भारतीयों ने खरीदा है। अब पीएम मोदी ने कह दिया कि सोना खरीदने में जो डॉलर खर्च हो रहा है वो सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ईरान की जंग में आम लोगों की जेब भले सलामत दिख रही हो, सरकार की जेब भयंकर जल रही है। क्योंकि एक तो जंग, ऊपर से अब तक हॉर्मुज बंद, तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए, तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि रोज 1600-1700 करोड़ रुपए फूक रहे हैं। जंग के बाद से अब तक लमसम 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम 10-24 रुपए प्रति लीटर बढ़ेंगे तब जाकर कहा जा रहा है कि मामला बराबर होगा, लेकिन सरकार फिलहाल पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव तक तो किसी तरह जंग की तपिश झेलती रही। असर का आकलन करने के लिए पहले 28 मार्च को राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, फिर 2 अप्रैल को भी मीटिंग हुई। अब 11 मई को जब बैठक हुई तो लोगों का डर बढ़ गया कि चुनाव खत्म हुआ है, अब तेल के दाम बढ़ जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे। मोदी जी 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री जी आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है, उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको।
0: अब विपक्षी से पीएम मोदी की सरकार चलाने में नाकामी बताए या आर्थिक इमरजेंसी की आहट की आशंका जताए, लेकिन सियासत चाहे जो कहे, ट्रंप ने ईरान के छत्ते में हाथ डालकर ऐसी मुसीबत मोल ले ली जिसका खामियाजा अमेरिका तो उठा ही रहा है। बिना वजह युद्ध की जगह बुद्ध का संदेश देने वाले भारत समेत ईरान के आसपास के मुल्क भी उठा रहे हैं। अब भारत यूरोप तो है नहीं कि अमेरिका के पीछे पीछे अपने वॉरशिप्स भेजकर हॉर्मुज के बाहर नाकेबंदी करने लगे। जब तक अमेरिका की मर्जी होगी, ईरान की मंजूरी होगी, तभी तेल गैस इधर आएगा, वरना पीएम मोदी की नसीहत ही भारतीयों के काम आने वाली है। आज तक ब्यूरो।
2: तो क्या भारत में आर्थिक संकट आने वाला है? क्योंकि इससे पहले जब इसकी बात की जा रही थी तब यह भी कहा जा रहा था कि डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही तेलंगाना के भीतर प्रधानमंत्री का यह भाषण वायरल हुआ, 8 चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने खास करके देशवासियों को कहा है कि आपको थोड़ी किल्लत का सामना शायद करना पड़ सकता है, तो बचत करिएगा क्योंकि अगला जो समय है वो संकट का हो सकता है। इसी पर चर्चा करना जरूरी है कि क्या सचमुच में आर्थिक संकट से भारत गुजर सकता है, जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उसके वजह से। चर्चा करेंगे, हमारे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता, नवल शर्मा जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, और सिद्धार्थ जरावी हमारे ग्रुप एडिटर और मेरे सहयोगी बिजनेस टुडे के, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या पीएम मोदी की सलाह आने वाले आर्थिक संकट की एक तरीके से चेतावनी हम मान सकते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि किल्लत से बचना है तो बचत करिए। दूसरा सवाल, क्या ईरान जंग के असर से बचने के लिए भारत के पास पर्याय कुछ उपलब्ध है या कोई और पर्याय नहीं है, पर्याय उपाय हमारे पास है या नहीं है, यह भी एक सवाल बनता है। और तीसरा सवाल, क्या पीएम मोदी की नसीहतों पर चुनावी सियासत के सवाल उठाना सही है? क्योंकि विपक्ष अब कह रहा है 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और जैसे कि विपक्ष के तरफ से दावे किए जा रहे थे कि चुनाव के बाद दाम बढ़ाए जाएंगे, क्या उस तरफ हम जाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं? शुरुआत गौरव भाटिया आप ही से। आपको याद होगा कि 1-2 महीने पहले जब हम चर्चा करते थे तब इस बात की काफी चर्चा होती थी, खूब चर्चा होती थी कि कोई किल्लत नहीं है, चिंता मत करिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बचत के उपाय यहां पर रखने की कोशिश की है, सोने को लेकर, खाद को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर और तेल और डीजल के इस्तेमाल को लेकर भी, क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ भारत बढ़ रहा है? यह सवाल किसी के भी मन में उठेगा।
1: साहिल जी, सबसे पहले तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी देशवासियों से एक अपील करते हैं तो देशवासी उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से उनका पूरा वक्तव्य सुना। देश के प्रधानमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो असामान्य परिस्थितियां पूरे विश्व में हम देख रहे हैं उससे भारत डटकर लड़े और विजयी हो अंत में। इससे देशवासी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है साहिल जी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देशभक्ति का भाव होना चाहिए हर नागरिक में, और नागरिक कह रहा है कि हम करने को तैयार है, ना कोई संकट है। क्योंकि आपका पहला प्रश्न था क्या कोई संकट की चेतावनी है। देखिए, संकट ना हो इसलिए ये अपील है, और भारत के देशवासी तत्पर हैं कि वो देशभक्ति के भाव से इस अपील का पालन करेंगे। परेशानी किसको हो रही है? परेशानी उन विपक्षी पार्टियों को हो रही है जो 5 चुनाव के परिणाम में जिनका सुपड़ा साफ हुआ। आप याद करिए, राहुल गांधी की क्या भविष्यवाणी थी, अखिलेश यादव की क्या भविष्यवाणी थी। ये लोग तो कहते थे जैसे ही चुनाव खत्म होगा परिणाम आएंगे। 4 मई को आए थे, आज 1 सप्ताह हो चुका है, इन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। क्या दाम बढ़ गए? लाइव नहीं है, क्या दाम बढ़ गए? तो पहले तो ये लोग क्या करते हैं, केवल पैनिक फैलाना, डर का माहौल हो, यही फर्जीवाड़ा इनकी राजनीति है। और साहिल जी, इसको यहां पे उजागर करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, भारत आज कहां स्थित है आप देखिए। भारत की जीडीपी जो मेजर इकोनॉमीज है उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है, 7 से 7.2%, ये आकलन लगाया जाता है। हमारे पास 700 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व हैं, इसलिए हमारी स्थिति मजबूत है। करीब करीब कहते हैं कि 45 से 60 दिन का हमारे पास ऑयल रिजर्व है, और उसके अलावा हमारी इन्फ्लेशन जो है वो 0.2 से 0.5% पे है। क्या ये नहीं कहा जाएगा कि भारत ने करीब 70 दिन से युद्ध चल रहा है, स्थिति को आका, सही कदम, सही फैसले नरेंद्र मोदी जी ने उठाए और भारत मजबूती से खड़ा है। तीसरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाकी देशों के जहाज नहीं आ रहे साहिल जी, लेकिन हमें पता है किस तरह से, चाहे वो गैस हो चाहे वो उसके अलावा ऑयल हो, हॉर्मुज से हमारे जहाज भारत आए। लेकिन कांग्रेस से ये सवाल जरूर पूछेगा, जब 2 जहाज आने वाले थे, पवन खेड़ा का ट्वीट है मेरे पास हाथ में, ये देखिए, और इन्होंने क्या कहा था, ये 2 जहाज भारत नहीं आ रहे, ये तो कहीं और जा रहे हैं, और जब भारत आ गए तो डिलीट कर दिया। और दूसरा, कांग्रेस का झूठा ट्वीट, 2011 की तस्वीर लगा के मेरे हाथ में है और कहा लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, गैस के सिलेंडर खत्म हो गए, ये ट्वीट भी डिलीट हो गया। आज इस ट्वीट को किए 2 महीने हो गए, हमें गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो आप ये सवाल आज विपक्ष से पूछिएगा, क्या वो भारत के नागरिक है, क्या उनमें रत्ती भर भी देशभक्ति बची है? और तीसरा, ये अफवाहों का बाजार क्यों गर्म करते हैं?
2: ठीक, तो आपके तरफ से 2 सवाल मैं विपक्ष के सामने भी रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे 2 सवाल पूछने हैं। आपने कहा कि क्योंकि प्रधानमंत्री ने अचानक तेलंगाना के भीतर जो भाषण किया उसमें जाकर उन्होंने कुछ सलाह एक तरीके से या मांग हम कह सकते हैं कि देशवासियों के सामने की है, और इस वक्त की स्थिति भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। आंकड़े बड़े दिलचस्प है, जरा आप स्क्रीन पर नजर डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, जब से ये युद्ध की घड़ी शुरू हुई है उसके बाद से अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने में जो ऑयल इंपोर्ट है वो 5.2 मिलियन बैरल से घटकर 4.4 मिलियन बैरल हो चुका है आज की स्थिति में, यानी ऑयल इंपोर्ट हमारा घटा हुआ है। जो विदेश यात्रा पर खर्च है वो 31.7 बिलियन डॉलर्स तक अपना पहुंच चुका है, फाइनेंशियल ईयर 24 की ये आंकड़े फिलहाल हमारे पास है और वो बढ़ता जा रहा है। तीसरी बड़ी बात, आज की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो आंकड़े हमने चलाए थे, वो 38 बिलियन डॉलर से घटते हुए नजर आ रहे हैं। इस स्थिति के वजह से ही क्या प्रधानमंत्री को देशवासियों के सामने आकर यह कहने की जरूरत आन पड़ी है कि थोड़ा सा सब्र रखिएगा, सोना मत खरीदेगा इस वक्त, ऑयल की बचत करिएगा, ये इसी के वजह से कहा जा रहा है। और ये कहने के बाद ही कहीं ना कहीं ये चर्चा शुरू हुई है कि क्या सचमुच में कोई आर्थिक संकट आने वाला है गौरव भाटिया जी, और ये तो सरकार से एक्सपेक्ट कर ही सकती है कोई जनता
3: नहीं। बिल्कुल साहिल जी, मैं तो समझता हूं आप एक तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं ये सवाल मुझसे पूछकर। सबसे पहले आपने कहा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो गया, ये सही बात है कि पिछले दो ढाई महीने में, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व रखा इसीलिए जाता है कि ऐसी कोई परिस्थिति आए जिसमें भारत के हित में इस्तेमाल करना पड़े उसे करेंगे। 720 बिलियन यूएस डॉलर्स होता था, 690 अभी भी है हमारे पास, अभी भी बहुत कुशनिंग है, पर्याप्त है। और पिछले 12 साल में ये फॉरेक्स रिजर्व जो है करीब करीब ढाई गुना हुआ है, पहली बात। इसलिए कोई संकट नहीं है, चुनौती है, चुनौती। और ये मैं पनौतियों को बता रहा हूं जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव भ्रम फैला रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि हां अगर हमें गैस चाहिए होगी, पेट्रोल चाहिए होगा, और गैस सिलेंडर जरूरी है खाना बनाने के लिए, गोल्ड सोना जरूरी नहीं होता है। आप याद करिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार देशवासियों को अपील करी थी, क्या कहा था उन्होंने, कहा था एक समय की रोटी छोड़ दो क्योंकि अनाज का संकट था। इस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी ने पहले से ही एक निवेदन किया है। मैं समझता हूं भारत के 140 करोड़ नागरिक कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं है? और मैं आपको दो आंकड़े देता हूं, हमारा जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक 30% का इजाफा हुआ है, ये गैस ऑयल का 30% का, मतलब जब हमने एलपीजी का कि हमें आयात में दिक्कत आ सकती है, हमने अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तो ये भी दिखाता है कि भारत आज आत्मनिर्भर भारत है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी से, केवल रिन्यूएबल एनर्जी से 44 मिलियन बैरल ऑयल और गैस बचा रहे हैं हम, ये भी पिछले 12 साल में हमने बदला है, जो पूरा एनवायरमेंट है उसी की वजह से। इसलिए साहिल जी एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, चुनौती के वक्त घर वालों में आपस में कोई मनमुटाव हो सकता है, हम सब घर वाले, भारत हमारा घर है। इस वक्त अफवाह फैलाना, भ्रम फैलाना, ये कहना भारत में संकट आ गया है,
2: कुल मिलाकर अभय दुबे जी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के तरफ से ये कहने की कोशिश है कि चुनौती है, संकट नहीं है, डराइएगा मत, और बार बार विदेश जाना भी कोई जरूरी नहीं है, मत जाइए ज्यादा बार विदेश।
4: साहिल जोशी जी, आज जब प्रधानमंत्री जी ने जब ये भाषण दिया ना, तो मुझे एकदम याद आया उनका बांसवाड़ा का 2024 का भाषण, देशवासियों ये कांग्रेस के लोग तुम्हारे मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। आज पता लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी ने नियोजित रूप से, जो सनातन धर्म में जिसकी पवित्रता है सर्वोच्च, उस पर बहुत बड़ा आघात किया। वो अखंड सौभाग्य की निशानी प्रधानमंत्री जी, क्या वो गरीब परिवार की बेटी, मिडिल क्लास की बेटी मंगलसूत्र भी नहीं खरीदे? और आपका दोस्त, उसकी बेटी 200 करोड़ रुपए की गोल्ड की टिश्यू की साड़ी पहने मेट गाला में, उसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है? मतलब बाबा जी गुलगुला खावे और गुड़ से परहेज बतावे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया था साहिल जोशी जी कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए या क्या करना चाहिए था। तो प्रधानमंत्री जी, जब आप सत्ता में आए थे, लाल किले की प्राचीर से मैंने आपका भाषण सुना था, आपने दो तेलों की बात की थी, एक क्रूड ऑयल की, एक एडेबल ऑयल की। आपने कहा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन मैं बढ़ाऊंगा ताकि भारत की जो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी हो कम हो जाए। 38 मिलियन मेट्रिक टन था जिस समय आप लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, आज कितना हुआ? 26 मिलियन टन रह गया प्रधानमंत्री जी, 26 मिलियन मेट्रिक टन रह गया। इतना बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन घट क्यों गया? एसपीआर की बात हुई, आपने स्ट्रेटेजिक जो हमारा रिजर्व है क्रूड ऑयल का, उस पेट्रोलियम रिजर्व, तीन जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2005 में, तीन स्ट्रेटेजिक रिजर्व का निर्माण किया था, वो पोद्दूर में किया था, मैंगलूर में किया था, विशाखापट्टनम में 5.3 मिलियन टन का। आपने अनाउंस किया कि 6.5 मिलियन टन का और हम बढ़ाएंगे, आज तक उसकी जमीन भी अधिग्रहित आपने प्रधानमंत्री जी नहीं की है। आप आइए, आपने अमेरिका कहने से ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया, वहां से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यह पूछा गया हिलेरी क्लिंटन के सामने कि पत्रकारों ने की क्या हिलेरी क्लिंटन आप पर प्रतिबंध लगाने आई है, तो ये जवाब था कांग्रेस पार्टी की साहसी सरकार का कि कोई देश किसी देश पर प्रतिबंध नहीं लगाता, वो यूनाइटेड नेशंस का काम है। खाद्य तेल की बात की प्रधानमंत्री जी, आपने कहा किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ा देना, मैं विदेश से खाने का तेल कम मंगाना चाहता हूं। 42% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन किसानों ने बढ़ा लिया और आपने इडेबल ऑयल का इंपोर्ट 46% बढ़ा लिया प्रधानमंत्री जी। और एक बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल पर पहली बार कर रहा हूं, ये दो बड़े धन्ना सेठ इस तेल के खेल में कूदे हैं, एक पतंजलि मंगाता है एक अडानी मंगाता है, आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएसीपी ने कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ने 25-26 की खरीफ रिपोर्ट में खुलासा किया है, नेपाल से जो पिछली साल 60,000 मेट्रिक टन मंगाया था सोयाबीन का ऑयल, वो 7,00,000 मेट्रिक टन, और नेपाल एक दाना सोयाबीन का उत्पादित नहीं करता है। कैसे मंगाया? क्योंकि वहां पर साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
2: लेकिन अभय दुबे जी
4: नहीं लगती साहब, एक सुनिए, एक आखिरी दो बात कहकर खत्म करूंगा साहिल जी, उसके बाद चाहे आप मुझे अवसर मत दीजिएगा। आपने विदेशी पर्यटन की बात की प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख होता है इस बात का, 23,000 उद्योगपति परमानेंट हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेश में चले गए अपना व्यापार लगाने, 15,00,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ दी, चीन से इंपोर्ट पर एक शब्द आपने नहीं कहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि चीन से जो इंपोर्ट है वो गैर जरूरी इंपोर्ट भी आप करने लगे प्रधानमंत्री जी, और अमेरिकन
2: अभय दुबे जी आज की स्थिति आप देख रहे हैं, पिछले 3 महीने से पूरी दुनिया किस संकट पर खड़ी आप भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा,
4: बहुत अच्छा,
2: आपके नेता भी उसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, और आज की स्थिति में
4: बहुत अच्छा,
2: भारत के आसपास के कई देश ऑस्टेरिटी के मेजर अपना रहे, कई देशों में इस तरीके के वादे किए गए और दावे भी किए गए, कहा गया है कि आप तेल बचाइए बचत करिए करके, वही बात प्रधानमंत्री भी कहने की कोशिश कर रहे,
4: बहुत
2: आपको लगता है कि इसके अलावा कोई चारा है आज की स्थिति में? चीन हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी देश इस तरीके की बात कर रहे हैं आज की स्थिति में।
4: मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा, देश के करोड़ों दर्शक जो मूर्धन्य पत्रकार साहिल जोशी जी का शो देख रहे हैं गौर से सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार में $147 पर बैरल तक क्रूड ऑयल पहुंच गया था, तब भी हमने 65 और 70 रुपए दाम रखे, जब हम सरकार छोड़ के गए तब $108 था, तब हम 1,64,000 करोड़ रुपए टैक्स से कलेक्ट करते, 60,000 करोड़ कलेक्ट करते थे और 1,64,000 खर्च करते थे करोड़,
2: आज की स्थिति में
4: अर्जित कर
2: पेट्रोल और
4: जब 20 डॉलर हो गया,
2: ऑयल के सप्लाई पर भी संकट है, सिर्फ प्राइस राइज का संकट नहीं है, ये संकट अलग है, आपके सरकार के समय का संकट अलग था, ये संकट अलग है अभय दुबे जी, आप मिक्स मत करिए दोनों चीजों को।
4: अरे सा
2: और चिदंबरम जी का भी बयान आ रहा है 2013 का कि जरा जरा सोना कम खरीदेगा, आपको भी याद होगा?
4: नहीं नहीं नहीं साहिल,
2: आपको भी याद होगा अभय दुबे जी,
4: मैं तो इस सरकार मैं इस सरकार को आईना इसलिए दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका में इतना सरेंडर कर दिया कि ईरान से क्रूड ऑयल बंद कर दिया, रशिया से क्रूड ऑयल लगातार रिड्यूस कर दिया, हम संकट में नहीं फंसते, अगर एपस्टीन फाइल में ये लोग नहीं फंसते तो भारतवर्ष संकट में नहीं फंसता, इन्होंने भारतवर्ष को संकट में डाल दिया अपनी सत्ता की।
2: गौरव भाटिया जी जवाब दीजिएगा,
4: $500 मिलियन का
2: विपक्ष को डील अमेरिका से होगी तो कि तब की हमारी इकोनॉमी की साइज और आज की इकोनॉमी की साइज में भी फर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी हमारी जो फैलाव हुआ है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क है, और उस वक्त का संकट सिर्फ प्राइस बढ़ने का संकट है, आज की स्थिति में सप्लाई चेन का भी संकट है। गौरव भाटिया जी लेकिन जवाब दीजिएगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 3 महीने पहले क्यों नहीं आपने कहा, अचानक अब जो आपका जो इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद आपने कहना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो कहने की कोशिश है उनकी। गौरव भाटिया जी
1: देखिए ऐसा है, मैं तो उम्मीद कर रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएंगे कि ये जो दो झूठे ट्वीट भ्रम फैलाने के लिए किए थे ये डिलीट क्यों किए गए कांग्रेस हेडक्वार्टर द्वारा, कोई उत्तर नहीं आया। इसका मतलब मान लिया कि चोरी करते हैं भ्रम फैलाते हैं, ठीक है छोड़िए आप उस बात को। दूसरी बात मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं सर, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, बल्कि आपको याद हो अभी 10 रुपए डीजल और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार ने इसलिए घटाई कि जो उपभोक्ता है उसके जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े
3: और दाम ना बढ़े पेट्रोल डीजल के। लेकिन चीन में जब से शुरू हुआ है ये युद्ध, करीब पेट्रोल का दाम जो है 23% बढ़ा है, अमेरिका में 45, कनाडा में 30 और ऑस्ट्रेलिया में 30, भारत में 0। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है?
2: नहीं बढ़ेगा ना इसके आगे,
3: सब विकसित आगे नहीं बढ़ेगा देश कहलाते हैं। नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा और फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, ठीक है? अब जब ये आंकड़ा मैं रखता हूं तो आप सवाल पूछते हैं आगे नहीं बढ़ेगा। पहली बात ये स्वीकारिए, 70 दिन में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, और चाहे गैस हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, ये जनता को मिलता रहा है, ये बड़ी बात है। तो पहली बात दाम नहीं बढ़ा, दूसरा सप्लाई पूरी थी। अब मुझे एक बात बताइए, कोविड की महामारी थी, हमने वैक्सीन बनाया, स्वदेशी वैक्सीन बनाया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल ने क्या कहा था, ये वैक्सीन अगर तुमने लगाया तो तुम मर जाओगे। और सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने छुप छुप के वो वैक्सीन लगा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी जनता को, देखो मैं लगा रहा हूं भारत में जो स्वदेशी वैक्सीन है भारत बायोटेक का, आप भी लगवाओ। क्या ये फर्क नहीं दिखाता कौन देश प्रेमी है, कौन गद्दार है, किसको जनता से मोहब्बत है, कौन सत्ता पाने के लिए ऐसा
4: करता है?
2: एक छोटा जी,
3: और तीसरी बात,
2: क्या इसके आगे पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे? आपने बात सही कही है, आपने एक बात सही कही है गौरव भाटिया जी, कि यूएस के अंदर 34% दाम बढ़े हैं, श्रीलंका के भीतर 33% दाम बढ़े हैं, पाकिस्तान में 52% दाम बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में 20% दाम बढ़े, भारत में अब तक दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन भय इस बात का है कि 10 या 15 तारीख के बाद दाम बढ़ सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि दाम नहीं बढ़ेंगे? अभय दुबे जी एक मिनट, गौरव भाटिया
4: साहिल जी,
3: अब साहिल जी देखिए, मैं एक चीज आपको और दिखा दूं, आपने समय दिया धन्यवाद। पी चिदम्बरम का बयान है जून 13, 2013 में, कह रहे भारतवासियों सोना ना खरीदना, हमारे पास फॉरेन
2: उसका जिक्र किया गौरव भाटिया जी, अरे फॉरेन सुना
3: नहीं बचा,
2: आज की स्थिति का बताइएगा।
3: धन्यवाद,
2: आज की स्थिति में अब दाम नहीं बढ़ेंगे हम कह सकते हैं क्या?
3: और मैं आभारी हूं।
2: हाँ
3: अच्छा ये बताइए कि जब युद्ध की परिस्थिति है तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता ये बताएगा कि दाम बढ़ेंगे कि नहीं? मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो भारत के हित में होगा वो कदम उठाए जाएंगे और जनता पे बोझ कम से कम हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है, जनता भी मजबूत है और देश का प्रधानमंत्री भी मजबूत है।
2: गारंटी नहीं है अनुराग भदौरिया,
4: एक सेकंड बस,
2: गारंटी कोई नहीं दे पा रहा
5: है। हम लोग बोल रहे हैं जी,
3: गारंटी तो आप नहीं दे सकते कि कल वाले शो में आप बैठे
5: ठीक नहीं है, आपने
3: आप दे सकते साहिल जी?
5: अरे
3: किसी को नहीं गारंटी, कौन दे सकता है?
2: सर मैं शो में बैठूंगा कि नहीं, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट, मैं शो में बैठूंगा कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और खास करके गरीब लोगों के लिए तो और भी बड़ी बात है, इसीलिए सवाल बैठता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर, मैं शो में बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा कोई मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि इस देश की जनता को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़कर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके लिए सवाल जायज है गौरव पाटिया जी, ये जरूरी है। चलिए अनुराग जी जवाब दीजिए, चलिए
3: पालन करें।
5: अरे साहिल जी,
3: जवाब आपने सुन लिया,
5: देखिए साहिल जी,
3: देश की जनता,
5: ये सवाल आपने गलत पूछ लिया कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होगा, ना वो देंगे आपको, क्योंकि उन्हें पता है क्या होने वाला है। आपको याद होगा 2021 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था तब कोरोना काल भी आया था, लेकिन किसी सरकार को नहीं याद आया, बीजेपी को, जब वो कोरोना, जब वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो गया तब कोरोना काल इनको याद आया, तब उस पर इन्होंने हड़बड़ी में कार्रवाई करना शुरू किया। इसी तरह से जब ईरान का युद्ध चल रहा था तो ये तो भाई सरकार का मतलब क्या होता है, दूर अंदेशा लगाना, पता चलाना कि आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप उसमें आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी जीते कि पश्चिम बंगाल पे कब्जा करना है, ईरान का युद्ध हो रहा है होने दीजिए, बाद में जब युद्ध जब आपका वहां चुनाव खत्म हो गया अचानक सरकार को याद आने लग गया कि हमें क्या क्या कटौती करनी है। अरे कटौती करनी थी तो वहां हेलीकॉप्टर जो दौड़ रहे थे, जो वहां पे जहाज चल रहे थे उस पर कटौती कर लेते ना, पश्चिम बंगाल में जो बड़े बड़े नेता जहाजों में घूम रहे थे वो पैसा जो खर्च कर रहे थे, वो जो डीजल पेट्रोल बर्बाद कर रहे थे वहां पे, जो डीजल पेट्रोल कह रहे हैं सॉरी जो फ्यूल बर्बाद कर रहे थे उसमें, वो उसमें कटौती कर देते, उसमें भी शेयर कर लेते, एक एक जहाज में 4-4 लोग जाते, हेलीकॉप्टर में 5-5 लोग जाके कम उड़ाते, वर्चुअल रैली कर लेते। अगर देश का भला सोच रहे थे तो, देश का भला सोचते तो वर्चुअल रैली कर लेते और आपका देश को एग्जाम्पल देते कि हम जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि जनता परेशान होगी तो हम परेशान होंगे, क्योंकि नेता नेता जो जनता होती है वो नेता बनाती है। नेता मौज करे, जनता को ज्ञान दे दिया जाए कि आप परेशानी झेल लो, हम तो हेलीकॉप्टर और यहां चार्टर में उड़ेंगे उड़ेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता को अपनी अपनी कटौती करनी पड़ेगी। कमाल की बात है ना। आप देखो मजेदार बात कर रहे थे, इन्होंने कितने 2014 से 2022 के बीच में इन्होंने कितने पीएसयू बेचे हैं, हिस्सेदारी बेची है, ओएनजीसी में हिस्सेदारी बेची, आईआरटीसी में हिस्सेदारी बेची, कोल इंडिया बेची, एलआईसी में बेची, एनटीपीसी में बेची, गेल में बेची, अब बचाई पावर ग्रेड में बेची। कम से कम 5.5 लाख रुपए इनको मिले, किसके लिए इस्तेमाल हुआ, किस जनता के उन्होंने से सुविधा दी, आपने हिस्सेदारी बेची सरकारी कंपनी, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ, पैसा सरकार को मिला लेकिन उसका फायदा किसी को नहीं मिला।
2: सवाल उठा रहा है 29 किलोमीटर,
5: एक मिनट साहिल जी बोलने दीजिए, साहिल जी 10 सेकंड और दीजिए। 29 किलोमीटर इन्होंने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, टोल कितना लगा दिया, 225 रुपए, मैंने जनता का ही खून चूसना है। इन्होंने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया, गंगा एक्सप्रेस बनाया 594 किलोमीटर का, टैक्स कितना लगा वहां पे, टोल टैक्स कितना लगा दिया, 1800 रुपए। अरे वसूलना है तो सरकारी अधिकारी है, जो मंत्री
2: है, सवाल ये है,
5: क्यों चलेंगे,
2: सवाल ये है,
5: बोलिए ना ओला करके
2: कि ऑस्टेरिटी ड्राइव सरकार खुद क्यों नहीं शुरू करती। कांग्रेस पार्टी वहां पर सवाल उठा रही है कि भव्य दिव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं, बड़े बड़े काफिले वहां पर निकल रहे हैं, क्या सरकार भी ऑस्टेरिटी के मेजर्स के बारे में सोचेगी कि नहीं सोचेगी, क्या सिर्फ जनता को करना है।
4: एक सवाल और साथ में पूछिए साहिल जी, एक सवाल और सिर्फ पूछ लीजिए साथ में, एक सेकंड का साहिल जी, एक सेकंड
2: पहले उनको जवाब देने दीजिए।
1: कांग्रेस के प्रवक्ता भी आ गए बात,
5: जो मंत्री चलते गाड़ियों में काम,
1: ये अच्छा नहीं लगता है, बीच में आके बार बार बोलना।
2: ठीक है अनुराग जी, आपका सवाल समझ में आ गया, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। चलिए
5: मेरा सवाल ये है साहिल जी, सारा दर्द जनता
2: एग्जैक्टली वही सवाल है, सारी तकलीफ जनता की उठाए, सरकार की ऑस्टेरिटी ड्राइव का क्या होगा। अनुराग भदौरिया वो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, गौरव भाटिया जी,
5: जनता अपनी दर्द को सहले लेकिन वो नहीं सहेंगे जिनको जनता ने।
1: देखिए साहिल जी शांत करा लीजिए, ये अच्छा नहीं लगता, दर्शक भी पता है इससे चिढ़ते हैं, तभी सपा की
2: सुन लिया आपने, आप जवाब दीजिए, पंचर
1: हो गई।
2: ठीक है,
1: ये बीच में बोलते चले जाते हैं, धन्यवाद
5: दीजिए चिड़िए।
1: सबसे पहले सपा के प्रवक्ता की बात का उत्तर तो मैं इस बात से देता हूं, आज सपा के सांसद हैं अजेंद्र सिंह लोधी मोहब्बत से, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो मैं टीवी चैनल पे नहीं कर सकता, और अखिलेश यादव की नफरती सोच ये जाहिर करता है। आप देखिएगा साहिल जी किस शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये निंदनीय भी है और जनता इनको जवाब भी देगी। अब सबसे बड़ी बात है, आपने कहा ऑस्टेरिटी मेजर्स, क्या भारतीय जनता पार्टी लीडर पालन करेंगे, मैं आपसे इतनी बात जरूर कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने लाल बत्ती लगा के, जब अखिलेश यादव राहुल गांधी घूमते थे जब प्रधानमंत्री बने तो लाल बत्ती गाड़ी से हटा दी, वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ है। हम सब जानते हैं कि उनका जीवन क्या है, वो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है सबके लिए, हम भी करेंगे क्योंकि देशवासी तो हम भी हैं। लेकिन ये बताइए, हमें कह रहे चार्टर पे गए चुनाव के प्रचार में, साहिल जी क्या टूटी साइकिल जो कि पंचर है अखिलेश यादव उस पे बैठ के ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल गए थे मिलने, हैं अपना चार्टर पे घूम रहे हैं, यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं
2: अनुराग भदौरिया।
1: दूसरी बात आपको मालूम है साहिल जी, जब गैस सिलेंडर, एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं,
5: मैं जवाब दे दूं,
1: मैं अपनी बात पूरी कर
2: लूं
1: साहिल जी, मैंने देखिए उनकी बात सुनी,
5: अब
1: मुझे अपनी बात पूरी करने दी
5: भारतीय साहिल जी,
1: नहीं ये गलत है साहिल जी,
5: सवाल पूछा,
1: मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
5: कितने,
1: मैं अपनी बात पूरी करूंगा उसके बाद वो उत्तर दे,
5: फ्यूल खर्च हो रहा था कौन है जिम्मेदार,
1: अरे छोड़ो भैया छोड़ो,
5: अगर इतनी
1: टूटी साइकिल पे गए थे ममता बनर्जी से मिलने, पंचर साइकिल पे गए थे अखिलेश यादव, बातें कर रहे हो, और ये है तुम्हारे समय का जो एक्सप्रेस वे बनाया जाता था, जैसे ही बना देखो गाड़ी कहाँ धस गई,
5: सरकार और ऐसे ही टूटी साइकिल धसी हुई, सारी जिम्मेदारी कटौती जनता की होगी,
1: मौज में रहेगी।
2: चलो ठीक है, जरा नवल शर्मा जी को भी इंक्लूड करना चाहिए, नवल शर्मा जी की पार्टी भी कहीं ना कहीं सरकार में शामिल है, अभय दुबे जी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले एक मिनट अनुराग जी, एक मिनट नवल शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि ऑस्टेरिटी ड्राइव अब सरकार को भी करनी चाहिए, ये बड़े बड़े रोड शोज हो या बाकी सारी चीजें हो, भव्य दिव्य कार्यक्रम हो, अगर जनता से उम्मीद की जा रही है कि आप मेट्रो से ट्रेवल करिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिएगा, उसका पालन उसका पालन क्या नेताओं को भी करना चाहिए, मंत्रियों को भी करना चाहिए और सभी को करना चाहिए? क्या उपाय?
6: जी जी जी जी, बस मुझे एक मिनट का समय दीजिएगा। पहली बात तो ये कि मैं इस पूरे डिस्कोर्स को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, और जब से ईरान अमेरिका युद्ध की शुरुआत हुई है, कैसे डर फैलाया जाता है, कैसे भ्रम फैलाया जाता है। कांग्रेस पार्टी तब से इसी अभियान में लगी हुई है, और अभी उसके प्रवक्ता अभय जी ने बड़ा ही क्लासिकल एग्जाम्पल पेश किया डर और दहशत की राजनीति का। तो देखिए, डर फैलाना आसान है, अर्थव्यवस्था को संभालना मुश्किल है, और प्रधानमंत्री मोदी जी अर्थव्यवस्था को संभालने में लगे हैं, क्योंकि मोदी जी केवल देश के प्रधानमंत्री मात्र नहीं हैं, बल्कि वह आत्मनिर्भर भारत और आत्मविश्वासी भारत की सोच के प्रतीक बन चुके हैं। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों से जन भागीदारी की अपील करता है, तो प्रायः कई देश ऐसा करते हैं। कोविड के दौरान भी यूरोप और अमेरिका ने अपने नागरिकों से ऐसी ही अपील की थी। रही बात आपके सवाल के जवाब की, तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का पद राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पद होता है, और यह सवाल कौन लोग उठा रहे हैं? यह सवाल उठा रहे हैं समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता, जरा उनसे पूछिए कि सैफई महोत्सव में क्या करते थे? गरीबों के बीच में दान वितरण करते थे सैफई महोत्सव में? पूरा इनका प्रशासनिक इतिहास राजकोष के दुरुपयोग से जुड़ा है, और कांग्रेस पार्टी पर तो कुछ कहना ही बेकार है, इसलिए कि एक्सचेकर का कैसे दुरुपयोग हो सकता है, भ्रष्टाचार के लंबे लंबे कारनामे, सरकारी धन का दुरुपयोग, यही कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। तो जब आप सरकार में थे तो सरकारी तो आप मितव्ययिता का अगर कुछ उदाहरण स्थापित करते तो बात समझ में आती। लेकिन आपने सवाल पूछा कि वर्तमान सरकार क्यों नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार मितव्ययिता लाने के लेवल पर काफी आगे बढ़ चुकी है। अरे अनुराग जी, बात सुन लीजिए, बात मत काटिए, मैंने आपकी बात को काटा नहीं। प्रधानमंत्री, आप एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी यदि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लागू करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देते हैं, तो क्या इससे मितव्ययिता को बढ़ावा नहीं मिलता है? दूसरी बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री जी के रोड शो पर आप यह आपत्ति उठाते हैं, तो सीधे सीधे यह संवैधानिक पद और उसकी गरिमा का उल्लंघन है।
7: कहीं ना कहीं नेताओं के काफिले देखने के बाद जनता भी आपको लगता है कि बात को सुनेगी और इस बात पर अमल करने की कोशिश करेगी, क्या आपको लगता है कि यह हो पाएगा नवल जी?
6: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
4: किया जा रहा है कि रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, नहीं तो
6: सच्चाई होनी चाहिए,
4: ये रिलायंस का दबाव है क्या सरकार पर?
6: सुनिए भाई साहब, मैंने आपकी बात को काटा नहीं, अपील करने वाले में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए, देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए,
4: और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोशिश करा दीजिए।
6: बस मैं आधा मिनट बोलूंगा साहिल भाई, मैं आधा मिनट बोलूंगा,
7: चलिए जल्दी से नवल शर्मा जी, जल्दी तरीके से नरेंद्र तनेजा जी के पास मुझे जाना है।
6: अगर यही अपील राहुल गांधी जी करते तो नकार खाने में तूती की आवाज बन जाती, लेकिन मोदी जी की प्रत्येक अपील को देश सावधानी से सुनता है, गंभीरता से सुनता है, क्योंकि मोदी जी ने अपने आचरण से जिस स्तर का देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर मोदी जी ने, मुझे पूरा विश्वास है कि देशवासी।
4: मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या रिलायंस के पेट्रोल पंप को बंद होने से बचाने के लिए यह भूमिका बनाई जा रही है? क्योंकि 2100 में मीडिया रिपोर्ट्स में देख रहा था 2100 पंप्स है जो 5500 करने वाले हैं।
7: संकट तो ये सभी पर है अभय दुबे जी, आज की स्थिति में सभी पेट्रोलियम कंपनियों पर आज की स्थिति में संकट है।
4: हम लोग हमारे से तो 40 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल रही मोदी सरकार,
1: मेरे साथी नरेंद्र जी
4: अब तक 40 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल चुकी है, 4 लाख पर
7: एक्सपोर्ट के पास भी चलेंगे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल चर्चा तो होती रहेगी। 3 महीने के बाद प्रधानमंत्री ने पब्लिक डोमेन में आखिरकार आकर इस बात को कहा है कि हमें थोड़ी सी ऑस्टेरिटी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि संकट कहीं ना कहीं घड़ी दिखाई दे रही है, चुनौती है, और उससे निपटने के लिए जनता को कहीं ना कहीं सबर रखना चाहिए। और कोई ऑप्शन है नरेंद्र तनेजा जी आज की स्थिति में?
1: देखिए, मैं आपके यहाँ पॉलिटिकल डिबेट हो रही है और मैं यहाँ एक न्यूट्रल एनर्जी एक्सपर्ट के रूप में बैठा हूं, मेरे विचार यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल और मेरे अपने हैं और ऊर्जा से संबंध रखते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री, आपने देखा, ये गौर करने वाली बात है कि वो अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के विजिट से पहले ये वक्तव्य आया है इसका, क्योंकि जो हम देख रहे हैं सारा जो डिस्ट्रप्शन है उसी इलाके में, जिसकी वजह से भारत ही नहीं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित है। अक्सर लोग चर्चा कर रहे हैं कि 20% वहां से ऑयल निकलता है, लेकिन जहां तक एशियन इकोनॉमीज की बात है उनका इफेक्ट उन पर बहुत ज्यादा है। फर्टिलाइजर भी वहां से 30% ज्यादा आता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो भी पूरी दुनिया में हो रहा है जिसमें भारत भी शामिल है, उस वजह से हम देख रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, या कोरिया हो, या वियतनाम हो, सबकी अर्थव्यवस्थाओं पर परेशानी आई है। सन 70 के दशक में पहला ऑयल शॉक आया था, सन 70 में, और उस समय हमने देखा था कि सरकार ने किस तरीके से उस स्थिति को निपटा था। पूरे देश के अंदर जो है बहुत सारे नए मेजर्स लिए गए थे, ऑस्टेरिटी की बात भी हुई थी, तमाम प्रतिबंध भी लगाए गए थे। कोई 70 दशक की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जहां तक इसको, दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, आपका तो पॉलिटिकल पैनल है, उसमें ये एक नजरिया ये होता है हम सारे चश्मे फेंक दें और खाली उसको राजनीति की नजर से देखें, जो सबसे आसान भी है और मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा मुश्किल। लेकिन हकीकत यह है, हकीकत यह है कि पूरी हम 90% तेल आया।
7: नरेंद्र जी, और एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्या यह कदम उठाने में हमसे देरी हुई? क्योंकि 3 महीने से इसकी चर्चा चल रही थी और बाकी देशों में ये उपाय पहले से शुरू हो गए थे, पहले 1 महीने के भीतर ही शुरू हो गए थे जब से युद्ध शुरू हो गया था। क्या एक तो ये कदम उठाने में देरी हो गई, और दूसरा क्या आपको लगता है कि तेल के दाम भारत में बढ़ेंगे?
1: बहुत अच्छा सवाल आपने किया।
7: नुकसान काफी होगा, 1600 से 1700 करोड़ का नुकसान डेली।
1: पहली सबसे बड़ी बात यह कि जो लार्ज इकोनॉमी है जिसमें चाइना शामिल है, उन सबके, क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज्यादा थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे थे, तेल के रिजर्व्स उनके पास थे, जापान ने भी यही किया, सबने जहां तक संभव हुआ उसको जो है रोका, थामा। लेकिन यह कि जिसको शील्ड किया आम उपभोक्ता को और अर्थव्यवस्था को, लेकिन एक सीमा के बाद हम देख रहे हैं कि जापान में भी हरकत है, चाइना में भी हरकत है, मुश्किल वहां पे आ रही है। जो स्मॉल इकोनॉमी थी जैसे पाकिस्तान, उनके पास क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी, वहां हमने देखा कि तुरंत जो है कीमतें ऊपर
7: मिलाकर आज स्थिति में किसी भी देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती होगी कि ऑयल के सप्लाई को कैसे मेंटेन करें और उसके साथ साथ जो दाम बढ़ रहे हैं उसका असर जनता पर कैसे पास ऑन ना किया जाए, और उसी पर कहीं ना कहीं सरकार का भी ध्यान होगा, इस उम्मीद के साथ में। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
4: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Hint, bade aaram se.
4: Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans.
6: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
8: Vimal, bolo zuban kesri.
9: 23 और 29 अप्रैल वोटिंग।
10: 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग।
11: ये बढ़ा हुआ मतदान आखिर किस तरफ जाएगा?
9: 4 मई काउंटिंग।
10: भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी पीछे हो गई हैं।
12: रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए।
9: 8 मई CM का ऐलान।
13: शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे।
9: 9 मई शपथ।
14: शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते थे।
9: यूट्यूब पर सबसे ज्यादा व्यूअर्स, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट, सर्च में नंबर 1, गूगल ट्रेंड्स में नंबर 1, लाइव स्ट्रीम में सबसे आगे। टीवी हो, डिजिटल हो, यूट्यूब हो या सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर आज तक रहा चुनाव में सबसे आगे। चुनाव मतलब सिर्फ आज तक।
15: देखिए, सोना नहीं खरीदना चलेगा, जो ट्रेवल है बाहर का वो भी चल जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है जाने की हम लोगों को। एनर्जी में क्या है, अगर हम पूलिंग करना भी चाहें ना, तो हर किसी के अपने टाइमिंग्स हैं ऑफिस के। वो कोशिश तो हम कर सकते हैं पूरा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं उनको, उनके साथ मैं कारपूल करूं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू कैन से कि कारपूलिंग से एक तो पॉल्यूशन में भी फर्क पड़ता है और एनर्जी तो सेव होगी होगी।
16: हम डेफिनेटली इसके साथ है, क्योंकि अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है। हम कार पुलिंग भी कर लेंगे एज अ कोई भी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री हम लोगों को बताते हैं, मोदी जी हमको बताते हैं, हम डेफिनेटली उसके साथ रहेंगे। और एज अ इंडियन सिटीजन हमारा काम यह है कि हम एनर्जी सेविंग करें। एनर्जी सेविंग हर जगह से हो सकती है, आपका डीजल एनर्जी सेविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जो भी चीजें हम कर सकते हैं या अपने देश के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे।
15: गोल्ड का इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
17: आपको लग रहा है कि सभी नागरिक मिल करके इस संकट से, जो ग्लोबल क्राइसिस है, इससे हम मुश्किल से बाहर आ सकते हैं?
15: ऑफकोर्स, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको कोई एक रास्ता दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करके बाहर आ जाएंगे।
18: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
20: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
21: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
5: इसमें माइक्रोफाइबर है
4: माइक्रोफाइबर यानी
5: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
4: हमारे सीमेंट में नहीं है
5: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
6: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
8: मध्य एशिया में तनाव के हालात का असर पूरी दुनिया पर है तो भारत भी उसे अछूता नहीं है और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि अब ये वक्त है कि लोग भी इस एनर्जी क्राइसिस में सामने आए ऊर्जा की बचत की जरूरत है खासकर पेट्रोल डीजल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कम से कम एक साल के लिए जो सोने की खरीद है उस पर रोक लगाएं उसको कोशिश करें और ये जरूरी इसलिए है ताकि मुद्रा भंडार जो है उसे बचाया जा सके तेल कंपनियां हवाला दे रही हैं कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है और खासकर पिछले डेढ़ महीनों की जो स्थिति है उसमें भारत पर भी असर पड़ा है खासकर पेट्रोल डीजल जिसका आयात होता है वहां हॉर्मुज के चलते दरअसल उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है गैस की किल्लत के चलते छोटी और मध्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी असर पड़ा है और ऐसे में वो किल्लत और गंभीर ना हो क्या ये सही समय है कि अब एनर्जी लॉकडाउन जैसे वो कदम जो दुनिया के दूसरों में खासकर एशियाई देशों ने उठाए चाहे बांग्लादेश हो चाहे नेपाल हो श्रीलंका हो मालदीव्स हो और अब ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने कई स्तर पर कुछ कटौती करनी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके लोगों की इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है विपक्ष इसको लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी देरी से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि संकट तो डेढ़ महीने से गहरा रहा था जाहिर है एक तरफ कदम उठाने की जरूरत है दूसरी तरफ इस पर सियासत है इन सब के बीच जो ऊर्जा संकट है जो विश्व वैश्विक संकट है भारत भी अब उसकी चपेट में है दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक
9: देश के लोग एक साल तक सोने की खरीदारी न करें भले ही पीएम मोदी की ये अपील ये सलाह इसलिए है कि लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में योगदान दें लेकिन इस बयान के बाद सोने को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं पहला सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार सोने की खरीद को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है सवाल ये भी कि जिन घरों में आने वाले दिनों या कुछ महीनों में शादियां हैं वो लोग क्या करेंगे बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा और क्या सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सोने के आयात शुल्क में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया है हालांकि कई जानकार पीएम मोदी के बयान को आने वाले संभावित कदमों का संकेत मान रहे हैं
10: मोदी ने कह तो दिया एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए पर घर में फंक्शन रहते हैं किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है
9: दरअसल देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची रहें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार अब गैर जरूरी आयात को सीमित करने के विकल्पों पर नजर रख रही है। ऐसे में सरकार अगर सोने पर आयात शुल्क बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं और मांग कुछ कम हो सकती है। सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है ताकि डॉलर की बचत हो और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम किया जा सके। उधर पीएम मोदी के इस अपील का सीधा असर सोना कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। चूंकि अभी शादियों का सीजन है, ऐसे में सोने की बिक्री ना होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक साल में अमूमन 700 से 800 टन से अधिक सोने की खपत होती है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील का सीधा असर इस बड़े कारोबार पर पड़ सकता है। देश में साल भर में सोने की जितनी मांग होती है उसका 60 से 70 फीसदी हिस्सा शादियों के सीजन में बिकता है। चूंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई में भी शादियों के मुहूर्त, ऐसे में सोने की खरीद में कमी आई तो कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
11: लोग अपनी शादियों में सोना कम लेवे, इन्वेस्टमेंट कम करें, ये जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब मैंने बोल रहा हूँ, गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो ज्वेलरी शोरूम है उनकी रोजी भी कैसे, रोजी रोटी कैसे चलेगी, और उनके कारीगर जो उनके भरोसे हैं उनके भी काम कैसा चलेगा, ये भी सोचना जरूरी।
9: एक साल तक सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सवाल कई, चर्चाएं कई हैं, लेकिन पीएम की ओर से ये अपील देश की जरूरत को देखते हुए ही की गई है और उम्मीद जताई गई है कि इस अपील का असर होगा। लोगों के सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो,

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ेगा हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जो भी चीजें हम अपने देश के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे।
1: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता, और इससे लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं।
2: अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको कोई एक रास्ता दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करके बाहर आ जाएंगे।
3: कारोबार स्लो होने का खतरा है, बिल्कुल है,

नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओमकश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए 7 उपाय बताए। विपक्ष ने बवंडर खड़ा कर दिया है और विपक्ष ने पैनिक बटन दबा दिया है। लेकिन आज जिन बातों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं, एक एक करके आपको बता देते हैं। पहली बात, जो 7 सूत्रीय प्लान प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो देश को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना चाहते हैं। 1 साल सोना खरीदने से बचे, पेट्रोल डीजल बचाए, वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल हो, कार पूलिंग करें किसी तरह से पेट्रोल डीजल, केमिकल फर्टिलाइजर्स भी घटाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े, खाद्य तेल खपत कम करें जो आप भोजन में इस्तेमाल करते हैं। 5वां, 1 साल विदेश यात्रा कम करें, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। 6ठी बात जो उन्होंने कही है वो है विदेशी ब्रांड कम इस्तेमाल करें, अपने देश का मेड इन इंडिया का इस्तेमाल करें, और 7वां, जहां संभव वहां पर वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये 7 सूत्रीय प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उपाय सुझाए हैं। विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया। वैसे तो पश्चिम एशिया में युद्ध के संकट के बावजूद भारत में स्थिति सामान्य है, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने तेल खपत कम करने से लेकर सोना खरीदने से बचने, विदेश घूमने जाना कम करने तक का सुझाव दिया, तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। विपक्ष के मुताबिक 5 राज्यों के चुनाव की वजह से जानबूझकर संकट पर आंखें मूंदी रखी गई। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की सलाह के बहाने विपक्ष मौका ढूंढ रहा है? क्या ये सलाह बड़े काम की है या जैसा विपक्ष कह रहा है जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना है? पीएम के 7 उपाय, विपक्ष का पैनिक बटन, इसी पर हम करेंगे चर्चा। सुधांशु त्रिवेदी सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ेंगे, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए।

0: साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
1: एक साल तक सोना खरीदने से बचे, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री के ये उस सात सूत्री उपायों में से एक है जो उन्होंने पश्चिम एशिया के युद्ध से पैदा हुए हालात पर सुझाए हैं। सोना खरीद से बचने के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, केमिकल फर्टिलाइजर्स की खपत आधा कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने, खाने के तेल का उपयोग घटाने, एक साल तक विदेश यात्रा कम करने, विदेशी ब्रांडेड सामानों का इस्तेमाल घटाने और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की।
0: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
1: पश्चिम एशिया के युद्ध से देश के खजाने पर बोझ तो 28 फरवरी से लगातार है, लेकिन जब 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने ये अपील की है तो विपक्ष इसे सरकार की नाकामी से जोड़ने में पीछे नहीं रहा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं।

0: अखिलेश यादव का बयान है कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
1: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है, वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात होगी, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेंस एट होम मैं कहना चाहूंगा। मोदी जी तो ये मान रहे हैं कि जब भी संकट आए तो जिम्मेवारी सरकार की नहीं है, वो जनता की है।
2: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की ना तो नीति सही है और ना नियत। इस बात में दो राय नहीं कि जब देश पश्चिम एशिया के संकट से बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव बाद अचानक प्रधानमंत्री की अपील चौंका जरूर रही है। लेकिन सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
3: एक्सपेंडिचर ऑन डीजल पेट्रोल फॉर आवर एक्सपेंडिचर ऑन एक्सटर्नल ट्रैवल फॉर एनी एक्सपेंडिचर व्हिच कैन हैव इंप्लिकेशंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज वी शुड ट्राई एंड कंसर्व।
4: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में पश्चिम एशिया के संकट पर हाई लेवल बैठक भी की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री की अपील के बाद पूरे देश में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं।
5: अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है देश के लिए कुछ करना है तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है, हम कार पुलिंग भी कर लेंगे।
6: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
7: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कुछ संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
8: कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास,
9: अगर सोना नहीं लेंगे तो ये अपील गलत है थोड़ी,
7: और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा है।
10: ऑलरेडी जो गोल्ड इंडिया में है उसको ही हम सर्कुलेट करेंगे, उससे हमारा रोजगार भी चलेगा और इंडिया की डिमांड्स भी मीट होती रहेंगी।
0: युद्ध के बाद पिछले ढाई महीनों में दुनिया के कई देशों में साफ संकट नजर आया है। अब तक भारत में स्थिति सामान्य है, ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के मायने हर कोई अपने अपने तरह से लगा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आलोक शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आशुतोष जी जो कि आशुतोष वर्मा पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर का पक्ष रखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो नंबर्स आपको दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले तो देखिए युद्ध की जब 28 फरवरी को शुरुआत हुई उससे पहले जो मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो था $728.49 अरब। और आज जब आप इस महीने के एक तारीख का देखते हैं 1 मई को, तो वो $690.69 अरब हो गया है। यानी लगभग समझिए कि 30 और इधर का 28 और इधर का 10, तो समझ लीजिए कि $38 अरब के आसपास का उसमें परिवर्तन है। और ये विदेशी मुद्रा भंडार की हम बात कर रहे हैं, ये धीरे धीरे देश पर किस तरह का असर डाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हॉर्मुज संकट से जो तेल आयात घटा है इसको भी समझने की जरूरत है। जब आप देखेंगे कि फरवरी 2026 में, मार्च में, अप्रैल में, तीन हम आपके लिए महीनों का बता रहे हैं, तो 53 लाख बैरल हम लेते थे फरवरी में, वो मार्च में हो गया 45 लाख बैरल, अगले महीने 45 लाख बैरल, और उसके महीने 1 बैरल और 1 लाख बैरल घट गया है। ये प्रतिदिन का हम आपको बता रहे हैं, 44 लाख बैरल प्रतिदिन। तो ये धीरे धीरे जो बदलाव है जिसकी वजह से ये तमाम बातें कही जा रही है। लेकिन सुधांशु जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, चुनाव, चुनावी प्रचार और उन सब में तो कुछ लगा ही नहीं कि ऐसा कोई संकट देश में है। उसके पहले तो आप लोगों ने बड़ा एहसास ही नहीं होने दिया जनता को, जिस तरह से ये वहां पर रैलियां, बड़े बड़े आयोजन, खूब गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर से उधर, चुनाव प्रचार में तो आपने पता ही नहीं चलने दिया, कमाल कर दिया। और उसके फौरन बाद अब ये तमाम जिम्मेदारियां याद आ रही हैं और ये स्थिति आ रही है, ये स्थिति तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सुधांशु जी,
11: देखिए अंजना जी, यदि हमारा विपक्ष कोई ऐसा कमाल का सवाल पूछे तो उसके जमाल और जलाल के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। कारण क्या है? फरवरी में युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद एक युद्ध विराम की स्थिति आई कि नहीं पिछले 3-4 हफ्तों में? तो लगा कि स्थितियां शांति और सामान्य की तरफ जा रही है। अब ये बताइए, पुनः युद्ध की तरफ स्थिति बढ़ रही है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। यदि कोई भी आपके लाखों दर्शकों में से कहे, और इस बार जो परिस्थिति है, जो थोड़ा बहुत भी समझ रखता है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या परिस्थिति की, अब अगर इस बार युद्ध हुआ तो वो बहुत भयानक और निर्णायक परिस्थिति की तरफ बढ़ सकता है। तो ये कुछ कुछ वैसा है जैसे सुनामी या तूफान आने से पिछले समय सरकार एक सावधानी बरतने की हिदायत देती है कि ऐसी ऐसी संभावना है तो घर से कम निकलें, आवश्यकता होने पर ही निकलें। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है और ये कर रही है। वो उस व्यक्ति के लिए, उस गांव के लिए, उस शहर के लिए, उस जिले के लिए और उस क्षेत्र की व्यवस्था और भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब बताइए, हमारे जो विद्वान प्रवक्ता लोग बैठे हैं, जरा मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आज भारत दुनिया का एक क्षेत्र बताइए जहां युद्ध ना हो रहा हो। रशिया यूक्रेन की लड़ाई 4 साल से चल रही है, यूरोप ऑलरेडी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है, इसराइल और गाजा, इसराइल लेबनान चल रहा, पूरा मिडिल ईस्ट लड़ाई में है, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे शांतिपूर्ण देश भी लड़ाई लड़ चुके हैं, चीन के साथ ताइवान की समस्या चल रही है, और ऊर्जा संकट की समस्या दुनिया के बड़े बड़े देशों में कैसी है कि अमेरिका में, मैं आपके दर्शकों से कहता हूं अभी जाके अपना अपना नेट खोलें और देखें कैलिफोर्निया में आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 140 रुपए का है। अमेरिका की बात कर रहा हूं। जब से युद्ध हुआ है पेट्रोल के दाम 40% से ऊपर बढ़े हैं और डीजल के 48% बढ़े हैं, और यूरोप में मिनिमम 10% से लेकर 20% बढ़े हैं, एशिया में 30 से लेकर 40%, और अफ्रीकन कंट्रीज में 60% तक बढ़े, भारत में 1% नहीं बढ़ा है। तो इसलिए सिर्फ एक सावधानी बरतने के लिए, एक सजगता बरतने के लिए, एक सतर्कता बरतने के लिए यह कहा गया है। और फिर मैं एक दूसरा पक्ष भी रखना चाहता हूं अंजना जी, जिनके दौरे हुकूमत में सोना गिरवी रख दिया गया, वो कह रहे हैं कि अगर सोने में मितव्ययता रखो तो बहुत बड़ी समस्या है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले अंजना जी यही वो लोग थे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के जो कहते थे भारत की शादियों में बर्बादी होती है पैसे की, याद करिए। अब वो अब कहते हैं कि 6 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है भारत की शादियों, अरे वो बर्बादी होती है, फिजूल खर्ची होती है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं इंडियन फूड हैबिट्स खराब है क्योंकि डीप फ्राइड होता है। नहीं, मैं एक बात और कह दूं, राहुल गांधी जी का वीडियो अवेलेबल है, उनसे पूछा गया था कि आपका सबसे अच्छा खाना कहां है, तो उन्होंने कहा आई हेट कार्ब्स, मैं तो प्रोटीन की डाइट लेना प्रेफर करता हूं। तब ये लोग कहते थे पूड़ी कचौड़ी समोसा और पकौड़ी ये तो बहुत अच्छी डाइट्स नहीं है, डीप फ्राइड तो यही होते हैं जिनमें ऑयल का प्रयोग होता है। यानी जब जैसा मौका मिले वैसा भारतीय समाज और भारतीय व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करने का है। और विपक्ष का उद्देश्य लगता है कि जैसे सामाजिक और राजनीतिक अराजकता उत्पन्न करने में असफल रहे तो अब आर्थिक और ऊर्जा संबंधी अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील दिख रहे हैं।
0: ठीक है आलोक जी, सवाल पूछ सकती हूँ या कुछ सुनाना है? पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब सुन लीजिए। पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, सवाल सुनिए। सवाल है कि विदेशी मुद्रा भंडार इस युद्ध के बाद हम देख रहे हैं लगभग 38 अरब डॉलर के आसपास उसमें घटा हुआ, क्योंकि हम अपना सोना भी देखिए, ज्यादातर सोना जो हम बाहर से खरीदते हैं देश के अंदर उत्पादन बहुत कम है, हम डॉलर्स में जो जो लेते हैं वो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो भी बेसिक इकोनॉमिक समझता है वो ये देख पाएगा, ये नंबर्स है 27 फरवरी युद्ध के पहले और 1 मई युद्ध के बाद। अब ऐसे में अगर एहतियाती तौर पर ये कदम उठाने की बात की जा रही है तो इसमें क्यों इतना आप लोगों को, विपक्ष को पेट में दर्द हो रहा है? अब ये सब चाहे वो सोना हो, सोना का भी वजह आप समझ ही रहे होंगे, सोने में लगभग 80-90% हम बाहर से लेते हैं, आयात करते हैं, देश के अंदर उतना उत्पादन है नहीं, ऐसे में हम जब जब बाहर से लेंगे तो हम उसके बदले में डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, तो फिर इसमें क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है?
12: देखिए प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और विपक्ष के पेट में दर्द नहीं है, पूरे देश के पेट में दर्द कर रखा है, केवल अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। 144 महीने हो गए इस सरकार को, 144 महीने में से 140 महीने केवल 4 महीनों को छोड़ दीजिए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। जिस मोदी सरकार ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार भर दिए हमने, उसका 144 में से 140 महीने बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है। इसलिए पूरे देश पूछना चाहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, अच्छे दिन, अच्छे दिन। दिक्कत यह है कि मोदी जी को पूरा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ जब पूरा देश आर्थिक संकट में झोंक दिया। अभी तक उनको 2.5 महीने से, जब से 3 महीने से युद्ध चल रहा था, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनको समझ नहीं आया था, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है, वो तो इंसान है ही नहीं, वो तो परमात्मा से पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं। अभी सुधांशु भाई ने कहा कि वहां 2% बढ़ गया, वहां 10%, वहां 20%, और भारत में कुछ बढ़ा ही नहीं। 1060 रुपये कमर्शियल गैस के बढ़ा दिए, जनवरी से अगर देखें तो दुगने दाम हो गए, 1518 से लेकर वो 3100 रुपये पर चले गए। इनको परसेंटेज ही कैलकुलेट करने नहीं आए। दुर्भाग्य ये है, ये कहावत है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मोदी जी जैसा ज्ञान देखते हैं, जैसा मौका देखते हैं, वैसा भाषण दे देते हैं। बिल्कुल सुधांशु भाई ने सही कहा, आप देखिए ना, ये उनका अभी 6 बजे भाषण दिया कि पूरे देश को उपदेश दे डाला उन्होंने।
13: साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा शहरों में जहां।
12: 6 बजे उपदेश दिया और 9 बजे अपना पूरा काफिला लारा लश्कर लेकर चल दिए, और आज तो हवाई जहाज से पूरा, मतलब जो है उन्होंने तेल बचाने का डेमो दिया कि कैसे तेल बचाया जा सकता है। मोदी जी, आपके तो कैमरामैन भी अगर साथ चलना छोड़ दें तो देश का भला हो जाएगा। 50-60 तो कैमरामैन साथ लेकर चलते हैं आप। खैर, दिक्कत यह है कि जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ो, सरकार की नाकामी को छिपाओ और खामियाजा जनता भुगते। जो पूरा भाषण है वो अपनी नाकामी का सबूत है पूरी तरह से। रूपी वर्सेस डॉलर क्या पहले नहीं गिर रहा था, जब हम बार बार कहते थे? क्या युद्ध के बाद ही रुपया गिरा है? आज जो हालत है, जिस दिन आपने ये भाषण दिया था, इससे पहला एक आधा घंटे का भाषण जिसमें कांग्रेस को कोसा था, उसी दिन आज स्टर्लिंग पौंड 112 रुपये पर चला गया है। आज हमारी करेंसी, आप देखिए श्रीलंका, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान, जिनकी उनकी अपनी अपनी करेंसी को वो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन हमारे यहां पर तो वित्त मंत्री ऐसी बैठी है, वो कह रही है कि नहीं नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। अरे एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर को हटा देते, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 3 महीने में, वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, और देश को आप लोगों ने महंगाई में झोंक दिया है पूरी तरह से। आपने 2017 के बाद एक भी मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बढ़ाई 2017 के बाद,
0: क्या
12: बढ़ाई गई है? जिस दिन युद्ध शुरू हुआ उस दिन 75 दिन का स्टोरेज था। एक मिनट अंजना जी, में जिस दिन युद्ध शुरू हुआ 75 दिन का स्टोरेज था हमारे पास, आज 45 दिन का स्टोरेज है। जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि आपने रशिया से तेल इंपोर्ट करना छोड़ दिया। अमेरिका ने कहा कि मोदी जी जाइए, 1 महीना खरीद लीजिए, मैं छूट देता हूं आपको, आपने फिर खरीदना शुरू कर दिया। इस देश की सरकार के पास न विदेश नीति है, न अर्थ नीति है, केवल प्रचार नीति है। केवल मोदी जी प्रचार करना जानते हैं। अभी तक 2.5 महीने में समझ नहीं आया, बड़े बड़े काफिले चल रहे थे, 2 दिन पहले कलकत्ता में पूरे अपने तमाम जितने चीफ मिनिस्टर थे सबको वहां बुलाया था, वो तो पैदल गए थे, और मोदी जी का काफिला तो गन्ने के रस्ते चलता
0: है, उसमें तो पेट्रोलियम डलता नहीं। ये सारे जो हवाई जहाज, आलोक जी एक काउंटर क्वेश्चन भी करने दीजिए। अच्छा, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं,
12: मोदी जी देश नहीं है,
0: अभी कनेक्शन उनका कट गया है,
12: देश नहीं है।
0: अरे एक सेकंड, आराम से आराम से, आप भी देश नहीं है कि आप जो बोल रहे वही सत्य वचन? तो सुनिए ना, मेरी एक बात तो सुनिए आलोक जी, एक बात तो, एक सवाल का तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा का पूरा केंद्रित अब ये पूरा आपका बयान हो गया है प्रधानमंत्री मोदी पर, कि उनका काफिला जा रहा है, उनका गाड़ी जा रही है, उनका चौपर जा रहा है। ऐसे राहुल गांधी का हिसाब निकालिएगा, राहुल गांधी के विदेशी दौरों का हिसाब निकालिएगा, इसको पर्सनल मत बनाइए। विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति दिख रही है, युद्ध का असर हो रहा है, ये युद्ध भारत ने नहीं किया है, ये युद्ध दो अन्यथा देश लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बात हो रही है, अगर सुधांशु जी कनेक्ट हो जाते हैं तो दिखाइएगा, वो इनका जवाब दें, तो इसमें क्या दिक्कत है? उसके बाद मैं आशुतोष जी और उनके पास जाऊंगे।
12: देखिए मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है कि रुपए को भी बचाना चाहिए था डॉलर की तुलना में, एक्सपोर्ट को बचाना चाहिए था। गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट लगभग 1.5 लाख करोड़ पर मंथ का है, वो बिल्कुल डाउन है। सरकार की क्या पॉलिसी है उस पर कोई जवाब नहीं है सरकार का। एनर्जी सिक्योरिटी पे कोई जवाब नहीं है और आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी जवाब नहीं रहेगा।
0: ठीक है,
12: खाद कम कर दो। अरे भाई, प्रोडक्शन जो कम होगा उससे कौन जिम्मेदारी भरतेगा? अगर खाद कम करने से प्रोडक्शन कम होगा, किसान की आय घटेगी, उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने तो कहा था 2022 में किसान की आय दुगनी कर दूंगा मैं, क्या हुआ?
0: मंगल सूत्र 2024
12: में कह दिया था मंगल सूत्र छीन लेंगे विपक्ष वाले। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी ने छीन लिया आज मंगल सूत्र। 2-2 लाख रुपए तोले तक सोना चला गया जब सरकार सो रही थी, ये 4 लाख रुपए तोले पे, 4 लाख रुपए किलो पे चांदी चली गई और उसमें वापस 2 लाख पर आ गई। सरकार सो रही थी क्या?
0: आलोक जी,
12: सरकार की तरफ
0: देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है ना, सुनिए आलोक जी, इस देश में जब जब तेल की कीमतें बढ़ी है, यूपीए 1 में भी मैंने रिपोर्टिंग की है, यूपीए 2 में भी की है, एनडीए 1, एनडीए 2, एनडीए 3, एक ही कारण बताया जाता है, विदेशी वजहों की वजह से हो रहा है। और ऐसे में जब सोने की कीमत में क्या है, भारत अपना जो सोने की जरूरत है उसका 90% से अधिक हिस्सा विदेशों से आयात करता है, क्योंकि देश में घरेलू उत्पाद, ताजा आंकड़े हम दिखा देते हैं आपको, जिनके अनुसार भारत मुख्य रूप से निम्नलिखित देशों से सोना आयात करता है। स्विट्जरलैंड, मैं आ रही हूं स्विट्जरलैंड से लेता है सबसे ज्यादा, वहां से वो अपना सोना लगभग 40%। अब जब आप अन्य देशों से खरीदते हैं, जब आप उसमें डॉलर का भुगतान करते हैं, तो जाहिर तौर पर ये आपके फॉरेक्स को अफेक्ट करता है। इट्स अ रियल प्रॉब्लम वॉर सिचुएशन, जो कि भारत ने शुरू नहीं किया इस युद्ध को। हाँ, छोटा सा जवाब, क्योंकि बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं।
12: बहुत अच्छा सवाल पूछा अंजना जी आपने। 1 साल पहले मोदी जी ने इसी संसद में खड़े होकर कहा था, पंडित नेहरू पर तंज कसा था कि पहले प्रधानमंत्री कहते थे कि वॉर की वजह से महंगाई हो जाती है। मोदी जी शायद भूल गए थे कि अब उनके टाइम पे भी जवाब देना पड़ेगा। दुर्भाग्य यह है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वॉर की वजह से केवल ऐसा हो गया, अरे भाई, रशिया से तो हम रुपए में खरीद रहे थे, ईरान से तो तेल हम रुपये में खरीद रहे थे, क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज एप्स्टीन फाइल वाला पेट्रोलियम मिनिस्टर है। वो नहीं बता रहे आप, वो भी बताइए कि अगर अमेरिका की डील जो है उसका पूरे देश को नहीं पता है कि क्या अमेरिका के साथ डील की है, वो छन छन के आ रही है।
0: ठीक है, चलिए,
12: तो अंजना जी को भी नहीं पता, अगर डील की कॉपी हो तो मुझे जरूर भेजिएगा अंजना जी।
0: हाँ, जब डील हुई नहीं है तो आपको पता है कि डील हो गई, अभी तो सिर्फ शर्तें बताई गई थी। आशुतोष जी, लेकिन मोदी से नफरत के चक्कर में एक सांसद आपके अब शब्द ऐसा बोल देते हैं, आइए आपको सुना देते हैं एक बार, पहले आशुतोष जी उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। दिखाइए भाई, आपके सांसद जी बीप साउंड हमें लगाएंगे, हम तो गाली दिखा नहीं सकते ना टीवी पे, आपके सांसद जरूर बोल सकते हैं, माननीय सांसद है देश के, सुनिए।
14: नहीं, मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, पेट्रोल की खपत कम करें, सोना ना खरीदें, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और ना आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा।
0: अजेंद्र सिंह लोधी, सांसद हमीरपुर, पता नहीं आपको पता चला या नहीं कि क्या गाली उन्होंने दी है, लेकिन हम लोग तो दिखा नहीं सकते टीवी पर। अब यही हो गया है क्या, मोदी नफरत में कुछ भी बोला जाएगा?
15: अंजना जी देखिए, गाली क्या कोई व्यक्ति तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, जिसने बोला वो गलत बोला, लेकिन एक आम इंसान की और एक कम से कम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हजारों लाखों वोट देके जिताया है, तो उसका भी कुछ चीज होती है जो बात रख सकता है। अफसोस यह है कि जब विपक्ष बात रखता है तो उनको मोदी विरोध दिखता है, लेकिन देश का विरोध जो प्रधानमंत्री बैठ के कर रहे हैं वो कौन करेगा? हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, सोने पे बात कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रही हैं, और कल मोदी जी ने कहा कि सोना कम खरीदो, लेकिन ये बड़ी अजीब सा दोहरापन है और दोगलापन है कि देश हित में सोना तो कम खरीदो, लेकिन आरबीआई लगातार सोना वापस ला रही है और पिछले 3 सालों में आरबीआई ने 280 टन से ज्यादा सोना भारत वापस लाया है। हमारी विदेशी मुद्रा का लगभग 16.7% अब सोना हमारे पास में है। इस समय हमारे पास लगभग 880.5 मेट्रिक टन सोना भारत में है। तब सोना हम क्यों कम खरीदे? जब सरकार लगातार सोना खरीद रही थी तो हम क्यों खरीदें? आपने एलपीजी घरेलू उत्पादन की बात करी, दूरदर्शिता कब थी? और मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया में वॉर चल रहा है वैश्विक, और आपने भी उसकी कहा हाँ हाँ ऐसे ही होता है। यूक्रेन का तो वॉर चल रहा है 2014 से और फुल स्केल वॉर हुआ है 2022 से। 2022 में आपको आंकड़ा है कि मोदी जी लगभग अपने ऊपर जो है विदेशी यात्राओं में लगभग 55 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे, 2023 में बढ़ा के 93 करोड़ कर दिया, 2024 में उनकी विदेशी यात्रा पे 109 करोड़ हो गया, 2025 में 175 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 10 साल में 99 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, मतलब हर महीने एक यात्रा, हर महीने, और टोटल खर्च आता है 800 करोड़। लेकिन हम भारतवासी नहीं जाएंगे विदेश, क्योंकि वो जरूरी है। एक कन्वॉय में 45 से ऊपर की गाड़ियां, एक शपथ में 21 से ज्यादा राज्य के मुख्यमंत्री बुला के लाना, लेकिन देश आम जनता सोना नहीं खरीदे, शादी ना करे, गाड़ी से ना घूमे, वर्क फ्रॉम होम करे, जो हम लोग कोविड में कर रहे थे। दूरदर्शिता क्या है? 2014 में जब यूपीए की सरकार आई, सॉरी 2004 में जब यूपीए की सरकार आई, तो उस समय हमारे पास जो स्टोर्स था एलपीजी घरेलू उत्पाद का, वो लगभग 10.03 मिलियन मीट्रिक टन था, जो पिछली सरकारों से 7 मिलियन मीट्रिक टन उन्होंने बढ़ाया यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार पे। और जब से ये सरकार आई है 2014 से लेकर 25 तक, तब आज हमारे पास स्टोर है 12.8 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब 10 सालों में इन्होंने बनाया 2 मिलियन मीट्रिक टन। ये दूरदर्शिता है,
0: ठीक है।
15: आज भी 80% हम लोग की डिपेंडेंसी जो है मिडिल ईस्ट पे बढ़ी हुई है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, 10 साल से सोलर लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है। ये कहां हो रहा है? ये सिर्फ प्रचारों पे हो रहा है,
0: ठीक है। सुधांशु जी, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। आलोक जी भी जो आरोप लगा रहे थे, बीच में आपका कनेक्शन कट गया था, अगर आवाज आ रही थी सुना आपने तो जवाब दीजिए दोनों पर ही।
16: देखिए जी जी जी, मैं सुन रहा था। देखिए, दोनों ही विपक्ष के प्रवक्ता स्वयं ही अपनी पार्टी की विचित्र बुद्धि का परिचय यहां बैठकर दे रहे हैं, और लगता है कि डिबेट में बैठ के सुनते ही नहीं है। आलोक शर्मा जी से मैंने पेट्रोल और डीजल की बात कही, वो एलपीजी गैस की बात करने लगे। मैंने जो बोला था कि पेट्रोल और डीजल के क्राइम सारी जगह बढ़े हुए हैं, आज भी कोई जाके चेक कर लेना, मैंने भी बोला चैलेंज करे भी, खोलिए देखिए कितना है अमेरिका में प्राइस, कैलिफोर्निया में खोलिए। चलिए छोड़िए, अब एलपीजी गैस पे बता देते हैं। सारे दर्शकों से कहता हूं, खोलिए जरा जाके 1 जनवरी 2014 को एलपीजी सिलेंडर कितने का था मार्केट में, चाहे बीपीसीएल की वेबसाइट खोल लीजिए, चाहे इंडियन ऑयल की खोल लीजिए, और देखिए 1241 रुपए, 1241 रुपए। ना तो कोई युद्ध हो रहा था, ना कोई संकट था, ना कोई समस्या थी। वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब 2013 में कह रहे हैं कि सोना कम से कम खरीदिए, कोई संकट तो नहीं था 2013 में। मैं पूछना चाह रहा हूं, 2010 में महंगाई 11% 12%, भाई कौन सा विश्व का संकट आ रहा था, कौन सा युद्ध चल रहा था? आशुतोष वर्मा जी ने अद्भुत ज्ञान दिया कि 2014 से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। चलिए, आपने वो क्रीमिया के उस छोटे से विषय को भी युद्ध मान लिया, तो और भी महत्वपूर्ण बात है। अब आप कह रहे 2022 के बाद युद्ध जो है वो महत्वपूर्ण हुआ है, मगर मेरे दोनों विपक्षी प्रवक्ता, चैलेंज करता हूं, एक जगह बताइए, एक क्षेत्र विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां इस समय युद्ध में कोई संकट न चल रहा हो, जहां कोई ऊर्जा संकट न चल रहा हो। जाते जाते बता के जाइएगा, भागिएगा नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा विदेशी दौरे की बात, ये राहुल गांधी जी क्या करने जाते हैं विदेश में दौरे? अखिलेश जी लंदन क्या करने गए थे? प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री का दौरा था। एक एक मिनट बाय मिनट पता होता है, और उसका क्या आउटकम है वो भी पता होता है। कहे ये आलोक शर्मा जी, ये चुनाव के दौरान ग्रेट निकोबार में ये जंगलों की सैर करने, ये राहुल गांधी जी कहे गए थे, और इस ढंग के व्यर्थ के बितंडावाद नहीं करने चाहिए सुरक्षा काफिले को लेकर। तो फिर तो मैं तो ऐसे पूछूं कि भाई आपको, राहुल जी को या अखिलेश जी को, किससे सुरक्षा का खतरा है? हमारे नेताओं को मैं कहता हूं नक्सलियों से खतरा है, इस्लामिक आतंकवादियों से खतरा है, आपको किससे खतरा है? गांधीयत विद गन वालों से या भटके हुए नौजवानों से? और मैं पूछना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा विदेशी दौरा करने वाले लोग वो लोग आज ये बात कहते हैं। और फिर मैं आलोक शर्मा जी, आपको याद रखना चाहिए भारत के इतिहास का, यह आपका सबसे कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब रहा है? $1 बिलियन आपकी सरकार में, दो दो बार रुपए का डिवेल्युएशन हुआ, July 1991 और September 1991 में। तब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा जब आपके सपोर्ट से सरकार चल रही थी सचपा की, और जब डिवेल्युएशन हुआ तो मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। और रही बात इसकी कि कौन किसके इशारे पे चलता था, अब छोड़िए, अब तो CIA और KGB के डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जिसमें सारा है कि कौन किसके साथ चलता था। ये सारी की सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझी जा सकती है, और जानकारी का अभाव में होता हमारे विपक्षियों को। इस दौर में जब टैरिफ का दौर था, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है, हमने 6.8 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, 680 बिलियन डॉलर का, यानी हम दुनिया के चुनिंदा देशों में से हैं जिसने इस दौर में भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया।
0: ठीक है, दो तो
16: इसलिए हम ये कहने के
0: दो प्रश्न मेरे बचे हुए हैं, मैं लौटूंगी एक बार आलोक जी इसका जवाब दे दे। आलोक जी, और ये मैंने भी आपसे पूछा था क्योंकि आपने इसको पूरा निजी हमला कर दिया पीएम पर, वो पूछ रहे हैं राहुल गांधी काहे के लिए जाते हैं विदेश बार बार।
12: मैं बता देता हूं, क्या विदेश में जो एलओपी हैं वो नहीं जाते थे पहले? पहली बार गए हैं क्या? अंडमान में आप सारे जंगल अडानी को बेचेंगे तो एलओपी का फर्ज नहीं है कि वो अंडमान में जाकर आपकी पोल खोलें? क्या ये फर्ज नहीं बनता है? मुझे लगता है कि फर्ज बनता है। जुलाई 91 में हमारी सरकार तो मई जून में ही आई थी, उससे पहले डेढ़ साल तक तो वीपी सिंह की सरकार थी, यानी आपकी सरकार थी। उस समय पर क्या हुआ था? गोल्ड की क्या हालत थी? इकोनॉमी की क्या हालत थी? फॉरेक्स कितने दिन का था? 15 दिन का। मजबूरी में वीपी सिंह सरकार को ऐसा करना पड़ा था। अब बात आते हैं कि साहब वो मोदी जी तो रोज घूमते रहते हैं और राहुल जी का आउटकम क्या है? मोदी जी ने तो इतने विदेश यात्राएं की, आउटकम ऑपरेशन सिंदूर में नहीं समझ आया आप लोगों को? एक देश ने खुलकर हमारा साथ नहीं दिया, क्या समझ नहीं आया था? मैं तो कहता हूं कि आप गोल्ड के ऊपर कि सरकार ने पिछले चार महीने में कितना गोल्ड खरीदा है उसके ऊपर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर आए, क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपए को रोकने के लिए हमें तो ये पता चला है कि गोल्ड खरीदा गया है। और ये क्वांटिटेटिव मेजर आरबीआई बार बार करता रहता है। अब बात आती है साहब सिक्योरिटी की जरूरत किसको है किसको नहीं है। मोहन भागवत को काहे का डर है भाई? मोहन भागवत किस पोस्ट पे है? जेड प्लस सिक्योरिटी 2014-15 से दे रखी है, किस बात का डर है? वसुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं और मोहन भागवत को आपने सिक्योरिटी दे रखी है। मैं फिर कहूंगा सिक्योरिटी देना मंत्रियों को या किसी को भी गृह मंत्रालय का काम है, जिसको सिक्योरिटी चाहिए उसको मिलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष पर सवाल उठाना बंद कर दीजिए। दुर्भाग्य यह है कि आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जब 25 और 30 और 20 डॉलर तक भी पर बैरल चला गया था तब अडानी और अंबानी पैसा मुनाफा खा रहे थे, आपने पेट्रोल और डीजल देश में कितना सस्ता किया, उसका जवाब नहीं है आपके पास। केवल कांग्रेस को कोसते रहेंगे, कब अपनी आप जिम्मेवारी को कब समझेंगे? मैं कह रहा हूं कि 74 दिन से घटकर जो रिजर्व है वो 45 पर आ गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चीन जिम्मेदार है क्या? दुर्भाग्य यह है।
0: जवाब दीजिए सुधांशु
16: जी, प्रधानमंत्री
0: सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर ये ग्राफिक्स दिखाकर मैं जाऊंगी धीरेन जी के पास।
16: टारगेट इसलिए किया जाता है
0: सुधांशु जी, सुधांशु जी, और ये बताइए आप जो ये एस्टिमेटेड संकट कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एहतियाती कदम ये उठा रहे हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे सीधा ये है कि भारत सरकार को कौन से संकट की आशंका है? क्योंकि देखिए जो आपकी सरकार में निष्ठा रखते हैं या आपके जो वोटर्स हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से पीएम ने ऐसा कहा है। हम वो करेंगे लेकिन क्या होने क्या वाला है, कौन से खतरे का अंदेशा है आपको, कौन सा संकट आप देख रहे हैं?
16: हाँ वो बता रहा हूं, देखिए बिल्कुल हम बताते हैं आपको क्या। देखिए पहली बार कांग्रेस की मना स्थिति क्या है, आलोक शर्मा जी साफ हो गई, मुंह से नहीं निकला कि किससे डर है। हम कह रहे हैं मोहन भागवत जी हो या हमारे कोई नेता हो, नक्सलियों से भी डर है, कट्टरपंथी इस्लामियों से भी डर है, क्यों नहीं निकला कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से किससे डर है? ये डर का डर कितना खतरनाक है ये समझना चाहिए, क्योंकि डर के ऊपर वोट बैंक का डर बहुत ज्यादा। अब दूसरी बात में कहना चाहता हूं फिर अपने अज्ञान का,
0: बारी बारी बारी बारी बारी बारी
16: भाई अब तो भाई,
12: अरे भाई हमने दो दो प्रधानमंत्री खोए अपने, आपके चिड़िया नहीं
16: मरी, खत्म हो गया एलटीटी का, तो एलटीटी तो खत्म हो गया भाई, अरे भाई एलटीटी खत्म हो गया। अरे हमारे तो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बलिदान दिए थे, आपके दो दो प्रधानमंत्री जो खत्म हुए अपने अपने हाथों से अपने भारत रत्न देके गए थे। छोड़िए व्यक्तिगत बताइए, मुद्दे की बात करिए। अब देखिए दूसरा अज्ञानता का परिचय इन्होंने दिया, वीपी सिंह सरकार के समय में सोना गिरवी नहीं रखा गया था, जब चंद्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से थी तब सोना गिरवी रखा गया था। और मेरे भाई अब कान खोल के सुनो, किसकी सरकार के कार्यकाल में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहां पहुंचा? 1980 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7.3 बिलियन डॉलर्स था और चाइना का 2.8 था, और 1990 आते आते जिसमें 9 साल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार रही, दो तिहाई और 4/5 बहुमत की, उसमें वो 1 बिलियन से कम हो गया। एवरीबडी कैन गो एंड चेक। ये होता है बगैर जानकारी लिए व्यर्थ की बातों को लेकर यह करने का प्रयास करना। और आपकी सरकार के समय में ऑयल बॉन्ड का है खरीदे थे भाई, सब कुछ तो ठीक था 2013 में ऑयल बॉन्ड खरीद के रख के चले गए, वो सारी बात छोड़िए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो अंजना जी ने पूछा आपसे, कहा कि संभावना क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं
0: क्या संकट।
16: देखिए ईरान और अरे बता दो, कोई एक फैक्ट तो नहीं बता पा रहे हैं साहब, जो पूछा जा रहा है उस पर दाएं बाएं कर जा रहे हैं, फैक्ट आपके लगातार गलत हो रहे हैं। एलपीजी और जो जो मैंने पेट्रोल डीजल के बताए, अब मैं बता रहा हूं, देखिए समस्या क्या है। अभी तक जो हरमूज में संकट था और ईरान और अमेरिका का युद्ध था, जो फिर ये गलत बोले थे, पिछले चार हफ्तों से तो युद्ध रुका हुआ था ना। अब जो समस्या है, यदि युद्ध शुरू हुआ तो ये खतरा बहुत भयानक हो सकता है, क्योंकि अब जब शांति वार्ता टूटने के बाद युद्ध शुरू होता है तो वो बहुत भयानक परिणति तक जाता है। ये तो मतलब ऐसी बात हो गई कि अगर कोई कहे कि आज मौसम ये बता रहा है कि पानी बहुत तेज गिरेगा तो छाता लेके चलो, तो कहेंगे आप तो हमारे हाथ पे बोझ लादने की बात कर रहे हैं। भाई साहब, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ईरान में एस्टैब्लिश लीडरशिप नहीं है, अमेरिका की लीडरशिप का नेचर आप लोग देख चुके हैं। शांति वार्ता यदि टूटी और उसके बाद युद्ध हुआ तो फिर उस युद्ध का तात्कालिक समाधान निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। यह सामान्य सी बात सिर्फ उस पार्टी को नहीं समझ में आ रही है जिसके नेता सबसे ज्यादा विदेश घूमते हैं।
0: लेकिन सुधांशु जी, आपकी भी सही बात, सारी बात सही है, लेकिन 4 मई तक कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि संकट ये पहले नहीं मंडरा रहा था, ये मुद्रा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी दिख रही थी, ये दिख रही होगी, लेकिन तब आप लोगों ने इस पर कुछ नहीं किया। ये बात हजम नहीं हो रही ना कि अब जैसे वो खत्म हुआ उसके बाद से आप लोग ये बता रहे हैं।
16: नहीं नहीं अंजना जी, अंजना जी पूरी विनम्रता से प्रतिवाद करते हुए, ट्रंप का बयान कब आया, देखिए डेट देखिए, पूछिए लोगों से कब आया है, अभी आया है कि 15 दिन पहले आया था?
0: ट्रंप पे भरोसा करना है कि
16: तब
0: नहीं,
16: उन्होंने कहा है ना कि अब अगर ईरान के साथ वार्ता टूटी तो नहीं मैं बात नहीं करूं, जब उन्होंने कहा अब अगर वार्ता टूटी, अगर ईरान में
0: सुबह में कुछ बोलते हैं
16: होगा, यानी युद्ध का संकेत कब आया है?
0: कभी सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, ये तो देखिए भंवर है ना जिसपे समझना है। बस 4 मई तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ठीक है। तो एक सेकंड, उससे पहले मैं एक बार धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। सोने की मांग घटने से क्या होता है? हाँ, क्या कह रहे हैं?
16: सुनिए
0: क्या कह रहे हैं,
16: मैं दर्शकों से कह रहा हूं, जाके चेक करिए कि बयान ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से भयानक युद्ध की का बयान किस दिन आया है। अगर वो आया हो 1 महीना पहले तो हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, अगर वो 20 दिन पहले आया हो तो मानने को तैयार
0: है। एक बार जल्दी से धीरेन्द्र जी को दिखाइए,
16: 1 हफ्ते में आया है या 8 दिन में आया है तब समस्या है।
0: चलिए ठीक है, सोने की मांग घटने से क्या होता है? विदेशी मुद्रा भंडार पर जो धीरेन्द्र जी जो बात है, कितना दबाव घटता है उसका हमने नंबर्स निकाला है, और हमारा सोर्स है एसएमसी ग्लोबल। फरवरी के मुकाबले मार्च में अगर आप देखिए तो ये पूरा जिस तरह से दबाव घटता है, अगर आप सिर्फ 20 से 25 अरब डॉलर सालाना बचेगा अगर आप 30 से 40% सोने का आयात घटा दें। अगर देश में हमने मिलकर 30-40% सोने की खरीद कम कर दी, आयात कम हमें करना पड़ा बाहर से, तो 20 से 25 अरब डॉलर हमारा देश का बच सकता है। फॉरेक्स को ही बचाना, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना अभी इंपॉर्टेंट है युद्ध के वक्त पर। 50% सोने का आयात अगर हम घटा लेते हैं तो 36 अरब डॉलर, यानी ये जो 3 महीने में हमने पूरा एक तरह से गवाया है, घटा है हमारा फॉरेक्स, वो हमारा रिकवर कर सकता है। सिर्फ 50% सोना कम अगर हमने खरीद कर ली तो। अब आइए, वाणिज्य मंत्रालय के हवाले से हम आपको डेटा दे रहे हैं। अप्रैल 2026 में 1.3 अरब डॉलर अनुमानित हमने सोने की खरीद की है, देश का ये सोने का खरीद बिल है। उससे पहले मार्च 2026 में ये 3 अरब डॉलर के आसपास था और फरवरी में तो 7.5 अरब डॉलर के आसपास था। तो ऐसा नहीं है वो घट रहा है, लेकिन अगर हमने 50% और कर लिया तो पूरा हमारा जो फॉरेक्स का वेस्ट हुआ है उसको हम रोक सकते हैं। लेकिन अब जनता कहेगी ना कि सारा भार हम पे, युद्ध लड़े कोई और भरे यहां देश में कोई। धीरेन्द्र जी,
17: संजना जी, सबसे पहले तो ये जो हितोपदेश ही इसको मैं मानूंगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इसमें क्या कहा है? उन्होंने सिर्फ चाहत ही तो कम करने की बात कही है। चाहत अगर आप कम करते हैं उससे खुद को राहत और देश को राहत अगर होता है तो इसमें क्यों इतनी विपक्ष को पीड़ा होती है? उन्होंने कहा अगर है कि विदेशी ब्रांड को आप कम से कम अपनाएं, इसमें कौन सा अपराध कर दिया? मैं तो कहता हूं कि इससे दूसरा फायदा होगा कि यदि गांधी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं और गांधी के पुजारी ऐसे वे लोग रहे नहीं, अब तो राहुल गांधी के हो गए हैं, लेकिन अगर स्वदेशी को अपना करके अगर देश को मजबूत करते हैं, राहत को काम देते हैं, इससे तो कई ऐसे चीज साधते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिंगापुर में लोग सफर करते हैं, अगर हम यहां पर करते हैं, तो अगर कार्बन उत्सर्जन को कम करके अपने सेहत से राहत कर करते हैं, इसमें क्या अपराध हो गया? विपक्ष को हर बात का करना विरोध है इनको। अगर महिलाओं के सम्मान की बात होती है वहां पर महिलाओं का ही विरोध करने लगते हैं, मुझे कांग्रेस पार्टी की आकड़ इतनी हो गई है कि कैसे भी आंकड़े आप दिखला दीजिए अंजना जी, इनको आंकड़े पर विश्वास नहीं है, इनको मोदी जी का दुष्प्रचार कर।
0: ठीक है, जल्दी आशुतोष जी दो लाइन जल्दी से। आशुतोष जी सहयोग की बात है, कोई बंदिश नहीं लगाई गई है।
18: मुझे सिर्फ चार लाइनें बोलनी है कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज हमारे पर तेल के ऊपर 90% की हमारी जो है वो निर्भरता है। हमने क्या किया आत्मनिर्भर भारत में? आरबीआई चुपके से सोना खरीद रही है, हमको मना कर रही है,
0: आर्थिक इमरजेंसी लगा रही है। आलोक जी जल्दी से,
18: आर्थिक इमरजेंसी
0: जल्दी से, टाइम कम है।
19: अंजना जी देखिये, मुझे लगता है कि गोल्ड का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। गोल्ड के इंपोर्ट को हम बंद नहीं कर सकते हैं। सरकार व्हाइट पेपर लेकर आए, सरकार ने कितना गोल्ड खरीदा और मोदी जी के परम मित्र अडानी ने कितना खरीदा? क्या सबसे बड़ा इंपोर्टर आज की तारीख में अडानी तो नहीं है? इसके ऊपर व्हाइट पेपर आना चाहिए।
0: सुधांशु जी टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, जल्दी से दो तीन लाइन सर। सुधांशु जी ठीक,
16: हाँ बस एक लाइन। मैं सिर्फ ये कहता हूं, जो कुछ मोदी जी ने कहा वो तो अमीरों के लिए कहा है। विदेश यात्रा पे कौन घूमने जाता है? समाज का धनी वर्ग। दूसरी बात, अगर आप ये देखिए तो गाड़ियों में कौन चलता है? अभी तो आप कहते हैं कि साहब आपके तो समर्थक यूट्यूबर ये बोलते थे कि हाईवे बनाने से क्या फायदा।
0: ठीक ठीक ठीक है, आपका पॉइंट समझ में आ गया होगा। दर्शकों को समय इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले याद दिला दे, रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि आप प्रधानमंत्री मोदी की तेल बचाने सोना ना खरीदने की अपील में किसी बड़े संकट की आहट है। इसके बाद आपको बताएंगे कि शुभेंदु सरकार में टीएमसी के धमकीबाज हाथ जोड़कर माफी क्यों मांग रहे हैं। आखिर में आपको बताएंगे कुशीनगर का कृष्णा मिश्रा पाकिस्तानी आतंकी कैसे बन गया। देखते रहिए आज तक।

0: Some people think that Talk Sport's just a clever name, that we just talk sport. But that's absolute balderdash. We breathe it, dream it, think it, play it and eat it for breakfast wrapped up in an English muffin. So, if you want to get seriously sauteed by soccer, poached by the Premier League and marinated by monster news and reaction, listen to Talk Sport. It's not just a clever name, dude. Listen live from London on TuneIn and munch it down for free. Mmm, delicious. A bit salty. Warning, Talk Sport definitely contains nuts.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: बहुत टायर्ड हो गई।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
7: जेके मैक्स पेंट।
11: जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: यार
14: ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
14: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
14: हमारे सीमेंट में नहीं है?
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
17: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
18: प्रिया कैसा लगा मेरा स्टंट?
19: विक्रम एक हिंट तो देते।
20: विक्रम
19: हिंट
18: बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दिया है।
4: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही।
3: आप कैसे कर लेते हो?
5: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
7: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रांग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: Director, the taste of success.
13: Like I said before, we better own the sins.
2: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रो फाइबर है।
14: माइक्रो फाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
14: हमारे सीमेंट में नहीं है?
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
3: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
4: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
3: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
5: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
2: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you? Hint, bade aaram se. Cool, stylish fans. Enhance home decor with beautiful fans. Punjab National Bank, bharose ka prateek. समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े. समर कूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल. विमल, बोलो जुबां केसरी.
1: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
4: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही है।
3: आप कैसे कर लेते हो?
5: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
7: नहीं
6: और म्यूचुअल फंड्स है
7: सही।
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
9: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
10: जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
11: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि 2 महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे, अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे। मोदी जी 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने, अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, 1 साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए, जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए, अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
12: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं, ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: है कि एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें, खाद्य तेल की खपत कम करें, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, एक साल विदेश यात्राओं पर जाने से बचें। और ये सब अपील इसलिए कि देश को अपना विदेशी मुद्रा का भंडार इन सब चीजों के आयात पर खर्च ना करना पड़े, क्योंकि देश को इस वक्त बेहद महंगी कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है।
1: साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
0: पीएम मोदी ने अपनी अपील में कोरोना संकट की याद दिलाई, देश को याद दिलाया कि कोविड जैसे वैश्विक संकट का भारत ने कैसे अपने तरीकों से सामना किया, और ये भी याद दिलाया कि एक बार फिर वही त्याग और एकजुटता दिखाने का वक्त आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में भारत ने 4.89 लाख करोड़ रुपए सोना का आयात किया, 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए का आयात रहा, 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस साल भारत ने विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है, ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं।
1: हमारी धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े।
0: देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव पेट्रोल डीजल की जरूरतों को पूरा करना है, ये वो सेक्टर हैं जहां जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अमेरिका ईरान की जंग की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं, क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं, सप्लाई ठप पड़ी है, इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत रखना ही होगा।
2: और प्रधानमंत्री की इस नसीहत पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी ने कल जनता से त्याग करने को कहा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो, ये उपदेश नहीं है, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं, हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर लिखा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। अखिलेश ने आगे लिखा कि इस तरह की अपील से व्यापार, कारोबार, बाजार, मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ साथ घबराहट, बेचैनी और निराशा फैल जाएगी। सरकार का काम अपने अकूत संसाधनों का सदुपयोग करके आपातकालीन हालात से उबरना होता है, भय या अफरा तफरी फैलाना नहीं।
3: पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने, अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए, सोना ना खरीदिए, एक साल तक सोना ही ना खरीदिए, कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ना खरीदिए। मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कर।

0: काम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
1: ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना इनके लोग, कहते थे पैनिक मत करिए। जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त, ये आज की परिस्थिति नहीं है। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, देश करेगा, कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह।
2: तो विपक्ष पीएम के बयान पर निशाने साध रहा है, मगर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि पीएम की अपील को गंभीरता से लेना चाहिए।
3: वी आर सिटीजंस, एज आवर प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड ऑल ऑफ अस टू, कैन रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर ऑन एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज टू बी स्पेंट, एंड इन आवर लाइव्स, इन आवर ओन वेज ऑफ working, we can identify whatever we can do to preserve the foreign exchange. Simultaneously, we must also earn the foreign exchange more and more. Both things have to go in parallel. So I'll request all of you to take cognizance of Honorable Prime Minister's call to the nation, and within your own means, within your own enterprises, within your own businesses, try to do whatever best you can.
2: तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल विपक्ष पर हमलावर हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष आपदा में अवसर तलाश रहा है।
4: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं? ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।
5: देखिए, राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की है और ये अपील, जब जब भारत में संकट आया है राहुल जी, तब तब भारत इसका मुकाबला किया है। क्या पंडित नेहरू फेल्योर प्रधानमंत्री थे राहुल जी? आप बताएं, 62 के चाइना युद्ध के समय हमारे पास सोने की कमी थी और आप, उन्होंने आह्वान किया था, देश से आह्वान किया गया था, मां बहनों ने, हमारी बेटियों ने, शादीशुदा बेटियों ने मंगलसूत्र तक दान दिया था।
2: राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। राहुल, देखिए, विपक्ष को हमलावर होने का एक मौका मिल गया है। दरअसल हर कोई डिकोड करना चाह रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की अपील इस समय पर क्यों आई जब चुनाव खत्म हो गए, क्योंकि अभी तो ईरान अमेरिका में दोबारा युद्ध भी नहीं शुरू हुआ है। क्या वाकई ईंधन की इतनी क्राइसिस है जिसका हवाला दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, क्या इसी वजह से यह अपील की गई है?
6: देखिए, विपक्ष को तो मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं और अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, और कुल मिलाकर चुनावों तक आप कह सकते हैं कि नुकसान झेलती रही कंपनियां, और अब जब चुनाव ओवर हो गए हैं, और इसको ऐसा आरोप है कांग्रेस और विपक्षी दलों का, क्योंकि अब इसका असर बीजेपी को नहीं झेलना पड़ेगा चुनावों में, तो अब ऐसे में सरकार की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि आप देखिए अपने खर्चे कम करिए, आप पेट्रोल डीजल कम जलाइए, आप खाने का तेल कम यूज करिए, आप विदेश मत जाइए, तो ये दर्शाता है कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल हुई है। और आप देखिए जो जो विपक्ष है वो ये भी मांग कर रहा है कि अगर हालात इतने ही खराब है तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, संसद का सत्र बुलाइए और बैठ कर बात करिए और हमें बताइए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ नागरिकों से अपील करना ये कहां तक जायज है, सरकार क्या कर रही है इन तमाम चीजों को निपटने के लिए उसको भी जनता को बताना चाहिए, संसद को बताना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि विपक्ष जो है इस मामले में और घेरेगा राहुल गांधी, अखिलेश।
2: बिल्कुल, और इस अपील के बाद से एक सेंस ऑफ पैनिक भी जनता में आ गया है कि नरेंद्र मोदी की अपील के बाद विपक्ष अपना आक्रोश जता रहा है। मगर यूपी में महोबा से समाजवादी पार्टी के सांसद अजय सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री की अपील पर अपशब्द बोले हैं, उनके बयान पर अब बवाल है।
7: पेट्रोल की खपत कम करें, है सोना ना खरीदे, विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, है कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और ना आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा।
8: ये अपने आप में उनकी मानसिकता दर्शाता है कि किस मानसिकता के वो लोग हैं, और जिस पार्टी से वो आते हैं उनको यही करना आता है, गुंडागर्दी मारपीट अभी तक यही और अराजकता उन्होंने फैलाई, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से भी झलकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
9: पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के इस बयान के बाद हैरान है, परेशान है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जिसमें वो लोगों से सोना नहीं खरीदने की, पेट्रोल डीजल कम खर्च करने की बात कर रहे हैं। जनता का गुस्सा वाजिब है, चिंता जायज है, ऐसे में किसी सांसद ने पूरी बात कहते हुए कोई एक शब्द गलत बोला है उसका उस सांसद को खेद व्यक्त कर देना चाहिए, लेकिन उस शब्द के अलावा उस सांसद ने सारी की सारी बात जनता की कही है। भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम उस शब्द को पकड़ करके मुद्दे को से क्यों भटकाना चाहता है? उस शब्द के लिए आप FIR करना चाहे FIR कीजिए, खेद व्यक्त करवाना चाहे खेद व्यक्त करवाइए।
10: समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की गाली की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, यह स्पष्ट स्थापित करता है कि समाजवादी पार्टी का ना कानून में कोई यकीन है ना मर्यादाओं में कोई यकीन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगातार ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो अपशब्द बोले, जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करें। जरा कल्पना करिए कि आज ये सत्ता में नहीं है तो इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण है, जब ये सत्ता में रहते हैं तो कानून के दम पर ये कानून का कैसा मखौल उड़ाते हैं।
2: बात पश्चिम बंगाल की, जहां पर सरकार बनने के बाद से अब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। आपको दिखा देते हैं कि इसको क्या कुछ मिला है। दिलीप घोष को पंचायती विकास विभाग दिया गया है, अग्निमित्रा पॉल को महिला बाल विकास विभाग दिया गया है, अशोक कीर्तनिया के हिस्से खाद्य आपूर्ति आया है, श्री राम टुडू को जनजातीय विकास विभाग मिला है और निश्चित प्रमाणिक को खेल और युवा मामलों का मंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। आपको सबसे बड़ा ऐलान दिखा देते हैं। राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए यह ऐलान किया गया है, जिसमें सरकार ने साफ किया कि 2015 के बाद से अटकी सभी सरकारी भर्तियों को अब शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए आयु सीमा 5 साल तक बढ़ा दी जाएगी। शुभेंदु का दूसरा बड़ा फैसला, आपको बता दें BSF को जमीन हस्तांतरण किया जाएगा। ये 6 बड़े फैसले हम आपको दिखा रहे हैं, आते ही ताबड़तोड़ फैसले ले लिए गए। तीसरा बड़ा फैसला, आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी जो अब तक अटकी पड़ी थी। चौथा बड़ा फैसला जो लिया गया है वो है केंद्रीय योजनाओं को अपनाना अब पश्चिम बंगाल की प्राथमिकता में शामिल होगा, क्योंकि अब तक इसे ममता बनर्जी दरकिनार करती आई थी। नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण और उनकी तैनाती पर ध्यान दिया जाएगा, ये 5वां बड़ा फैसला शुभेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से। वहीं BNS को राज्य में लागू किया जाएगा जो अब तक अटका पड़ा था।
11: आज के आमरा प्रथम दिन ही आमरा केंद्रीय स्वराष्ट्र दफ्तर तथा BSF सीमांत सुरक्षित करार जन्य জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভূমি ও রাজস্ব সচিব তাকে এবং মুখ্য সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হল 45 দিনের মধ্যে BSF এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করতে হবে।
2: तो कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में तीन गिरफ्तारियां हुई। इस मामले में तीन आरोपियों को बंगाल पुलिस ने पकड़ा। दो की गिरफ्तारी बिहार से बक्सर से हुई है तो एक की गिरफ्तारी यूपी के अयोध्या से। गिरफ्तार राज सिंह बलिया के आनंद नगर का वो रहने वाला है। वारदात के बाद से राज सिंह अयोध्या में छिपकर रह रहा था। कल कोलकाता पुलिस और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस इसे लेकर कोलकाता चली गई और इसके अलावा बिहार के बक्सर से विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों तक एसआईटी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पहुंची है। जानकारी के मुताबिक हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में कम से कम 8 लोग शामिल थे। पुलिस का मानना है कि हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाने से पहले जमकर रेकी की। तीनों आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा जहां कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 13 दिन की सीआईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि असम में कल नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हेमंत बिस्वा कल गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह से पहले हेमंता ने कैबिनेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हेमंता ने कहा कि असम की नई एनडीए सरकार में लगभग 18-19 मंत्री होने की संभावना है। अब बात राजस्थान की जहां पर एसओजी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। केरल से सीकर एक गेस्ट पेपर आया जिसमें 140 प्रश्न यानी 560 नंबर के प्रश्न वही थे जो नीट की परीक्षा के दौरान 3 मई को पूछे गए। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है, उसमें से 560 नंबर के प्रश्नों के हूबहू मिलने से कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों के उत्तर के ऑप्शन भी गैस पेपर में प्रश्नों के क्रम में है। सूत्रों के अनुसार 1 मई को केरल के मेडिकल कॉलेज से एक छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को वो गैस पेपर भेजा था। उसके बाद दो दिन तक 5-5 लाख में गैस पेपर बेचे गए। परीक्षा से एक रात पहले 30,000 में गैस पेपर बिका। एसओजी का यह कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंचा है। राजस्थान एसओजी इसकी जांच कर रही है। तो अभी जांच जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह कि नीट के कथित पेपर लीक दावे से जुड़ी यह खबर कि जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र छपा। खबर यह भी है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सारे प्रश्न इसी गैस पेपर से मिल रहे हैं। अभी तक 29 अप्रैल तक गैस पेपर एक काउंसलर के मोबाइल में आना पकड़ा गया है। गैस पेपर जयपुर सीकर झुंझुनू नागौर देहरादून और केरल तक जाने के सबूत मिले हैं। एसओजी को शक काफी पहले था। दावा यह भी है कि शुरू में 30 लाख में ये पेपर बेचा गया।
12: गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्र पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्र वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देख वो उसी में हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है कि हमने काफी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहां से क्या हुआ है।
2: और इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जहां पर मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव बना दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त मनोज अग्रवाल बना दिए गए हैं, मुख्य सचिव बन गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त थे अभी तक और अब वो मुख्य सचिव बन गए। शांतानंद मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एक्जे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: you can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
1: So they were disallowed from speaking their language.
0: In-depth conversations with A-list celebrities.
2: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
0: True crime podcasts you just can't stop listening to.
3: Others escape justice to live and die in infamy. These
0: plus the news and sports content you crave in podcast form.
4: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
0: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
8: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती
9: है। भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबडी कैन ड्रीम।
8: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
10: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
11: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
17: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
18: जेके मैक्स पेंट्स।
17: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
19: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
20: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
21: विक्रम, एक हिंट तो देते।
22: विक्रम!
21: हिंट।
20: बड़े आराम से।
23: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
24: इसमें माइक्रोफाइबर है।
23: माइक्रोफाइबर यानी
24: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
23: हमारे सीमेंट में नहीं है?
24: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
25: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
26: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाली।
27: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
8: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
9: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
10: नहीं,
9: और म्यूचुअल फंड से
10: सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
16: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
17: लायन डेट नट बाइट्स।
18: Director, the taste of success.
19: Like I said before, we better hold the sins.
5: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
20: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
2: देखिए, सोना नहीं खरीदना चलेगा, जो ट्रेवल है बाहर का वो भी चल जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है जाने की हम लोगों को। एनर्जी में क्या है, अगर हम पूलिंग करना भी चाहें ना, तो हर किसी के अपने टाइमिंग्स हैं ऑफिस के, वो कोशिश तो हम कर सकते हैं पूरा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं उनको, उनके साथ मैं कारपूल करूं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू कैन से कि कारपूलिंग से एक तो पॉल्यूशन में भी फर्क पड़ता है और एनर्जी तो सेव होगी।
3: हम डेफिनेटली इसके साथ है, क्योंकि अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है। हम कार पुलिंग भी कर लेंगे, एज अ कोई भी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री हम लोगों को बताते हैं, मोदी जी हमको बताते हैं, हम डेफिनेटली उसके साथ रहेंगे। और एज अ इंडियन सिटीजन हमारा काम यह है कि हम एनर्जी सेविंग करें। एनर्जी सेविंग हर जगह से हो सकती है, आपका डीजल एनर्जी सेविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जो भी चीजें हम कर सकते हैं या अपने देश के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे।
2: गोल्ड का इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है, अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
4: आपको लग रहा है कि सभी नागरिक मिल करके इस संकट से, जो ग्लोबल क्राइसिस है, इससे हम मुश्किल से बाहर आ सकते हैं?
2: ऑफ कोर्स, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको कोई एक रास्ता दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करके बाहर आ जाएंगे।
5: देश के लोग एक साल तक सोने की खरीदारी न करें, भले ही पीएम मोदी की ये अपील, ये सलाह इसलिए है कि लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में योगदान दें। लेकिन इस बयान के बाद सोने को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार सोने की खरीद को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सवाल ये भी कि जिन घरों में आने वाले दिनों या कुछ महीनों में शादियां हैं, वो लोग क्या करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा और क्या सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सोने के आयात शुल्क में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया है, हालांकि कई जानकार पीएम मोदी के बयान को आने वाले संभावित कदमों का संकेत मान रहे हैं।
6: मोदी ने कह तो दिया एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर घर में फंक्शन रहते हैं, किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है, तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है।
5: दरअसल देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची रहें, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार अब गैर जरूरी आयात को सीमित करने के विकल्पों पर नजर रख रही है। ऐसे में सरकार अगर सोने पर आयात शुल्क बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं और मांग कुछ कम हो सकती है। सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है ताकि डॉलर की बचत हो और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम किया जा सके। उधर पीएम मोदी के इस अपील का सीधा असर सोना कारोबारियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, ऐसे में सोने की बिक्री ना होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक साल में अमूमन 700 से 800 टन से अधिक सोने की खपत होती है, ऐसे में पीएम मोदी की अपील का सीधा असर इस बड़े कारोबार पर पड़ सकता है। देश में साल भर में सोने की जितनी मांग होती है, उसका 60 से 70 फीसदी हिस्सा शादियों के सीजन में बिकता है, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई में भी शादियों के मुहूर्त, ऐसे में सोने की खरीद में कमी आई तो कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
7: लोग अपनी शादियों में सोना कम लेवे, इन्वेस्टमेंट कम करें, ये जरूरी है, कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा। लेकिन इसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब मैंने बोल रहा हूँ, गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो ज्वेलरी शोरूम है, उनकी रोजी भी कैसे, रोजी रोटी कैसे चलेगी, और उनके कारीगर जो उनके भरोसे है, उनके भी काम कैसा चलेगा, ये भी सोचना जरूरी।
5: एक साल तक सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सवाल कई, चर्चाएं कई हैं, लेकिन पीएम की ओर से ये अपील देश की जरूरत को देखते हुए ही की गई है और उम्मीद जताई गई है कि इस अपील का असर होगा। लोगों के सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आर्थिक संकट से जूझ रही दुनिया का साइड इफेक्ट, पीएम ने दी विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह, विपक्ष ने उठाए सवाल, बीजेपी और सरकार का बयान बचत ही बचाव है, पीएम की नसीहत पर दे ध्यान। विद्वान से बची विरासत का पीएम ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, पीएम का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बाधा। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल को मिला रिटर्न गेट, बनाए गए चीफ सेक्रेटरी, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी को मिली जिम्मेदारी।

नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन बंगाल खत्म हो चुका है और अब उनका नया मिशन शुरू हो गया है। ये मिशन है साल 2027 का। 27 में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, इनमें 5 में बीजेपी की पहले से ही सरकार है। बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो हाथ आए राज्य को जाने नहीं देती और विपक्षियों के राज्यों पर कब्जा करती जाती है। इसका उदाहरण पूरे देश में पश्चिम बंगाल में देख ही लिया है। बीजेपी ने बंगाल हिंदुत्व और सनातन के दम पर फतेह किया और बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि सनातन की ये आंधी 27 तक भी जारी रहे। सोमनाथ से विश्वनाथ, सिर्फ सनातन की जय हो। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: सोमनाथ से काशी विश्वनाथ, क्या मोदी ने 2027 का धर्म क्षेत्र तय कर दिया? गुजरात से उत्तर प्रदेश, क्या मोदी योगी 27 में 22 दोहराने जा रहे हैं? 26 में असम के साथ बंगाल विजय, क्या 27 में यूपी गुजरात के साथ पंजाब तय? मोदी का 2027 का विजय पथ हिंदुत्व पथ से ही निकलेगा।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित।
1: 2026 में बंगाल विजय के बाद मोदी मिशन 2027 पर निकल पड़े। बंगाल में बीजेपी की पहली बार जो सरकार बनी उसमें हिंदुत्व और हिंदू वोटर्स का सबसे बड़ा हाथ है और बीजेपी के हिंदुत्व का प्रयोग जारी है। यह है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, जिसके पुनर्निर्माण के 11 मई को 75 साल पूरे हुए हैं। सोमनाथ में उत्सव चल रहा है और इस पावन त्योहार के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ की शरण में पहुंचते ही पीएम मोदी नतमस्तक हुए। मंदिर के अंदर पहुंचकर उन्होंने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान में शामिल हुए और देर तक इस उत्सव में रहे। मोदी के स्वागत में यहां करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। हजारों की शिव भक्तों की भीड़ उनका स्वागत कर रही थी। प्रधानमंत्री ने मंदिर में महादेव की विशेष पूजा अर्चना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कुंभाभिषेक में भी शामिल हुए। कुंभाभिषेक के दौरान 11 तीर्थ स्थानों से लाए गए जल से सोमनाथ महादेव मंदिर के शिखर कलश का जलाभिषेक किया गया। सोमनाथ में तमाम धार्मिक अनुष्ठान के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाया।

0: सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ तक मनाया जा रहा है। सोमनाथ में प्रधानमंत्री मोदी थे तो काशी विश्वनाथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये भी संयोग ही है कि अगले साल यानी कि 2027 में दोनों ही प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है। दोनों हिंदू वोटों के प्रयोग की भूमि है। गुजरात बीजेपी के हिंदुत्व की वो प्रयोगशाला है जहां पिछले 28 सालों से बीजेपी का एक छत्र राज है, और यूपी मोदी का वो किला है जहां 2014 के बाद उन्होंने कब्जा किया है। मोदी और योगी दोनों जानते हैं कि 2027 में अगर इन दोनों किलों पर फिर से कब्जा करना है तो हिंदुत्व को सर्वोपरि रखना होगा। इसी फॉर्मूले से बंगाल विजय संभव हो पाई है। गुजरात में दूर दूर तक कोई नहीं खड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में एक झटका लग चुका है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी हो या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने सोमनाथ के बहाने विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को उजागर किया।
1: इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे।
2: ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अब तो भारत की चेतना में यह बसता है, और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत की गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की कथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: मोदी और योगी दोनों जानते हैं कि 2027 में यही एक सनातन पथ है जो यूपी में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बना सकता है और जो गुजरात में बीजेपी का शासन जारी रख सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: हर हर महादेव।
3: बीजेपी जानती है कि उनके विरोधियों की विजय रही है जब वो हिंदू वोटों को जातियों में बांटते हैं। इसीलिए बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा देती है। हिंदू वोटों का ये कंसोलिडेशन पश्चिम बंगाल में हुआ तो बीजेपी ने सरकार ही बना डाली। अब 27 में कितने राज्यों में बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।

0: बंगाल में बीजेपी को हिंदुओं के भर भर के वोट मिले। नतीजा ये है कि पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और अब बीजेपी चाहती है कि हिंदुत्व की जो ये आंधी चल रही है वो यूपी और गुजरात में भी जारी रहे। बीजेपी के लिए 2027 बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें से 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और यूपी में फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होंगे। गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और यूपी में बीजेपी की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है। बीजेपी के 2027 के मिशन में पंजाब बहुत ऊपर है। इसके अलावा नवंबर दिसंबर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होंगे। हिमाचल में कांग्रेस तो गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की कोशिश होगी कि गुजरात बरकरार रखे और हिमाचल पर भी कब्जा जमाए। और अगर बीजेपी को 2027 में इन राज्यों पर कब्जा करना है तो उसके लिए हिंदू वोट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए बीजेपी अभी से सनातन पथ पर चल रही है।
1: दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है।
0: और इसमें भी बीजेपी के एजेंडे में उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर रहेगा। बीजेपी यूपी में 2027 में जीतेगी तो 80 सीटों वाले यूपी से 2029 की राह भी आसान होगी। यूपी में बीजेपी के पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बिना लाग लपेट के सीधे हिंदुत्व और सनातन की बात करता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सीधे 80-20 की बात करता है।
2: 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ, भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरे से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आत्माइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया।
3: विशेष में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
2: Jack, you're killing me.
1: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
3: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
4: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
3: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
5: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
6: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
7: इसमें माइक्रो फाइबर है।
6: माइक्रो फाइबर यानी
7: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
6: हमारे सीमेंट में नहीं है,
7: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
8: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
9: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
10: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट
6: बड़े आराम से।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
10: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
11: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
12: नहीं,
11: और म्यूचुअल फंड से सही।
13: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
18: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
19: जीके मैक्स।
20: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
19: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
21: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट।
23: जेके मैक्स।
24: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
25: जेके मैक्स पेंट्स।
24: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
26: Like I said before, we better hold the sins.
7: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहां स्वाद वहां जेके।

0: प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को दें वरीयता, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलें, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का पीएम ने किया शौर्याभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 वर्ष पर अद्भुत आयोजन, पीएम का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बाधा। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल को मिला रिटर्न गिफ्ट, बनाए गए चीफ सेक्रेटरी, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। असम में हैट्रिक के बाद कल हेमंता का होगा राजतिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने से मचा हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार देश के नागरिकों से बचत की अपील कर रहे हैं। दक्षिण के राज्यों के बाद आज गुजरात तक से ये बात पूरे देश से पीएम कह रहे हैं, तो क्या देश में बड़ी चुनौती भविष्य में आने वाली है? इसीलिए आज आपको सबसे पहले हम खबरदार करेंगे कि क्या अब बचत के हवाले ही वतन है साथियों। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री की अपील सुनकर अगर देश के लोग एक साल तक गोल्ड न खरीदें तो देश का कितना फायदा होगा। इसके बाद आज की बड़ी राजनीतिक खबर से खबरदार करेंगे। सोमनाथ से उत्तर प्रदेश तक बीजेपी का हिंदू वोट क्या अब नहीं बटेगा? और फिर देश के प्रतियोगी छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर, क्या 180 सवालों वाली नीट की परीक्षा में 135 सवाल लीक थे? प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के वडोदरा में हैं और सबसे पहले हम शुरुआत खबरदार की उन्हीं की बातों से करते हैं। पिछले 24 घंटे में पीएम मोदी ने दूसरी बार बचत की अपील की है। पीएम ने कहा कि जहां तक संभव हो तेल का इस्तेमाल कम करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। पीएम ने कहा, मैं गुजरात में हूं इसीलिए मैं ये अपील ज्यादा हक से करूंगा। साथ ही एक बार फिर सोना यानी गोल्ड एक साल तक कम से कम न खरीदने की अपील दोहराई है। विदेश यात्रा पर जाने से बचने की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से फिर से की गई है।

हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी

0: देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है, और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है, और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैं आज समाज के सभी भाई बहनों से, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: पीएम मोदी ने तेल, गैस और उर्वरक के कम इस्तेमाल करने की जो अपील की है, उसे देशभक्ति से जोड़ा। बार बार विदेशी मुद्रा भंडार को कम होने से बचाने की बात कही। सवाल यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होना क्यों पीएम को चिंतित कर रहा है, ये क्यों देश के लिए चिंता की बात है, इस बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी ने कैसे बचत को देशभक्ति के साथ जोड़ दिया।
0: देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है।
2: देश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई देशभक्ति की परिभाषा की खूब चर्चा है। सवाल ये कि 28 फरवरी से चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के 90 दिन बाद नरेंद्र मोदी को बचत की अपील देशवासियों से क्यों करनी पड़ी, बचत को देशभक्ति से क्यों जोड़ना पड़ा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत को देशभक्ति से जोड़ने वाली इस अपील की शुरुआत तेल के दाम से होती है। याद दिलाया कि भारत में तेल के कुएं नहीं हैं।
0: साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे,

0: तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है।
1: पीएम मोदी ने अपनी जिन 7 अपीलों को देशभक्ति से जोड़ा, उनमें पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल कम करना, तेल की खपत कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम पर विचार करना, मेट्रो में सफर, कार पूलिंग और ईवी गाड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ बैठाकर ले जाने की अपील शामिल रही। पीएम मोदी ने हर परिवार से खाने के तेल का इस्तेमाल थोड़ा कम करने को भी कहा, देश को रासायनिक उर्वरकों की खपत आधी करने का लक्ष्य रखने को कहा, शादियों, छुट्टियों और विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना भी पीएम ने देशहित बताया और 1 साल तक सोना खरीदने से बचने की सलाह दी।
0: जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए।
1: भारत का मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग माना जाता है। देश में टैक्स भरने वाली यह अहम आबादी देश की खपत में सबसे बड़ा योगदान देती है, इसीलिए पीएम ने सीधे आम लोगों से अपील की ताकि तेल, गैस, सोने और खाद खरीदने में ज्यादा जा रही विदेशी मुद्रा को कम किया जा सके।
0: विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
1: पीएम मोदी के तरफ से की गई इस अपील को राहुल गांधी ने नाकामी करार दिया, कहा कि अब देश चलाना प्रधानमंत्री के बस में नहीं रह गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, खाद और खाने के तेल का उपयोग घटाओ, मेट्रो से चलो, घर से काम करो, ये उपदेश नहीं है, ये विफलता है।
2: कि भारत की स्थिति उस जहाज की तरह है कि पूरे दुनिया के समुन्द्र में सुनामी आई हुई है, सारे जहाज उल्टे पलटे जा रहे हैं और उस परिस्थिति में भी यदि हमारा जहाज आगे जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ तो झटके लगेंगे। तो कोई ये कहे कि इसके लिए सुनामी का दोष नहीं है, जहाज के कैप्टन का दोष है, तो मुझे लगता है ये उसकी दृष्टि का दोष है।
3: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
4: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा।
5: तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ माल है, डेमोक्रेसी में जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो रिजेक्टेड और डिजेक्टेड इस प्रकार के राहुल गांधी है, इनको आप महत्व देते हैं, हम इनको महत्व देते नहीं है। देश मोदी जी के साथ खड़ा है।
1: 28 फरवरी से शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का युद्ध भारत के तेल के बिल को बढ़ाता जा रहा है। इस युद्ध की वजह से ही रसोई गैस से लेकर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हो चुका है, लेकिन अब तक तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए। विपक्ष की तरफ से इसकी वजह 5 राज्यों के चुनाव बताए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में बार बार विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की अपील की है। हॉर्मुज बंद होने से तेल के दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। तेल कंपनियों को सामान्य के मुकाबले 60,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं, जो प्रतिदिन 1600 से 1700 करोड़ रुपए होता है। जंग के बाद से अब तक करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसे देखते हुए अलग अलग रिपोर्ट्स में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 24 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने की आशंका जताई जा चुकी है। तो सरकार व्यापार घाटा बढ़ने का डर दिखा रही है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पीएम की अपील चुनाव के बाद तेल के दाम में इजाफे की तैयारी से जुड़ी, जिसके लिए आम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए।
6: तेल की खरीद के लिए पीएम जहां बचत करने की अपील कर रहे हैं, वहीं सोने की खरीद को लेकर बहुत सख्ती से कह रहे हैं। सोना खरीदने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि सोना खरीद का बढ़ता क्रेज कैसे देश की इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है।
0: मेरे देश के उन 1 करोड़ परिवारों को सर झुका करके नमन करना चाहता हूं। करीब 1 करोड़ 10 लाख से भी ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने कहा था कि अगर आप खर्च कर सकते हो तो रसोई गैस की सब्सिडी क्यों लेते हो। मेरे देश के लोग कितने महान हैं, अगर कोई अच्छा काम हो तो सरकार से भी 2 कदम आगे जाकर के चलने के लिए तैयार रहते हैं।
7: साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस पर सब्सिडी छोड़ने के लिए गिव इट अप अभियान शुरू किया। साल भर के भीतर 1 करोड़ 15 लाख उपभोक्ताओं ने तब प्रधानमंत्री के कहने पर अपनी मर्जी से एलपीजी गैस की सब्सिडी छोड़ दी। लोगों के इस त्याग ने सरकार के उस बड़े संकल्प को मजबूती दी, जिसके कारण आज 10 करोड़ से ज्यादा गरीब महिलाएं धुएं से मुक्त रसोई गैस का फायदा पा रही हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसा सोने को लेकर भी होगा, जिसका महिलाओं से ही सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता है, जिसका हिस्सा महिलाओं की पूंजी में सबसे ज्यादा है। सवाल है कि जो सोना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, उसकी खरीद साल भर तक लोग ना करें, ऐसी मांग प्रधानमंत्री की तरफ से क्यों की जा रही है।
0: एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
7: सवाल है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को साल भर तक सोने की खरीद से परहेज करने की अपील करनी पड़ी, और अगर उनकी अपील पर 1 साल तक भारत के लोग सोना नहीं खरीदे तो उससे भारत को कितनी बचत होगी। भारत में हर साल सोने के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। साल 2024 से 25 में यह आंकड़ा 4.89 लाख करोड़ रुपए था, जो साल 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट कहती है कि 2026 की पहली तिमाही में भारत में निवेश के लिए सोने की मांग गहनों से भी ज्यादा है। मतलब सोना अब सिर्फ शादी ब्याह में खरीदने की जरूरी चीज से आगे बढ़कर निवेश का भी हिस्सा हो गया, जिसकी कीमत 5 साल में 3 गुना बढ़ गई, और इसकी खरीदारी को लेकर नए सिरे से लोगों की दिलचस्पी देखी जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। ग्लोबल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 26% है, जो भारत से कई गुना बड़ी अर्थव्यवस्था वाले चीन से सिर्फ 2% कम है। पिछले साल जून तक में भारत में सिक्कों और गोल्ड बार की मांग में 23.9% से बढ़कर 32% तक का इजाफा आया। अचानक मांग में आई इस वृद्धि की वजह से सोने के आयात में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात 721.03 टन रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 757.09 टन था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सालाना लगभग 700 से 800 टन सोने की खपत है, लेकिन घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन मुश्किल से 1-2 टन ही होता है, जिसके कारण हम अपनी आपूर्ति के 90% से अधिक के लिए आयात पर निर्भर हैं। यानी भारत को सोना विदेश से लाना पड़ता है, जिसके लिए डॉलर चुकाना पड़ता है, और तब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाता है। यही वजह है कि पीएम को एलपीजी गैस सब्सिडी की तरह अब 1 साल तक सोना ना खरीदने की भी अपील करनी पड़ रही है।
0: आज के युग में हम बस में जाते हो, बगल वाली सीट खाली हो और हमें लगे कि चलो बगल में कोई पैसेंजर नहीं है तो जरा ठीक से बैठूंगा, आराम से प्रवास करूंगा। लेकिन अगर कोई पैसेंजर आ गया, बगल में बैठ गया, हम तो हमारी सीट पर बैठे हैं, तो भी थोड़ा मुंह बिगड़ जाता है, मन में होता है ये कहां से आ गया, जैसे मेरी सीट ले ली हो। ऐसा जमाना है, ऐसे समय 1,10,00,000 से ज्यादा परिवार सिर्फ बातों बातों में कहने पर प्रधानमंत्री की बात को गले लगा करके सर आंखों पर चढ़ा के 1,10,00,000 से ज्यादा परिवार अपनी सब्सिडी छोड़ दे, इससे बड़ा मैं आप सबसे कहता हूं, उन 1,10,00,000 से ज्यादा परिवारों के लिए जोर से तालियां बजाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनका गौरव कीजिए।
7: अब सवाल है कि अगर पीएम की इस अपील का असर हुआ तो इससे देश को कितना फायदा होगा, क्या महंगाई कंट्रोल करने में सरकार के हाथ मजबूत होंगे? अगर प्रधानमंत्री की अपील लोग मान लें तो सोने के आयात में फौरन कमी आएगी, इसका असर सीधे भारत के खजाने पर पड़ेगा। अगर सोने के आयात में 30-40% की गिरावट आती है तो देश को लगभग 20-25 बिलियन डॉलर की बचत होगी। अगर सोने के आयात में 50% की गिरावट आती है तो 36 अरब डॉलर की बचत होगी। अगर पीएम की बात मानते हुए भारतीय 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करते हैं तो 72 बिलियन डॉलर की बचत होगी, जो 6,84,000 करोड़ रुपए होता है। इस तरह सिर्फ 1 साल तक सोने की नहीं खरीद करने से कुल विदेशी मुद्रा भंडार के 8% के बराबर विदेशी मुद्रा बचाई जा सकेगी। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ऐसा होने पर चालू बचत खाते का आधा हिस्सा कवर हो जाएगा, जिसके 2026 में 84.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
8: तो कुल मिला के स्थिति ये है कि हमारी आयात पे निर्भरता बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। इस कारण हमारे जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ रही है, सप्लाई नहीं है, जिसके कारण रुपए पे दबाव पड़ता है और उसका असर आज ईरान वॉर के बाद हमें और ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये हमारे यहाँ सोने का प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन कंजम्पशन बहुत होता है। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं या डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम होता है वो सब आयातित सोना है। हमारे यहाँ पे हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, टेक्सटाइल बना सकते हैं, फार्मास्यूटिकल पे काम कर सकते हैं, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमें उसके लिए गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए कानूनों को बदलना होगा।
7: तो सरकार का सिरदर्द अगर सोने के आयात की वजह से कम नहीं हुआ तो सोने में निवेश करने वाले, गहने जेवर बनाने वाले आम लोग ही महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और ये मुसीबत तभी कम हो सकती है जब सोने की खरीद को लेकर मची होड़ पर भारत में लगाम लगे।
6: पीएम मोदी बार बार जनता से अपील कर रहे हैं कि सोना मत खरीदो क्योंकि इससे बहुत सा रुपया विदेश जा रहा है, इसे रोको। सवाल यह है कि पीएम को यह सब क्यों कहना पड़ा, वो क्यों बार बार विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चिंतित हैं, इसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने पर जोर पीएम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर ये सोना और तेल खरीद पर इसी तरह कम हुआ तो फिर इससे रुपया और कमजोर हो सकता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ तो फिर आयात महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से विदेशी निवेशकों का भरोसा भी कम होता है, विदेशी निवेशक निवेश करने से बचते हैं। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। आपने ये तो समझ लिया कि विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से रुपया गिरेगा, इससे आरबीआई की दखल देने की क्षमता कम होगी। जितना विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा रुपए को गिरने से बचाना आरबीआई की ताकत कम होगी। रुपया कमजोर होने से आयात भी महंगा होगा, ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि तेल की खरीद के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत होगी। जब महंगा तेल खरीदा जाएगा तो देश में वो महंगा भी बिकेगा। रुपया कमजोर होने से आयात महंगा होगा, विदेशों से आने वाला कच्चा माल जो भारत के उद्योग धंधे चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं उनकी लागत बढ़ जाएगी, उनके लिए निर्यात करना मुश्किल होगा। घरेलू खपत भी कम होगी क्योंकि लोगों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से महंगाई बढ़ेगी, आयात महंगा होने से लोगों को सामान महंगा मिलेगा, तेल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई भी बढ़ जाएगी, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। आखिर में जब देश में महंगाई होने से खपत कम होगी, इसके अलावा विदेशी निवेशकों का भरोसा भी देश पर कम होगा, वो भारत में निवेश अपना जो निवेशक है वो पैसा निकालेंगे, शेयर बाजार में गिरावट जिससे आ सकती है।
8: देखिए, हम बहुत सारी चीजें आयात करते हैं, करीब 250 बिलियन डॉलर के आसपास की हम एनर्जी, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आयात करते हैं, फर्टिलाइजर आयात करते हैं, खाने का तेल आयात करते हैं। ये सब चीजें हैं एसेंशियल कमोडिटी, जिसके बगैर देश चल नहीं सकता, समाज चल नहीं सकता। लेकिन सोना एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम रह सकते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि बाकी चीजें तो हम नहीं काट सकते, वो हमारी जरूरतें हैं, लेकिन सोना अगर हम कम खरीदेंगे तो करीब हम 50 बिलियन डॉलर के आसपास हम हर साल सोना आयात करते हैं। अगर सोने के दाम बढ़ते हैं तो हमारी विदेशी मुद्रा की खपत और बढ़ जाती है। तो अगर हम एक साल सोना नहीं खरीदेंगे तो ये समझिए कि भारत में करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत हो जाएगी। ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है आम आदमी की तरफ से। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर आप एक साल सोना ना खरीदें तो हमारे पास 50 बिलियन डॉलर बच जाएगा, जिससे हम या तो खाने का तेल खरीद पाएंगे या फर्टिलाइजर खरीद पाएंगे, या जो महंगाई बढ़ रही है हमें जो एक्स्ट्रा डॉलर की जरूरत है वो हम सोना ना खरीद के जो बचेगा हम उससे बाकी जरूरतों की चीजें खरीद पाएंगे।
6: प्रधानमंत्री ने नसीहत दी, अपील की तो राजनीति न हो यह संभव नहीं। विपक्ष ने पहले सवाल किया कि चुनाव के बाद ही सारा संकट क्यों सरकार को दिखाना शुरू हुआ। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना केवल जनता के लिए ही है या नेताओं के लिए भी है।
1: ये वीडियो रविवार शाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो कब का है साफ नहीं, लेकिन ये जरूर वायरल करते हुए लिखा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद नेता लोग काफिला लेकर चलना बंद कर देंगे? क्या प्रधानमंत्री ने जो तेल बचाने की बात कही है वो मंत्री और विधायक सांसद देश के सुनेंगे?
0: पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने जैसे ही कहा कि छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लाल लश्कर अपना छोड़ दिया, स्कूटी निकाली, हेलमेट पहना, पीछे सुरक्षा कर्मी को बैठा लिया, कैमरे पर सबके सामने स्कूटी पर बैठकर चल दिया। आप कहेंगे वाह गजब मंत्री है, तुरंत पीएम की बात पर अमल जो करने लगे, कार छोड़ स्कूटी पर चलकर तेल बचाने का संदेश देने लगे। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि कैमरे में आगे मंत्री जी स्कूटी से चलते दिखते हैं, पीछे पीछे दावा होने लगा कि मंत्री जी का ड्राइवर उनकी कार लेकर भी चलने लगा। लगता है उसे किसी ने तेल बचाने वाली बात बताई ही नहीं। और एक बात बतानी जो आपसे रह गई कि तेल बचाने के लिए मंत्री जी जो स्कूटी लेकर निकले उसका इंश्योरेंस भी पता चला मार्च महीने में खत्म हो चुका है।
9: उसका चालान किसके नाम होगा, क्योंकि वो स्कूटी मुख्य जो है मंत्री महोदय के नाम तो है नहीं। तो अपने अपने प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए मुझे लगता है ये तो समझना होगा कि नियम और कानूनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन फिर भी उत्तराखंड के मंत्री कम से कम स्कूटी तो निकाले। बाकी लोग प्रधानमंत्री की देश के लिए जरूरी अपील सुनेंगे क्या? जैसे गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, इलेक्ट्रिक कार में सफर करने लगे।
10: जब जब आह्वान किया गया है तब तब देश आगे बढ़ चढ़ के देश भक्ति के लिए दान भी दिया है, संकल्प भी दिया है।
1: वैसे मंत्री जी की कार तो शायद सरकारी पैसे यानी जनता के पैसे से आई होगी, कौन सा इनको यहाँ खर्च करना पड़ा होगा, जनता लेकिन कैसे खरीदेगी। हाँ, प्रधानमंत्री की दूसरी नसीहत तुरंत मानी जा सकती है,
0: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा ले।
1: अब जैसे ही प्रधानमंत्री चाहते हैं कि लोग अलग अलग कार से चलने की जगह मेट्रो से या फिर कार पूल करके चले ताकि तेल बचे, तेल बचेगा तो आयात कम होगा तो बोझ कम होगा, तो विपक्ष के नेता सवाल उठाने लगते हैं।
11: चुनाव तक चंगा सी और चुनाव के बाद नंगा सी, ये रवैया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। वो कहते हैं कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, कम तेल खाओ, सब कुछ कम कर दो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, और खुद शाम को 100 कारों का काफिला लेकर जामनगर में रोड शो करते हैं। इनके कौन आर्थिक सलाहकार है वही समझ में नहीं आता।
1: अब इस काफिले की गाड़ियों को गिन डालिए, झाए झाए करके पूरा काफिला पटना में चल रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ही पूरा काफिला एयरपोर्ट पहुंचा, यहां से हवाई उड़ान भरकर वो गुवाहाटी जा रहे हैं। सवाल है क्या सुरक्षा की वजह से ये काफिला जरूरी है या फिर सुरक्षा नियमों को संभालते हुए बिना इतना बड़ा काफिला लिए उसकी जगह कम गाड़ी लेकर भी मुख्यमंत्री एक नजीर पेश कर सकते हैं।
12: जब कोरोना आया तो आपने कहा कि ताली थाली बजा लो, आज जब एक क्राइसिस आ रही है, जब राहुल जी ने बता दिया था कि क्राइसिस आने जा रही है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास सिर्फ भाषण है। आप खुद तो रोड शो करेंगे गाड़ियों में बैठ करके, आप 8,500 करोड़ के जहाज में घूमेंगे और जनता से कहेंगे कि पेट्रोल और डीजल बचाओ, जनता से आप कहेंगे कि नहीं नहीं आप हवाई जहाज की यात्राएं कम करो, विदेश मत जाओ, आपका जब मन करेगा आप विदेश निकल जाएंगे। तो दरअसल आप पूरा भार जो है वो देश की जनता पे डाल देते हैं और खुद बच जाते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा है वो सरकार का कर्तव्य है। विपक्ष एक बार फिर वही गलती कर रहा है कि वो सरकार का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते देश विरोध की सीमा में कब तक चला जा रहा है यह वो तय नहीं कर पा।
1: ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की जा रही है, सत्ताधारी दल के लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने जब कहा
0: वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है।
1: महाराष्ट्र में बताया गया कि संस्कृति मंत्रालय से अब कोई भी कांस फिल्म फेस्टिवल में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा और कल से विभाग की सभी बैठक ऑनलाइन भी होगी।
13: कल से हमारी जो डिपार्टमेंट की बहुत सारी बैठकें हैं, अधिकारियों को आना जाना ना पड़े जिसके कारण पेट्रोल डीजल की उपयोगिता करनी पड़ती है उसमें रोक लगे, इसके लिए बहुत सारी मीटिंग जो ऑनलाइन वर्चुअल करेंगे ये निर्णय हमने किया है।
1: खबरदार करता सवाल है कि क्या यही काम दूसरे बड़े नेता करेंगे, क्या राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री चार्टर प्लेन का इस्तेमाल करना बंद करेंगे, क्या चार्टर्ड प्लेन की जगह मुख्यमंत्री और मंत्री सामान्य लोगों की तरह हवाई जहाज से चलेंगे, क्या देश के जिन शहरों में मेट्रो है वहाँ पर राजधानी में मुख्यमंत्री और मंत्री मेट्रो से चलेंगे, क्या सरकारी अधिकारी कार पुलिंग करके ऑफिस पहुँचेंगे, अधिकारी अपने अफसरपन से थोड़ा समझौता करें, नेता अपनी अकड़ और रसूख को थोड़ा ढीला करें, तब वाकई देश बदलेगा। जनता तो त्याग के लिए हमेशा तैयार खड़ी ही है।
6: और अब आज की बड़ी राजनीतिक खबर से खबरदार करते हैं। बंगाल से मिली हिंदू वोट की ताकत क्या 2027 के चुनावों में बीजेपी को 7 से 7 राज्य जितवा सकती है, जहां सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और गुजरात है, जहां से आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ टू काशी विश्वनाथ के रास्ते हिंदू वोट की एकजुटता का गणित लगाया है।
0: चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं।
14: भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है।
1: 90 का दशक सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा लेकर लालकृष्ण आडवाणी निकले, हिंदुत्व की प्रचंड वेग पर सवार बीजेपी की राजनीति को गति मिली। 2026 सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पूजन करते हैं, क्या 2027 की हैट्रिक वाली अब हवा बहेगी, क्या बीजेपी का उत्तर प्रदेश में घटा हुआ हिंदू वोट वापस एकजुट होगा, क्या जिस हिंदू वोट के बंटने से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में ताकत मिली वो वापस बीजेपी जोड़ लेगी।
7: गुजरात से उत्तर प्रदेश तक का दिन सोमवार को अहम रहा है, जहां इस साल सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल और इसके पुनर्निर्माण के बाद दोबारा उद्घाटन के 75 साल पूरे होने पर ऐतिहासिक समारोह सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है।
15: ओम विष्णुरा।
7: इस आयोजन में पहले रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचते हैं, फिर वो सोमनाथ मंदिर के शिखर का पहली बार जलाभिषेक करते हैं। इसके लिए 11 तीर्थों के जल को एक बड़े कलश में रखा जाता है। इस कलश को 90 मीटर लंबी क्रेन के जरिए मंदिर के शिखर के ऊपर स्थापित किया जाता है। इसके बाद भारतीय वायुसेना की मशहूर सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ मंदिर के ऊपर एक एयर शो करती है।

0: और फिर प्रधानमंत्री एक बयान देते हैं जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई देती है।
1: दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
0: सोमनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हैं, राम मंदिर का विरोध करने वाली राजनीति पर सवाल उठाते हैं और तब उसी वक्त काशी विश्वनाथ ने सोमनाथ से आए जल से जलाभिषेक करके योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन को मिटाने का प्रयास करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं।
2: जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत की गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की कथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने हिंदू वोट पर बड़ी चोट बीजेपी को पहुंचाई थी। 29 सीटों का नुकसान अखिलेश और राहुल ने यूपी में बीजेपी को दिया था।
3: हर हर महादेव।
4: पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं।
5: श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक का इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे, बोलने नहीं। उनका पीडीए फर्जी है।
0: 2014 से 2024 के बीच 3 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव के वोट गणित के मुताबिक बीजेपी 80% हिंदू वोट में, सवर्ण का 70-80% वोट लगातार 2014 से पा रही है। लेकिन ओबीसी वोट में यादव वोट को हटाकर जो 50-80% तक हिस्सा 2022 तक मिला वो अचानक 2024 में छिटकने लगा। 2019-2022-2024 के बीच देखें तो कुर्मी कोयरी वोट बीजेपी के पास 80% से 72% होते हुए 2024 में 61% तक आ गया। इसी तरह बीजेपी का गैर जाटव वोट देखें तो 2019 में 49%, 2022 में 41% हुआ और फिर 2024 में घटकर 29% तक आ गिरा। क्या यही वजह है कि अब वापस पिछड़े और दलित वर्ग पर फोकस बढ़ा दिया गया है ताकि उत्तर प्रदेश में 2027 में न सिर्फ हैट्रिक लगाई जा सके बल्कि 2029 के लिए भी यूपी की जमीन को उपजाऊ रखा जा सके।
6: और अब बात नीट परीक्षा की। देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं। वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं, हर सवाल 4 नंबर का होता है। लेकिन इसी परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कुल 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये क्या पेपर लीक है, इसकी जांच हो रही है।
0: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले एक गेस पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साय में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साय में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गैस पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में MBBS कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गैस पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गैस पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गैस पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गैस पेपर तैयार किया है जिसके गैस पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि NTA की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं, जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
6: आज तक कुछ सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस पीजी हॉस्टल संचालक के पास उसके बेटे ने ये गेस्ट पेपर भेजा था, वो सबसे पहले सीकर के उद्योग नगर थाने गया, जहां से पुलिस वाले ने ये कहकर भगा दिया कि अफवाह मत फैलाओ। फिर उसने ये सारी जानकारी NTA को दिया, NTA ने ये जानकारी सेंट्रल IB को दी, IB ने ये जानकारी राजस्थान पुलिस को दी और उसके बाद SOG ने जांच शुरू की, जिसमें पता चला है कि 29 अप्रैल तक गेस्ट पेपर एक काउंसलर के मोबाइल में आना पकड़ा गया है। गैस पेपर जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, देहरादून और केरल तक जाने के सबूत मिले हैं। दावा है कि नीट के 135 सवाल सेम टू सेम गैस पेपर से हैं। शुरू में 30 लाख तक में इसका बिकना बताया गया है। अब आपके मन में आशंका होगी कि अगर ये पेपर लीक हुआ है तो कहां से हुआ, तो NTA से पेपर लीक नहीं हुआ है। NTA का सिस्टम पूरी तरीके से फुल प्रूफ है। आशंका यह है कि प्रिंटिंग प्रेस से या पेपर सेट करने वाले के पास से लीक हुआ होगा। नीट 2026 परीक्षा का प्रश्न पत्र जयपुर के प्रिंटिंग प्रेस में छपना बताया जा रहा है। वहीं अब तक कार्रवाई के नाम पर सीकर, झुंझुनू, नागौर और देहरादून से नीट गेस्ट पेपर लीक वाले या खरीदने के आरोप में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीकर में जिसने केरल के लड़के को भेजा, उस काउंसलर राकेश कुमार मंडावरिया को हिरासत में लिया गया है। जयपुर से अविनाश लांबा और मनीष यादव को भी हिरासत में लिया गया है।
7: गैस पेपर में करीब 410 क्वेश्चंस हैं। उन 410 क्वेश्चंस में से तकरीबन 120 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आए हुए बताए जाते हैं। वो गैस पेपर इन लोगों के बीच में, इन बच्चों के बीच में आज से नहीं, वो काफी एग्जाम के करीब 15 दिन पहले, महीना भर पहले तक उनके पास में ये आ रखा था। जैसे किसी ई मित्र पे किसी ने फोटोकॉपी कराई तो ई मित्र वाले ने आगे उसको फोटोकॉपी को आगे देना शुरू किया। तो हमारी जांच इस गैस पेपर के बेसिस के ऊपर जो चीटिंग हो रही है या किसी प्रकार का क्या कोई क्राइम हो रहा है उसके ऊपर केंद्रित है कि हम उसकी देख, वो उसी में हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं। ऐसा हमारी जानकारी में नहीं आया है कि हमने काफी लोगों से बातचीत करी है कि किस जगह से ओरिजिन हुआ है, कहां से क्या हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो एग्जाम्स दे रहे थे उनके पास में उनके व्हाट्सएप पे उनके उसके मोबाइल के ऊपर इसका ट्रेवल होना पाया गया है। तो उनके बेसिस के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी बढ़ाते हुए, इट्स ए लेबोरियस और पेनफुल प्रोसेस, तो हम सभी लोग उस अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे। जैसे ये जो गैस पेपर था, उस गैस पेपर में वो करीब 150 पेजेस का, 87 प्लस 64-65 पेज, तो करीब 150 पेज का वो एक PDF है। उस 150 पेज में करीब 400 से अधिक क्वेश्चंस हैं, उसमें से 120 के करीब क्वेश्चंस बताया जाता है कि आए हैं।
6: इस कथित पेपर लीक के दावों का सच क्या है? एनटीए के अधिकारी और एक्सपर्ट ये जानने में लगे हैं कि क्या इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं। इसकी वजह से एसओजी अब तक मुकदमा नहीं दर्ज करवा पा रही है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में शुभेंदु सरकार ने एक साथ कई फैसले लिए। इसमें सबसे बड़ी घोषणा घुसपैठ रोकने से जुड़ी है। बंगाल की नई सरकार ने बांग्लादेश से लगती जमीन को बीएसएफ के हवाले करने का ऐलान किया है, जहां पर अभी तक बाड़ नहीं लगाई जा सकी है।
0: इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने भारत बांग्लादेश सीमा से सटी 44 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें जीती थी। कमाल की बात यह कि बीजेपी ने 2021 के मुकाबले न सिर्फ अपनी 17 सीटें बचाई बल्कि टीएमसी से 11 सीटें भी छीन ली और उसे 27 से 15 सीटों पर समेट दिया। इसकी वजह रही प्रधानमंत्री मोदी का घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाना, जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाना। फायदा बीजेपी को चुनावों में खूब मिला।
1: पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है, कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं।
0: बंगाल चुनाव में घुसपैठ न सिर्फ बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा बल्कि इसे लेकर पीएम मोदी ने सबसे बड़ी गारंटी भी दी थी।
1: आपको घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा।
6: वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप रहिए खबरदार।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: फैंस से घर को सजाएं।
4: कूल फैंस बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
3: कूल फैंस घर की शान बढ़ाएं।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
4: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
3: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
5: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
8: पर मार्केट की समझ ना, बाउंसर जा रही।
7: आप कैसे कर लेते हो?
9: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
10: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं
10: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
16: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
17: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
18: विक्रम, एक हिंट तो देते।
19: विक्रम!
18: हिंट।
17: बड़े आराम से।
20: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
21: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
22: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
25: Take a date not bites.
26: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
25: Lion Date Nut Bites.
27: AU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU,
28: सोच बदलो और बैंक भी।
29: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
30: लाइक आई सेड बिफोर, वी बेटर होल्ड द सिंस।
31: JK मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद। JK मसाले, जहां स्वाद वहां JK।
13: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
14: इसमें माइक्रो फाइबर है।
13: माइक्रो फाइबर यानी
14: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
13: हमारे सीमेंट में नहीं है?
14: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
15: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
32: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
33: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
32: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
33: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।
34: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
35: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
36: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
0: Thank God I get to wake up.
36: And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
2: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं
3: इसमें माइक्रोफाइबर है
2: माइक्रोफाइबर यानी
3: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत
2: हमारे सीमेंट में नहीं है
3: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है
4: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
5: ओह नो बहुत बोर लग रहा है
6: Take a date, not bites.
7: No added sugar, preservative ke bina. Dates, badam, pista, kaju aur shahad se taiyar kiya gaya. Lion dates, nut bites.
6: Lion date, nut bites.
8: JK Masale ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद JK Masale, जहां स्वाद वहां JK.
9: और वही कहां गए थे घूमने
10: JK Max.
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है
10: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग
12: केंट से पानी होता है 100% प्योर
13: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है
12: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी
14: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टाल दिए
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे
16: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: आखिर में खबर असम से, जहां पर कल हिमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कल सुबह 11:40 पर शपथ ग्रहण का ये समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। आपके घर में भी खूब चर्चा हो रही होगी, बच्चे सवाल भी पूछ रहे होंगे, लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान युद्ध की वजह से कोई गंभीर संकट आने वाला है। उन्होंने लोगों से सात बातें कही है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कहा, जिससे लोग सहमे हुए हैं कि क्या पेट्रोल डीजल पर खरीद को लेकर कोई लिमिट लगने वाली है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये शुरू हो चुका है जहां महीने में तेल खरीद की सीमा तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की, साथ ही कहा कि अगले एक साल तक सोना ना खरीदे, जिससे देश के सर्राफा बाजार में खलबली मच गई। कई ज्वेलरी कंपनीज के शेयर बुरी तरह से लुढ़क गए, गिर गए। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा टालने के लिए कहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग यानी भाई विदेश में जाकर कहीं पर शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी भारत में ही करने को कहा है। नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए, ताकि आप जो ये फर्टिलाइजर्स है वो कम इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल कीजिए। ये तो खैर प्रधानमंत्री पहले भी बोलते रहे, जिसमें वो ये मानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कुकिंग ऑयल अगर आपने कम किया तो आपकी सेहत को फायदा होगा। अब इन तमाम बातों के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी बड़े मास्टर प्लान या बड़े संकट का संकेत है। हम बताएंगे आपको, और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद भी लगभग ध्वस्त हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ही सिरे से ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब ज्यादा दिन तक हंस नहीं पाएगा। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया में युद्ध के खतरे को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने नए नियम बनाते हुए कहा कि अगर किम जोंग उनकी हत्या हो जाती है तो वो परमाणु हमला कर देगा। समझ गए आप, ईरान में आयतल्ला अली खमेनेई की हत्या के बाद जो स्थिति बनी उसे ही देखते हुए कोरिया ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। आखिर में आपको बताएंगे कि कुशीनगर का

0: सोचिए ये गिरावट है और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने की खरीद पर रोक भी लगाई जा सकती है, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि सोने की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए या इसको सीमित कर दिया जाए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी अपील के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अंदाजा लोग लगा रहे हैं। चौथी अपील, विदेश यात्राओं को अगले एक साल के लिए टाल दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग या छुट्टियों के लिए विदेश जाते हैं वो अगले एक साल तक ऐसा ना करें। इसकी वजह देखिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उसकी जगह पीएम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जगह भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, भारत के अंदर ही खर्च होगा, भारत को ही फायदा होगा, यही छुट्टियां बनाकर आप घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। तो दोनों ही नजरिए से, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, पीएम कह रहे हैं कि देश के अंदर कीजिए, चाहे वो छुट्टियां मनाने की बात हो, वो कह रहे हैं देश के अंदर। इस अपील से वो लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बुकिंग पहले से कराई हुई है। पांचवी अपील है, फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता को घटाना और नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, फर्टिलाइजर की खपत को कम करना। अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, लेकिन कई राज्यों में किसानों के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि कहीं इस बार फर्टिलाइजर्स और खाद की कमी तो नहीं होने वाली है, कहीं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएंगी। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन लोग उनकी अपील से ये अंदाजा लगा रहे हैं और इससे किसानों के बीच भी कई लोग जो कह रहे हैं उसकी वजह से डर फैल रहा है। छठी अपील, कुकिंग ऑयल का सोच समझ कर कम इस्तेमाल। ये प्रधानमंत्री ने पहले भी मन की बात में कहा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 60% एडिबल ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, जिस पर लगभग $20 बिलियन खर्च होते हैं। और आखिर अपील ये की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भारत में बने सामान को अपनाएं और मेड इन इंडिया सामानों की मांग बढ़े, जिससे विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम किया जा सके। याद होगा हमने भी ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ शुरू किया था #MadeInIndia, ताकि जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारे उत्पादक हैं, वो सब अपने सामान पर लिखें मेड इन इंडिया और गर्व से लिखें। अब प्रधानमंत्री मोदी की ये 7 अपील, जिन्हें लेकर अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि इस बार शायद कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। ये कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरह की अपील करते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई इशारा जरूर छिपा होता है, कुछ संकेत छिपे होते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 आपको याद होगा, जब रात 8 बजे के भाषण में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू किया था, तब इससे 6 महीने पहले मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी, वो डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दे रहे थे। उस वक्त यह एक इशारा था कि सरकार नोटबंदी की तरफ बढ़ सकती है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी दौरान 18 सितंबर 2016 को जब उरी का हमला हुआ था, तब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बयान से पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का संकेत दे रहे हैं। इसके बाद जब कोरोना वायरस आया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी और लोगों से ये कहा था कि वो डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में अपने घरों में ताली बजाएं और ताली बजाएं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ये जनता कर्फ्यू अगले दिन खत्म हो जाएगा, वो अपने काम पर लौट आएंगे, लेकिन हकीकत में ये जनता कर्फ्यू आगे लगने वाले लॉकडाउन का बड़ा संकेत था। और पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब उससे पहले भी लोगों से यह अपील की गई थी कि वो रात को अपने घरों की बिजली बंद कर दें। उस वक्त यह अपील इस बात का संकेत थी कि भारत पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना नहीं खरीदने, विदेशी यात्राओं को एक साल के लिए टालने की अपील की है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कयास और अंदाजा लगा रहे हैं और पूरे देश में लोग एक दूसरे से चर्चा में, फोन पर बातचीत में यही पूछ रहे हैं कि इस बार सरकार क्या करने वाली है। देखिए,
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे, अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्क

0: वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50%, उसको घटाए, आधी कर दे, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं।
1: जिस दिन ईरान युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन हमने आपसे कहा था कि ये युद्ध धीरे धीरे आपके घर, आपकी रसोई, आपके दफ्तर, आपकी जिंदगी के हर कोने तक पहुंचेगा, और अभी यही हो रहा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर सरकार चाहती है कि लोग एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें यानी घर से ही वो अपने ऑफिस का काम करें, दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाए ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। ये वो भंडार होता है जिसमें जमा विदेशी मुद्रा से देश की जरूरत का सभी सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है, खरीदा जाता है, ठीक है। जैसे हम तेल खरीदते हैं, जैसे हम सोना खरीदते हैं, हम अलग अलग देशों से जो सामान इंपोर्ट करते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं अपने देश में जरूरत के लिए, वो इसी पैसे से खरीदते हैं। अगर ये भंडार खाली हो जाए और इसमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ही ना बचे, डॉलर ही ना बचे, तो वो देश अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता और इसके बाद आर्थिक रूप से वो देश बर्बाद होने लगते हैं, बड़ा संकट आ जाता है। भारत के सामने अभी ये समस्या नहीं है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे सामने कोई गहरा संकट नहीं है, लेकिन जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, देश का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, दूसरी जगहों से हम ले रहे हैं जरूरत का सामान, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है, और बढ़ क्या सकता है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 66,27,000 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन अब ये 65,56,000 करोड़ रुपए हो गए हैं, यानी युद्ध के दौरान इसमें 71,144 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा है, और ज्यादा इसलिए है क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया है, ऊपर से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ जिससे भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। अब अगर हमारा रुपया कमजोर होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान होगा। मैं एक उदाहरण से भी आपको समझाती हूं। मान लीजिए पहले जब भारत के 90 रुपए अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर थे, तब हमें भुगतान में 90 रुपए के हिसाब से करना पड़ता था, लेकिन अब जब यही रुपया 1 डॉलर के मुकाबले 95 रुपया हो गया है, तब अपना इंपोर्ट बिल 95 रुपए के हिसाब से चुकाना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा पैसा निकल रहा है। इससे हमारा खर्च पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है, हम कच्चा तेल, गैस, सोना, फर्टिलाइजर ज्यादा दामों पर खरीद रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जब तक हम ज्यादा दामों पर ये चीजें खरीद रहे हैं, तब तक आप इनकी खपत या इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। ये ठीक वैसा ही है जैसे आम घरों में प्याज महंगा होने पर या कोई और दूसरा सामान महंगा होने पर कुछ वक्त के लिए उसकी खपत कम कर दी जाती है, और लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा कीमतों पर वही प्याज या वही सामान खरीदने का कोई फायदा नहीं है और इससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। सरकार भी बस हूबहू यही कर रही है। हम एक एक करके आपको आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप भी ये पूछ रहे होंगे बार बार, सोना खरीदने से क्यों मना कर रहे हैं, सोना क्यों नहीं खरीदने देना चाहते। देखिए, साल 2024 में भारत ने आज के हिसाब से 13,06,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था। 2025 में 11,60,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था और उस वक्त हमने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के 16 बिलियन डॉलर की बचत कर ली थी। लेकिन इस साल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं, कीमतें बढ़ी तो तेल महंगा हुआ और अनुमान है कि इस साल जो है कच्चे तेल के आयात पर हमारा देश 17,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अब ये पिछले साल के मुकाबले 5,40,000 करोड़ ज्यादा है, यानी सिर्फ इस युद्ध के कारण। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल मई, इस युद्ध के कारण हमें कच्चे तेल पर हर दिन 1,370 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब किसी चीज के आपको 10 से 12 गुना दाम ज्यादा देने पड़े तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि मैं बाद में ये चीज ले लूंगा, तब तक कोई और रास्ता इसके लिए निकालता हूं। भारत यही कर रहा है। हम कच्चा तेल खरीदना बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि इसी से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन हम इसकी खपत को घटाकर अपने इंपोर्ट बिल को, भाई जितना हमको भुगतान करना पड़ रहा है उसको ज्यादा बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है अब वो समझिए। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास कच्चे तेल के कुएं नहीं है। हम अपना 89% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि या तो हम महंगा कच्चा तेल खरीदते रहे और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, या हम कुछ वक्त के लिए पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर दें और अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे देश में मोटरसाइकिल के मुकाबले गाड़ियां ज्यादा है, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। हमारे देश में जो वाहन पेट्रोल पर चलते हैं उनमें 59% बाइक्स हैं या स्कूटर्स हैं, 37% कार्स हैं, टैक्सी 3.5%, 1% थ्री व्हीलर है जो पेट्रोल पर चलते हैं। अगर डीजल की बात करें तो 64% ट्रक हमारे देश में डीजल पर चलते हैं, 14% गाड़ियां, 4% बसें, ये सब डीजल पर चलती है। अब सरकार चाहती है कि देश में जो 59% बाइक्स, 37% गाड़ियां पेट्रोल पर चलती है वो तेल को कम से कम यूज करें, कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए वो वर्क फ्रॉम होम करें, मेट्रो कार पूलिंग करके दफ्तर जाएं। कई लोग हैं जो डिजिटल में ही काम कर रहे हैं, उनका 80% काम डिजिटल ही होता है, लेकिन बावजूद इसके वो दफ्तरों में आते हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि उनके लिए दफ्तर की तरफ से ही ये प्रावधान किया जाए कि उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिल जाए? अगर ऐसा होता है तो हर महीने जो बाइक औसतन 20 से 25 लीटर तेल इस्तेमाल करती है वो अपने 5 से 7 लीटर तेल की खपत को तो कम कर ही सकती है, जबकि एक गाड़ी में हर महीने औसतन 70 से 80 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वहां भी 15 से 20 लीटर कम किया जा सकता है। भारत में कुल 31 करोड़ बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, गाड़ियां हैं। अगर हर वाहन औसतन 5 लीटर तेल भी बचाता है तो इससे 155 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इससे भारत अपने 9,500 करोड़ रुपए बचा सकता है? और ये कोई छोटी रकम नहीं है। आज जब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल हो चुकी है, हर दिन भारत की तेल कंपनियों को 1600-1700 सोचिए आप 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी की अपील देश को बड़े संकट से बचा सकती है। तेल के बाद भारत की दूसरी बड़ी चुनौती है सोना, यानी गोल्ड। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग एक साल तक सोना ना खरीदें और यह अपील अभी कई लोगों को परेशान कर रही है क्योंकि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है वो समझ नहीं पा रहे। भारत एक ऐसा देश है जहां सोने के बिना शादियां हो, त्योहार हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली और दीपावली से लेकर शादियां, शादियां से लेकर हर चीज शुभ यानी सोना और सोना का इस्तेमाल और सोने की खरीद। भारत में 50% सोना और सोने के गहने सिर्फ शादियों के लिए खरीदे जाते हैं। इसके बाद धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, नवरात्रि के मौके पर सोने की खूब खरीद होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो निवेश के लिए या बुरे वक्त के लिए सोना खरीद कर अपने घरों में रखते हैं। सोचते हैं इधर उधर की चीज क्या खरीदना है, इसका सोना खरीद लो, सोना है ना घर में पड़ा रहेगा, कीमत बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोई सीजन ऐसा नहीं है जब सोने की डिमांड हाई ना हो। आप जब जाएंगे तब सोने के खरीदार आपको बाजार में मिलेंगे। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग एक साल तक सोना ना खरीदे तो इससे कई लोग चिंता में आ गए। लेकिन आज हम इन लोगों को कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं। भारत अपनी जरूरत का 99% से भी ज्यादा सोना दूसरे देशों से ही आयात करता है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग होती है, जिसमें से हम अपनी खदानों से सिर्फ 1 या 2 टन सोना निकाल पाते हैं। यानी हमारा जितना सोना है, यहां सोना निकलता ही नहीं है, ये सारा का सारा आता है दूसरे देशों से। जैसे स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16% सोना, दक्षिण अफ्रीका से भारत अपनी जरूरत का 10% सोना लेता है। तो ये है पूरा हिसाब किताब, 40, 50, 66। अब जैसे 80% कच्चा तेल पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में बिकता है, ठीक वैसे ही 70% सोना भी डॉलर में ही बिकता है। मतलब आप सोना खरीदेंगे, सोना और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब हम सोना बाहर से खरीदेंगे तो उसके लिए हम डॉलर में भुगतान करेंगे। एक बार फिर हमारा फॉरेक्स, जो फॉरेन रिजर्व पैसा है हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार, वो कम होने लगता है। अब चुनौती यह है कि पहले से हम कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना ना खरीदें ताकि उसी सोने को दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें नहीं खरीदना पड़े, और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। जैसे हमको सोना ज्यादा खरीदना पड़ता है, हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर देते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होता है, और जैसे वो घटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तो अभी जब शुरुआती ही थोड़ी सी फिसलन है, उसी वक्त अगर देश ने एकजुट होकर काम कर लिया तो हम किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। यह अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी अब भी अपने चरम पर है। 2024-25 में भारत के लोगों ने $58 बिलियन का सोना खरीदा, लेकिन अगले साल हमने $72 बिलियन का सोना खरीदा। यानी सिर्फ एक साल में हमने $14 बिलियन का सोना ज्यादा खरीदा, और अब भी जब युद्ध चल रहा है तब सोने की डिमांड कम नहीं हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में भारत के लोगों ने $49 बिलियन की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी, और यह पैसा इतना है कि पाकिस्तान के 9 रक्षा बजट इसमें समा सकते हैं। 9 रक्षा बजट, इतना तो हम सोना खरीद लेते हैं। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर कौन? हम, भारत है। 2025 में चाइना ने 591 टन सोना खरीदा था, भारत ने 462 टन सोना खरीदा, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका ने 109 टन सोना खरीदा। तो तीनों का डिफरेंस भी देखिए। अब जिस वक्त हालात सामान्य थे तब तो सोने का इंपोर्ट बिल भारत सह पा रहा था, लेकिन अब जब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है, देश में सोने की लगातार बिक्री बढ़ रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा है कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदें ताकि हम विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकें, हमको डॉलर में ज्यादा पे करके सोना, तेल, ये सब ना खरीदना पड़े। ये कहना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत में अब सिर्फ सोना खरीदा नहीं जा रहा बल्कि सोने के बॉन्ड्स, सोने के शेयर्स में लोग खूब पैसा लगा रहे हैं। मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं, शेयर्स में भी लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस साल भारत के लोगों ने 66 टन सोने के गहने खरीदे, लेकिन इसी दौरान भारत के ही लोगों ने 82 टन सोने में अपना पैसा निवेश कर दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के लोगों की सोने की खरीदारी रुक ही नहीं रही है, और इस वजह से सरकार के डॉलर खूब खर्च हो रहे हैं, और खर्च इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 99% से ज्यादा सोना दूसरे देशों से खरीदना होता है। भारत में इतना सोना भी तब खरीदा जा रहा है जब पहले से भारत के घरों में 34,600 टन सोना रखा है। सोचिए, पहले से ही और ये 600 टन सोना ऐसा वैसा नहीं, ये 360 लाख करोड़ रुपए का होता है जो घरों में पड़ा हुआ है। 360 लाख टन करोड़, सोचिए जितना सोना हमारे घरों में रखा है उतना सोना दुनिया के 10 बड़े देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग और सोना और गहने खरीद कर अपने घरों में रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अभी जब तक युद्ध से बने हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक लोग सोना ना ही खरीदें। हमारे देश में 6 लाख कारोबारी हैं, ऐसे कारोबारी जिनकी सोने की दुकान है 6 लाख, और जो सोने से जुड़ा व्यापार करते हैं ये कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए।
2: इस त्योहार हो शादी ब्याह हो हमें सोने की जरूरत पड़ती है, और जो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये फैसला प्रधानमंत्री की अपील कितनी मुश्किल बढ़ाएगा?
3: देखिए करोड़ों लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक रोजगार का संकट एक साल के लिए तो खड़ा होता ही है, और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री पे पड़ा है। मेरे पास महाराष्ट्र से बंगाल से कई बंगाली कारीगरों के फोन आए कि भाई ये मोदी जी जो बोल रहे हैं हम कैसे करेंगे, जब से सोना 1,93,000 रुपये और चांदी 4,20,000 रुपये बिकी है और ताबड़तोड़ खरीदारी इन्वेस्टरों ने की है तभी से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में मंदा है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री जी के बयान से उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सरवाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
2: अपील के पीछे मंशा दरअसल ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार बचे, लेकिन एक साल तक, एक साल का बैकअप कारोबारियों के पास है?
4: नहीं है, कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं।
2: आप लोगों के मन में जब आपने सुना होगा तो सबसे पहले क्या हुआ कि आगे क्या करेंगे?
5: जैसे एक घर का कोई मुखिया होता है ऐसे ही देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस व्यापार के लिए एकदम ये फैसला या ये,
1: हालांकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कह रहे हैं कि सरकार 12 साल बाद भी अपनी जिम्मेदारी जनता पर डालकर गलत कर रही है, और राहुल गांधी को पूरा हक है कि वो सरकार को घेरे। लेकिन आज हम कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, और इन्हें दिखाने का मकसद यही है कि आप ये समझ पाएं कि संकट की घड़ी में सोने को लेकर कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह वादा किया था कि अगर भारत के लोग अपना पैसा, अपना सोना और गर्म कपड़े सेना के लिए दान करेंगे तो भारत चाइना के खिलाफ ये युद्ध जीत जाएगा। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त एक विज्ञापन सरकार ने प्रसारित करवाया था जिसके आखिर में महिलाओं के मंगलसूत्र और दूसरे गहनों से विक्ट्री और विजय लिखा गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दिए दिए थे, और ये बात नवंबर 1962 की है जिसकी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हमने आपके लिए निकाली है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कुल 336 ग्राम सोना जिसमें उनका मंगलसूत्र भी था उसे सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दिया। इंदिरा गांधी की इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की महिलाओं में अपने गहने और मंगलसूत्र सरकार को दान में देने की बाढ़ आ गई थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से कंगन, गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतारकर दान दे देती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चाइना की सेना को हरा देगी, और ये बात सुनकर लोग और दान देने के लिए प्रोत्साहित होते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों में 28 नवंबर 1962 तक सरकार को 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में लोगों से मिल चुके थे। और ये सोचिए कब की बात है, 1962 की बात, तब इस पैसे की कीमत समझिए, और ये उस समय के लिए बहुत बड़ा दान था। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उसी साल 1962 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव कराने पर 7,20,00,000 रुपए खर्च हुए थे, जबकि युद्ध के दौरान ही भारत के लोगों ने सिर्फ कुछ दिनों में 8 करोड़ रुपए दान देकर सरकार को दे दिए थे और 252 किलोग्राम सोना सरकार को दान में मिला था, वो आज के हिसाब से लगभग 185 करोड़ रुपए का होगा। नेहरू सरकार ने लोगों से कहा था कि अगर देश के लोग सेना की मदद के लिए आगे आएंगे तो भारत चाइना से युद्ध जीत जाएगा, लेकिन हकीकत में भारत ये युद्ध हार गया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी यह नहीं बताया कि आखिर ये जो पूरा पैसा और सोना उस वक्त इकट्ठा हुआ था उसका किस जगह पर कहां से इस्तेमाल किया गया। उस समय कई बार ये मांग उठी कि नेहरू सरकार को नेशनल डिफेंस फंड में मिले दान का हिसाब देश को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की किसी भी सरकार ने इसके बारे में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद 1965-1971 के भी युद्ध में सरकार ने लोगों से कैश सोने में दान लिया। संकट की घड़ी में सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन आज जब इसी तरह के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ये कहा है कि लोग सोना ना खरीदें, तो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर खूब राजनीति हो रही है। हालांकि इस राजनीति से इतर हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं। साल 1990-91 में जब गल्फ वॉर हुआ था और इसी तरह कच्चे तेल नेचुरल गैस की आपूर्ति लगभग ठप हो गई थी, तब हमारे पास कच्चे तेल का बिल्कुल भंडार नहीं था। भंडार तो छोड़िए, सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर को दूसरे देशों में जाकर खरीद सके। उस वक्त स्थिति से निपटने के लिए भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये पिछले गल्फ वॉर की बात हम बता रहे हैं। इनमें से करीब 47 टन सोना हवाई जहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा गया था, जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया था। इन सोने को गिरवी रखकर भारत को जो पैसा मिला उससे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। इसके अलावा तब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी काफी बढ़ गई थी। 1 लीटर पेट्रोल 9.84 रुपए से 15.71 रुपए के करीब हो गया था, आप सोचिए। इसी तरह 1 लीटर डीजल 4.08 रुपए से बढ़कर 6.11 रुपए, रसोई गैस सिलेंडर 57.60 रुपए से 82.75 रुपए हो गया था। आज हमारे देश में विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, इन आंकड़ों के बारे में हमने सोचा आपको जानकारी दे दे। और अब मैं आपको दिखाने जाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की 7 में से 4 अपील पर भी अगर अमल हो गया तो भारत के कैसे पैसे बचेंगे। 11 लाख करोड़ रुपया पैसा हमारा बच सकता है, और यह सबसे बड़ी बात होगी। अगर भारत के नजरिए से आप इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर भारत के लोग एक साल में जो मूवमेंट करते हैं, आइए दिखाते हैं। ये तो हमने आपको दिखा दी मार्च में उस वक्त की पेट्रोल डीजल की कीमतें। किसी वजह से वो ग्राफिक्स इस वक्त आ नहीं रहा है तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर भारत के लोग एक साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, एक साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में $115 बिलियन बचाए जा सकते हैं। इनमें अगर लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए हमारे $72 बिलियन यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कच्चे तेल में 25% कटौती हो जाती है, 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कुकिंग ऑयल में भी 25% की कटौती होती है तो 45,753 करोड़ रुपए बचेंगे। खाद के आयात में 25% की कटौती होती है तो 42,894 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा, खासकर जो लोग विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं या जो किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इस कटौती के लिए वो कितने तैयार है। 2024 में भारत के 3,08,00,000 लोग विदेशों में गए, जिनमें 42.52% लोगों का मकसद था विदेशों में छुट्टियां मनाना। यानी लगभग आधे लोग तो विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, और जानते हैं ये वहां खर्च कितना करते हैं। 2024 में विदेश जाने वाले भारतीयों ने $41.34 बिलियन यानी 3,93,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इनमें भी विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग भारत के लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसीलिए सवाल यह है कि अब क्या ये लोग इस लग्जरी को छोड़ेंगे। दूसरा, फर्टिलाइजर यानी खाद भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में फर्टिलाइजर की मांग सोने की मांग से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2025 में फर्टिलाइजर का आयात पिछले साल के मुकाबले 77% बढ़ गया था, जबकि फर्टिलाइजर में सरकार को सब्सिडी का बहुत बड़ा भुगतान करना होता है। अकेले इस साल में सरकार फर्टिलाइजर पर 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने वाली है, और अब जब युद्ध के कारण फर्टिलाइजर की कीमतें 90% तक बढ़ चुकी हैं, तब तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ने वाला है, जिसके कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है, और ये अपील जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश पॉलिटिक्स, इस पर पॉलिटिक्स और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। तमिलनाडु में इस बार थलपति विजय की सरकार बनी, उनके शपथ ग्रहण की पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है थलपति विजय की पार्टी ने चुनाव में महिलाओं से सबसे बड़ा वादा क्या किया था? माना जा रहा है कि उन्होंने बहुत प्रचार भी नहीं किया, लेकिन एक वादा ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको जबरदस्त प्रचंड जीत मिली। 107 विधायक पहली बार चुनाव लड़ने पर। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर वो उन सभी महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे जिनके परिवारों की सालाना आय 5 लाख से कम होगी। 8 ग्राम सोने की इस वक्त कीमत जानते हैं कितनी है? 1,12,000। और तमिलनाडु में हर साल 4 लाख से ज्यादा तो शादियां होती हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जब सोना नहीं मिलेगा तो तमिलनाडु में ये मुद्दा भी राजनीतिक रूप ले सकता है, और वहां इस पर मुख्यमंत्री थलपति विजय का केंद्र सरकार से सीधा टकराव हो सकता है। खैर, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अब भी गतिरोध बना है, और अब तो ईरान एक खतरनाक चीज कर रहा है। सभी स्टोरेज टैंक फुल होने के बाद ईरान ने अपना कच्चा तेल समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये क्या स्थिति बन रही है पूरे विश्व के लिए, कैसा संकट आ रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण अब तक ईरान के 58 ऑयल टैंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाए, और इसी वजह से ईरान अब हर दिन 2,800 करोड़ का 30 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहा रहा है। पर्यावरण को तो खैर जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सोचिए कि ये क्या इस वक्त त्रासदी का रूप ले रहा है। ईरान के पास 3,500 तेल के कुएं हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता, और अगर फिर भी ईरान इन्हें बंद करता है तो इनमें पानी भर जाएगा और ये हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान ने अब समुद्र में अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसे कच्चे तेल की आवाजाही आने वाले वक्त में और मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक स्थितियां विपरीत रहेंगी, लेकिन अभी जो हो रहा है उससे हालात 4 से 5 साल के लिए खराब हो सकते हैं। इस युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के संविधान में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नॉर्थ कोरिया की संसद यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली के सत्र में संविधान और न्यूक्लियर पॉलिसी लॉ में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के मुताबिक अगर दुश्मन के हमले में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम को नुकसान पहुंचता है या फिर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या हमले के कारण किम जोंग उन आदेश देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर देगा। नॉर्थ कोरिया के संविधान में यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जिस तरह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का खात्मा किया, उसे किम जोंग उन चिंतित हो गए और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो तो उनका देश परमाणु हमला करने में संकोच न करे। किम जोंग उन के इस फैसले की तुलना सोवियत संघ के पुराने डेड हैंड सिस्टम से की जा रही है। सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान पेरिमीटर नाम का एक सिस्टम बनाया था जिसे पश्चिमी दुनिया डेड हैंड कहती थी। इसका मकसद था कि अगर दुश्मन सोवियत नेतृत्व को मार दे, उसके कमांड सेंटर्स को नष्ट कर दे, परमाणु आदेश देने वाला सिस्टम खत्म हो जाए, तब सोवियत संघ बिना किसी आदेश के सीधा परमाणु हमला कर दे। यानी दुश्मन ये कभी ना सोचे कि शीर्ष नेताओं को खत्म करके न्यूक्लियर जवाब रोका जा सकता है। और अब नॉर्थ कोरिया का नया कानून भी लगभग इसी सोच पर आधारित माना जा रहा है, और ये अमेरिका के खिलाफ तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब शाम ढलने लगती है तो साए भी साथ छोड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज यही मंजर नजर आ रहा है। कल तक जो ममता बनर्जी दिल्ली फतह करने का ख्वाब देख रही थी, आज उनकी अपनी ही बिसात के मोहरे बगावत पर उतारू हैं। हार क्या मिली, अपनों की नीयत, साथियों की वफादारी, सब बदल गई है। ममता बनर्जी को समझ आ रहा होगा कि कैसे बुरा वक्त लोगों की पहचान करा देता है। जो लोग कल तक ममता बनर्जी के गुण गाते थे, आज वो भेद खोलने पर उतारू हैं। पार्टी में खास ही लोग जानते हैं, ऐसे भेद वो सबको बता रहे हैं। वो नेता जो कल तक दीदी की एक आवाज पर सड़कों पर उतर जाते थे, आज वो पार्टी की कार्यशैली पर और पार्टी के राज दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब टीएमसी के भीतर एक बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। ये लोग वही हैं जिन्होंने सालों तक सत्ता का लाभ उठाया, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजों ने हार का मुंह दिखाया, सुर बदल गए हैं। कोई कह रहा है नेतृत्व में कमी, कोई पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। ये राजनीति का वो कड़वा सच है जहां पावर के जाते ही पैशन खत्म हो जाता है। सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, घर के बाहर भी ममता बनर्जी आज अकेली खड़ी है। बीजेपी के विरोध में विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना गया था, वो अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। कांग्रेस वामदल ने ममता का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। सीपीएम ने साफ कहा कि वो ऐसी किसी भी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे जो अपराध और वसूली में लिप्त हो, भ्रष्ट हो। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी ने एक साथ आने का निमंत्रण दिया है। ये वही साथी है जो कभी फोटो सेशन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज टीएमसी की हार के बाद दूरी बनाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। सत्ता का स्वाद चख चुके तमाम नेता विपक्ष में बैठने का धैर्य नहीं रखते। यही वजह है कि ममता बनर्जी के कई खास सिपा सालार अब सुरक्षा ठिकानों की तलाश में साइड से निकल रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उसके तमाम नेता कार्यकर्ता टीएमसी में चले गए थे। दर्जन भर विधायक सांसद बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम चुके थे और अब यह मामला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की फालता विधानसभा में आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में रिजू दत्ता ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वो कहीं भी चले जाएं, उन्हें खोज निकालेंगे। अब वही रिजू दत्ता अजय पाल शर्मा से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। टीएमसी पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि 4 तारीख से पहले ये टीएमसी के सेनापति थे। सुनिए,
6: साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे।
7: मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई
1: वक्त बदलता है, बोली बदल जाती है। हमारी अगली खबर उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी अब केवल भारतीय मुस्लिम युवाओं को नहीं बल्कि हिंदू युवाओं को भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कृष्णा मिश्रा, उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एटीएस ने 20 साल के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एटीएस को अपनी जांच में पता चला कि कृष्णा के संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से थे। शहजाद भट्टी गैंग को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रॉक्सी माना जाता है। ये गैंग पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के जरिए कृष्णा और उसके साथी दानियाल अशरफ से जुड़ा हुआ था। भट्टी गैंग सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों लड़कों के जरिए भारत में बड़े हमले की योजना बना रहा था और यूपी पुलिस के ही मुताबिक इस वक्त आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए दोनों काम कर रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक भट्टी गैंग ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इनसे संपर्क किया और दोनों की प्रोफाइल के आधार पर इन्हें चुन लिया गया। दरअसल कृष्णा और अशरफ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, पैसों की जरूरत थी। प्रोफाइल के आधार पर भट्टी गैंग ने यह भी देखा कि ये दोनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। भट्टी गैंग ने इनसे यह भी कहा कि अगर ये उसकी बात मानेंगे तो भारत में हीरो की तरह उनको देखा जाएगा। यूपी एटीएस को जांच में पता चला कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में अपना एक स्लीपर सेल बनाने में जुटे हैं। भट्टी गैंग कृष्णा और अशरफ के जरिए यूपी ही की कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस ने जिस शहजाद भट्टी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, वो शहजाद भट्टी दुबई से अपना गैंग चलाता है। शहजाद भट्टी का नाम सबसे पहले 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सामने आया। आरोप है कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को उसने भारत से फरार होने में मदद की थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने भारत में पहले हमले करने की जिम्मेदारी इसी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को दी। इसलिए ये पाकिस्तानी गैंगस्टर भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करता है, कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को टारगेट करता है। वो सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों को निकालता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको लालच देता है और लालच देकर 20 से 30 वर्ष तक के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बना रहा है। आईएसआई के प्रॉक्सी भट्टी गैंग को रोकने के लिए भारतीय एजेंसियों ने उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद हर दिन नए अकाउंट्स बन रहे हैं, उसके जरिए भारतीय युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। आप भी सतर्क रहिए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपना शपथ ग्रहण स्टाइलिश और फिल्मी अंदाज में लिया। ये अलग बात है कि राज्यपाल ने उन्हें टोका और पारंपरिक तरीके से शपथ लेने की अपील की। विजय ने शपथ ग्रहण के पारंपरिक शब्दों के अलावा बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था जो फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा था। उनकी शपथ ग्रहण का स्टाइल भी फिल्मी एक्टिंग की तरह ही था। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मन से मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं बल्कि वन टेक में कोई सीन खत्म कर रहे। शपथ ग्रहण को देखने के लिए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। शपथ ग्रहण के दौरान विजय ने उनकी तालियों और शोर को भी इसमें शामिल कर लिया था। यह तरीका शपथ ग्रहण की सामान्य परंपरा से बहुत अलग था, इसीलिए बहुत से लोगों को खटकने लग गया।
8: सी जोसेफ विजय एनमनान, பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில்
1: वैसे के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
3: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
4: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
5: विक्रम, एक हिंट तो देते।
6: विक्रम!
5: हिंट।
4: बड़े आराम से।
7: कूल फैंस से घर को सजाएं।
8: कूल फैंस, बिजली बचाएं और कम आवाज करें।
7: कूल फैंस, घर की शान बढ़ाएं।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
11: Hint, bade aaram se.
10: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans.
12: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
13: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
14: Vimal, bolo zuba kesri.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

0: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो आपके मानसिक स्तर तक ना पहुंच सके उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर सम्मानित ना करें। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को दें प्राथमिकता, कक्षाएं चलाएं ऑनलाइन, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का पीएम ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 वर्ष पर अद्भुत आयोजन, पीएम का इशारों में वार, बोले तुष्टिकरण बंदी थी मंदिर के जीर्णोद्धार में बाधा। बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल को मिला रिटर्न गिफ्ट, बनाए गए चीफ सेक्रेटरी, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी को मिली जिम्मेदारी। असम में हैट्रिक के बाद कल हेमंता का राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। और नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल होने से मचा हड़कंप, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। आज बात लड़े कोई और भरे कोई। युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच हुआ, लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया आई। संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं और इस बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं।

0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। वजह नंबर 1, युद्धकाल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर 2, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर 3, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले हमारा भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। आज एक डॉलर की कीमत करीब 75 रुपए है, जबकि युद्ध के पहले $1.91 के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए टूट चुका है हमारा रुपया और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है, और ये तब है जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में युद्ध काल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने हमारे देश भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $728 अरब था, जो मई के पहले हफ्ते में $690 अरब तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय 2 महीने में $38 अरब की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती

0: स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का मतलब क्या है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित कर दीजिए, संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे तो क्या हमारे देश में सोना कम हो रहा है या फिर सोने के कारण से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर लोग क्या कह रहे हैं और क्यों विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है, आइए हम आपको दिखाएं।

0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
1: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है, वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा,
2: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
3: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
4: ये problem global problem है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या? ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
5: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
6: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
7: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
8: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
9: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी, इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बांध से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
10: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
10: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
11: दस्तक में हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे लौट कर ट्रंप फिर युद्ध पर आए। आप देखते रहिए दस्तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो,
13: इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रो फाइबर है।
4: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega. Security!
12: Priya! Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
13: एक हिंट तो देते।
14: विक्रम!
13: हिंट
15: बड़े आराम से।
16: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
17: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
18: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
19: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से फोकस हटाने का
20: नहीं,
19: और म्यूचुअल फंड से
20: सही।
21: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
22: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
23: AU, सोच बदलो और बैंक भी।
24: Character, the taste of success.
25: Like I said before, we better own the sins.
26: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
27: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
28: लायन डेट नट बाइट्स।
29: जेके मसाले ने हमेशा वक्त के साथ अपनी तकनीक को अपग्रेड किया है। ट्रेडिशनल भारतीय मसालों का वही पुराना ब्लॉकबस्टर स्वाद, जेके मसाले, जहाँ स्वाद वहाँ जेके।
4: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
8: इसमें माइक्रो फाइबर है।
4: माइक्रो फाइबर यानी
8: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत?
4: हमारे सीमेंट में नहीं है,
8: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
9: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रो फाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
10: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
30: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
31: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
2: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
3: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
2: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
4: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
1: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Monte Carlo, it's the way you make me feel.
6: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह, Fit Tak. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade करो easy way. Watch only on Fit Tak YouTube.
7: मध्य एशिया में तनाव के हालात का असर पूरी दुनिया पर है, तो भारत भी उसे अछूता नहीं है। और संभवतः इसीलिए प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा कि अब ये वक्त है कि लोग भी इस एनर्जी क्राइसिस में सामने आए, ऊर्जा की बचत की जरूरत है, खासकर पेट्रोल डीजल। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लोग कम से कम एक साल के लिए जो सोने की खरीद है उस पर रोक लगाएं, उसको कोशिश करें। और ये जरूरी इसलिए है ताकि मुद्रा भंडार जो है उसे बचाया जा सके। तेल कंपनियां हवाला दे रही हैं कि उन्हें लगातार घाटा हो रहा है, और खासकर पिछले डेढ़ महीनों की जो स्थिति है उसमें भारत पर भी असर पड़ा है। खासकर पेट्रोल डीजल जिसका आयात होता है वहां हॉर्मुज के चलते दरअसल उसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। गैस की किल्लत के चलते छोटी और मध्यम की जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी असर पड़ा है। और ऐसे में वो किल्लत और गंभीर ना हो, क्या ये सही समय है कि अब एनर्जी लॉकडाउन जैसे वो कदम जो दुनिया के दूसरों में खासकर एशियाई देशों ने उठाए, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो। और अब ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील कि लोग इस मुहिम का हिस्सा बने, कई स्तर पर कुछ कटौती करनी होगी ताकि इस संकट से निपटा जा सके। लोगों की इसको लेकर के अलग अलग ओपिनियन है। विपक्ष इसको लेकर के सवाल कर रहा है कि आखिर इतनी देरी से कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि संकट तो डेढ़ महीने से गहरा रहा था। जाहिर है एक तरफ कदम उठाने की जरूरत है, दूसरी तरफ इस पर सियासत है। इन सब के बीच जो ऊर्जा संकट है, जो वैश्विक संकट है, भारत भी अब उसकी चपेट में है। दिल्ली से नासिर खान के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
8: जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है,

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: स्वागत है एक बार फिर से आपका दस्तक में। ब्रेक के बाद आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध पर लौट आए हैं। एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर विध्वंसक हमले की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। कारण है ईरान की तरफ से अमेरिका को भेजा गया शांति प्रस्ताव। ट्रंप ने दूसरी बार ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ऐलान कर दिया कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम हमें स्वीकार नहीं। जब तक ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार नहीं होगा तब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो क्या ईरान को झुकाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर ईरान पर करेंगे भीषण विध्वंसक हमला?

0: अमेरिका ईरान में फिर महायुद्ध के संकेत। क्या ईरान पर किसी भी वक्त हमला करेंगे ट्रंप? ईरान की चेतावनी, हमला हुआ तो पलटवार। अमेरिका और ईरान की सेना आमने सामने। लॉर्ड के ट्रंप ईरान के साथ युद्ध पर आएंगे।
1: After the trite, is the ceasefire with Iran still on?
2: Yeah, it is. It said they trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast.
0: अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की उम्मीद को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। मैंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल ईरान ने रविवार को पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने की शर्तें, फारस की खाड़ी और होर्मुज में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका को बताई थी। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीस डील में सबसे बड़ा रोड़ा है ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की तरफ से रखी गई शर्त, वही शर्त जिसे ईरान कबूल करने को तैयार नहीं है। ईरान यही चाहता है कि पहले अमेरिका प्रतिबंध हटाए, तभी एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर कोई बात होगी। वहीं ट्रंप ने ईरान के सामने शर्त रखी है कि ईरान को अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करना होगा और 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम उन्हें सौंपना होगा। ईरान जब अमेरिकी शर्तों को पूरा करेगा तभी प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई फैसला होगा। वहीं दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर भी अमेरिका और ईरान के बीच गहरे मतभेद हैं। ईरान की शर्त है कि होर्मुज उसके कंट्रोल में था और आगे भी रहेगा। यही नहीं, अमेरिकी नेवी को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटानी होगी। कुछ इसी तरह ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान मानता है कि उसका मिसाइल प्रोग्राम ईरान की सुरक्षा का मामला है, लिहाजा उससे कोई समझौता नहीं होगा। जबकि अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बंद करे।
3: Because I think you would agree, we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000. And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. And they're getting decimated. They have no Navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces.
0: रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि उनका प्रस्ताव व्यवहारिक है और अब फैसला अमेरिका को करना है। अगर अमेरिका उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय युद्ध को चुनता है तो ईरानी सेना भी अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका को ईरान की तरफ से भेजा गया नया प्रस्ताव उचित और उदार है, जबकि वॉशिंगटन ने इसे अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया था। हम दादागिरी करने वाले नहीं हैं, हम दादागिरी करने वालों के खिलाफ खड़े हैं। ईरान की मांगों में युद्ध खत्म करना, अमेरिकी प्रतिबंध को हटाना और ईरान की जब्त की गई संपत्तियों को जारी करना शामिल है। और तो और, हमने ईरानी जनता के खिलाफ कार्रवाई करने वालों से हिसाब बराबर नहीं किया है। अगर हमारे सशस्त्र बलों को कोई अवसर दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसका सर्वोत्तम उपयोग किया जाएगा। ईरान ने इशारे इशारे में इसराइल पर हमले की चेतावनी दी है। ईरान मानता है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया था, लेकिन अभी ईरान पर हमले की कीमत इसराइल ने नहीं चुकाई है। दरअसल ये इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उस टिप्पणी का जवाब है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने होर्मुज को लेकर अमेरिका और यूरोप को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अगर किसी दूसरे देश ने होर्मुज की सुरक्षा में दखल देने की कोशिश की तो उसे तुरंत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। युद्ध हो या शांति, हुर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करना सिर्फ ईरान का अधिकार है। ईरान किसी भी देश को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देगा। फ्रांस और ब्रिटेन अपने युद्ध पोतों को क्षेत्र में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जहाजों की सुरक्षा के नाम पर विदेशी युद्ध पोतों की तैनाती वास्तव में क्षेत्र का सैन्यकरण बढ़ाने की कोशिश है। मतलब यही है कि अभी जो तस्वीर सामने है उससे ये साफ है कि ईरान और अमेरिका संपूर्ण युद्ध विराम की तरफ नहीं बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: और आइए अब हम आपको ईरान की राजधानी तेहरान से आज तक की संवाददाता गीता मोहन की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। गीता मोहन ईरान की उस तजरीश स्क्वायर पर पहुंची जहां ईरानी झंडों के साथ लोगों का हुजूम उमड़ता है। ये लोग ईरान के मिनाब शहर के स्कूल पर हुए हमले में मारी गई 168 छात्राओं को श्रद्धांजलि देने आते हैं और साथ ही ईरानी झंडों के साथ ये दिखाने आते हैं कि अमेरिका और इसराइल के साथ युद्ध में वो अपने देश के साथ खड़े हैं। वो युद्ध नहीं लड़ सकते तो क्या हुआ, अपने देश का हौसला तो बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम आपको दिखाएं ईरान के इस तजरीश स्क्वायर से वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारी संवाददाता गीता मोहन की।

0: 28 फरवरी ये तारीख ईरान कभी नहीं भूल सकता है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। एक तो अमेरिका और इसराइल ने धोखे से ईरान पर हमला बोला और ईरान पर युद्ध थोप दिया। दूसरा, अमेरिका और इसराइल के इस हमले में ईरान के मीनाब शहर के स्कूल में 168 छात्राएं मारी गई। ईरान के जख्म हरे हैं। उन बेकसूर छात्राओं को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान के तजदीश स्क्वायर पर आज भी भीड़ जुटती है। आप देख सकते हैं यहाँ छात्राओं के पोस्टर लगे हैं जो स्कूल से कभी लौट कर नहीं आई।
1: 28 फरवरी को जब मिनाब के एक स्कूल पर हमला हुआ तो 168 बच्चे लड़कियां मारे गए। तजरी स्क्वायर पे हैं हम तेहरान के, जहां पर उन बच्चियों को रोज याद किया जाता है। यहां पे लोग आते हैं इन्हीं बच्चियों को याद करते हुए। आज इंटरनेशनल मदर्स डे है, जहां दुनिया भर में लोग माएं अपने बच्चों के साथ इस दिन को मनाते हैं। आप सोचिए उन माओं का जो अपने बच्चे खो चुके हैं और जो ये दिन कभी नहीं मना पाएंगे।
2: I'm a mother too, so I understand how hard.
3: मैं भी एक माँ हूँ, इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि बेटे या बेटी को खोना कितना दर्दनाक होता है। जरा सोचिए, आप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त बाय कहते हैं और वो कभी वापस नहीं आते और आपको उनके शरीर का कोई हिस्सा तक देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ यादें रह जाती हैं, जैसे कि उनकी कोई किताब। ये सिर्फ दिल दहला देने वाला नहीं है बल्कि भयानक है। ये एक आपदा है। कैसे दुनिया इस सब के सामने चुप रह सकती है और कुछ नहीं कह सकती। हम पूरी रात यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आए हैं कि हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और हम उनकी माताओं, उनके परिवारों के साथ हैं।
2: And we are here beside their mothers, their family.
0: तजरी स्क्वायर ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी भाग में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध, व्यस्त और ऐतिहासिक इलाका है। ये शबीर नाक जिले का केंद्र है और तेहरान के सबसे पुराने और सबसे सक्रिय स्थानों में से एक माना जाता है।
1: हम यहाँ तजरी स्क्वायर पर हैं और अगर आपको मैं दिखाऊं जो नज़ारे हैं यहाँ के, वहाँ पर हर एक इंसान या हर दूसरा इंसान एटलीस्ट ईरान के झंडे को पकड़े हुए है। कहा जाता है कि जब ये वॉर शुरू हुआ, ये युद्ध शुरू हुई, तो फ्लैग सबसे ज्यादा बिकने लगे। अब क्योंकि सबके पास फ्लैग्स हैं तो सेल कम हो चुका है। लोगों से बात किया हमने, वो कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं। कहते हैं कि फ्लैग बेचने की चीज नहीं है, ये प्राइसलेस है। तो हम वो लोग नहीं दिखना चाहते हैं जो अपने नेशनल फ्लैग को बेचते हैं, इसलिए कैमरे पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनसे बात किया तो पता चला कि जब वॉर शुरू हुआ और जब पीक पर था, तब सबसे ज्यादा सेल यहाँ पर इन झंडों का हुआ। और न केवल झंडे, देखिए मैसेजिंग क्या है। लोग रोज आते हैं ये कहते हुए कि हम जंग लड़ने बैटलफील्ड पे नहीं जा सकते, तो यहाँ खड़े होके जंग का अपने देश का साथ देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो बहुत और चीजें भी बिक रही हैं। टोपियां बिक रही हैं, यहाँ पे लीडरशिप के फोटोग्राफ्स, जो सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए उनके फोटोग्राफ्स हैं। और ये है एक टी शर्ट स्टॉल जहाँ पे मैसेज काफी क्लियर है, हॉर्मोज इज आज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान का है।
0: आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच अभी तक कोई डील नहीं हो पा रही है। अमेरिका के ईरान का प्रस्ताव ठुकराने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। हॉर्मुज संकट के चलते सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बढ़ी। जब दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उस वक्त ईरान में पेट्रोल पंप पर तेल के दाम सिर्फ ₹2 प्रति लीटर हैं। देखिए तेहरान से आज तक संवाददाता गीता मोहन की ये रिपोर्ट।
1: आज हम तेहरान में खड़े हैं, एक ऐसे देश में जहां तेल की कमी, रिफाइनरीज अभी भी हिट नहीं हुए, तो तेल की कमी नहीं महसूस हो रही। हमारे पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां पर आज के डेट में भी ₹2 पर लीटर यहां पर तेल बिक रहा है। तो जो प्राइस डिफरेंस है उससे पता चलता है कि ईरान کو اس پورے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند کرنے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا, لیکن دنیا کو ہو رہا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ امریکہ, اسرائیل اور ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ پہنچے اور اس یدھ کو انت کرے, کیونکہ یہ یدھ آج انت ہو اور کل اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے تب بھی اس گلوبل انرجی کرائسس کو سلجھنے میں کافی وقت لگ جائے گا.
0: ہرمز میں تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے. امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ناکے بندی کے بعد 65 جہازوں نے راستہ بدلا, وہیں قطر, دکشن کوریا اور دوسرے دیشوں کے جہازوں پر حملے اور رکاوٹ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں. تہران سے گیتا موہن کے ساتھ آج تک بیورو.
4: اور آئیے اب ہم آپ کو سنواتے ہیں ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا اسماعیل بگھی کے بیان کو. ہماری سنواد داتا گیتا موہن نے اسماعیل سے ایکسکلوسیو بات چیت کی.
3: اسماعیل بگھائی ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا ہیں اور آج یہ امریکی راشٹرپتی ٹرمپ کی دھمکیوں اور اس کے بعد دیے گئے ایران کے جواب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سر.
5: سلام.
6: سلام.
3: پہلے بات پرستاو کی, اس بار کے پرستاو میں کیا الگ تھا؟ امریکی پرستاو کو لے کر کیا دقتیں تھیں اور آپ کا کاؤنٹر آفر کیا تھا؟ ساتھ ہی ٹرمپ نے اسے منظور کیوں نہیں کیا؟
7: مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اسے خاص سندرب میں سمجھنا ہوگا. پچھلے 10 سال سے زیادہ سمے سے امریکہ کے ساتھ ہماری راجنیتک پرکریا چل رہی ہے.
5: سو وی اسٹارٹڈ نیگوشیشنز آن نیوکلیئر ایشو.
7: اسی کے تحت ہم نے سال 2012 سے پہلے بھی پرمانو مدے پر وارتا کی, لیکن 2012 میں اس پرکریا کی شروعات ہوئی جس کے کارن 2015 میں جے سی پی او اے کا گٹھن ہوا.
5: دین ان 2018 دی یونائیٹڈ سٹیٹس ڈیسائیڈڈ ٹو یونیلیٹرلی ودرو فرام دی جے سی پی.
7: پھر 2018 میں امریکہ نے جے سی پی او اے سے ایک طرفہ ہٹنے کا فیصلہ کیا. ایران نے لمبا انتظار کیا اس امید میں کہ یورپی سانجے دار کسی طرح امریکی واپسی کی بھرپائی کریں گے.
5: مئی 2019 ایران ڈیسائیڈڈ,
7: پر انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس لیے مئی 2019 میں ایران نے اپنی پرتیبدھتا کم کرنے کا فیصلہ کیا. ہم ہر 2 مہینے میں اپنی پرتیبدھتائیں گھٹاتے رہے تاکہ انیہ پکشوں کو اس کی بھرپائی کرنے کا سمے مل سکے, مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا.
5: But they didn't. After the war, after we managed to have this ceasefire,
7: حال کے یدھ میں جب دوسری بار یدھ ویرام ہوا تب ہم نے بات چیت کی راجنیتک پرکریا ایک بار پھر شروع کی. ہم نے کہا کہ آئیے پہلی پراتھمکتا پر دھیان دیتے ہیں جو پورے کھیتر کے لیے اور پوری ویشوک ارتھ ویوستھا کے لیے اہم ہے. ہم نے یدھ سماپتی کو لے کر بات چیت پر زور دیا. ہم ہرمز اسٹریٹ کو پھر سے کھولنے کو لے کر چرچا کرنے کو تیار تھے, بشرطے امریکہ سمندری ڈکیتوں کی طرح کام کرنا بند کرے. اس کوشش کا مقصد انتراشٹری سمندری گتیویدھیوں کو پھر سے شروع کرنے اور ویشوک ارتھ ویوستھا پر اثر ڈالنے والے ضروری مسئلوں کو حل کرنا تھا.
5: انٹرنیشنل میری ٹائم وچ از افیکٹنگ دی ورلڈ اکانومی, بٹ انفارچونیٹلی دی یونائیٹڈ سٹیٹس,
7: مگر درباگیہ سے امریکہ اس موقع کی اہمیت کو سمجھ نہیں پایا. بات چیت سے کسی سمسیا کا سمادھان تبھی نکل سکتا ہے جب آپ دوسرے پکش کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کرنے کو بھی تیار ہوں. بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک پکش اپنی مانگوں کو ایک طرفہ طور پر دوسرے پکش پر تھوپے یا دوسرے کو انہیں ماننے پر مجبور کرے. جہاں تک ہمارا سوال ہے تو یہ کسی حالت میں نہیں ہوگا, کم سے کم ایران کے معاملے میں تو بالکل نہیں. ہم امریکہ کی انوچت مانگوں کے آگے نہیں جھکیں گے.
5: As far as Iran is concerned, you're not going to yield to their maximalist demands.
7: کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ناانصافی ہوگی. یہ سب کچھ اسی انیائے پورن ابھیان کا حصہ ہے جو ایران کے خلاف یدھ سے شروع ہوا تھا. یہ حملہ پوری طرح سے غیر قانونی تھا. فی الحال امریکہ کی اور سے گھوشنا کی گئی ہے کہ وہ ایران کے پرستاو سے سہمت نہیں ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی مدھیستوں کے ذریعے ہمیں موجودہ استھتی کی بہتر جانکاری مل سکتی ہے.
4: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
6: एक्टर्स।
9: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: Looking for more sports analysis between games? TuneIn has got what you need with all the sports podcasts right here. Whether you're looking for hot takes, post-game analysis, or good old-fashioned fun, we've got all your sports podcasts all in one place. The Bill Simmons Podcast.
11: It's college football time. College basketball feels
10: Pardon
11: like it's
10: my take.
12: The Rams catching the Commanders.
10: And Hank much more. Jump into the conversation and don't miss a single play. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 बॉयल गार्ड बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
14: यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं?
15: इसमें माइक्रोफाइबर है।
14: माइक्रोफाइबर यानी
15: जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत।
14: हमारे सीमेंट में नहीं है,
15: पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है।
16: सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
18: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
19: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
20: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
21: नहीं,
20: और म्यूचुअल फंड से
21: सही।
22: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
23: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
24: सोच बदलो और बैंक भी।
25: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
26: जीके मैक्स।
27: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
26: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
27: जेके वॉल मैक्स
26: बेस्ट पेंट,
27: जेके मैक्स।
26: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints. खुशियों के रंग।
28: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
29: Like I said before, we better hold the sins.
30: मुख्य समाचार। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए।
31: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
32: आज तक के खबरदार करते ही सरकार का एक्शन।
33: आज तक की खबर के बाद काउंसिल ने भरोसा दिया है कि मार्च के आखिर तक लंबित प्राइज मनी दे दी जाएगी।
34: एक दो दिन में ही उनके नियुक्ति पत्र भी जारी हो जाएंगे।
33: ये सब कुछ तब हो पाया जब आज तक ने राजस्थान के खेल विभाग को जगाया।
0: अच्छी खबर चली हमारी, अच्छा हुआ सर।
32: जहां खबर वहां खबरदार, सिर्फ आज तक पर। इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़ ड्यूरागार्ड सीधी बात है ड्यूरागार्ड खास है
4: मुख्य समाचार मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है और धूप में सीधा काम करने को टालिए
5: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे
6: वैश्विक संकट के समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें साथियों हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की ऑनलाइन मीटिंग्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस की ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा
7: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि दो महीने से भारत की सरकार यानी कि मोदी जी आपका बोझ उठा रहे थे अब चुनाव खत्म हो गया तो आप बोझ नहीं उठाएंगे मोदी जी पांच राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने अब वो कह रहे हैं तेल का इस्तेमाल कम कीजिए पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए गैस का इस्तेमाल कम कीजिए सोना ना खरीदिए एक साल तक सोना ही ना खरीदिए कोई भी शादी हो फंक्शन हो ना खरीदिए मोदी जी कह रहे हैं खाने के तेल का भी इस्तेमाल कम कीजिए ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है पूरा भंडार भरा हुआ है कोई समस्या नहीं है लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हुए नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए। जो कंधे आपका बोझ उठा रहे थे वो मोदी सरकार के कंधे झुक गए। अब वो कह रहे हैं हम आपका बोझ नहीं उठाएंगे।
8: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है। तो ये आपदा में अवसर, जो अपने यहां कहावत है ना, ये क्राइसिस हुआ उसमें मैं कैसे अवसर निकाल लूं? ठीक है, लेकिन जनता सब हिसाब रखती है।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को दें प्राथमिकता, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं जितना संभव हो सके, सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। विध्वंस से बची विरासत का

0: जबकि उसकी गिरफ्तारी की लोकेशन की बात करें तो वो अयोध्या है। यूपी और बिहार पुलिस की मदद से इन तीनों को धर दबोचने के बाद बंगाल पुलिस इन्हें लेकर फिलहाल बंगाल लौट चुकी है और लोकल कोर्ट ने तीनों को रिमांड पर सीआईडी के हवाले भी कर दिया है, ताकि चंद्रनाथ की हत्या की पूरी साजिश का सच सामने आ सके और मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो।
1: আমরা তিনজনে আজকে আজকে প্রডিউস হয়েছে, তাদের জন্য আমরা পিসিপিআর ছিল আমাদের 14 ডেজের লার্নেড কোর্ট 25th অব দি আমাদের পিসিপিআরটা অ্যালাউ করেছে। আমরা সেকশন অ্যাডিং এর প্রেয়ার করেছিলাম প্রমাণ লোপারে, সেটা লার্নেড কোর্ট অ্যালাউ করেছে। এবারে 25th ডেট আছে, দেখা যাক কি হয়। এখন আমরা ইনভেস্টিগেশনের কিচ্ছু ডাইভার্জ করতে পারবো না, সরি। আমরা যা চেয়েছিলাম অলমোস্ট তাই পেয়েছিলাম, 14 দিন চেয়েছিলাম, আমরা 13 দিন পেয়েছি। 25th পর্যন্ত, আমাদের এটা এসআইটি গঠন হয়েছে এবং পুরো টিম বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনভেস্টিগেশন চলছে।
2: यूपी और बिहार के अलग अलग इलाकों में छापेमारी करके कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन 3 लोगों में से एक शख्स उस दिन जो शार्प शूटर का काम किया था उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के वजह से बाकी ज्यादा खुलासा पुलिस की ओर से नहीं किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी इस बात को जानना चाहती है कि इन लोगों को किसने सुपारी दी थी या फिर ये 3 लोग ही मास्टरमाइंड थे। और इस वजह से इस बात जब कोर्ट में इनकी पेशी हुई, पुलिस की ओर से 14 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया, लेकिन 13 दिन के रिमांड में इनको भेजा गया है। पुलिस अभी भी इस चीज को समझना चाहती है कि इस मर्डर के पीछे मोटिव क्या था, क्या मोटिव फॉर गेन था या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र था इस मर्डर के पीछे। लिहाजा पुलिस लगातार इन 3 लोगों को जब पूछताछ करके और भी ज्यादा डिटेल्स और बारीकी से और भी कुछ लोगों के नाम जानना चाहता है, ताकि ये समझ में आए कि इस खून के पीछे मोटिव क्या रहा है, क्या ये राजनीतिक खून था या फिर किसी आपसी रंजिश के वजह से इस खून को अंजाम दिया गया।
0: आपको याद होगा कि बुधवार 6 मई की रात को चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को मध्यमग्राम इलाके में शूटरों ने इसी निसान माइक्रा कार से रोक लिया था, जिसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। चूंकि इस निसान कार को शूटरों ने चंद्रनाथ की कार के आगे आड़े तिरछे तरीके से लगा दिया था, शूटआउट के बाद प्लानिंग के मुताबिक उन्होंने इस कार को मौका वारदात पर ही छोड़ दिया और बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से कार तो जब्त कर ली, लेकिन उसकी तफ्तीश को तब पहला झटका लगा जब उसे पता चला कि इस कार का नंबर प्लेट तो नकली है। असल में पुलिस ने जब कार के नंबर प्लेट के सहारे उसके मालिक से बात की तो कार सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड विलियम जेम्स की निकली। ऐसे में पुलिस को अब शूटआउट में इस्तेमाल हुई असली कार का पता लगाना था।
3: कि आपका गाड़ी कहाँ है, आप कहाँ है, तो हम बोला हम तो सिलीगुड़ी में, तो बोला ठीक है आपका गाड़ी का नंबर जो है, आपका गाड़ी का नंबर यूज करके कोई एक मर्डर हुआ है, तो इसका डिटेल्स आप भेजिए, गाड़ी अभी फोटो लेके गाड़ी का डिटेल्स हमको भेज दो। फिर हम भेजा, उसके बाद में सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी उनको इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर छोड़ दिया।
0: पुलिस ने अब इस काम के लिए रिवर्स सर्चिंग की शुरुआत की और मौका वारदात तक पहुंचने के कार के पूरे रूट को ट्रैक करना चालू किया। पुलिस को शक था कि इस वारदात में यूपी या बिहार के शूटर शामिल हो सकते हैं। इसी इनपुट के सहारे पुलिस ने यूपी और बिहार को कनेक्ट करने वाले रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग शुरू की। पुलिस को शूटआउट के सही वक्त का भी पता था। ऐसे में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि अगर शूटर इस कार में बैठकर बंगाल पहुंचे तो उन्होंने कितने समय पहले बंगाल में एंटर किया होगा। इसी आधार पर पुलिस ने कुछ बॉर्डर्स पर फोकस किया। इस कोशिश में पुलिस को हावड़ा के करीब बाली टोल प्लाजा की जानकारी मिली, जहां से ये कार मौका वारदात की तरफ बढ़ी थी, और बस यहीं से पुलिस को इस शूटआउट का सबसे बड़ा क्लू मिला। टोल प्लाजा में कार की तस्वीरें तो खैर कैद हुई ही थी। पता चला कि शूटरों ने यहां फास्टैग या कैश की जगह यूपीआई के जरिए टोल का पेमेंट किया था। अब पुलिस इस यूपीआई की गहराई में उतरी और उससे जुड़े मोबाइल फोन नंबर और बैंक डिटेल्स की जानकारी जुटाई और कड़ी दर कड़ी जोड़ती हुई आखिरकार राज सिंह, मयंक राज मिश्रा और विक्की मौर्या तक जा पहुंची।

0: সম্পূর্ণ বুঝে না,
1: আগামী দিনে বুঝতে পারবেন, এখন এখন বলা মুশকিল। সরি, আমি আমার জায়গা থেকে কিচ্ছু ডাইভার্স করতে পারবো না। সরি, আমরা যেটা কোর্টের কাছে পেয়ার করেছি, যেটা আমরা পেয়েছি,
2: সূত্রে যে কার কা ইস্তেমাল কিয়া উস পর নকলি নম্বর প্লেট লাগাই থি, ওয়ারদাত কে বাদ জব কলকাতা পুলিশ নে তহকিকাত শুরু কি তো ইসি নকলি নম্বর প্লেট সে উসনে পড়তাল কো আগে বড়াযা অর সে ইলেকট্রনিক এভিডেন্স এক এসা মিলা জিসমে ইন শুটরোকে দ্বারা এক পেমেন্ট কি গই থি অর ইহি ইলেকট্রনিক পেমেন্ট ইনকি ইলেকট্রনিক কুণ্ডলি খোলনে কা এক বড়া কারগর হথিয়ার বনি অর আব ইস পুরে মামলে মে কলকাতা পুলিশ নে বলিয়াকে রহনে বালে রাজ সিং ভিকি মৌর্যা অর ময়ঙ্ক মিশ্রা কো গিরফতার কর লিয়া হ্যায়। बलिया का रहने वाला राज सिंह अयोध्या हाईवे से गिरफ्तार किया गया। अयोध्या पुलिस और कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में राज सिंह और उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर कोलकाता आया ले जाया जा चुका है।
3: अब सवाल यह है कि पुलिस को इस कार की रिवर्स सर्चिंग का ख्याल कैसे आया? क्यों पुलिस ने वारदात के बाद बाइक से भागे शूटरों के फुटेज वगैरह का पता करने की जगह पीछे मुड़कर तफ्तीश करने का फैसला किया? तो इसका जवाब है, शूटरों ने अपनी शातिराना चाल से खुद ही पुलिस को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। आपको पता है कि शूटर अपनी ये कार मौका वारदात पर ही छोड़कर दो बाइक में बैठकर फरार हो गए थे, लेकिन उन्होंने दोनों ही बाइक को मौका वारदात से कुछ किलोमीटर के फासले पर लावारिस छोड़ दिया था। ऐसे में शूटर इसके आगे किसी प्राइवेट गाड़ी से निकले या फिर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, ये पता करना एक मुश्किल काम था। उधर कार पर लगे नकली नंबर प्लेट के सहारे पुलिस सिलीगुड़ी पहुंची तो पता चला कि कार के मालिक विलियम जेम्स ने अपनी निसान माइक्रा कार को कुछ रोज पहले बिक्री के इरादे से ओएलएक्स पर डाला था। समझा जाता है कि यहीं शूटरों को ये पता चला कि अमुक नंबर की निसान माइक्रा कार बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब शूटरों के पास निसान माइक्रा कार पहले से ही थी, तो उन्होंने वही नकली नंबर अपनी निसान माइक्रा पर लगा लिया जिस कार से उन्हें शूटआउट को अंजाम देना।
4: सिलीगुड़ी थाना से कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया, उसके बाद हम लोग यहाँ आया, हमको मिला, हमको थाना में लेके गया, गाड़ी के लिए लेके गया और सारा जो भी हमें इंक्वायरी करना था किया, गाड़ी को चेक किया, चेसिस नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मिलाया, उसके बाद में इंक्वायरी करके फिर छोड़
5: दिया। आपकी गाड़ी का नंबर ही क्यों यूज़ किया गया, ऐसा सवाल उठ रहा है, क्यों? मतलब कुछ ऐसा
4: बताना मुश्किल है।
6: आप ओएलएक्स में दिए थे?
4: ओएलएक्स में हम सेल के लिए डाला था, हो सकता है वहाँ से लीक आउट हुआ।
3: ऐसे में पुलिस कार के जेन्युइन मालिक तक तो पहुंच गई, लेकिन जिस कार से वारदात को अंजाम दिया गया उसके मालिक तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि शूटरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले न सिर्फ उसका नंबर चेंज कर लिया था बल्कि चेसिस का नंबर तक घिस दिया था। लिहाजा अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था और वो था वारदात को अंजाम देने से पहले कार जिस रास्ते से आई उस रूट की मैपिंग करना, और इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिल गई। हालांकि शूटआउट में शामिल होने के इल्जाम में अयोध्या से पकड़े गए बलिया के राज सिंह को लेकर एक और कहानी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राज सिंह सभासद का चुनाव लड़ चुका है और बाहुबलियों के साथ उठने बैठने का शौकीन रहा है। यूपी के कई बाहुबलियों के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जबकि कत्ल के एक मामले में उसका नाम भी आ चुका है, लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या में उसकी असली भूमिका का सामने आना अभी बाकी है। वैसे तो बंगाल पुलिस ने इस मामले पर अभी अपना मुंह सी रखा है, लेकिन राज सिंह की मां जामवंती देवी ने अपने बेटे को बेकसूर बताते हुए पुलिस से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि वो 7 मई को अपने बेटे के साथ लखनऊ गई थी और इसके बाद 8 मई को वो किचौड़ा गए और 9 मई को अयोध्या पहुंचे। इसी दिन एसओजी ने उनके बेटे राज सिंह को उठा लिया और अगले दिन बंगाल वाले केस में उसकी गिरफ्तारी दिखाई। राज सिंह की मां का कहना है कि इस बात से ये साफ होता है कि उनके बेटे का इस मामले में कोई रोल नहीं है।
7: लखनऊ शादी में जा रहा था राज, एमएलसी साहब के बेटे के, उसी में हम भी कहे कि हमको भी बाबू लेते चलो और हम भी ना वहाँ थोड़ा दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद चली गई उसके साथ। करीब यहाँ हम लोग 7:30 बजे 11:30 के आसपास गए थे, अपनी गाड़ी से, जिसमें ड्राइवर थे उनका ओम प्रकाश सिंह नाम है, मैं हूँ, राज था और उसका एक दोस्त था जो कि फोटो वोटो खींचने के लिए, और एक मोनू नाम का लड़का था। पांच लोग हम लोग गए, पांचों लोग हम लोग लखनऊ पहुंचे।
3: अब राज सिंह की मां की इस थ्योरी पर यकीन करें तो फिजिकली राज सिंह का मौका वारदात पर मौजूद होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर वारदात 6 मई की रात को हुई है तो 7 मई की सुबह उसका बलिया में होना अपने परिवार के साथ मुश्किल लगता है। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसकी इस केस में कोई भूमिका नहीं है। मुमकिन है कि उसका इस केस में रोल किसी लाइनर या फैसिलिटेटर का हो। हालांकि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने फिलहाल राज सिंह की भूमिका को लेकर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह राज सिंह समेत 3 को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है, उससे इशारा मिलता है कि इस मामले में उनका कोई ना कोई रोल जरूर है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: पुलिस की तफ्तीश ने इस केस के कुछ मोहरों के चेहरों को तो बेनकाब कर दिया है, लेकिन असली मास्टरमाइंड के चेहरे से पर्दा हटना अभी बाकी है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि इस वारदात में कम से कम 7 से 8 लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि वारदात को अंजाम देने के लिए लाखों की सुपारी दी गई है।
3: इस केस में फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा है, लेकिन तीनों की गिरफ्तारी से साफ है कि ये इस केस के मास्टरमाइंड नहीं है। शूटआउट के तौर तरीके से ये बात पहले ही दिन से साफ थी कि ये कत्ल सोची समझी साजिश के तहत किराए के कातिलों के जरिए करवाया गया। ऐसे में वो शख्स कौन है जिसने चंद्रनाथ के कत्ल की सुपारी दी, फिलहाल पुलिस इसका पता लगाना चाहती है। अब तक की खबरों के मुताबिक इस केस में कम से कम 7 से 8 लोगों के शामिल होने का शक भी बंगाल पुलिस को है। एसआईटी को लगता है कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि इसकी प्लानिंग कम से कम 1 से 1.5 महीना पहले से की जा रही थी, वरना रात के अंधेरे में बीच सड़क पर पूरी तैयारी से न तो उनकी गाड़ी को घेर कर रोका जाता और न ही उन्हें निशाना बनाकर बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायरिंग की जाती। खबरों के मुताबिक चंद्रनाथ के कत्ल के लिए कातिलों ने कम से कम 10 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां चंद्रनाथ को लगी। चंद्रनाथ रथ की हत्या को जिस तरह से अंजाम दिया गया, वो कातिलों की हताशा और उनकी बेसब्री को दिखाता है। कातिलों ने पहले रेकी की, दूर तक पीछा किया, बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रोकी और फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी जान ली। और तो और, तैयारी के तौर पर कत्ल में इस्तेमाल एक कार और बाइक के नंबर प्लेट तक पहले ही चेंज कर दिए। ये चंद्रनाथ की डिस्परेट किलिंग यानी हर हाल में की गई हत्या की तरफ इशारा करती है, यानी कातिल चाहते थे कि चंद्रनाथ किसी भी कीमत पर न बच पाए, उनकी हर हाल में मौत। कोई भी कातिल ऐसा तभी करता है जब वो सुपारी लेकर किसी काम को अंजाम दे रहा और पूरी तरह से कमिटेड, या फिर मकतूल से ऐसी भयानक रंजिश रखता हो कि उसे किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। अचानक हुए झगड़े या सियासी खेमेबाजी में हुए कत्ल में इस तरह का डिस्पेरेशन यानी बेसब्री नहीं दिखती। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: तो वारदात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
9: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: देखिए, सोना नहीं खरीदना चलेगा, जो ट्रेवल है बाहर का वो भी चल जाएगा, उसमें जरूरत नहीं है जाने की हम लोगों को। एनर्जी में क्या है, अगर हम पूलिंग करना भी चाहे ना, तो हर किसी के अपने टाइमिंग्स हैं ऑफिस के, वो कोशिश तो हम कर सकते हैं पूरा, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं उनको, उनके साथ मैं कारपूल करूं। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट यू कैन से, कि कारपूलिंग से एक तो पॉल्यूशन में भी फर्क पड़ता है और एनर्जी तो सेव होगी होगी।
12: हम डेफिनेटली इसके साथ है, क्योंकि अगर हमको एनर्जी सेविंग करनी है या कुछ करना है देश के लिए कुछ करना है, तो हम डेफिनेटली प्रधानमंत्री के साथ है। हम कार पुलिंग भी कर लेंगे, एज अ कोई भी इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री हम लोगों को बताते हैं, मोदी जी हमको बताते हैं, हम डेफिनेटली उसके साथ रहेंगे। और एज अ इंडियन सिटीजन हमारा काम यह है कि हम एनर्जी सेविंग करें। एनर्जी सेविंग हर जगह से हो सकती है, आपका डीजल एनर्जी सेविंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जो भी चीजें हम कर सकते हैं या अपने देश के लिए कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम करेंगे।
11: गोल्ड का इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है। अगर किसी की फैमिली में मैरिज है, बच्चों को गोल्ड देना है, देन इट्स ओके, वो भी मिनिमम दे सकते हैं, बाद में लिया जा सकता है।
13: आपको लग रहा है कि सभी नागरिक मिलकर के इस संकट से, जो ग्लोबल क्राइसिस है, इससे हम मुश्किल से बाहर आ सकते हैं?
11: ऑफ कोर्स, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमको कोई एक रास्ता दिखाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करके बाहर आ जाएंगे।
14: आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करें?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: देश के लोग एक साल तक सोने की खरीदारी न करें। भले ही पीएम मोदी की ये अपील, ये सलाह इसलिए है कि लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में योगदान दें, लेकिन इस बयान के बाद सोने को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार सोने की खरीद को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है। सवाल ये भी कि जिन घरों में आने वाले दिनों या कुछ महीनों में शादियां हैं, वो लोग क्या करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा और क्या सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सोने के आयात शुल्क में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कई जानकार पीएम मोदी के बयान को आने वाले संभावित कदमों का संकेत मान रहे हैं।
1: मोदी ने कह तो दिया एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर घर में फंक्शन रहते हैं, किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है, तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है।
0: दरअसल देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची रहें, तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार अब गैर जरूरी आयात को सीमित करने के विकल्पों पर नजर रख रही है। ऐसे में सरकार अगर सोने पर आयात शुल्क बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं और मांग कुछ कम हो सकती है। सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है ताकि डॉलर की बचत हो और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम किया जा सके। उधर पीएम मोदी के इस अपील का सीधा असर सोना कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। क्योंकि अभी शादियों का सीजन है, ऐसे में सोने की बिक्री ना होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक साल में अमूमन 700 से 800 टन से अधिक सोने की खपत होती है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील का सीधा असर इस बड़े कारोबार पर पड़ सकता है। देश में साल भर में सोने की जितनी मांग होती है, उसका 60-70% हिस्सा शादियों के सीजन में बिकता है। क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई में भी शादियों के मुहूर्त। ऐसे में सोने की खरीद में कमी आई तो कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।
2: लोग अपनी शादियों में सोना कम लेवे, इन्वेस्टमेंट कम करें, ये जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब मैंने बोल रहा हूँ, गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे जो ज्वेलरी शोरूम है, उनकी रोजी भी क्या, रोजी रोटी कैसे चलेगी, और उनके कारीगर जो उनके भरोसे है, उनके भी काम कैसा चलेगा, ये भी सोचना जरूरी।
0: एक साल तक सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सवाल कई, चर्चाएं कई हैं, लेकिन पीएम की ओर से ये अपील देश की जरूरत को देखते हुए ही की गई है और उम्मीद जताई गई है कि इस अपील का असर होगा। लोगों के सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो,

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को दें प्राथमिकता, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं जितना संभव हो सके, सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, पीएम के इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर, जीर्णोद्वार में बाधा। असम एट्रिक के बाद कल हेमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच से होने के बाद हड़कंप मचा, सीएम से सीकर से केरल तक एसजीओ की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से असहमत नहीं ट्रंप, बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे में लगातार दो बार लोगों से अपील की है कि वो एक साल तक सोना ना खरीदें, एक साल तक विदेश यात्रा ना करें और पेट्रोल डीजल बचाएं। मिडिल ईस्ट में जंग के साइड इफेक्ट्स की वजह से प्रधानमंत्री ने यह अपील की है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। वहीं प्रधानमंत्री की अपील के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन में नजर आ रहे हैं।

0: वैसे तो मिडिल ईस्ट में जंग के साइड इफेक्ट 2 महीने पहले ही एलपीजी किल्लत के रूप में दिखने लगे थे, लेकिन अब तो पीएम मोदी ने भी इशारों में कह दिया कि सबके साथ से ही आने वाले संकट का समाधान निकाला जा सकता है
1: और यह हमें करना ही होगा।
0: पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भगवा परचम लहराने के बाद पीएम मोदी जब तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंचे तो उन्होंने देशवासियों को 8 सलाह दी, जिससे देश को अपना विदेशी मुद्रा का भंडार इन सब चीजों के आयात पर खर्च न करना पड़े, क्योंकि देश को इस वक्त बेहद महंगी कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 1 साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, कार पूलिंग करें, खाद्य तेल की खपत कम करें, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, 1 साल विदेश यात्राओं पर जाने से बचें।
1: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: लेकिन विपक्ष पीएम की सलाह को लेकर तंज कस रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही उन्हें संकट याद आ गया।
2: वो कहते हैं कि कम पेट्रोल इस्तेमाल करो, कम तेल खाओ, सब कुछ कम कर दो, मेट्रो का इस्तेमाल करो, और खुद शाम को 100 कारों का काफिला लेकर जामनगर में रोड शो करते हैं। इनके कौन आर्थिक सलाहकार है वो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि खाद का इस्तेमाल कम करो, अनाज पे असर नहीं होगा, अनाज का कम उत्पादन महंगाई नहीं बढ़ेगा, आम आदमी बोझ के तले नहीं दबेगा, कौन समझाए इनको।
3: ऑयल इंपोर्ट बिल्स बढ़ते हैं तो देश के ऊपर लोड होता है, जब लोअर डोमेस्टिक कंजम्पशन है तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो भी रिड्यूस होता है, और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो होता है प्रेशर, इससे प्राइसेस भी बढ़ते हैं। ये एक नेशनल मैसेज है,
4: माननीय मोदी जी ने।
0: वही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि पीएम की सलाह पर हर देशवासी को अमल करना चाहिए।
5: आज ही हमने देखा पाकिस्तान में 450 रुपए प्रति लीटर ये भाव उसका हुआ है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर अपने सप्लाई को अफेक्ट नहीं होने दिया। हमको तेल गैस सब मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तकलीफ को समझेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी किल्लत का सामना करना पड़ना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें।
0: सरकार लाख तर्क दे लेकिन विपक्ष को कोई भी दलील रास नहीं आ रही है।
6: ये पैनिक नहीं है, यही कहते थे ना इनके लोग, कहते थे पैनिक मत करिए, जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। ये आज की परिस्थिति नहीं है, 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, किसके पैसे से आ रहा? प्रधानमंत्री जी के पैसे से नहीं, लोगों के पैसे से आ रहा। तो ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे, देश करेगा, कोविड में भी किया देश ने, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह।
0: लेकिन पीएम मोदी के बाद केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि देश हित में पीएम मोदी की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए।
7: वी आर सिटीजंस एज अ प्राइम मिनिस्टर हैज आस्क्ड ऑल ऑफ अस टू कैन रिड्यूस आवर एक्सपेंडिचर ऑन एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स फॉरेन एक्सचेंज टू बी स्पेंट एंड इन आवर लाइव्स in our own ways of working we can identify whatever we can do to preserve the foreign exchange।
0: सोने को लेकर अब इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। देश में सोना उत्पादन ना के बराबर है, फिर भी भारतीय सालाना 800 टन सोना विदेशों से मंगा लेते हैं। मतलब इंपोर्ट बिल में 9 से 10 फीसदी का तो हम भारतीय सिर्फ गोल्ड खरीद लेते हैं। पिछले साल ही 6 लाख करोड़ रुपए का सोना भारतीयों ने खरीदा था। पीएम मोदी के बयान के बाद शेयर बाजार में भी अफरा तफरी का माहौल रहा।
8: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी, आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है, उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको।
9: एक स्ट्रांग देश अगर हमें बनाना है तो थोड़ा सा लोगों ने जिस तरह पेट्रोल डीजल के जो अमेरिका ईरान के युद्ध से थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भाई थोड़ा गाड़ी से पेट्रोल डीजल पहुंचाने का काम होना चाहिए।
0: पीएम मोदी की सलाह को जहां बीजेपी मौजूदा हालात में जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे सरकार की नाकामी करार दे रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
10: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील को किंतु परंतु के साथ सही ठहराया है, लेकिन चिदम्बरम ने यह भी कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान वास्तविक स्थिति को देश से छुपाए रखा।
11: He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances which Indians abroad send back to their families is about $135 billion. And nearly little more than half of them, half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed.
10: प्रधानमंत्री मोदी की सलाह के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। अब महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रतिनिधि कांस फिल्म फेस्टिवल में विदेश नहीं जाएगा। दूसरा, सरकारी कामकाज में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा, कल से विभाग की सभी बैठकें ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश को अपील की है कि बाहर मतलब विदेश दौरा ना करें और सोना अगले एक साल तक ना खरीदा जाए, ऑनलाइन मीटिंग्स करें। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य के बीजेपी के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने देश हित में ये अपील की है, आप पहले मंत्री हो जो इस अपील को किसी तरह से प्रतिसाद दे रहे हो, क्या निर्णय लिया है आपके विभाग ने?
13: देखिए, महाराष्ट्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हम सबको अवगत किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील पूरे देश को की है, देशवासियों को की है, तो हम सबने भी उसका पालन करना चाहिए और हम करने वाले भी हैं। और सभी विभाग के हमारे मंत्री उसके बारे में सोच भी रहे और कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि इमीडिएटली इसके ऊपर प्रतिसाद करना मेरा कर्तव्य भी है। और कल से हमारी जो डिपार्टमेंट की बहुत सारी बैठकें हैं, अधिकारियों को आना जाना ना पड़े जिसके कारण पेट्रोल डीजल की उपयोगिता करनी पड़ती है उसमें रोक लगे, इसके लिए बहुत सारी मीटिंग जो ऑनलाइन वर्चुअल करेंगे, ये निर्णय हमने किया है। दूसरी बात, हमारे डिपार्टमेंट में जो व्हीकल्स यूज होती है, कभी कभार उसको प्राइवेटली भी यूज किया जाता है, एक तो उसको रोक लगाए और उससे ज्यादा भी जरूरत पड़ी बहुत ही ज्यादा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करें। और जैसे कि विदेशी मुद्रा को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कठिन समय पर हम सबको आवश्यकता देख कर ही प्रवास करें या न करें विदेशों में, इस प्रकार की अपील की है, तो मैंने स्वयं तय किया, हमारे सचिव किरण कुलकर्णी जी उनसे भी बात की, हम भी वहां इनवाइटेड थे कांस फिल्म फेस्टिवल में। महाराष्ट्र का स्टॉल तो वहां लगेगा, व्यवस्था होगी, हमारा मराठी 2 फिल्में वहां जाएगी, लेकिन हमारा जाना जो डेलीगेशन में जरूरी था उसको ऑनलाइन ही मीटिंग हम करेंगे और व्यक्तिगत रूप से वहां जाना, विदेश प्रवास कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए हमने रद्द कर दिया है।
10: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में अभी हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी है जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है, इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा।
1: 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरे से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आत्ताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अभी तो भारत की चेतना में यह बसता है। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील का असर अब देश के सबसे बड़े सराफा बाजारों में नजर आने लगा है। मुंबई के मशहूर जवेरी बाजार में हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर कारोबारियों और ग्राहकों से बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि आखिर इस अपील के बाद बाजार का माहौल कैसा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल अपील की थी लोगों से कि वो एक साल तक सोना ना खरीदें, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से सुधरेगी। जिसके बाद हम आज मुंबई के जवेरी बाजार में हैं और उमेदमल तिलोकचंद जवेरी इस दुकान में हैं, जो तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुरानी है। और हमारे साथ हैं कुमार जैन, जो इस दुकान के मालिक हैं, जो पीढ़ियों से ये दुकान चलती आ रही है। हम उन्हीं से जानेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कल एक साल तक सोना ना खरीदे लोगों से, इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं और क्यों की गई ये अपील, आपको क्या लगता है?
3: बिल्कुल अच्छी बात है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो आया है बहुत बड़ा, इस समय युद्ध के समय में एक सपोर्ट के लिए जरूरी है कि लोग सोना ना खरीदे, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट में नुकसान कम होगी। जैसे जैसे हम सोना लेते हैं हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता और डॉलर आज 87 के आसपास चला गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान है ये। पेट्रोल डीजल आना एक जरूरी चीज़ है, इसके लिए हम पेट्रोल डीजल भी लेते हैं जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट का नुकसान होता है। कुछ खादें भी महंगी पड़ती है, इम्पोर्ट करते हैं, उससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट का नुकसान होता है। लेकिन सोना एक ऐसी चीज़ है जो शादी ब्याह में एक कंपलसरी लेना पड़ता है, तो सरकार ने अनुरोध किया है कि नहीं, आप लो, उतना लो जितना आपकी जरूरत हो, आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के लिए मत लो।
2: प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की कि एक साल तक सोना ना खरीदें, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था थोड़ी और बेहतर होगी, इसको किस तरीके से देखते हैं?
4: पीएम मोदी ने कह तो दिया एक साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर घर में फंक्शन रहते हैं, किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है, तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है।
2: बिल्कुल, तो सदियों से चले आई है, परंपरा है एक तरीके से, ऐसा लोगों का कहना है और इसीलिए थोड़ा बहुत तो सोना खरीदना ही पड़ता है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील कितने लोगों तक पहुंचती है और कितने लोग इस अपील को मानते हैं और खास करके इस व्यवसाय पर, सराफा बाजार पर इसका क्या असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: Fill your day with podcasts on TuneIn. Whether you're passing the time on your commute, catching up on your workouts, or just tuning in while hanging out, all your favorite podcasts are all here on TuneIn. The Daily.
7: From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
6: Smartless.
8: Hey guys, I got a mouthful of English muffin with a glass full of
6: Marketplace.
9: Big three on the program today, or... you know, the big three of them.
6: And more. Just search podcasts or tell your device to play your favorite podcast on TuneIn.
10: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है। जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है, हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां जा सकते हैं, बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले आप कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम।

वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार धाम भवन 3 का लोकार्पण किया। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गुजरात में तीसरा प्रमुख सरदार धाम प्रोजेक्ट है जो समाज निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य में के लिए बनाया गया है। 150 करोड़ की लागत से तैयार सरदार धाम छात्रावास, छात्रों को मिलेंगी शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं। परिसर में यूपीएससी अध्ययन केंद्र, केंद्रीय भोजन कक्ष, ई लाइब्रेरी, सभागार और जिम भी। पाटीदार समुदाय के स्टूडेंट्स के लिए बनाया सरदार धाम छात्रावास, 2000 छात्र छात्राओं के रहने की सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सरदार गौरव रत्न सम्मान। पीएम ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर नमन किया। वडोदरा रैली में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, बोले वेस्ट एशिया युद्ध के प्रभाव से देश को बचाना है। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा से अपील, जहां तक संभव हो तेल का कम प्रयोग करें, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्कूलों में कक्षाएं भी ऑनलाइन ही चलाई जाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में गौरवशाली इतिहास के प्रतीक की सौगात दी, स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। सोमनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, सोमनाथ मंदिर के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का जिक्र किया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 गौरवशाली साल पूरे होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के अनुष्ठान के दौरान कश्मीर घाटी के पुलवामा से जुड़े श्रद्धालु, धार्मिक एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का संदेश दिया गया। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी की पहली कैबिनेट के लिए 5 अहम फैसले, बोले शासन सुरक्षा और डबल इंजन सरकार को रोडमैप तैयार करने में प्राथमिकता। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना, बीएनएस लागू करने और बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने का ऐलान किया। सीएम शुभेंदु ने ममता सरकार के दौरान बीजेपी

0: एक्शन में सीएम शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, दिलीप घोष को पंचायती, मंत्री अशोक को खाद्य, खुदीराम टुडू को जनजातीय विभाग मिला। शुभेंदु कैबिनेट में अग्निमित्रा पॉल को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली। पश्चिम बंगाल के सीईओ मनोज अग्रवाल बनाए गए हैं मुख्य सचिव, 1990 बैच के आईएएस अधिकारी को मिली है जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए मर्डर केस में बड़ा एक्शन, आरोपी 3 दिन की सीआईडी की हिरासत में भेजे गए। असम में हैट्रिक के बाद आज हेमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज मौजूद रहेंगे। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से केरल तक एसओजी की दबिश, सचिन पायलट ने नीट पेपर लीक आशंका की जांच की मांग की। नीट पेपर लीक मामले का राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया, नीट कोई परीक्षा नहीं, अब नीलामी हो गई है। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचे सीएम योगी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पूर्व सीएम एमके स्टालिन से उनके आवास पर मुलाकात की। तमिलनाडु में पलानी स्वामी खेमे के 17 एआईएडीएमके विधायकों ने प्रोटेम स्पीकर से मुलाकात की, नेतृत्व परिवर्तन की मांग। पंजाब सीएम के चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान बीजेपी में शामिल हुए, हरियाणा सीएम सैनी और सुनील जाखड़ ने ज्वाइन करवाई पार्टी। लुधियाना में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हुई, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ा। पश्चिम एशिया संकट पर भारत सरकार अलर्ट, आईजीओएम की बैठक, राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री की अपील के बाद महाराष्ट्र सरकार के 3 बड़े फैसले, कांस दौरा रद्द करने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र सरकार में आईटी मंत्री आशीष सेलार ने जानकारी दी का, सरकारी कामों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल और विभाग की सभी बैठकें होंगी ऑनलाइन। प्रधानमंत्री मोदी के 1 साल तक सोना नहीं खरीदने वाले बयान पर ज्वेलर्स नाराज हैं, गुजरात बुलियन एसोसिएशन ने आर्थिक नुकसान पर सवाल उठाए। गोवा के गोवेश्वर मंदिर में सोमनाथ पर्व कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत का संबोधन, मुख्यमंत्री ने पुर्तगाली शासन में मंदिरों के विध्वंस और हिंदू धार्मिक गतिविधियों को रोक पर उल्लेख किया। नासिक में टीसीएस मामले में आरोपी निदा खान की कोर्ट में पेशी, डिजिटल जांच में मिले 171 इस्लामिक लिंक, न्यायिक हिरासत में भेजी गई है निदा खान। राजधानी दिल्ली में सीआईए वार्षिक व्यापार समिट का आयोजन, 100 साल का भारत एक विजन थीम पर चर्चा, मिडिल ईस्ट संकट पर गौतम अडानी बोले, एनर्जी और डिजिटल सिक्योरिटी ही अब देश की असली ताकत।
1: एनर्जी एंड इंटेलिजेंस आर नाउ इनसेपरेबल, अ नेशन दैट डज नॉट बिल्ड कैपेबिलिटी इन पीस is forced to pay for his exposure in crisis.
0: मध्य प्रदेश के गुना में अडानी समूह की नई सीमेंट यूनिट की रखी गई नींव, सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रणव अडानी मौजूद थे। एमपी में अडानी ग्रुप करेगा 1,060 करोड़ का निवेश, प्रणव अडानी बोले, ये लोगों पर भरोसे का इन्वेस्टमेंट।
2: ये केवल सीमेंट प्लांट का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा का इन्वेस्टमेंट है, ये लोकल यूथ के भविष्य का इन्वेस्टमेंट है।
0: दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस कॉलेज में बिजली बनाने के लिए अनोखा प्रयोग, मशीनों के कंपन और तापमान में बदलाव से पैदा होगी ऊर्जा, क्लीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर बवाल, अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन के पोस्टर पर पोती गई कालिक। आगरा में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, बदहाल सफाई व्यवस्था और मूलभूत आवश्यकताओं समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव किया गया। जलंधर ब्लास्ट पीड़ितों को राज्यसभा सांसद विक्रम सिंह साहनी की मदद, नई स्कूटी और आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया। अयोध्या पहुंची पहलवान विनेश फोगाट ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, पूजा अर्चना के बाद गोंडा में आयोजित कुश्ती टूर्नामेंट के लिए हुई रवाना। विनेश फोगाट का WFI के कारण बताओ नोटिस पर जवाब, बोली 14 दिन बाद कानूनी सलाह के बाद दूंगी जवाब, डोपिंग नियमों के उल्लंघन के आरोपों को किया खारिज। पटना के IGIMS अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का उद्घाटन निदेशक डॉक्टर विंदे कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर विभूति प्रसून सिन्हा और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने किया। प्रयागराज में इस साल आमों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा और मल्लिका सहित कई वैरायटी मौजूद। उत्तराखंड में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, गुप्त काशी ऊखीमठ में छाया रहा घना कोहरा।

दो हेलीकॉप्टर्स को अगस्त्य मुनि में करवाई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ में हीटवेव का अलर्ट, अकोला और अमरावती में 45 डिग्री के ऊपर चढ़ गया पारा। पश्चिमी विदर्भ के भीषण हीटवेव का कहर, अकोला में 350 से ज्यादा लोगों के लू की चपेट में आने की खबर। सतारा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 30 फीट ऊंची आग की लपटें नजर आई और चारों ही तरफ धुआं। इंदौर में बस डिपो अचानक से लगी थी भयंकर आग से अफरा तफरी, सर्विस रोड पर खड़ी 5 बस जलकर खाक। यूपी के बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलट गई थी बस, एक यात्री की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल हुए। फरीदाबाद में दो पक्षों के बीच मामूली से विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, पत्थरबाजी के बाद फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। बिहार के मोतिहारी में दिनदहाड़े छात्र की चाकू गोदकर हत्या, कॉलेज के गेट पर सैकड़ों लोगों के सामने वारदात को अंजाम दिया गया, लाइव फुटेज सामने आई। ओडिशा के मयूरभंज में कार्यक्रम के दौरान युवतियों से छेड़छाड़, गुस्साई भीड़ ने युवक को पेड़ से बांधकर पीटा। रामगढ़ में अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब और सामग्री बरामद, दो की गिरफ्तारी। रोहतक के सरकारी स्कूल शिक्षक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में बाइक सवार युवकों ने दुकान के पास बरसाई की गोलियां। जलंधर में युवती से कार में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इस्तेमाल की गई कार भी बरामद की गई। पठानकोट में एयरबेस के पास फर्जी पुलिस आईडी कार्ड के साथ घूमते हुए 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, सुरक्षा बलों को चकमा दे रहे थे। महाराष्ट्र के वाशिम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की प्रतिबंधित पान मसाले से लदा हुआ ट्रक को जब्त किया गया। पुणे पुलिस ने म्यांमार से रेस्क्यू होकर लौटे 3 आरोपियों को साइबर घोटाले में दोबारा से गिरफ्तार किया, मौके से डिजिटल उपकरण और बैंकिंग किट बरामद। गुजरात के आणंद में भीषण सड़क हादसा हुआ, खड़े हुए ट्रक से टकरा गया था टेम्पो, 4 की मौत हुई, 5 घायल हुए। गुजरात के भावनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, मनाली जाते समय एक परिवार के 5 लोगों की मौत हुई, बाल बाल बचे 4 सदस्य। संभल के स्कूल में हिंदू छात्रों को पहनाई गई टोपी और हिजाब, 3 शिक्षक निलंबित हुए, 2 पर केस दर्ज, डीएम ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के मंगोलपुरी में घर में घुसकर महिला पर धारदार हथियार से हमला, शिकायत से नाराज होकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। गुरुग्राम में राहुल फाजिलपुरिया के इवेंट मैनेजर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों का एनकाउंटर, 1 ढेर हुआ, 2 घायल हुआ। सहारनपुर के देवबंद में जमीन विवाद को लेकर 2 समुदाय आपस में बड़े पथराव और लाठी चार्ज में, कई लोग घायल हुए, तनाव के चलते पूरे इलाके में पुलिस तैनात। हरदोई में ईंट भट्टे पर खेलते समय हादसा हुआ, पानी भरे गड्ढे में डूबने से मासूम भाई बहन की मौत हुई। बोकारो में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के दौरान बस स्टैंड से 47 किलो गांजा बरामद किया गया। रिलीज से पहले रामचरण जानवी कपूर की स्पोर्ट्स ड्रामा पैदी के टिकट की रिकॉर्ड बिक्री, 4 जून को फिल्म दुनिया भर में रिलीज होगी। अनन्या पांडे लक्ष्य ललवानी की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल का ट्रेलर जारी किया गया, 22 मई को सिनेमाघरों में रिलीज। बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई के बाद भूत बंगला ओटीटी पर दस्तक देगी, 12 जून को नेटफ्लिक्स पर हिंदी तेलुगु कन्नड़ मलयालम में स्ट्रीम किए जाएंगे। करण कुद्रा तेजस्वी प्रकाश का नया रियलिटी शो देसी ब्लिंग ओटीटी पर मचाएगा धमाल, 20 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। रैपर और सिंगर योयो हनी सिंह का नया गाना बॉडी रोल रिलीज किया गया, नोरा फतोही ने गाने में दिखाए हैं बेहद बोल्ड और स्टाइलिश डांस मूव्स। 15 जून को शुरू हो रहे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज्यादा यूजर फीस को लेकर विवाद बढ़ा, इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले महंगी ऑपरेशन लागत होने से किराए बढ़ने की आशंका जताई। कच्चे तेल और पैकेजिंग लागत बढ़ने से एफएमसीजी कंपनियों पर दबाव बढ़ा है, एचयूएल डाबर और ब्रिटानिया जैसी कंपनियां साबुन बिस्किट और राशन के दाम 2-10% तक बढ़ाने को तैयार। आरबीआई के नए ड्राफ्ट नियमों के तहत बैंक और एनबीएफसी डिफॉल्टर्स की गिरवी प्रॉपर्टी जब्त कर सकेंगे, एनपीए होने और सभी कानूनी रास्ते खत्म होने पर जमीन मकान बेचकर बकाया वसूली करने को मिलेगी मंजूरी। टेक कंपनी ओरेकल में बड़े पैमाने पर छटनी के बाद कर्मचारियों का विरोध बढ़ गया है, कंपनी पर वित्तीय दबाव पर चर्चा के बीच कर्मचारियों ने कम मुआवजा और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय बाजार से 14,000 करोड़ रुपए को निकाल लिया है, लगातार बिकवाली से शेयर बाजार पर बढ़ गया दबाव, 2026 में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को चौंका दिया। आपके घर में भी खूब चर्चा हो रही होगी, बच्चे सवाल भी पूछ रहे होंगे, लोग पूछ रहे हैं कि क्या ईरान युद्ध की वजह से कोई गंभीर संकट आने वाला है। उन्होंने लोगों से सात बातें कही है। पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए कहा, जिससे लोग सहमे हुए हैं कि क्या पेट्रोल डीजल पर खरीद को लेकर कोई लिमिट लगने वाली है, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये शुरू हो चुका है जहां महीने में तेल खरीद की सीमा तय कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम की अपील की, साथ ही कहा कि अगले एक साल तक सोना ना खरीदे, जिससे देश के सर्राफा बाजार में खलबली मच गई। कई ज्वेलरी कंपनीज के शेयर बुरी तरह से लुढ़क गए, गिर गए। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा टालने के लिए कहा है, डेस्टिनेशन वेडिंग यानी भाई विदेश में जाकर कहीं पर शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग भी भारत में ही करने को कहा है। नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए, ताकि आप जो ये फर्टिलाइजर्स है वो कम इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल कीजिए। ये तो खैर प्रधानमंत्री पहले भी बोलते रहे, जिसमें वो ये मानते हैं कि आपकी सेहत के लिए कुकिंग ऑयल अगर आपने कम किया तो आपकी सेहत को फायदा होगा। अब इन तमाम बातों के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये किसी बड़े मास्टर प्लान या बड़े संकट का संकेत है। हम बताएंगे आपको, और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद भी लगभग ध्वस्त हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ही सिरे से ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब ज्यादा दिन तक हंस नहीं पाएगा। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि दुनिया में युद्ध के खतरे को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने नए नियम बनाते हुए कहा कि अगर किम जोंग उनकी हत्या हो जाती है तो वो परमाणु हमला कर देगा। समझ गए आप, ईरान में आयतल्ला अली खमेनेई की हत्या के बाद जो स्थिति बनी उसे ही देखते हुए कोरिया ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। आखिर में आपको बताएंगे कि कुशीनगर का कृष्णा मिश्रा कैसे पाकिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर बड़े धमाके की प्लानिंग कर रहा था, कैसे 20 साल का कृष्णा आतंकी बन गया, उसका साथी दानियाल अशरफ मिलकर कैसे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहबाज भट्टी नेटवर्क से जुड़ गए थे, यूपी एटीएस ने इस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और उन्हें पता चला कि सोशल मीडिया के जरिए आतंकियों ने कृष्णा को एक आतंकी बना दिया। लेकिन आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को किसी बड़े संकट के लिए तैयार कर रहे हैं। हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि ईरान युद्ध का भारत पर गंभीर असर हुआ है, और क्योंकि भारत के पास कच्चे तेल के कुएं नहीं हैं, इसीलिए अब पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने देश के लोगों से सात बड़ी अपीलें की, सात बड़ी अपील, जिनमें पहली अपील है पेट्रोल डीजल की कम से कम खपत करना, और हो सके तो अपनी गाड़ी बाइक छोड़कर गाड़ी ना चलाएं, बाइक कम करें और मेट्रो पर चलें, कार पूलिंग का इस्तेमाल करें, मतलब आस पड़ोस के लोगों के साथ निकले ताकि उन्हें जहां पर जाना है अगर रास्ते में ड्रॉप ऑफ करते हुए आपको ऑफिस पे जाएं, कार पूलिंग में एक साथ निकले तो एक ही गाड़ी निकलेगी चार पांच परिवारों के लिए। इस अपील के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होने वाला है, क्या पेट्रोल डीजल की खरीद पर कोई लिमिट भी लग सकती है, यानी क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप महीने में कितना पेट्रोल खरीद रहे हैं, अपनी बाइक में डलवा रहे हैं या अपनी कार में डलवा पाएंगे, सरकार उसकी एक सीमा निर्धारित कर देगी। और अभी ईरान युद्ध के कारण श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों में ये किया जा रहा है। जी हाँ, वहां पर ये मॉडल अभी से ही लगा दिया गया है। दूसरी अपील जो उन्होंने की है, दूसरा अपील है वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम को बढ़ावा दिया जाए ताकि तेल की खपत कम हो सके। आप घर से काम कर सकते हैं, डिजिटली काम कर सकते हैं, तो आपको गाड़ी से निकलना ही नहीं होगा, पेट्रोल की खपत कम होगी। तीसरी अपील है अगले एक साल तक सोना ना खरीदे, और इस अपील के बाद पूरे देश में खलबली मच गई। जो कंपनियां रिटेल मार्केट में सोना बेचती हैं, उनके शेयर्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट आ गई है। पिछले 24 घंटे में कल्याण ज्वेलर्स के शेयर्स में 9%, तनिष्क के शेयर्स में 6.8%, सेनको के शेयर्स में 8.2%। सोचिए ये गिरावट है, और लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में सोने की खरीद पर रोक भी लगाई जा सकती है, यानी क्या ऐसा हो सकता है कि सोने की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोक दिया जाए या इसको सीमित कर दिया जाए। हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनकी अपील के अलग अलग मायने लगाए जा रहे हैं, अलग अलग अंदाजा लोग लगा रहे हैं। चौथी अपील, विदेश यात्राओं को अगले एक साल के लिए टाल दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग या छुट्टियों के लिए विदेश जाते हैं वो अगले एक साल तक ऐसा ना करें। इसकी वजह देखिए हम आपको बताएंगे, लेकिन उसकी जगह पीएम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी जगह भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग कीजिए, भारत के अंदर ही खर्च होगा, भारत को ही फायदा होगा, यही छुट्टियां बनाकर आप घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दें। तो दोनों ही नजरिए से, चाहे वो डेस्टिनेशन वेडिंग हो, पीएम कह रहे हैं कि देश के अंदर कीजिए, चाहे वो छुट्टियां मनाने की बात हो, वो कह रहे हैं देश के अंदर। इस अपील से वो लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं जिन्होंने विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बुकिंग पहले से कराई हुई है। पांचवी अपील है, फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता को घटाना और नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, फर्टिलाइजर की खपत को कम करना। अब ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है, लेकिन कई राज्यों में किसानों के बीच ये चिंता बढ़ रही है कि कहीं इस बार फर्टिलाइजर्स और खाद की कमी तो नहीं होने वाली है, कहीं उसकी कीमतें बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएंगी। यहां भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन लोग उनकी अपील से ये अंदाजा लगा रहे हैं और इससे किसानों के बीच भी कई लोग जो कह रहे हैं उसकी वजह से डर फैल रहा है। छठी अपील, कुकिंग ऑयल का सोच समझ कर कम इस्तेमाल। ये प्रधानमंत्री ने पहले भी मन की बात में कहा है, क्योंकि कुकिंग ऑयल या एडिबल ऑयल के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 60% एडिबल ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है, जिस पर लगभग $20 बिलियन खर्च होते हैं। और आखिर अपील ये की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भारत में बने सामान को अपनाएं और मेड इन इंडिया सामानों की मांग बढ़े, जिससे विदेशी सामानों पर निर्भरता को कम किया जा सके। याद होगा हमने भी ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ शुरू किया था #MadeInIndia, ताकि जितने भी हमारे दुकानदार हैं, जितने भी हमारे उत्पादक हैं, वो सब अपने सामान पर लिखें मेड इन इंडिया और गर्व से लिखें। अब प्रधानमंत्री मोदी की ये 7 अपील, जिन्हें लेकर अभी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि इस बार शायद कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। ये कयास इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब इस तरह की अपील करते हैं ना, तो उसमें कोई ना कोई इशारा जरूर छिपा होता है, कुछ संकेत छिपे होते हैं। जैसे 8 नवंबर 2016 आपको याद होगा, जब रात 8 बजे के भाषण में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी लागू किया था, तब इससे 6 महीने पहले मई 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कैशलेस सोसाइटी बनाने की बात कही थी, वो डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दे रहे थे। उस वक्त यह एक इशारा था कि सरकार नोटबंदी की तरफ बढ़ सकती है, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसी दौरान 18 सितंबर 2016 को जब उरी का हमला हुआ था, तब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो देशवासियों को विश्वास दिलाते हैं कि हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बयान से पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का संकेत दे रहे हैं। इसके बाद जब कोरोना वायरस आया, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी और लोगों से यह कहा था कि वो डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में अपने घरों में ताली बजाएं और ताली बजाएं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि ये जनता कर्फ्यू अगले दिन खत्म हो जाएगा, वो अपने काम पर लौट आएंगे, लेकिन हकीकत में ये जनता कर्फ्यू आगे लगने वाले लॉकडाउन का बड़ा संकेत था। और पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तब उससे पहले भी लोगों से यह अपील की गई थी कि वो रात को अपने घरों की बिजली बंद कर दें। उस वक्त यह अपील इस बात का संकेत थी कि भारत पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सिखाने जा रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना नहीं खरीदने, विदेशी यात्राओं को एक साल के लिए टालने की अपील की है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कयास और अंदाजा लगा रहे हैं और पूरे देश में लोग एक दूसरे से चर्चा में, फोन पर बातचीत में यही पूछ रहे हैं कि इस बार सरकार क्या करने वाली है। देखिए,
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे, अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं।
0: जिस दिन ईरान युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन हमने आपसे कहा था कि ये युद्ध धीरे धीरे आपके घर, आपकी रसोई, आपके दफ्तर, आपकी जिंदगी के हर कोने तक पहुंचेगा, और अभी यही हो रहा है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर सरकार चाहती है कि लोग एक साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम करें, वर्क फ्रॉम होम करें यानी घर से ही वो अपने ऑफिस का काम करें, दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाए ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं। ये वो भंडार होता है जिसमें जमा विदेशी मुद्रा से देश की जरूरत का सभी सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट होता है, खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे हम तेल खरीदते हैं, जैसे हम सोना खरीदते हैं, हम अलग अलग देशों से जो सामान इंपोर्ट करते हैं, जो कुछ भी खरीदते हैं अपने देश में जरूरत के लिए, वो इसी पैसे से खरीदते हैं। अगर ये भंडार खाली हो जाए और इसमें दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ही ना बचे, डॉलर ही ना बचे, तो वो देश अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता और इसके बाद आर्थिक रूप से वो देश बर्बाद होने लगते हैं, बड़ा संकट आ जाता है। भारत के सामने अभी ये समस्या नहीं है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारे सामने कोई गहरा संकट नहीं है, लेकिन जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की आपूर्ति बाधित हो रही है, देश का इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है, दूसरी जगहों से हम ले रहे हैं जरूरत का सामान, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है, और बढ़ क्या सकता है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। युद्ध शुरू होने से पहले भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 66,27,000 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन अब ये 65,56,000 करोड़ रुपए हो गए हैं, यानी युद्ध के दौरान इसमें 71,144 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ये खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा है, और ज्यादा इसलिए है क्योंकि कच्चा तेल महंगा हो गया है, ऊपर से अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ जिससे भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। अब अगर हमारा रुपया कमजोर होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को नुकसान होगा। मैं एक उदाहरण से भी आपको समझाती हूं। मान लीजिए पहले जब भारत के 90 रुपए अमेरिका के एक डॉलर के बराबर थे, तब हमें भुगतान में 90 रुपए के हिसाब से करना पड़ता था, लेकिन अब जब यही रुपया एक डॉलर के मुकाबले 95 रुपया हो गया है, तब अपना इंपोर्ट बिल 95 रुपए के हिसाब से चुकाना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा पैसा निकल रहा है। इससे हमारा खर्च पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया है, हम कच्चा तेल, गैस, सोना, फर्टिलाइजर ज्यादा दामों पर खरीद रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार चाहती है कि जब तक हम ज्यादा दामों पर ये चीजें खरीद रहे हैं, तब तक आप इनकी खपत या इनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। ये ठीक वैसा ही है जैसे आम घरों में प्याज महंगा होने पर या कोई और दूसरा सामान महंगा होने पर कुछ वक्त के लिए उसकी खपत कम कर दी जाती है, और लोग सोचते हैं कि ज्यादा कीमतों पर वही प्याज या वही सामान खरीदने का कोई फायदा नहीं है, और इससे आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। सरकार भी बस हूबहू यही कर रही है। हम एक एक करके आपको आंकड़े दिखाते हैं जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप भी ये पूछ रहे होंगे बार बार, सोना खरीदने से क्यों मना कर रहे हैं, सोना क्यों नहीं खरीदने देना चाहते, देखिए साल 2024 में भारत ने आज के हिसाब से 13,06,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था। 2025 में 11,60,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल खरीदा था और उस वक्त हमने अपने विदेशी मुद्रा भंडार के 16 बिलियन डॉलर की बचत कर ली थी। लेकिन इस साल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं, कीमतें बढ़ी तो तेल महंगा हुआ और अनुमान है कि इस साल जो है कच्चे तेल के आयात पर हमारा देश 17,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। अब ये पिछले साल के मुकाबले 5,40,000 करोड़ ज्यादा है, यानी सिर्फ इस युद्ध के कारण। 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, मार्च अप्रैल मई, इस युद्ध के कारण हमें कच्चे तेल पर हर दिन 1,370 करोड़ रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अब किसी चीज के आपको 10 से 12 गुना दाम ज्यादा देने पड़े तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे कि मैं बाद में ये चीज ले लूंगा, तब तक कोई और रास्ता इसके लिए निकालता हूं। भारत यही कर रहा है, हम कच्चा तेल खरीदना बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि इसी से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन हम इसकी खपत को घटाकर अपने इंपोर्ट बिल को, भाई जितना हमको भुगतान करना पड़ रहा है उसको ज्यादा बढ़ने से थोड़ा रोक सकते हैं। और ये हमारे लिए जरूरी क्यों है अब वो समझिए। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे पास कच्चे तेल के कुएं नहीं है, हम अपना 89% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदते हैं। हमारी मजबूरी यह है कि या तो हम महंगा कच्चा तेल खरीदते रहे और भारत में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, या हम कुछ वक्त के लिए पेट्रोल डीजल की खपत को कम कर दें और अपने इंपोर्ट बिल को कंट्रोल में रखने में कामयाब हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे देश में मोटरसाइकिल के मुकाबले गाड़ियां ज्यादा है, लेकिन ये जानकारी सही नहीं है। हमारे देश में जो वाहन पेट्रोल पर चलते हैं उनमें 59% बाइक्स हैं या स्कूटर्स हैं, 37% कार्स हैं, टैक्सी 3.5%, 1% थ्री व्हीलर है जो पेट्रोल पर चलते हैं। अगर डीजल की बात करें तो 64% ट्रक हमारे देश में डीजल पर चलते हैं, 14% गाड़ियां, 4% बसें, ये सब डीजल पर चलती है। अब सरकार चाहती है कि देश में जो 59% बाइक्स, 37% गाड़ियां पेट्रोल पर चलती है वो तेल को कम से कम यूज करें, कम से कम इस्तेमाल करें। इसके लिए वो वर्क फ्रॉम होम करें, मेट्रो कार पूलिंग करके दफ्तर जाएं। कई लोग हैं जो डिजिटल में ही काम कर रहे हैं, उनका 80% काम डिजिटल ही होता है, लेकिन बावजूद इसके वो दफ्तरों में आते हैं। क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि उनके लिए दफ्तर की तरफ से ही ये प्रावधान किया जाए कि उनको वर्क फ्रॉम होम की इजाजत मिल जाए? अगर ऐसा होता है तो हर महीने जो बाइक औसतन 20 से 25 लीटर तेल इस्तेमाल करती है वो अपने 5 से 7 लीटर तेल की खपत को तो कम कर ही सकती है, जबकि एक गाड़ी में हर महीने औसतन 70 से 80 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वहां भी 15 से 20 लीटर कम किया जा सकता है। भारत में कुल 31 करोड़ बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, गाड़ियां हैं। अगर हर वाहन औसतन 5 लीटर तेल भी बचाता है तो इससे 155 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इससे भारत अपने 9,500 करोड़ रुपए बचा सकता है? और ये कोई छोटी रकम नहीं है। आज जब एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $113 प्रति बैरल हो चुकी है, हर दिन भारत की तेल कंपनियों को 1600-1700 सोचिए आप 1600 से 1700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, तब प्रधानमंत्री मोदी की अपील देश को बड़े संकट से बचा सकती है। तेल के बाद भारत की दूसरी बड़ी चुनौती है सोना, यानी गोल्ड। अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोग एक साल तक सोना ना खरीदें और यह अपील अभी कई लोगों को परेशान करे क्योंकि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है वो समझ नहीं पा रहे। भारत एक ऐसा देश है जहां सोने के बिना शादियां हो, त्योहार हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली और दीपावली से लेकर शादियां से लेकर हर चीज शुभ, यानी सोना और सोना का इस्तेमाल और सोने की खरीद। भारत में 50% सोना और सोने के गहने सिर्फ शादियों के लिए खरीदे जाते हैं। इसके बाद धनतेरस, दिवाली, अक्षय तृतीया, नवरात्रि के मौके पर सोने की खूब खरीद होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो निवेश के लिए या बुरे वक्त के लिए सोना खरीद कर अपने घरों में रखते हैं, सोचते हैं इधर उधर की चीज क्या खरीदना, इसका सोना खरीद लो, सोना है ना घर में पड़ा रहेगा, कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोई सीजन ऐसा नहीं है जब सोने की डिमांड हाई ना हो। आप जब जाएंगे तब सोने के खरीदार आपको बाजार में मिलेंगे। और यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोग एक साल तक सोना ना खरीदे तो इससे कई लोग चिंता में आ गए। लेकिन आज हम इन लोगों को कुछ आंकड़े भी दिखाना चाहते हैं। भारत अपनी जरूरत का 99% से भी ज्यादा सोना दूसरे देशों से ही आयात करता है। हमारे देश में हर साल 700 से 800 टन सोने की मांग होती है, जिसमें से हम अपनी खदानों से सिर्फ 1 या 2 टन सोना निकाल पाते हैं। यानी हमारा जितना सोना है, यहां सोना निकलता ही नहीं है, ये सारा का सारा आता है दूसरे देशों से। जैसे स्विट्जरलैंड से 40%, यूएई से 16% सोना, दक्षिण अफ्रीका से भारत अपनी जरूरत का 10% सोना लेता है। तो यह है पूरा हिसाब किताब, 40, 50, 66। अब जैसे 80% कच्चा तेल पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में बिकता है, ठीक वैसे ही 70% सोना भी डॉलर में ही बिकता है। मतलब आप सोना खरीदेंगे, सोना और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, और जब हम सोना बाहर से खरीदेंगे तो उसके लिए हम डॉलर में भुगतान करेंगे। एक बार फिर हमारा फोरेक्स, जो फॉरेन रिजर्व पैसा है हमारा, विदेशी मुद्रा भंडार, वो कम होने लगता है। अब चुनौती यह है कि पहले से हम कच्चा तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं और ऊपर से सोना खरीदने से हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है। अब सरकार चाहती है कि लोग सोना ना खरीदे ताकि उसी सोने को दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें नहीं खरीदना पड़े, और वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बचा पाए। जैसे हमको सोना ज्यादा खरीदना पड़ता है, हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर देते हैं, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर होता है, और जैसे वो घटता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, देश में एक बड़ा आर्थिक संकट आ सकता है। तो अभी जब शुरुआती ही थोड़ी सी फिसलन है, उसी वक्त अगर देश ने एकजुट होकर काम कर लिया तो हम किसी बड़े संकट को टाल सकते हैं। ये अपील इसलिए भी करनी पड़ रही है क्योंकि सोने को लेकर भारत के लोगों की दीवानगी अब भी अपने चरम पर है। 2024-25 में भारत के लोगों ने $58 बिलियन का सोना खरीदा, लेकिन अगले साल हमने $72 बिलियन का सोना खरीदा। यानी सिर्फ एक साल में हमने $14 बिलियन का सोना ज्यादा खरीदा, और अब भी जब युद्ध चल रहा है तब सोने की डिमांड कम नहीं हुई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2025 में भारत के लोगों ने $49 बिलियन की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी, और ये पैसा इतना है कि पाकिस्तान के 9 रक्षा बजट इसमें समा सकते हैं। 9 रक्षा बजट, इतना तो हम सोना खरीद लेते हैं। दुनिया के जो 10 देश सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं उनमें चाइना के बाद दूसरे नंबर पर कौन? हम, भारत है। 2025 में चाइना ने 591 टन सोना खरीदा था, भारत ने 462 टन सोना खरीदा, जबकि तीसरे नंबर पर अमेरिका ने 109 टन सोना खरीदा। तो तीनों का डिफरेंस भी देखिए। अब जिस वक्त हालात सामान्य थे तब तो सोने का इंपोर्ट बिल भारत सह पा रहा था, लेकिन अब जब कच्चे तेल की खरीद से दबाव बढ़ रहा है, देश में सोने की लगातार बिक्री बढ़ रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी को यह कहना पड़ा है कि एक साल तक लोग सोना ना खरीदें ताकि हम विदेशी मुद्रा भंडार को बचा सकें, हमको डॉलर में ज्यादा पे करके सोना तेल ये सब ना खरीदना पड़े। ये कहना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारत में अब सिर्फ सोना खरीदा नहीं जा रहा बल्कि सोने के बॉन्ड्स, सोने के शेयर्स में लोग खूब पैसा लगा रहे हैं। मतलब फिजिकल गोल्ड नहीं, शेयर्स में भी लगा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस साल भारत के लोगों ने 66 टन सोने के गहने खरीदे, लेकिन इसी दौरान भारत के ही लोगों ने 82 टन सोने में अपना पैसा निवेश कर दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के लोगों की सोने की खरीदारी रुकी नहीं रही है, और इस वजह से सरकार के डॉलर खूब खर्च हो रहे हैं, और खर्च इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 99% से ज्यादा सोना दूसरे देशों से खरीदना होता है। भारत में इतना सोना भी तब खरीदा जा रहा है जब पहले से भारत के घरों में 34,600 टन सोना रखा है। सोचिए, पहले से ही। और ये 600 टन सोना ऐसा वैसा नहीं, ये 360 लाख करोड़ रुपए का होता है जो घरों में पड़ा हुआ है। 360 लाख टन करोड़। सोचिए, जितना सोना हमारे घरों में रखा है उतना सोना दुनिया के 10 बड़े देशों के गोल्ड रिजर्व में भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग और सोना और गहने खरीद कर अपने घरों में रखना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अभी जब तक युद्ध से बने हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक लोग सोना ना ही खरीदे। हमारे देश में 6 लाख कारोबारी हैं, ऐसे कारोबारी जिनकी सोने की दुकान है 6 लाख, और जो सोने से जुड़ा व्यापार करते हैं ये कारोबारी प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर क्या कह रहे हैं आप वो सुनिए।
2: इस त्योहार हो, शादी ब्याह हो, हमें सोने की जरूरत पड़ती है, और जो कारोबार से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये फैसला प्रधानमंत्री की अपील कितनी मुश्किल बढ़ाएगा?
3: देखिए, करोड़ों लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक रोजगार का संकट एक साल के लिए तो खड़ा होता ही है, और साथ में इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी इंडस्ट्री में पड़ा है। मेरे पास महाराष्ट्र से, बंगाल से कई बंगाली कारीगरों के फोन आए कि भाई ये मोदी जी जो बोल रहे हैं हम कैसे करेंगे, जब से सोना 1,93,000 रूपये और चांदी 4,20,000 रूपये बिकी है और ताबड़तोड़ खरीदारी इन्वेस्टरों ने की है, तभी से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में मंदा है। दूसरा, ये प्रधानमंत्री जी के बयान से उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सरवाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
2: अपील के पीछे मंशा दरअसल ये है कि विदेशी मुद्रा भंडार बचे, लेकिन एक साल तक, एक साल का बैकअप कारोबारियों के पास है?
4: नहीं है, कोई बैकअप नहीं है अभी हमारे पास, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं।
2: आप लोगों के मन में जब आपने सुना होगा तो सबसे पहले क्या हुआ कि आगे क्या करेंगे?
5: जैसे एक घर का कोई मुखिया होता है ऐसे ही देश के मुखिया हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस व्यापार के लिए एकदम ये फैसला या ये,
0: हालांकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी इसे सरकार की नाकामी बताते हुए कह रहे हैं कि सरकार 12 साल बाद भी अपनी जिम्मेदारी जनता पर डालकर गलत कर रही है, और राहुल गांधी को पूरा हक है कि वो सरकार को घेरे। लेकिन आज हम कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, और इन्हें दिखाने का मकसद यही है कि आप ये समझ पाए कि संकट की घड़ी में सोने को लेकर कांग्रेस की सरकारों में क्या क्या हुआ है। साल 1962 में भारत चीन युद्ध में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह वादा किया था कि अगर भारत के लोग अपना पैसा, अपना सोना और गर्म कपड़े सेना के लिए दान करेंगे तो भारत चाइना के खिलाफ ये युद्ध जीत जाएगा। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त एक विज्ञापन सरकार ने प्रसारित करवाया था जिसके आखिर में महिलाओं के मंगलसूत्र और दूसरे गहनों से विक्ट्री और विजय लिखा गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने भी अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दिए थे, और ये बात नवंबर 1962 की है जिसकी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी हमने आपके लिए निकाली है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कुल 336 ग्राम सोना जिसमें उनका मंगलसूत्र भी था उसे सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दिया। इंदिरा गांधी की इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की महिलाओं में अपने गहने और मंगलसूत्र सरकार को दान में देने की बाढ़ आ गई थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से कंगन, गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतारकर दान दे देती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चाइना की सेना को हरा देगी, और ये बात सुनकर लोग और दान देने के लिए प्रोत्साहित होते थे। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों में 28 नवंबर 1962 तक सरकार को 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में लोगों से मिल चुके थे। और ये सोचिए कब की बात है, 1962 की बात, तब इस पैसे की कीमत समझिए, और ये उस समय के लिए बहुत बड़ा दान था। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उसी साल 1962 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव कराने पर 7,20,00,000 रुपए खर्च हुए थे, जबकि युद्ध के दौरान ही भारत के लोगों ने सिर्फ कुछ दिनों में 8 करोड़ रुपए दान देकर सरकार को दे दिए थे और 252 किलोग्राम सोना सरकार को दान में मिला था, वो आज के हिसाब से लगभग 185 करोड़ रुपए का होगा। नेहरू सरकार ने लोगों से कहा था कि अगर देश के लोग सेना की मदद के लिए आगे आएंगे तो भारत चाइना से युद्ध जीत जाएगा, लेकिन हकीकत में भारत ये युद्ध हार गया था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं बताया कि आखिर ये जो पूरा पैसा और सोना उस वक्त इकट्ठा हुआ था उसका किस जगह पर कहां से इस्तेमाल किया गया। उस समय कई बार ये मांग उठी कि नेहरू सरकार को नेशनल डिफेंस फंड में मिले दान का हिसाब देश को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की किसी भी सरकार ने इसके बारे में जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया। इसके बाद 1965-1971 के भी युद्ध में सरकार ने लोगों से कैश सोने में दान लिया। संकट की घड़ी में सरकारें ऐसा करती थी, लेकिन आज जब इसी तरह के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ये कहा है कि लोग सोना ना खरीदें, तो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं और इस पर खूब राजनीति हो रही है। हालांकि इस राजनीति से इतर हम आपको कुछ और बातें बताना चाहते हैं। साल 1990-91 में जब गल्फ वॉर हुआ था और इसी तरह कच्चे तेल नेचुरल गैस की आपूर्ति लगभग ठप हो गई थी, तब हमारे पास कच्चे तेल का बिल्कुल भंडार नहीं था। भंडार तो छोड़िए, सरकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर को दूसरे देशों में जाकर खरीद सके। उस वक्त स्थिति से निपटने के लिए भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। ये पिछले गल्फ वॉर की बात हम बता रहे हैं। इनमें से करीब 47 टन सोना हवाई जहाज से बैंक ऑफ इंग्लैंड को भेजा गया था, जबकि 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखा गया था। इन सोने को गिरवी रखकर भारत को जो पैसा मिला उससे हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया। इसके अलावा तब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी काफी बढ़ गई थी। 1 लीटर पेट्रोल 9.84 रुपए से 15.71 रुपए के करीब हो गया था। आप सोचिए, इसी तरह 1 लीटर डीजल 4.08 रुपए से बढ़कर 6.11 रुपए, रसोई गैस सिलेंडर 57.60 रुपए से 82.75 रुपए हो गया था। आज हमारे देश में विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, इन आंकड़ों के बारे में हमने सोचा आपको जानकारी दे दें। और अब मैं आपको दिखाने जाती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की 7 में से 4 अपील पर भी अगर अमल हो गया तो भारत के कैसे पैसे बचेंगे। 11 लाख करोड़ रुपया पैसा हमारा बच सकता है, और यह सबसे बड़ी बात होगी। अगर भारत के नजरिए से आप इसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर भारत के लोग एक साल में जो मूवमेंट करते हैं, आइए दिखाते हैं। यह तो हमने आपको दिखा दी मार्च में उस वक्त की पेट्रोल डीजल की कीमतें। किसी वजह से वो ग्राफिक्स इस वक्त आ नहीं रहा है तो हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर भारत के लोग एक साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, एक साल, तो विदेशी मुद्रा भंडार में $115 बिलियन बचाए जा सकते हैं। इनमें अगर लोग एक साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए, हमारे $72 बिलियन यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कच्चे तेल में 25% कटौती हो जाती है, 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे। कुकिंग ऑयल में भी 25% की कटौती होती है तो 45,753 करोड़ रुपए बचेंगे। खाद के आयात में 25% की कटौती होती है तो 42,894 करोड़ रुपए बचेंगे। भारत कुल मिलाकर 10,94,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन होगा, खासकर जो लोग विदेशों में छुट्टियां मनाते हैं या जो किसान फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, इस कटौती के लिए वो कितने तैयार है। 2024 में भारत के 3,08,00,000 लोग विदेशों में गए, जिनमें 42.52% लोगों का मकसद था विदेशों में छुट्टियां मनाना। यानी लगभग आधे लोग तो विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, और जानते हैं ये वहां खर्च कितना करते हैं। 2024 में विदेश जाने वाले भारतीयों ने $41.34 बिलियन यानी 3,93,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इनमें भी विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग भारत के लोगों ने 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और इसीलिए सवाल यह है कि अब क्या ये लोग इस लग्जरी को छोड़ेंगे। दूसरा, फर्टिलाइजर यानी खाद भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत में फर्टिलाइजर की मांग सोने की मांग से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2025 में फर्टिलाइजर का आयात पिछले साल के मुकाबले 77% बढ़ गया था, जबकि फर्टिलाइजर में सरकार को सब्सिडी का बहुत बड़ा भुगतान करना होता है। अकेले इस साल में सरकार फर्टिलाइजर पर 1,86,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने वाली है, और अब जब युद्ध के कारण फर्टिलाइजर की कीमतें 90% तक बढ़ चुकी हैं, तब तो हमारा इंपोर्ट बिल और बढ़ने वाला है, जिसके कारण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की है, और ये अपील जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश पॉलिटिक्स और भी आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। तमिलनाडु में इस बार थलपति विजय की सरकार बनी, उनके शपथ ग्रहण की पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है थलपति विजय की पार्टी ने चुनाव में महिलाओं से सबसे बड़ा वादा क्या किया था? माना जा रहा है कि उन्होंने बहुत प्रचार भी नहीं किया, लेकिन एक वादा ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनको जबरदस्त प्रचंड जीत मिली। 107 विधायक पहली बार चुनाव लड़ने पर। उन्होंने कहा था कि सरकार बनने पर वो उन सभी महिलाओं को 8 ग्राम सोना देंगे जिनके परिवारों की सालाना आय 5 लाख से कम होगी। 8 ग्राम सोने की इस वक्त कीमत जानते हैं कितनी है? 1,12,000। और तमिलनाडु में हर साल 4 लाख से ज्यादा तो शादियां होती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब सोना नहीं मिलेगा तो तमिलनाडु में यह मुद्दा भी राजनीतिक रूप ले सकता है और वहां इस पर मुख्यमंत्री थलपति विजय का केंद्र सरकार से सीधा टकराव हो सकता है। खैर, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अब भी गतिरोध बना है और अब तो ईरान एक खतरनाक चीज कर रहा है। सभी स्टोरेज टैंक फुल होने के बाद ईरान ने अपना कच्चा तेल समुद्र में छोड़ना शुरू कर दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये क्या स्थिति बन रही है पूरे विश्व के लिए, कैसा संकट आ रहा है। अमेरिकी नाकेबंदी के कारण अब तक ईरान के 58 ऑयल टैंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार नहीं कर पाए और इसी वजह से ईरान अब हर दिन 2,800 करोड़ का 30 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में बहा रहा है। पर्यावरण को तो खैर जो नुकसान हो रहा है वो अपनी जगह पर है, पर सोचिए कि ये क्या इस वक्त त्रासदी का रूप ले रहा है। ईरान के पास 3,500 तेल के कुएं हैं जिन्हें बंद नहीं किया जा सकता और अगर फिर भी ईरान इन्हें बंद करता है तो इनमें पानी भर जाएगा और ये हमेशा के लिए ठप हो जाएंगे। और यही वजह है कि ईरान ने अब समुद्र में अपना तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसे कच्चे तेल की आवाजाही आने वाले वक्त में और मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 1 साल तक स्थितियां विपरीत रहेंगी, लेकिन अभी जो हो रहा है उससे हालात 4 से 5 साल के लिए खराब हो सकते हैं। इस युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के संविधान में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। नॉर्थ कोरिया की संसद यानी सुप्रीम पीपल्स असेंबली के सत्र में संविधान और न्यूक्लियर पॉलिसी लॉ में संशोधन किया गया है। नए संशोधन के मुताबिक अगर दुश्मन के हमले में नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम को नुकसान पहुंचता है या फिर सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या हमले के कारण किम जोंग उन आदेश देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया अपने दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर देगा। नॉर्थ कोरिया के संविधान में यह संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान में जिस तरह सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का खात्मा किया उसे किम जोंग उन चिंतित हो गए और वो चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो तो उनका देश परमाणु हमला करने में संकोच ना करे। किम जोंग उनके इस फैसले की तुलना सोवियत संघ के पुराने डेड हैंड सिस्टम से की जा रही है। सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के दौरान पेरिमीटर नाम का एक सिस्टम बनाया था जिसे पश्चिमी दुनिया डेड हैंड कहती थी। इसका मकसद था कि अगर दुश्मन सोवियत नेतृत्व को मार दे, उसके कमांड सेंटर्स को नष्ट कर दे, परमाणु आदेश देने वाला सिस्टम खत्म हो जाए, तब सोवियत संघ बिना किसी आदेश के सीधा परमाणु हमला कर दे। यानी दुश्मन ये कभी ना सोचे कि शीर्ष नेताओं को खत्म करके न्यूक्लियर जवाब रोका जा सकता है। और अब नॉर्थ कोरिया का नया कानून भी लगभग इसी सोच पर आधारित माना जा रहा है और ये अमेरिका के खिलाफ तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं लेकिन जब शाम ढलने लगती है तो साए भी साथ छोड़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज यही मंजर नजर आ रहा है। कल तक जो ममता बनर्जी दिल्ली फतह करने का ख्वाब देख रही थी, आज उनकी अपनी ही बिसात के मोहरे बगावत पर उतारू हैं। हार क्या मिली, अपनों की नीयत, साथियों की वफादारी, सब बदल गई है। ममता बनर्जी को समझ आ रहा होगा कि कैसे बुरा वक्त लोगों की पहचान करा देता है। जो लोग कल तक ममता बनर्जी के गुण गाते थे आज वो भेद खोलने पर उतारू हैं। पार्टी में खास ही लोग जानते हैं ऐसे भेद वो सबको बता रहे हैं। वो नेता जो कल तक दीदी की एक आवाज पर सड़कों पर उतर जाते थे आज वो पार्टी की कार्यशैली पर और पार्टी के राज दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब टीएमसी के भीतर एक बड़ी दरार पैदा हो चुकी है। ये लोग वही हैं जिन्होंने सालों तक सत्ता का लाभ उठाया लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजों ने हार का मुंह दिखाया सुर बदल गए हैं। कोई कह रहा है नेतृत्व में कमी, कोई पार्टी के भविष्य पर सवाल उठा रहा है। ये राजनीति का वो कड़वा सच है जहां पावर के जाते ही पैशन खत्म हो जाता है। सिर्फ घर के भीतर ही नहीं, घर के बाहर भी ममता बनर्जी आज अकेली खड़ी हैं। बीजेपी के विरोध में विपक्षी एकता का जो ताना बाना बुना गया था वो अब ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। कांग्रेस वामदल ने ममता का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। सीपीएम ने साफ कहा कि वो ऐसी किसी भी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे जो अपराध और वसूली में लिप्त हो, भ्रष्ट हो। दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा कि ममता बनर्जी ने एक साथ आने का निमंत्रण दिया है। ये वही साथी हैं जो कभी फोटो सेशन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज टीएमसी की हार के बाद दूरी बनाने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। सत्ता का स्वाद चख चुके तमाम नेता विपक्ष में बैठने का धैर्य नहीं रखते। यही वजह है कि ममता बनर्जी के कई खास सिपा सालार अब सुरक्षित ठिकानों की तलाश में साइड से निकल रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उसके तमाम नेता कार्यकर्ता टीएमसी में चले गए थे। दर्जन भर विधायक सांसद बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम चुके थे और अब यह मामला बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की फालता विधानसभा में आईपीएस अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में रिजु दत्ता ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वो कहीं भी चले जाएं उन्हें खोज निकालेंगे। अब वही रिजु दत्ता अजय पाल शर्मा से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। टीएमसी पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि कोई विश्वास नहीं कर पा रहा कि 4 तारीख से पहले ये टीएमसी के सेनापति थे। सुनिए,
6: साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाए आप छुप नहीं पाएंगे।
7: मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई
0: वक्त बदलता है, बोली बदल जाती है। हमारी अगली खबर उन माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटी पर ध्यान नहीं देते। इस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी अब केवल भारतीय मुस्लिम युवाओं को नहीं बल्कि हिंदू युवाओं को भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कृष्णा मिश्रा, उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एटीएस ने 20 साल के कृष्णा मिश्रा को गिरफ्तार किया है। एटीएस को अपनी जांच में पता चला कि कृष्णा के संबंध पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से थे। शहजाद भट्टी गैंग को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का प्रॉक्सी माना जाता है। ये गैंग पिछले काफी समय से सोशल मीडिया के जरिए कृष्णा और उसके साथी दानियाल अशरफ से जुड़ा हुआ था। भट्टी गैंग सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों लड़कों के जरिए भारत में बड़े हमले की योजना बना रहा था और यूपी पुलिस के ही मुताबिक इस वक्त आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए दोनों काम कर रहे थे। यूपी पुलिस के मुताबिक भट्टी गैंग ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इनसे संपर्क किया और दोनों की प्रोफाइल के आधार पर इन्हें चुन लिया गया। दरअसल कृष्णा और अशरफ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं, पैसों की जरूरत थी। प्रोफाइल के आधार पर भट्टी गैंग ने यह भी देखा कि ये दोनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। भट्टी गैंग ने इनसे यह भी कहा कि अगर ये उसकी बात मानेंगे तो भारत में हीरो की तरह उनको देखा जाएगा। यूपी एटीएस को जांच में पता चला कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन भारत में अपना एक स्लीपर सेल बनाने में जुटे हैं। भट्टी गैंग कृष्णा और अशरफ के जरिए यूपी ही की कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर हमला करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एटीएस ने जिस शहजाद भट्टी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया वो शहजाद भट्टी दुबई से अपना गैंग चलाता है। शहजाद भट्टी का नाम सबसे पहले 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सामने आया। आरोप है कि इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को उसने भारत से फरार होने में मदद की थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई ने भारत में पहले हमले करने की जिम्मेदारी इसी शहजाद भट्टी के नेटवर्क को दी। इसलिए ये पाकिस्तानी गैंगस्टर भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत करता है, कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को टारगेट करता है। वो सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों को निकालता है, आर्थिक रूप से कमजोर हो उनको लालच देता है और लालच देकर 20 से 30 वर्ष तक के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बना रहा है। आईएसआई के प्रॉक्सी भट्टी गैंग को रोकने के लिए भारतीय एजेंसियों ने उसके सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रतिबंधित किया है। इसके बावजूद हर दिन नए अकाउंट्स बन रहे हैं, उसके जरिए भारतीय युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। आप भी सतर्क रहिए। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपना शपथ ग्रहण स्टाइलिश और फिल्मी अंदाज में लिया। ये अलग बात है कि राज्यपाल ने उन्हें टोका और पारंपरिक तरीके से शपथ लेने की अपील की। विजय ने शपथ ग्रहण के पारंपरिक शब्दों के अलावा बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया था जो फिल्म के डायलॉग जैसा लग रहा था। उनकी शपथ ग्रहण का स्टाइल भी फिल्मी एक्टिंग की तरह ही था। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे मन से मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं बल्कि वन टेक में कोई सीन खत्म कर रहे हैं। शपथ ग्रहण को देखने के लिए चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। शपथ ग्रहण के दौरान विजय ने उनकी तालियों और शोर को भी इसमें शामिल कर लिया था। ये तरीका शपथ ग्रहण की सामान्य परंपरा से बहुत अलग था, इसीलिए बहुत से लोगों को खटकने लग गया।
8: सी जोसेफ विजय एनुमनान பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில்
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो आपके मानसिक स्तर तक ना पहुंच सके उसे अपनी प्रतिक्रिया देकर सम्मानित ना करें। नमस्कार।

जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है, लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है। संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग

0: लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
1: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है, विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
0: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
1: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्धकाल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
1: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय 2 महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
0: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
1: आंकड़ों के मुताबिक भारत

0: 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एसेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु है, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करे ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी 2 चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात होगी, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को? तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and consider.
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
7: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
8: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
9: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे?
10: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
11: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
12: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
7: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है, मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बांध से होकर आता है, इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
7: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
7: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
7: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
13: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
7: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
13: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
7: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलापति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मंडता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गेस्ट पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साय में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साय में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं, जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस्ट पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गेस्ट पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस्ट पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके गेस्ट पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्याभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टीकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा। नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है। क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय दो महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के दो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए, अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को? तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे?
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बात से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इम्पोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान है, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह से ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने तीन आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गैस पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मंडता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गैस पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गैस पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साय में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साय में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गैस पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गैस पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गैस पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गैस पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गैस पेपर तैयार किया है जिसके गैस पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्याभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टीकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले आप कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में

0: सोना नहीं खरीदेंगे।
1: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
0: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
1: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। वजह नंबर 1, युद्धकाल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर 2, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर 3, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
1: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय 2 महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
0: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
1: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल

0: एसेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी 2 चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
6: ये problem global problem है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या? ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर problem है और crisis है, वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बांध से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, आईएमएफ, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह से ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गैस पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मंडता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गैस पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गैस पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साय में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साय में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गैस पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गैस पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गैस पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गैस पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गैस पेपर तैयार किया है जिसके गैस पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर 3, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है। क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। ये तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय दो महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बात से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इम्पोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी।
13: राष्ट्र की सुरक्षा,
0: मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलापति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मंडता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गेस्ट पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साए में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साए में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं, जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस्ट पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में MBBS कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गेस्ट पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस्ट पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में थे, 36 दूसरे सवालों के नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके
2: 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके गेस्ट पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है या फिर नीट का पेपर लीक था। ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं, जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है, लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? रुपया। युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। छह बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया। युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड

0: कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
1: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
0: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
1: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। वजह नंबर 1, युद्धकाल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर 2, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर 3, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
1: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय 2 महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
0: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
1: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में।

0: वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो, अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी 2 चीजों से जुड़ी है। एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है, वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve.
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
7: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
8: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
9: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे?
10: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
11: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
12: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
7: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बांध से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
7: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
7: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
7: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
13: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
7: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
13: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
7: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलापति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मंडता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले एक गेस्ट पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साए में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साए में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं, जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस्ट पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र की सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस्ट पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके गेस्ट पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टीकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज ममता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले आप कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है। यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्धकाल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा। नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है। क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय दो महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के दो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी,
0: दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा,
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve.
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35 से 40 फीसदी हिस्सा इसी बात से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने हो।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है, लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवां बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गैस पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मटता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले एक गेस्ट पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साय में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साय में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस्ट पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गेस्ट पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस्ट पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके गेस्ट पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में एट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत।

0: अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय 2 महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है। ऐसे

0: खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने का तेल का जो उपयोग करता है अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
1: अमेरिका और ईरान युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
1: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी 2 चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग है, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
1: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
6: ये problem global problem है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या? ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर problem है और crisis है, तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं। उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
1: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी है जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
1: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बांध से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
0: भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
1: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
0: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
12: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
13: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
12: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
13: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
12: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गैस पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मटता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गैस पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गैस पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साए में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साए में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गैस पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में MBBS कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गैस पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गैस पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गैस पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गैस पेपर तैयार किया है जिसके गैस पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
4: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates. Steely Dan. Loggins and Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search sailing or tell your device to play sailing on TuneIn.
5: इसमें जरूरत नहीं है जाने की हम लोग।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा। देश भर के ज्वेलरी कारोबारी मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील मानकर लोग सोने के गहने नहीं खरीदेंगे तो ज्वेलरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की। मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा। नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर 3, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है। क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय दो महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है, तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो, तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल आयात करता है, 1,61,000 का कुकिंग ऑयल आयात करता है, तो वहीं 6 लाख करोड़ का सोना भी आयात करता है। पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती संभव है, लेकिन सीमित दायरे में। वहीं विदेशों से आने वाले कुकिंग ऑयल और सोने के इस्तेमाल पर कटौती का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल असेंशियल कमोडिटी यानी आवश्यक वस्तु हैं, जिसके बिना आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं कुकिंग ऑयल और सोना बहुत जरूरी नहीं है, कुछ वक्त के लिए इसमें बड़ी कटौती की संभावना है।
1: ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में, खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी।
0: अमेरिका और ईरान युद्ध के दो महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पीस डील अटकी हुई है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बात नहीं बनी तो क्रूड ऑयल और गैस के दाम अभी और बढ़ेंगे। दाम बढ़ेंगे तो खरीद के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत होगी। युद्ध अमेरिका और ईरान लड़ रहे हैं, लेकिन नुकसान भारत को भी उठाना पड़ रहा है।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं। क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए, अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।
0: जब ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है, ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
3: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात होगी, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगिंस एट होम मैं कहना चाहूंगा।
4: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को, तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
5: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
6: ये प्रॉब्लम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ उमझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
7: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
8: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
9: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पता।
10: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
11: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की ये अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बात से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
1: भारत के इम्पोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान है, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह से ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
1: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी। फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
2: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गेस्ट पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मटता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस्ट पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गेस्ट पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साए में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साए में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं, जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस्ट पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गेस्ट पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस्ट पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस्ट पेपर तैयार किया है जिसके गेस्ट पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में हैट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले आप कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है, लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।

0: युद्ध की चुनौती से निपटने का मोदी फॉर्मूला। कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल पर अपील। गोल्ड पर 365 दिन वाला मोदी प्लान क्या है? क्या पीछे है बढ़ता डॉलर और लुढ़कता रुपया? युद्ध के असर को बेअसर करेगी मोदी की अपील। क्राइसिस मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म प्लान समझिए। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और ईरान का युद्ध शुरू हुआ, तभी से खाड़ी देशों से आने वाले पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की सप्लाई करीब करीब ठप है। अभी ईरान और अमेरिका के बीच संपूर्ण युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। एक बार फिर महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत पर मंडरा रहे खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा क्यों कहा? मोदी ने देशवासियों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की है? क्यों कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है? क्या मोदी की अपील क्राइसिस मैनेजमेंट का हिस्सा है? आज प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हम विश्लेषण करेंगे। एक साल तक सोना नहीं खरीदेगा भारत तो क्या होगा? पेट्रोल और डीजल की बचत करेगा भारत तो क्या होगा? कुकिंग ऑयल में कटौती करेगा भारत तो क्या होगा? युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल में कटौती तो समझ में आती है, लेकिन एक साल तक सोने से दूरी बनाने की अपील को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोने के गहने खरीदने वालों से क्या कहा।
1: गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: गोल्ड पर पीएम मोदी की स्ट्राइक का असर आज ज्वेलरी इंडस्ट्री पर दिखा, स्टॉक मार्केट पर दिखा।

0: भट्टा बैठ जाएगा, सेक्टर से जुड़े लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। वहीं सोने को लेकर पीएम मोदी की अपील का निगेटिव असर शेयर बाजार पर दिखा, क्योंकि निवेशकों ने अपील को आने वाले वक्त में किसी बड़े संकट का संकेत माना। अब सरल शब्दों में समझिए, पीएम मोदी ने एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील क्यों की, मोदी के दिमाग में सोने को लेकर क्या चल रहा है। दरअसल भारत हर साल करीब 6 लाख करोड़ का सोना आयात करता है। विदेशों से आया यही सोना भारत के बाजारों में बिकता है, लेकिन विदेश से जो सोना भारत पहुंचता है उसकी पेमेंट डॉलर में की जाती है, यानी भारत को सोने के बदले रकम चुकाने के लिए डॉलर चाहिए, भारत को डॉलर खरीदना पड़ता है। युद्ध के बावजूद सोने के आयात में कोई कमी नहीं आई है, ऐसे में डॉलर की डिमांड बनी हुई है। ये तब है जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। इसकी एक वजह भारत का निर्यात के बजाय आयात पर निर्भर होना है, लिहाजा भारत को भुगतान करने के लिए डॉलर चाहिए और मौजूदा हालात में डॉलर खरीदने में ज्यादा रुपये चुकाने पड़ रहे हैं।
1: साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि पीएम मोदी की अपील के पीछे तीन बड़ी वजह हैं। वजह नंबर एक, युद्ध काल में अनिश्चितताओं के बीच गोल्ड कम खरीदने से इकोनॉमी स्थिर रहेगी, क्योंकि हम डॉलर पर कम खर्च करेंगे, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम पड़ेगा। वजह नंबर दो, सोना आयात करने के बजाय गोल्ड रिसाइकल पर जोर होगा, नए सोने की ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अपने पास रखे सोने के पुराने जेवरों को रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले की तरह चलती रहे। ऐसा होने पर विदेश से सोना नहीं खरीदना पड़ेगा, जिससे डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वजह नंबर तीन, युद्ध के चलते सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट पड़ी है, क्रूड ऑयल और खाद के दामों में आग लगी हुई है। भारत जैसे मुल्क के सामने युद्ध के असर कम करने के विकल्पों में आयात में कटौती एक कारगर रणनीति हो सकती है।
2: डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। सोमवार को एक डॉलर की कीमत करीब 95 रुपए थी, जबकि युद्ध से पहले एक डॉलर 91 रुपए के करीब था। मतलब युद्ध के चलते 4 रुपए रुपया टूट चुका है और 4 रुपए डॉलर मजबूत हो गया है। यह तय है कि जब क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में युद्धकाल में मजबूत होते डॉलर के साथ साथ क्रूड ऑयल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है।
0: एक्सपर्ट मानते हैं कि आयात पर बोझ कम करने का सीधा असर लुढ़कते रुपए को सुधारने और विदेशी मुद्रा भंडार को सही लेवल पर बनाए रखने पर पड़ेगा। अब इसे भी समझिए, ईरान और अमेरिका युद्ध का असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी ताजा आंकड़े बताते हैं कि युद्ध से पहले फरवरी में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 728 अरब डॉलर था, जो मई के पहले हफ्ते में 690 अरब डॉलर तक लुढ़क गया। यानी विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त के बजाय 2 महीने में 38 अरब डॉलर की कमी आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में आई कमी की वजह है युद्ध के बाद दाम बढ़ने से भारत के आयात पर बढ़ा खर्च है। अगर युद्ध चलता रहा और भारत में आयात होकर आने वाले सामान की कीमतें बढ़ती रहीं, तो विदेशी मुद्रा भंडार का पूरा बही खाता बिगड़ जाएगा।
1: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें, और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे।
0: आंकड़ों के मुताबिक भारत 11 लाख करोड़ का क्रूड।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील के क्या मायने हैं, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को यह ऐलान करना पड़ा कि एक साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल सीमित और संभल कर करिए, वर्क फ्रॉम होम को अपनाइए। अब इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में सोना कम हो रहा है या फिर सोने की वजह से भारत की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है।

0: ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी कम नहीं हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी की देश की जनता से अपील बड़ी चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय उपायों की कड़ी दो चीजों से जुड़ी है, एक तो पेट्रोल डीजल का सीमित उपयोग, दूसरा एक साल तक सोना न खरीदने की अपील। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील के पीछे का मकसद क्या है। अब सवाल ये है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच युद्ध 28 फरवरी से चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने ये अपील की, तुरंत विपक्ष ने इसे लपक लिया और सरकार की नाकामी से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम के बस की बात नहीं। पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा।
1: आम मध्यम वर्ग है या आम लोग हैं, उनसे सोना नहीं खरीदने की बात करना है वो तो मंगलसूत्र छीनने वाली बात हो गई, जो कि वो लगातार चुनाव में कहते हैं कि विपक्ष आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। वो तो आप छीन रहे हैं। ये केवल नैतिक भाषण ना दे, ठोस कार्रवाई करें। चैरिटी बिगेन्स एट होम मैं कहना चाहूंगा,
2: ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, नरेंद्र मोदी जी के कंधे झुक गए।
0: विपक्ष का आरोप है कि सरकार की न तो नीति सही है और न ही नियम। हालांकि ये भी सच है कि जब देश ईरान अमेरिका युद्ध से अब तक बेफिक्र नजर आ रहा था, तब चुनाव के बाद अचानक से प्रधानमंत्री की अपील चौंका रही है। हालांकि सरकार और एनडीए के नेताओं का दावा है कि देश में संकट नहीं, केवल सतर्कता बरतने की बात कही गई है।
3: Our foreign exchanges can be conserved. For example, our expenditure on diesel petrol, for our expenditure on external travel, for any expenditure which can have implications on foreign exchange, we should try and conserve. So,
4: ये problem global problem है। ये मोदी जी की झगड़ा करवा दिया है क्या? ईरान अमेरिका का? इनको कुछ समझ में आता नहीं है। अगर प्रॉब्लम है और क्राइसिस है तो वो मैनेजमेंट सरकार का काम का है नहीं, उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इतना रिमार्केबल मैनेजमेंट है।
0: अब आम जनता और व्यापारियों की राय भी जान लेते हैं कि पीएम मोदी की अपील पर ये सब लोग क्या कह रहे हैं।
5: हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस विषय में कुछ सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक साल तक बिल्कुल सब लोग इसका बायकॉट करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे तो दुकानदारी कैसे चलेगी,
6: सराफा मार्केट ऐसे बिल्कुल ठप होकर बैठ जाएगी तो सब लोग कहाँ जाएंगे।
7: व्यापार पे जो असर पड़ेगा उसका किसी को नहीं पड़ेगा।
8: इतना मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड खरीदना बहुत जरूरी है।
9: उनके फॉलोअर भी हैं जो मानते हैं कि हाँ देश पे कोई संकट है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, तो इंडस्ट्री ये कैसे सर्वाइव करेगी इस पे हम लोग सब चिंतित हैं।
0: एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि पीएम मोदी की अपील कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। इस समय दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है। मिडल ईस्ट में युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जिससे तेल की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। दुनिया के लगभग 20-25% क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस भी इसी बांध से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से निर्यात करते हैं। और अगर भारत की बात करें तो देश के कुल आयातित तेल का लगभग 35-40% हिस्सा इसी बात से होकर आता है। इसीलिए भारत समेत कई देशों में तेल की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें $105 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हाल फिलहाल ही इसने $120 का स्तर भी छुआ है।
10: भारत के इम्पोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे।
0: ऐसी स्थिति में सरकार चाहती है कि हम उन चीजों पर पैसा बचाएं जो बहुत जरूरी नहीं है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव कम हो सके। बात सोने की करें तो भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि ये बचत और परंपरा का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर साल 600 से 700 टन सोना आयात होता है और निर्यात बहुत कम है, इसलिए ये सोना घरों में जमा हो गया है। घरों में मौजूद सोने को लेकर अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 से 27,000 टन माना जाता है। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 90% से अधिक सोना आयात करता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक फरवरी 2026 तक भारत के पास करीब 880 टन आधिकारिक सोना था। इस मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर है। अमेरिका, जर्मनी, IMF, इटली, फ्रांस, रूस, चीन और स्विट्जरलैंड भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब भारत का सोना बाजार पहले से ही सप्लाई संकट का सामना कर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च 2026 तिमाही में भारत में ज्वेलरी डिमांड पिछले साल की इसी तिमाही के दौरान से 19% कम है। 2025 की पहली तिमाही में जहां ये 82 टन थी, वहीं इस साल की पहली तिमाही में ये घटकर करीब 66 टन रह गई। इस गिरावट की वजह सिर्फ ऊंची कीमतों के कारण मांग में कमी नहीं मानी जा रही, बल्कि आयात प्रक्रिया में प्रशासनिक और परिचालन संबंधी कुछ बाधाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आर्थिक नजरिए से देखें तो सोना और कच्चा तेल ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से भारत का सबसे ज्यादा पैसा बाहर जाता है। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि तेल तो फैक्ट्रियों और गाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन सोने की खरीदारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। भारत हर साल करीब 700 से 800 टन सोना विदेशों से मंगाता है। इस सोने के बदले हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो देश के खजाने यानी विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ बढ़ता है। मार्च 2026 तक भारत के पास करीब 691 अरब डॉलर का भंडार था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए काफी है। लेकिन अगर तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं, तो ये भंडार तेजी से खाली हो सकता है। इसीलिए सोने जैसी चीजों पर लगाम लगाकर विदेशी मुद्रा बचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है।
10: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है।
0: इसका मतलब यह है कि जब कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं और सोने का आयात ऊंचा बना रहता है, तो भारत को इस आयात का भुगतान करने के लिए बहुत ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए पीएम मोदी ने एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ पहुंचे और वहां चल रहे अमृत महोत्सव के दौरान मंदिर में विशेष पूजा की, साथ ही कुंभाभिषेक भी किया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के बाद 75 साल पूरे होने पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह पहला मौका था जब सोमनाथ मंदिर के शीर्ष पर कुंभाभिषेक किया गया हो।
0: ग्यारह तीर्थों के जल से सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक हो रहा है। शंख गूंज रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है। देश के सम्मान और शौर्य के प्रतीक सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पुष्प वर्षा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े भाव विह्वल होकर राष्ट्रीय गौरव के इन पलों को निहार रहे हैं।
12: इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव।
0: पूरा वातावरण हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा है।
12: हर हर महादेव, हर हर महादेव।
0: ये मौका खास है क्योंकि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये लम्हे ऐतिहासिक हैं, जो दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं। ये पल सांस्कृतिक जन जागरण के हैं। सोमनाथ मंदिर के शिखर के जलाभिषेक के बाद फहराती ये ध्वज पताका जैसे देश की सांस्कृतिक एकता के संदेश का प्रतीक बन रही थी।
13: राष्ट्र की सुरक्षा,
0: फिर भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलटों की सूर्य किरण टीम ने मंदिर के शिखर के इर्द गिर्द एयर शो किया और शौर्य का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ने मंदिर में शिवलिंग के समक्ष विशेष पूजा अर्चना भी की। सोमनाथ में सोमवार को मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो गए। 11 मई 1951 को पुनर्निर्माण के बाद सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस ऐतिहासिक घटना को यादगार बनाने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए एक और वजह से खास है। दरअसल 1026 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर हमला कर इसे ध्वस्त कर दिया था। उस घटना के 1000 साल भी पूरे हो गए हैं। इन 1000 सालों में इस मंदिर ने कई हमलों को झेला, लेकिन आज ये भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक शक्ति का प्रतीक बनकर शान से खड़ा है। इससे पहले रोड शो करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमनाथ से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।
11: और आपको दिखाते हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं 2 राज्यों की, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अब दोनों ही सीएम ने अपने अपने फैसलों से हर किसी को चौंका दिया है। आइए दिखाते हैं आपको।

0: ये हैं तमिलनाडु के नौवे सीएम थलपति विजय। इन्हें तमिलनाडु की जनता ने अपना नायक बनाया। अब विजय का नायक मोमेंट सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो में विजय धीरे धीरे करके सीएम की कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ मौजूद लोग इस दौरान उन्हें बधाई देते हैं। कुर्सी पर बैठते वक्त विजय के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आती है और वो सभी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। इसके बाद विजय कागजों पर साइन करते हुए नजर आते हैं। फैंस उनके इस मोमेंट को रियल लाइफ नायक से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक ने लिखा है कि विजय की जीत सिर्फ एक ट्रेलर थी, सीएम बनने के बाद पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि सीएम बनते ही विजय ने 3 आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला, हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री करना। दूसरा, नशे की समस्या से निपटने के लिए हर जिले में विशेष बल बनाना। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाना शामिल है। उधर बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट की बैठक में ताबड़तोड़ अहम फैसले किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान, राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी। दूसरा बड़ा फैसला, बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण करने का। तीसरा बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को लेकर है, जिसे पश्चिम बंगाल में भी लागू कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार का चौथा फैसला ये है कि राज्य में केंद्र की सभी योजनाएं केंद्र के साथ मिलकर लागू की जाएंगी। पांचवा बड़ा फैसला ये है कि नौकरशाहों को केंद्रीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और हालात के हिसाब से उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुभेंदु सरकार का छठा बड़ा फैसला बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता को लेकर है, इसे अब राज्य में लागू कर दिया गया है। 15 साल के ममता शासन को उखाड़ कर आई बीजेपी की सरकार में सीएम शुभेंदु ने बड़े और कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: देश में 3 मई को नीट की परीक्षा थी, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा, जिसमें 22 लाख छात्र छात्राएं शामिल होते हैं और वो परीक्षा जिसमें कुल 180 सवाल आते हैं। हर सवाल 4 नंबर का है, लेकिन इसी परीक्षा से पहले गैस पेपर धड़ल्ले के साथ मोबाइल पर मटता है और फिर दावा होता है कि नीट के पेपर में बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल, यानी कि कुल 135 सवाल उसी गैस पेपर से हूबहू मिलते हैं। अब ये पेपर लीक कांड है या नहीं, जांच की जा रही है।
2: क्या नीट का पेपर अब की बार लीक हो गया था? क्या 3 मई को हुई नीट की परीक्षा के सवाल गेस पेपर के नाम पर बट रहे थे? क्या 180 सवाल के पेपर में 135 सवाल पहले गेस पेपर में हूबहू मिल जाए तो उसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा? इन सवालों के साय में इस वक्त नीट परीक्षा संचालित करने वाली संस्था एनटीए और राजस्थान एसओजी की टीम है, और भविष्य जिनका फिर कथित पेपर लीक के साय में झूलने लगा वो लाखों छात्र छात्राएं हैं, जो ईमानदारी से नीट का पेपर देकर सोच रहे होंगे कि पास करके मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, लेकिन क्या पता उनकी किस्मत पर पेपर लीक पानी फेर जाए और जनता को इलाज के लिए वो डॉक्टर भविष्य में मिले जो गेस पेपर से लीक सवालों को पास करके मेडिकल की पढ़ाई करने लगे। तो सवाल अब ये समझना है कि नीट पेपर लीक का दावा क्यों हो रहा है। कहानी को ध्यान से समझिएगा। केरल में MBBS कर रहे एक छात्र ने सीकर में अपने पिता के मोबाइल पर 2 मई को गेस पेपर के 300 सवाल भेजे। कहा कि सीकर से मेरे दोस्त ने मुझे भेजे हैं, आप अपने हॉस्टल की लड़कियों को दे देना, यही पेपर कल यानी 3 मई की परीक्षा में आएगा। पीजी हॉस्टल चलाने वाले का कहना है कि उसने सुबह लड़कियों को वो पेपर दे दिया। फिर दावा है कि पीजी हॉस्टल संचालक परीक्षा खत्म होने पर एक कोचिंग संस्थान के टीचर के पास गया और कहा कि ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर मेरे पास हैं, देखिए तो इसमें से कितना सवाल आया। जब कोचिंग संचालक ने देखा तो दावा है कि नीट परीक्षा में पूछे गए बायोलॉजी के सभी 90 सवाल उस गेस पेपर वाले सवाल से मेल खाते थे। दावा है कि केमिस्ट्री के सभी 45 सवाल भी 81 प्रश्नों के केमिस्ट्री के गेस पेपर में थे। 36 दूसरे सवालों के बाद लाइन से बिना कॉमा फुल स्टॉप चेंज किए सभी 45 सवाल नीट वाले ही थे।
3: कौन सा ऐसा गुरु है जिसने ऐसा गेस पेपर तैयार किया है जिसके गेस पेपर से बायोलॉजी के सभी 90 और केमिस्ट्री के सभी 45 नीट में पूछे गए प्रश्नों का हूबहू मिलान हो रहा है, या फिर नीट का पेपर लीक था? ये जानने के लिए जरूरी है कि एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी ये फैसला करे कि ये पेपर लीक था या नहीं। जिसकी वजह से अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है और 15 से ज्यादा लोग हिरासत में पिछले 3 दिनों से रखे हुए हैं, जिनसे पूछताछ जारी है, मगर अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये गैस पेपर किसने तैयार किया था।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से दोबारा अपील, तेल बचाएं, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, कक्षाएं भी ऑनलाइन चलाएं, जितना संभव हो सोने की खरीद को टालें, स्वदेशी को दें बढ़ावा। विध्वंस से बची विरासत का प्रधानमंत्री ने किया शौर्य अभिषेक, सोमनाथ सृजन के 75 साल पर अद्भुत आयोजन, प्रधानमंत्री का इशारों में वार, कहा तुष्टिकरण बनी थी मंदिर जीर्णोद्धार में बड़ी बाधा। असम में एट्रिक के बाद आज हिमंता का होगा राज तिलक, प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के दिग्गज रहेंगे मौजूद, आज तक पर सॉलिड कवरेज। नीट पेपर लीक का गहराया साया, 600 नंबर के सवाल मैच होने के बाद हड़कंप मचा, सीकर से लेकर केरल तक एसओजी की दबिश, राहुल गांधी बोले नीट परीक्षा नहीं अब नीलामी है। और अमेरिका ईरान में फिर युद्ध के आसार, आज तक से बोले ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई, अमेरिका की अन्यायपूर्ण मांगों से सहमत नहीं, ट्रंप बोले अब कभी भी टूट सकता है युद्ध विराम। जंग अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी हुई है लेकिन युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, संकट के बादल अभी छटे नहीं है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील ने बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है, कुकिंग ऑयल और पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती की सलाह दी है।